0: शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गाइडेड बाय अ शेयर्ड पर्पस एंड अ स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
3: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
2: Learn more at emory.edu.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: किन ग्रहों की वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं? किन ग्रहों की वजह से आंखों में मोतियाबिंद का सामना करना पड़ता है? और किन ग्रहों की वजह से आंखों की रोशनी जाने लगती है। आंखों के पीछे कौन से हैं ग्रह और आंखों की बेहतरी के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
7: चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं भक्त। तय समय से केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, 2 हफ्ते में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचने का अनुमान, 1 जून को केरल तट पर हो सकती है झमाझम मॉनसूनी बारिश। देश के नए CDS होंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NS राजसुब्रमणी, हाथ में होगा तीनों सेना का कंट्रोल, वे वर्तमान CDS अनिल चौहान की जगह लेंगे। अगस्त से भारतीय रेलवे 40 साल पूरे पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम को बदलकर लागू करेगा नया सिस्टम, टिकटिंग और रिजर्वेशन में भी होगा बदलाव। कोलकाता नाइट राइडर्स की IPL में लगातार चौथी जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया, फिन एलन ने KKR के लिए खेली 100 रन की तूफानी पारी। प्लेऑफ में आज राजस्थान रॉयल्स का गुजरात टाइटंस से मुकाबला, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों।
7: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
8: तुम्हारी निंदा करे ना मेरे पागल, परेशान मत हुआ करो, एक दीपक जला करके धन्यवाद दिया करो। जो आदमी तुम्हारी निंदा कर रहा, सुनो, भक्तमहल में पूज्य श्री नाभादास जी ने एक बात कही, बड़ी प्यारी कही, आहा, छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों का मल माताएं अपने हाथ से साफ करती हैं, हां जी या ना जी, बोलो। छोटे छोटे बच्चों का मल माताएं अपने हाथ से साफ करती हैं, उन्हें घृणा नहीं होती है, क्यों? क्योंकि बच्चा हमारा है, सुंदर दिखेगा, स्वस्थ रहेगा, बढ़िया दिखेगा, लोग उसको खिलाएंगे, इसलिए छोटे बच्चे का मल जिस प्रकार माताएं हाथ से साफ करती हैं, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारी कमियों को अपनी जीभ से साफ करता है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, भक्तमाल के ग्रंथ में यह वर्णन आया है, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति जीभ से तुम्हारी कमियों को साफ करता है, इसलिए हमारी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई तुम्हें भला बुरा कहे ना, टेंशन में मत रहा करो, तुम टेंशन लेने थोड़ी आए हो, टेंशन तो हम प्रार्थना आपको करें, कोई निंदा करे तो आप प्रत्युत्तर मत दो, आप टेंशन मत लो, हनुमान जी से सीखो, न जाने क्या क्या रावण ने कहा, लंका में लोगों ने क्या क्या कहा, पर धन्य है हनुमान जी, अरे हनुमान जी को तो बीच यात्रा में कहा, रुक जाओ, ठहर जाओ, आराम कर लो, पर हनुमान जी से सीखो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, जब तक राम काज नहीं हो जाएगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। तो धन्य है सुंदरकांड, सुंदरकांड इसलिए सुंदर है क्योंकि यहां बड़ों की बात छोटे सुनते हैं, जहां बड़ों की बात की आज्ञा छोटे माने वहां सुंदरकांड सिद्ध होता है, और जहां छोटे आज्ञा अपने बड़ों को दें वहां लंका कांड सिद्ध होता है। हनुमान जी महाराज जामवंत जी से पूछते क्या करना है, तब जामवंत जी कहते जो कल हमने कहा,

0: जाम बंत के बचन सुहाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। और तभी लगी मोहे पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। और हनुमान जी बोले जब लगी आब सीता देखी। सुनो हम लंका जा रहे हैं, आप लोग यहीं पर बैठ करके फल खाओ। तो जामवंत जी के बाणों वचनों को सुनकर हनुमान जी लंका जा रहे और कह क्या रहे, आप लोग यहीं बैठो फल खाओ। तो किसी ने कहा कि हमें तो टेंशन है, तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे, हम फल खाते ही रह जाएं। हनुमान जी बोले टेंशन मत लो, हम राम काज करने जा रहे हैं और राम काज का फल तो मीठा ही होता है, तो मीठे मीठे फल खाओ, हम जा रहे हैं। और हम आएंगे कब, बोले सीता ही देखी, हम जानकी माता को देख करके ही आएंगे। जामवंत जी बोले देख के ही आना, कहीं विस्फोट मत कराना। ऑपरेशन सिंदूर का प्रचलन तो हनुमान जी ने ही शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो हमारे बजरंगबली का ही फर्स्ट ट्रायल है, उन्होंने ही लंका में घुस करके रावण के यहाँ पर धूम धड़ाका किया था, उसी का वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखने को मिला है। पहला ऑपरेशन तो हनुमान जी ने ही ऑपरेशन सिंदूर किया था लंका में, हाहाकार मचा दिया था। कैसे, उलट पलट लंका सब जारी और कुंभ परा सिंधु मझारी। हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा के लिए तैयार हैं। एक बात मेरे पागलों तुम समझना, राम काज करने वाले व्यक्ति को एक बात समझ लेनी है। हमने पिछली कथा में प्रार्थना की थी, फिर प्रार्थना करते हैं हम लोग। हनुमान जी कौन है, हनुमान जी हैं राम के बंदर, हम लोग हैं काम के बंदर। हैं हम लोगों से पूछो क्या कर रहे, तुम कथा में क्यों नहीं आए। गुरु जी आना तो था पर काम से गए थे, और जो आदमी काम से जाता है वो काम से ही चला जाता। हम लोग काम के बंदर हैं, हनुमान जी राम के बंदर हैं। राम काज करवे को आतर, इसलिए मेरे पागलो अगर तुम्हें अपने हर काम सफल करना सीखना है तो हनुमान जी से सीखो, सुंदर कांड से सीखो, अपने काम काज को ही राम काज बना डालो। बोलो सीताराम। के समय जब पूरा शिष्य मंडल हमारा सो गया, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं, तो खुले मैदान में पानी के मटका रखे हुए थे, हमने मटकों के पानी को सिर पर डाला और एक मटका में पानी भरा और सोचा हनुमान जी को जल चढ़ाया जाए, कम से कम अर्जी सुन लें, कोई मन में प्रेरणा दे दें ताकि व्यवस्था बन जाए, ताकि हमारी चिंता दूर हो जाए। और जैसे ही हम मंदिर पर चढ़ने लगे, भैया चौथी पांचवी सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखा, पूज्य श्री सन्यासी बाबा बोल पड़े, जा चिंता ना कर, कल सुबह तक तेरी व्यवस्था हो जाएगी। वहां पर मंदिर में भोले बाबा का मंदिर है धाम पर, भोले बाबा के मंदिर से बड़े हुंकार की गर्जना आई, जाओ तुम्हारी सुबह तक व्यवस्था हो जाएगी। तो पहले तो हमें बड़ा डर लगा, फिर पता लगा कि ये तो हमारे मन में बात थी, ये किसने बोली है। तो हम भागे भागे मटका छोड़ दिया, भागे भागे मंदिर पे बड़ी जोश जोश में गए, तो बड़ा तेज सा प्रकाश सन्यासी बाबा का अंदर प्रकाशित हो रहा। चमीटा लिए हुए सन्यासी बाबा खड़े हैं और हुंकार करते हुए वहां पर खड़े हुए देखा, तो हमने कहा कि आप हमारे गुरुजी हो क्या। वहीं अंदर से हुंकार भरी, तो हमारा मन गदगद हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। अब वो फिर से बोले जा वापस उतर जा और जाके सो जा, सुबह तेरी यज्ञ की व्यवस्था हो जाएगी। अब सुनना भैया, हम तो बड़े प्रसन्न हो गए, थोड़ी देर में ऐसी हालत हो गई जैसे बेहोश हो गए हो। तो कुछ देर तक वहीं पड़े रहे, वापस आए तो सो गए, अब तो टेंशन फ्री थे तो खूब देर तक सोए, 8-9 बजे सुबह तक। सुबह जैसे ही जागे तो रोज की तरह नित्य नियम किया, जहां बागेश्वर धाम आप मंदिर जाओगे तो दरवाजे के पास में एक पीपल का पेड़ है, तो हम पीपल के पेड़ के नीचे वहां सोफा डाल के बैठते थे, तो सोफा पे जाके बैठ गए। अब टेंशन तो दूर हो गई, गुरुजी ने कह दिया, पर ये नई मन में टेंशन आ गई कि आएगा कैसे। उस समय में बहुत ज्यादा भीड़ होती नहीं थी, आहा फिर क्या, हमारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठते ही आहा हा, एक बोलेरो गाड़ी आई और उसमें एक सज्जन व्हाइट शर्ट पहने हुए काला पैंट पहने हुए उतरे, सबसे मिल रहे थे, 400-500 लोग बैठे थे, हम भभूति बांट रहे थे। उन्होंने आकर के कहा, महाराज जी आपकी जय हो। हमने कहा भैया कहाँ से आए? बोले गुरुजी झांसी से आए हैं। हम कहा बहुत बढ़िया, भोजन पा लेना। हमें तो सामान्य अब ऐसा तो कुछ पता नहीं था, तो सीधे साधे आदमी। हमने कहा भैया भोजन पा लेना, यज्ञ के दर्शन कर लो। बोले जी गुरुजी हो गया, हम कुछ सामान लाए हैं। हम कहा क्या लाए हो? बोले कुछ सहयोग लाए हैं। हम कहा वहाँ कार्यालय में दे दो और रसीद ले लेना। बोले हमें कार्यालय में नहीं देना, आपको ही देना है। एक छोटा सा बैग उन्होंने पकड़ा दिया। हमें लगा कपड़ा होंगे, मिठाई विठाई होगी। भैया हमने धर लिया। अब वो हमारी ही आंखों के देखते वापस चले गए। जैसे ही एक कमरा बना था, बहुत बड़ा आश्रम तो था नहीं, एक कमरा बना था, तो एक तिवारी जी हमारे पास रहते थे, विजय तिवारी जी। विजय तिवारी जी को हमने वो बैग दिया और जैसे ही खोला तो ऊपर लाल पेन की एक चिट्ठी रखी थी। उस पर पहले नंबर पर बड़े अक्षरों में लिखा था जय सिया राम। और जब बैग खोल करके देखा, पूरे यज्ञ की चुकती हो गई, ब्राह्मणों की दक्षिणा चुक गई और 50,000 रुपया बच गए। हम ना उनको जानते, आज तक हमारा परिचय नहीं। मोटरसाइकिल लेके हम गांव के बाहर तक गए, हमको नहीं मिले, हम बड़े चौंक गए। फिर अंदर ही अंदर सन्यासी बाबा की प्रेरणा आई, तू टेंशन ना ले, व्यवस्था हो गई, वापस जा। तब हमें खूब रोना आया कि धन्य है गुरुदेव, हमारे कारण उनको ये रूप बना करके आना पड़ा, हमारी यज्ञ को सफल करवाना पड़ा। पंचकुला के पागलों, हम हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं, तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो, वो तुम्हारी नाक नहीं कटने देंगे। हाँ, वो दिन है कि आज का दिन है, आज तक हनुमान जी की कृपा से। भैया हमने फिर लौट के मुड़ के नहीं सोचा, जब हॉस्पिटल के निर्माण की संरचना चल रही थी, भूमि पूजन होना था, हमें सबने डांटा कि बहुत बड़ा संकल्प है, आप कर नहीं पाओगे, आप किसी से मांग पाते नहीं हो। हनका जो होगा देखा जाएगा, हमारे मन में आया है, इस देश में 1,000 करोड़ के मंदिर बने हैं, हम अस्पताल बना करके जाएंगे। प्राप्त करने के लिए जिद तो बहुत जरूरी है, अगर आप जिद्दी नहीं बनोगे तो आप प्राप्त कर नहीं पाओगे। आपको जिद्दी तो बनना पड़ेगा, चाहे वो भगवान को पाना हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी गया, बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले कल आना। जब कल गए, महाराज हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले नदी चलो। बेचारा नदी चला गया, नदी जैसे ही पहुंचा तो फिर बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले नदी में कूद। वो कूद गया और फिर कूदते हुए तैरते हुए बोला हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी ऊपर से कूद गए। वो फिर ऊपर आया, हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी ने गर्दन पकड़ ली और डुबो दिया। वो फड़फड़ा गया, अब लगा के मर जाएगा। फिर छोड़ा और जैसे ही छोड़ा तो फुरफुर करता हुआ बाहर दौड़ के गया। बोले हमें पहले कन्फर्म नहीं था कि तुम पागल हो, आज कन्फर्म हो गया पागल हो। हमने पूछा है भगवान को पाना है, उपाय बताओ, तुम हमें नदी में लाकर के मारने ले आए। परमहंस जी बोले बेटा मारने नहीं लाए हैं, उपाय बतलाने लाए हैं। ये गला दबाना कौन सा उपाय है? बोले बेटा जिस प्रकार पानी में तू श्वास के लिए तड़प रहा था, वैसे ही तू परमात्मा के लिए तड़पने लगे तो भगवान मिल जाएगा। जैसे श्वास के लिए भगवान का मिलना कठिन नहीं है, तड़प का आना जरूरी है। मीरा तड़पी है, इसलिए उसे कलयुग में भी गोविंद मिले। सूरदास तड़पे हैं, इसलिए उन्हें कलयुग में भी गोविंद मिले। तुलसीदास तड़पे हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तुलसीदास की भी आंखों में सदा भाव रहता। तुलसीदास जी भी सूरदास जी गाते अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास भी तड़पे, तुलसीदास जी भी तड़पे। भैया जब तक अंदर तड़प नहीं होगी ना, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। चाहे भगवान को पाना हो, चाहे सफलता को पाना हो, या सक्सेसफुल को पाना हो। पढ़ने वाले बच्चे एक बात तय कर लें, जिद्दी बनो, जिद्दी बनो। जिद्दी का मतलब गुस्सेल मत बन जाना कि कल से ही तुम गुस्सेल हो जाओ। सफलता पाने के लिए जिद्दी बनो। तुम अपने ही शरीर से सीखो, नाखून और बाल बचपन से कट रहे हैं, फिर भी नाखूनों ने कभी बढ़ना नहीं छोड़ा, बालों ने कभी बढ़ना नहीं छोड़ा। कितनी बार कटे फिर भी बढ़ रहे हैं। ऐसी जिंदगी में कितनी भी बार गिरो पर चलना मत छोड़ना। तुम उड़ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, तुम उड़ नहीं सकते दौड़ो, तुम दौड़ नहीं सकते चलो, तुम चल नहीं सकते रेंगो, पर शांत मत पड़े रहो, चुप मत पड़े रहो, लगे रहो। हमारे गुरु कहते डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। भगवान के चरण पकड़े रहो। संत कहते कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम, कभी तो भगवान के कानों में पुकार जाएगी। कभी भरत जी के चरित्र को सुनना, भरत जी कितने आर्तनाद स्वर में राम जी को पुकारते, इतने आर्तनाद स्वर में भरत जी राम जी को पुकारते, जब राम जी से मिलने जाते चित्रकूट, कि भरत जी के आर्तनाद करुण पुकार स्वर को सुनकर के पत्थर के पहाड़ों के पर्वत के पत्थर, पर्वतों के पत्थर पिघलने लगते, और वो भी भगवान से प्रार्थना करने लगते कि जो होना हो सो हो जाए, पर भरत जी के कहने पर राम जी वापस लौट आए। इतनी तड़प। कभी तुम मछली को देखना, जल के बिना तड़पती है, इतनी तड़पती जल के बिना पूछो मत, इतनी तड़पती कि वो प्राण त्याग देती, अगर जल ना मिले तो वो फिर जीती नहीं है। वो कहती जियूंगी तो जल में, वरना जियूंगी नहीं, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। परम पूज्य श्री रामायणी जी कहते हैं जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त मंजूर ना हो तो जिंदगी में जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। अगर सफलता ना मिले तो रूठ जाओ, जिद्दी बनो। याद रखना मेरे पागलो, जब तुम बचपन में रहते हो, जब शुरुआत पढ़ाई करते हो, तब तुमको पेंसिल दी जाती है। क्यों? क्योंकि पेंसिल में मिटाने का ऑप्शन होता है, छुटाने का, लेकिन जैसे ही तुम बड़े हो जाते हो पेन पकड़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर रफ नहीं पचता, जिंदगी फेयर बन जाती है, मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं, बड़े होते ही तुम्हें पेन पकड़ा दिया जाता। ऐसी जिंदगी है, अगर पाना है तो जिद्दी बनो, अगर पाना है बहुत नींद मत लो, कम सो, अगर प्राप्त करना है तड़पो ज्यादा, अगर तुम्हें प्राप्त करना है विचार ज्यादा करो, तुम्हें जो पाना है उसके बारे में सोचो। हमको रामानंद सागर की महाभारत का एक सूत्र बड़ा प्यारा लगता, जब हमने टीवी पर देखा और शकुनी मामा एक बहुत अच्छी बात बोलते, अपने भांजों को कह रहे थे मेरे बच्चों रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। अगर आपको रणभूमि में कुछ खेलना है तो पहले मनोभूमि में खेलो, विचार करो, विचारों का कोई टैक्स थोड़ी है, दिन ना रात विचार करो। पढ़ने वाले बच्चों हनुमान जी से सीखो लगन, जब तक लंका पहुंच नहीं गए राम काज कीन्हे बिन मोही कहां विश्राम। हनुमान जी कहते जब तक राम काज नहीं कर देंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। मेरे पागलो तुम्हें भी जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक तुम रुकना नहीं। एकमात्र हनुमान जी हैं जिन्होंने अपनी मां के दूध का कर्ज चुकाया, हां एकमात्र हनुमान जी हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने अपनी मां के दूध का कर्ज चुकाया। आप सुन के चौंकेंगे मेरे पागलो, जब रावण मर गया, दशानन मारा गया, और हनुमान जी महाराज मां जानकी जी राम जी लक्ष्मण जी विभीषण जी जामवंत जी अंगद दधीमुख केहरि सब बानर पुष्पक विमान पर बैठे जाने लगे वापस, तो हाथ जोड़ लिए हनुमान जी ने, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी से बहुत दिन से मिले नहीं, हम अपनी माता जी से मिले आए, बीच रास्ते में आप हमें उतार देना, हम माता जी के चरण छूने के लिए माता जी को प्रणाम करने के लिए चले जाएंगे, जब से आए हैं तब से गए ही नहीं, जब से सुग्रीव जी के पास आए हैं रक्षा के लिए बहुत दिन हो गए गए नहीं। अच्छा तुम्हारी माता जी कहाँ रहती, राम जी ने पूछा। महाराज वेंकटाचल पर्वत पर रहती हैं। राम जी ने पुष्पक विमान की ओर इशारा किया, इस विमान को अंजना पर्वत की तरफ ले जाया जाए। जैसे ही हनुमान जी ने यह सुना तो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु आप चल रहे। राम जी बोले हनुमान जब तुम इतने दिन हमारे साथ रह सकते हो, हमारे लिए इतना समर्पण कर सकते हो, हम भी तुम्हारे साथ चल करके जरा देखें तो।
1: किन ग्रहों की वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं? किन ग्रहों की वजह से आंखों में मोतियाबिंद का सामना करना पड़ता है और किन ग्रहों की वजह से आंखों की रोशनी जाने लगती है? आंखों के पीछे कौन से हैं ग्रह और आंखों की बेहतरी के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: बैटलफील्ड के बाहुबली को मिलेगा सुपर कवच, जमीन से आसमान तक हर खतरा होगा ध्वस्त। इंडियन बैटल टैंक को मिला अमर होने का वरदान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
7: Thank God I get to wake
6: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: शारदा में आश्रम में यात्रियों की संख्या 9,20,000 के पार, 4 लाख ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं भक्त। तय समय से केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, 2 हफ्ते में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचने का अनुमान, 1 जून को केरल तट पर हो सकती है झमाझम मॉनसूनी बारिश। देश के नए CDS होंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, हाथ में होगा तीनों सेना का कंट्रोल, वर्तमान CDS अनिल चौहान की जगह लेंगे। अगस्त से भारतीय रेलवे के 40 साल पूरे पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम को बदलकर लागू करेंगे नया सिस्टम, टिकटिंग और रिजर्वेशन में भी होगा बदलाव। प्लेऑफ में आज राजस्थान रॉयल्स का गुजरात टाइटंस से मुकाबला, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
10: मौसम विभाग के मुताबिक तय समय से भारत पहुंचेगा मानसून, 1 जून को केरल तट पर बरसेंगे मानसून के बादल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून का आना करीब 2 हफ्ते दूर, भारत में सबसे पहले यही होती है मानसून बारिश। ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है भारत के मानसून का रास्ता, ऑस्ट्रेलिया में बारिश का मौसम खत्म होने का सीधा असर भारत के मानसून पर पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो चुकी है बारिश। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून के समय पर आने की वजह अलनीनो की स्थितियां बनने की संभावना बहुत कम। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में अगले 7 दिनों में बारिश होगी, मानसून के सही समय पर आने का बड़ा संकेत होगी बारिश। मौसम के मिजाज में बदलाव का सिलसिला रहेगा जारी, उत्तर भारत के कई इलाकों में जारी रहेगा बारिश, गरज चमक और बढ़ते तापमान का असर। उत्तराखंड में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली तेज हवाओं के साथ गरज चमक का सामना करने की संभावना। 10 मई से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली समेत पहाड़ी राज्यों में होगी बारिश, चलती रहेंगी तेज हवाएं। पश्चिमी बंगाल और झारखंड में 9 और 10 मई के बीच 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान भी आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में 9 मई तक छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर बारिश जारी रहने की संभावना, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 12 से 13 मई को कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन, अब तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हो चुके हैं शामिल। केदारनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हर दिन करीब 25,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे बाबा के धाम, फिलहाल श्रद्धालुओं को मिल रहा है मौसम का साथ। बद्रीनाथ धाम में उमड़ रहा है आस्था का मेला, अब तक 2,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी भक्तों का तांता, बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड में भी श्रद्धालुओं का जोश आया, यमुनोत्री में 1,45,000 से ज्यादा तो यमुनोत्री में 1,43,000 श्रद्धालु ले चुके हैं आशीर्वाद। केदारनाथ धाम में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अस्पताल का किया लोकार्पण, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस इस अस्पताल से स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती, केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दी जा रही विशेष प्राथमिकता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया अस्पताल का उद्घाटन, बाबा केदार के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जल कल्याण की कामना की। चारधाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम के सफाई अभियान में जुटे आईटीबीपी के जवान, तप्त कुंड से लेकर ब्रह्म कपाट तक अलकनंदा नदी के तटों की हो रही है सफाई। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा लेख, विभाजित दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश, 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। गर्मी की छुट्टियों में दक्षिण भारत घूमने का शानदार मौका, IRCTC ला रहा है 11 दिन का स्पेशल टूर पैकेज। 26 जून से शुरू होने वाली यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम और कन्याकुमारी के कराए जाएंगे दर्शन, ऋषिकेश में चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, यूपी के कई स्टेशन से यात्री कर सकेंगे सफर। IRCTC के नए टूर पैकेज में ट्रेन सफर, होटल और खाने की पूरी सुविधा शामिल, बुकिंग पहले आओ पहले पाओ आधार पर शुरू। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के इच्छुक लोगों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए चलाई विशेष ट्रेन, ऋषिकेश से 12 जून को चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। आसमान से उतरे सेना के K9 वॉरियर्स, मणिपुर में दिखाया अदम्य साहस। अभ्यास में 5 डॉग टीम्स ने लिया हिस्सा, डॉग हैंडलर्स और मिलिट्री डॉग्स के बीच दिखा जबरदस्त तालमेल और आत्मविश्वास। युद्ध और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये डॉग्स निभाते हैं अहम किरदार, अभ्यास में सैनिकों के साथ मिलकर काम करने की बारीकियों को परखा गया। इन योद्धाओं को हथियार छीनने और घुसपैठियों को दबोचने की मिलती है खास ट्रेनिंग, खामोशी से मिशन को अंजाम देने में सक्षम है ये डॉग्स। लीमाकोम गिलेट्री स्टेशन पर अभ्यास को दिया गया अंजाम, घने जंगलों के छिपे दुश्मनों को ढूंढने की क्षमता को परखा गया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के करौली टाइगर रिजर्व पहुंचा चीता, वन विभाग की टीम ने 24 घंटे में ट्रेस की लोकेशन। रेडियो कॉलर से हो रही चीते की निगरानी, वन विभाग ने लोगों को दी सतर्क रहने की सलाह। राजस्थान में चीता कॉरिडोर बनाने की योजना पर भी चल रहा है काम। धौलपुर से रावत भाटा तक करीब 400 किलोमीटर के वन क्षेत्र में बनेगा चीता कॉरिडोर। कोची के तट पर भारत नीदरलैंड का शक्ति प्रदर्शन। INS शारदा और रॉयल नीदरलैंड नेवी के फ्रिगेट HNLMS डी रॉयटो के बीच अभ्यास। मॉनसून की दस्तक से पहले आज गृहमंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक। हीटवेव से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा। गुजरात के गिरनार के जंगलों में शेरों की बढ़ती आबादी को बचाने के लिए वन विभाग की बड़ी पहल। हाईवे पर तैनात की गई विशेष पेट्रोलिंग टीम। शेरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग सतर्क। कई मौकों पर ट्रैफिक रोककर शेरों और शावकों को पार करवा जा रहा है सड़क। वन विभाग हाईवे पर स्पीड ब्रेकर्स और चेतावनी साइन बोर्ड लगाने की कर रहा है तैयारी। शेरों की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कैमरा और सेंसर सिस्टम लगाने की योजना। जूनागढ़ वन विभाग की लोगों से अपील, सड़क पर अगर शेर दिखाई दे तो वाहन चलाएं धीमे, हॉर्न न बजाने और वन्य जीवों को न परेशान करें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के सनशाइन पीक से 24 सैलानियों का सफल रेस्क्यू। बिगड़ते मौसम की वजह से मुश्किल में थे सैलानी। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के विमानों का इस्तेमाल। सहारनपुर में दूल्हे ने लौटाए दहेज के 2.5 लाख रुपए। शगुन में लिया

0: खान और तीनों सेना प्रमुखों ने लिया हिस्सा। ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कॉग्निटिव वॉरफेयर्स और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मंथन, रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक पर भी चर्चा। कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल में लगातार चौथी जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने 142 रन बनाए, कोलकाता ने 40 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। फिन एलन की नाबाद 100 रन की तूफानी पारी, 47 गेंदों में लगाए 5 चौके और 10 छक्के, कोलकाता नाइट राइडर्स की लगातार चौथी जीत। कैमरन ग्रीन ने दिलाए कोलकाता को आसान जीत, दिल्ली की प्लेऑफ उम्मीदों को बड़ा झटका, केकेआर की उम्मीदें बरकरार। प्लेऑफ में आज राजस्थान रॉयल्स का गुजरात टाइटंस से मुकाबला, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की भूत बंगला की धूम, 21 दिन में फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई 235 करोड़ के पार। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी की बॉक्स ऑफिस में फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई 235 करोड़ के पार। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 63 करोड़ पहुंचा, इतिहास रचने के करीब मराठी फिल्म। भारत ही नहीं विदेशों में भी मोहनलाल ममूटी की फिल्म पैट्रियट का जलवा बरकरार, दुनिया भर में 73 करोड़ से ज्यादा का किया कारोबार। बॉक्स ऑफिस पर जुनैद खान साई पल्लवी की जोड़ी का नहीं चला जादू, फिल्म एक दिन ने एक हफ्ते में महज 4 करोड़ का बिजनेस किया। दुनिया भर के थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद धुरंधर 2 अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक, 14 मई को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। एक्टर जयदीप अहलावत की फिल्म दलदल का पोस्टर रिलीज, गले तक दलदल में फंसे नजर आए जयदीप, जल्द रिलीज डेट का होगा ऐलान। फिल्म NH 404 से पोस्टर से राकेश बेदी का फर्स्ट लुक आउट, कैप्शन में लिखा अगर रोड रोलर देख लो तो लेफ्ट और राइट देखकर क्रॉस करो। गुल्लक सीजन 5 का हुआ ऐलान, जल्द मिश्रा परिवार की होगी वापसी, अनु भैया यानी वैभव राज गुप्ता के रोल में नजर आएंगे अनंत वी जोशी। ईशा अंबानी ने फैशन की दुनिया में फिर से बिखेरा जलवा, कस्टम में शनेल हाउथी काउचर साड़ी गाउन पहनकर सबको किया मंत्रमुग्ध। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, फैंस खूब पसंद कर रहे हैं लुक की जमकर तारीफ। अभिनेता संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल का धमाकेदार ट्रेलर आउट, विवादित मुद्दों को उठाती है फिल्म, समीरा रेड्डी और नमाशी चक्रवर्ती आएंगी नजर, 15 मई को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन का पोस्टर जारी, सुपर हीरो दादा के किरदार में अभिनेता जैकी श्रॉफ, फिल्म 29 मई को होगी रिलीज। आस्था और भावनाओं से भरपूर कृष्णा और चिट्ठी का टीजर आउट, दर्शकों के दिलों को छू गया टीजर, एक्टर अरुण गोविल और दर्शन सफारी मुख्य भूमिका में, 29 मई को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। 3 जून को होगा एक्टर रामचरण स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा पेरी का प्रीमियर, फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, एक्ट्रेस जानवी कपूर भी आएंगे नजर। माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णा अवतारम पार्ट 1 हृदय ने थिएटर्स में छोड़ी छाप, भव्यता पर भारी पड़े भाव, भगवान कृष्ण के रूप में सिद्धार्थ गुप्ता की एक्टिंग की जा रही है तारीफ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: किन ग्रहों की वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं? किन ग्रहों की वजह से आंखों में मोतियाबिंद का सामना करना पड़ता है और किन ग्रहों की वजह से आंखों की रोशनी जाने लगती है, आंखों के पीछे कौन से हैं ग्रह और आंखों की बेहतरी के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: It never happens at a good time. The pipe bursts at midnight. The heater quits on the coldest night. Suddenly, you're overwhelmed. That's when Home Service here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, Home Serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99.

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी कुंडली के, अपने जीवन के शुक्र को सरल उपायों से कैसे बेहतर बना सकते हैं। शुक्र कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में और उसको मजबूत कैसे बनाया जाए, इस विषय पर बात करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में और मंगल तथा शनि फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप किन छोटे छोटे उपायों से, किन सरल तरीकों से शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, जैसे बृहस्पति को देव गुरु कहते हैं, वैसे ही शुक्र को दैत्य गुरु कहा जाता है। शुक्र को गुरु और मंत्री का दर्जा प्राप्त है। शुक्र का संबंध जीवन में सुख, वैभव और विलासिता से होता है। शुक्र व्यक्ति के जीवन में आनंद लाता है, खुशियां लाता है, चकाचौंध लाता है, ग्लैमर लाता है। शुक्र से व्यक्ति को ज्ञान भी मिलता है और खुशियां भी मिलती हैं। अगर शुक्र कुंडली में कमजोर हो जाए तो व्यक्ति जीवन में तमाम प्रयास करने के बावजूद सुखी नहीं होता, या तो विवाह होता नहीं या उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। जीवन में किसी भी प्रकार का आनंद और सुख व्यक्ति को नहीं मिलता अगर उसकी कुंडली में शुक्र अनुकूल नहीं है। व्यक्ति को आंखों की, मन की और भावनाओं की समस्या परेशान करती है। तो एक लाइन में ये समझिए कि अगर आप जीवन में चैन से रहना चाहते हैं, अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली के शुक्र को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे मजबूत करेंगे उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, व्यक्ति के जीवन में उसके ग्रहों पर, उसकी सोच पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है उसके खान पान का। तो अपने खान पान के द्वारा, उसमें बदलाव के द्वारा आप अपने शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं, स्वच्छ और सुंदर खाद्य पदार्थ खाइए, जो खाना साफ हो और अच्छा दिखाई भी दे, ऐसा भोजन ग्रहण करिए। भोजन में कच्चे फल और सलाद का प्रयोग करिए, अच्छा रहेगा। भोजन में दही का प्रयोग जरूर करें, खास तौर से दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा ठंडा पानी, बहुत लोगों को चिल्ड पानी पीने की आदत होती है, तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। कांच के गिलास से जल पीने का प्रयास करिए। कांच के गिलास से अगर पानी पिएंगे तो बहुत अच्छा होगा। खान पान के अलावा आप अपने व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं, और अपने व्यवहार में बदलाव के द्वारा आप शुक्र को बेहतर बना सकते हैं। तो अपने व्यवहार के द्वारा शुक्र को कैसे ठीक करेंगे? अपने व्यवहार को मधुर और कोमल बनाइए। प्रेम से अच्छी तरह से बात करिए। चीखना चिल्लाना, गाली देना, ये सब बंद करिए। बड़े प्रेम से, मिठास से बात करिए। स्त्रियों का विशेष सम्मान करिए, चाहे आपके घर की स्त्रियां हों, चाहे बाहर की स्त्रियां हों। नियमित रूप से सुगंध का प्रयोग करिए। रोज सुबह स्नान करने के बाद सुगंध का प्रयोग करना अच्छा होगा। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसे आपके जूते हैं, आप बात कैसे करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, अपने प्रेजेंटेशन पर विशेष ध्यान दीजिए। माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करिए। रोज शाम के समय में थोड़ा समय निकाल करके माता लक्ष्मी की उपासना करें। कुछ नहीं कर सकते तो शाम को लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाकर उनकी आरती करिएगा। अपने गुरु की अवहेलना मत करिए। अपने गुरु की बात मानिए और उनके निर्देशों का पालन करिए। शुक्र को मजबूत करने के कुछ और उपायों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो अपने खान पान में, अपने व्यवहार में, अपने तौर तरीकों में आप बदलाव करके शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। कुछ और उपायों की भी बात करते हैं जिनसे आप शुक्र को मजबूत बना सकते हैं। रात के समय में उपासना या ध्यान करना शुरू करिए। सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, अच्छी बात है, वो करिए, लेकिन रात के समय में 2-4 मिनट, 10 मिनट उपासना करिए, या रात के समय में ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, लाभ होगा। नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करें, खास तौर से संध्या काल में या रात के समय में माता लक्ष्मी की उपासना बहुत बेहतर होगी। नियमित रूप से रोज सुबह स्नान के बाद सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा। माथे पर कंठ पर सफेद चंदन का तिलक लगाना अच्छा होगा। सप्ताह में एक बार किसी भी देवी के मंदिर में जाइए, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी या माता काली के मंदिर में जाएं। अपने साथ हमेशा क्रीम रंग का रुमाल रखिएगा। एक सफेद रंग के स्फटिक की माला अपने गले में अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मन आपका शांत होगा, चिंताएं आपकी दूर होंगी और शुक्र आपका मजबूत होगा। तो आज हमने शुक्र को मजबूत करने के सरल उपायों पर चर्चा की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर जीवन के सुख चैन में कमी रहती हो, आप सुख से, शांति से, चैन से नहीं रह पाते हो, तो रोज शाम को माता लक्ष्मी की विधिवत आराधना करना शुरू कर दीजिए। अब जान लेते हैं दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं भक्त। तय समय से केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, 2 हफ्ते में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचने का अनुमान, 1 जून को केरल तट पर हो सकती है झमाझम मॉनसूनी बारिश। देश के नए सीडीएस होंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजसुब्रमणी, हाथ में होगा तीनों सेना का कंट्रोल, वे वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान की जगह लेंगे। अगस्त से भारतीय रेलवे 40 साल पूरे पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम को बदलकर लागू करेगा नया सिस्टम, टिकटिंग और रिजर्वेशन में भी होगा बदलाव। नाइट राइडर्स की आईपीएल में लगातार चौथी जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया, फिन एलन ने केकेआर के लिए खेली 100 रन की तूफानी पारी। प्लेऑफ में आज राजस्थान रॉयल्स का गुजरात टाइटंस से मुकाबला, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आंखों की समस्या के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है, हमें आंखों में दिक्कत होती है, आंखों में मिर्च लगती है, कुछ धुंधला दिखने लगता है, हमें चश्मे लगवाने पड़ते हैं। तो अगर हमें आंखों की समस्या हो रही हो तो उसे दूर करने के उपाय क्या है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आप शनि की साढ़े साती से या शनि की ढैया से परेशान हैं तो हर शनिवार दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाइए और उनका दर्शन करिएगा। हनुमान जी की वो मूर्ति जिसमें हनुमान जी का चेहरा दक्षिण दिशा में हो, ऐसे मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन करेंगे तो शनि की साढ़े साती और ढैया का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
0: 9 मई 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है?
1: दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 2:02 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 11:24 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जानते हैं आंखों के रोग का ज्योतिष और ग्रहों से आखिर संबंध क्या है।
1: जी देखिए, जब तक मानव का शरीर है रोग से बच नहीं सकता, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी उसको जीवन में आती रहती है। और आजकल आंखों का रोग बड़ी तेजी से आता है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। उम्र बढ़ने पे लगना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन बचपन से ही चश्मा लग जाता है। आखिर आंखों के रोग का ज्योतिष से और ग्रहों से क्या संबंध है? देखिए, आंखें मानव जीवन की सबसे अमूल्य निधि हैं। आंखें बड़ी महत्वपूर्ण हैं किसी व्यक्ति के अपने जीवन के लिए भी और उसके व्यक्तित्व के लिए भी। ये व्यक्ति को दुनिया और लोगों से परिचित करवाती हैं। आंखों का ज्योतिष में 2 ग्रहों से सीधा संबंध माना जाता है। 2 ग्रह जो प्रकाश देते हैं, ल्यूमिनरीज हैं, सूर्य और चंद्रमा, उनसे आंखों का सीधा संबंध है। इसके अलावा कहीं कहीं पर शुक्र को नेत्रों से संबंधित मानते हैं। वास्तव में शुक्र आंखों के लेंस का मालिक है। कुंडली का 2रा भाव और 12वां भाव आंखों का होता है, और इसमें भी 2रा भाव आंखों को ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है। 2रा भाव और सूर्य ये आपकी राइट आई है, ये आपकी दाहिनी आंख है। बारहवां भाव और चंद्रमा, ये आपकी बाईं आंख है, ये आपकी लेफ्ट विजन है। लेकिन इन टोटल अगर देखें, कुल मिला जुला के देखें, तो सेकंड हाउस, दूसरा भाव और सूर्य, ये आंखों के लिए बड़े महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं।
0: और अब वक्त हो गया आपके राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं जिन लोगों की मेष, वृष और मिथुन राशि है उनका क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, इस समय थोड़ा प्रयास करेंगे, धन आसानी से मिलेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की रुकावट दूर होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, संतान की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, शनि मंत्र का एक बार जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: और आइए जानेंगे कि कब व्यक्ति को आंखों की समस्या हो जाती है।
1: देखिए, व्यक्ति को आंखों में बहुत सारी समस्या हो सकती है। नजर का कमजोर होना, मोतियाबिंद होना, आंखों की रोशनी चली जाना, इंजरी हो जाना। तो आखिर कब व्यक्ति को आंखों की समस्या होती है? अगर कुंडली के दूसरे भाव में या द्वादश भाव में पाप ग्रह पाए जाएं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु, तो आंखों में दिक्कत होगी। सूर्य या चंद्रमा अगर कमजोर होंगे तो भी आंखों में दिक्कत की संभावना बनेगी। शुक्र और सूर्य का अगर कुंडली में संबंध बने तो आंखों से पानी गिरता है और आंखें कमजोर हो जाती हैं। शुक्र अगर ज्यादा कमजोर हो गया कुंडली में तो कम उम्र से ही आंखें बिगड़ जाती हैं, कम उम्र से ही चश्मा लग जाता है। सूर्य अगर खराब हो, कमजोर है तो चश्मा लगेगा, खराब है तो ग्लूकोमा होगा, यानी आंखों की रोशनी जाने की संभावना हो सकती है। शुक्र अगर खराब हो गया तो एक आंख की रोशनी जा सकती है। आपने कथाओं में पढ़ा होगा ना कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक ही आंख है, वो इस बात की सूचना है, इस बात का प्रतीक है कि अगर शुक्र खराब हुआ तो एक आंख की रोशनी चली जाती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि शनि मंगल के संबंध से दुर्घटना में आंखें चली जाती हैं। आंखों के ग्रह से और आंखों के भाव से अगर मंगल का संबंध बन गया तो ये आंखों की सर्जरी करवाएगा, केतु भी करवा देता है। वैसे आंखों में जो मोतियाबिंद होता है वो होता है कफ की वजह से, तो जिनकी कुंडली कफ प्रधान है या जिनके चंद्रमा पर प्रेशर ज्यादा है उनको मोतियाबिंद होने की संभावना होती है, और ऐसे लोगों की आंखों की सर्जरी की स्थिति बन जाती है।
0: ये जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: कर्क राशि, इस समय आपके लिए यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कर्ज की समस्याओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, चिंताओं से राहत मिलेगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब पंडित जी द्वारा दे जाने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी,
0: पंडित
1: आज का पहला प्रश्न विमल शॉ ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 1 फरवरी 1995 का जन्म है, 6:10 शाम को मिदनापुर पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं अभी नौकरी करता हूँ एक कोल्ड स्टोरेज में और मैं भविष्य में व्यापार करना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा व्यापार करूँ और कब करूँ? विमल जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा भी शनि की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से व्यापार तो बाद में देखिएगा, पहले अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए। शनि की अंतर दशा शनि में शनि मार्च 2029 तक चलेगी और जब तक शनि में शनि की अंतर दशा आपकी चल रही है, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को लेकर बहुत सतर्क रहिए। व्यापार मार्च 2029 के बाद करने के बारे में विचार करिएगा। अभी के लिए ये सलाह है आपको कि 2026, 27 और 28 में हर साल एक बार रुद्राभिषेक करवाइए और रोज सुबह एक बार नारायण कवच का पाठ करिएगा। ये नियमित रूप से करिए, समय थोड़ा नकारात्मक है इसलिए लापरवाही नहीं कर सकते।
0: अगर आपको भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप पंडित जी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका लेंगे?
1: जी, अगला प्रश्न राजीव जैन जी ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखते हैं। 29 अप्रैल 1964 का जन्म है, 11:57 प्रातः ग्वालियर मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा पारिवारिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं है, अभी मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, भविष्य में मैं ग्वालियर में सेटल होना चाहता हूँ, तो क्या वहां पर भी मैं कोई काम करूं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? राजीव जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतर दशा केतु की चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप इस साल में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा। अक्टूबर 2026 के बाद स्थितियां थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं और भविष्य में ग्वालियर में सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं है। ग्वालियर में अगर आप सेटल होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आप कपड़े का, कॉस्मेटिक्स का, खाने पीने की चीज़ों का, पानी का, ऐसा कोई व्यापार अगर करें तो आपके लिए बेहतर होगा। पारिवारिक जीवन देखिए आपका एवरेज ही दिखाई देता है, उसमें बहुत सुधार की उम्मीद नहीं है, लेकिन उसका आपकी मानसिक स्थिति पर, जीवन पर बुरा असर ना पड़े इसके लिए हम उपाय जरूर करेंगे। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और ज्यादा से ज्यादा शिव जी की पूजा करें। नमः शिवाय का अधिक से अधिक अगर आप जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
0: तो आइए जानते हैं कि अगर हमारी आंखें कमजोर हो रही हो, हमें लग रहा है कि हमें दिखने में दिक्कत हो रही है, तो हमें उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए?
1: देखिए, आंख का कमजोर होना बड़ी स्वाभाविक बात है, कुछ ग्रहों की वजह से और कुछ उम्र होने पर भी आंखें कमजोर हो जाती हैं। आंखों का कमजोर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आंखें लगातार कमजोर होती चली जाएं, लगातार उनकी नजर कमजोर होती जाए और पावर बढ़ता चला जाए तब मुश्किल होती है। क्या उपाय करें अगर आंखें कमजोर होती जा रही हों? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत लाभ होगा। कच्चे गाजर, कच्ची फल और सब्जियों का यानी सलाद का प्रयोग करें, खाएं। सलाह लेकर एक माणिक्य धारण करें। कुछ मामलों में मोती धारण करने से भी इंप्रूवमेंट होता है। नियमित रूप से त्राटक का अभ्यास करें। 6 फीट की दूरी पर सामने दीवार पर एक बिंदु बना लें, काले रंग का, सफेद कागज पर, और उस पर अपनी निगाह जमा कर उसे देखने का प्रयास करें। नियमित रूप से 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को त्राटक का अभ्यास करें। अगर किसी योगाचार्य से सलाह ले लें तो और अच्छा होगा। जिनकी आंखें कमजोर हैं, ऐसे लोग खाली पेट बिल्कुल न रहें, क्योंकि इससे भी आंखों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दांतों को नाखून से न काटें। जो लोग दांतों से नाखून को चबाते हैं, उनकी आंखों से पानी गिरने की और आंखों की रोशनी कम होने की संभावना बन जाती है।
0: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन का नुकसान, धन की हानि हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरधानी से चलाएं। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए जानेंगे हम पंडित जी से कि अगर आंखों की रोशनी जाने के योग बन रहे हो, हमें ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, तो हमें उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए।
1: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है और ऐसा लगता है कि एक दिन आंखों की रोशनी चली जाएगी। या कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो कहते हैं कि एक उम्र के बाद आपके आंख की रोशनी चली जाएगी या जा सकती है, ग्लूकोमा कहते हैं उसको। अगर कुंडली में ऐसे इंडिकेशन हैं कि आंखों की रोशनी जा सकती हो या आपके आंखों की रोशनी धीरे धीरे घट रही हो, तो क्या करेंगे, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। नियमित रूप से चाक्षुषी स्तोत्र का पाठ करिए। और अगर चाक्षुषी स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते तो मोबाइल पर लगा के सुबह शाम सुनिए। सलाह लेकर एक माणिक्य या एक हीरा धारण करिएगा। लेकिन आंखों के लिए अगर हीरा पहनना चाहते हैं तो रिंग फिंगर में अनामिका अंगुली में पहनिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, उससे भी लाभ होगा। ऐसा देखा गया है कि जिनके आंखों की रोशनी घट रही हो, अगर वो नियमित रूप से प्राणायाम करें तो उससे भी आंखों की रोशनी के घटने को काफी समय तक रोका जा सकता है।
0: और गुडलक में वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल।
1: मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, आर्थिक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, पारिवारिक समस्या परेशान करेगी। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब वक्त हो गया आज के तीसरे प्रश्न का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज का तीसरा प्रश्न उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
1: अगला प्रश्न रेशु यादव ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 5 जुलाई 2006 का जन्म है, 9:17 रात को सियोनी मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि क्या मैं सियोनी में अपने जन्म स्थान पर रह पाऊंगा और क्या मैं अपने पिताजी के साथ कंप्यूटर का व्यापार कर सकता हूं। रेशु आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और तुला राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, वैसे आप कंप्यूटर का व्यापार फिलहाल के लिए सियोनी में रह करके कर सकते हैं, लेकिन सियोनी में रहने की संभावना भी कम है और तरक्की की उम्मीद भी ज्यादा नहीं है। ऐसा लगता है कि भविष्य में आप सियोनी के अलावा कहीं और रहेंगे, कहीं और सेटल होंगे और बढ़िया करियर बना सकेंगे। जहां तक माता पिता की सेवा का प्रश्न है, वो आप जरूर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम और चौथे प्रश्न का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का अंतिम प्रश्न कमाल भाटी जी ने हमें लिखा है, भीलवाड़ा राजस्थान से लिखते हैं। 6 अगस्त 1983 का जन्म है, 2:02 भीलवाड़ा राजस्थान। ये पूछ रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मुझे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं अपना मकान कब तक बना पाऊंगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। कमाल जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा है, कुछ न कुछ सेहत में दिक्कतें, ज्यादातर पेट की और मानसिक दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। तो जो आपने पन्ना पहना है वो बिल्कुल पहने रहिए, वो एकदम सही है। साथ में एक ओपल बनवा करके पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और दूसरे नंबर पर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रोज सुबह जरूर करिए। जहां तक मकान बनने का प्रश्न है, 2028 के अंत में या 2029 की शुरुआत में आप अपना मकान बना पाएंगे, उस समय आपको संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
0: पंडित जी, एक सवाल था, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम आंखों की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हमें आंखों की समस्या से पहले ही कोई उपाय कर लेना है ताकि हमें ये समस्या ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए?
1: जी देखिए, अगर शुरुआत से बचपन से

0: और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो स्कूल जाते समय तैयार होकर सूर्य भगवान को नमस्कार करके तब स्कूल जाए। दूसरा, बच्चा नाखून चबाने की आदत बिल्कुल डेवलप मत करे, इस आदत पर शुरुआत से कंट्रोल करवाइएगा। और बचपन से ही बच्चे को सलाद, फल और कच्ची सब्जियां खाने की आदत डलवाइएगा। अगर ऐसा किया जाए शुरुआत से ही तो आंखों में समस्या होने को काफी समय तक टाला जा सकता है।
1: जिनका जन्मदिन 9 मई 2026 को आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 9 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की नई शुरुआत के और सुधार के योग बनते हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। संपत्ति और विवाह के मामलों में इस साल में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें, केवल हनुमान चालीसा ही रोज पढ़ें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा में महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मना करते हैं कि महिलाएं नारियल ना तोड़ें। क्यों है ऐसा? देखिए, नारियल मानव की खोपड़ी का और बलि का प्रतीक है। पशु बलि को हटा करके बाद में नारियल को बलि के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, इसीलिए महिलाओं को बलि के प्रतीक के रूप में नारियल तोड़ने को मना किया जाता है। लेकिन अगर कोई महिला नारियल तोड़ देती है तो वो कोई अशुभ बात नहीं है, इसका पाप पुण्य शुभता अशुभता से कोई भी लेना देना नहीं है।
1: और आइए अब जानते हैं 9 मई 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार की समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 9 मई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: गुडलक में अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है। सामान्यतः आज की गुडलक राशि है मीन। इनके वैवाहिक जीवन में सब कुछ होने के बावजूद अक्सर अकेलापन रहता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुल मिलाकर खींच खांच कर एवरेज साधारण तरीके से विवाह चलता रहता है।
1: गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित

0: रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
1: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, नौकरी पाने में दिक्कत हो रही है, तो क्या उपाय करें जिससे जल्दी नौकरी मिल जाए। रोज शाम को शनि मंत्र का 108 बार जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शनिवार को दीपक जलाने के बाद मंत्र जप करने के बाद निर्धनों को पूरी सब्जी खिलाइएगा। ऐसा लगातार 1.25 महीने तक करिए, आपके नौकरी की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी।
0: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: खान पान में बदलाव करके शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने व्यवहार में क्या सुधार करें कि शुक्र मजबूत हो जाए, किस देवी देवता की पूजा करने से शुक्र मजबूत हो जाता है, क्या हैं शुक्र को मजबूत करने के सरल उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
5: What about me, Jack? What about me?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
6: Well played, Jack. Well played.
4: Jack FM, playing what we want.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: बैटलफील्ड के बाहुबली को मिलेगा सुपर कवच, जमीन से आसमान तक हर खतरा होगा ध्वस्त। इंडियन बैटल टैंक को मिला अमर होने का वरदान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop Check fan on this station. Up. Ready to find your flow?
2: It's your boy,
1: Just
2: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और अब बात देश के कैसे गांव की, जिसकी पहचान मिनी ब्राजील के रूप में बन चुकी है। जिस तरह फुटबॉल को लेकर ब्राजील का नाम मशहूर है, कुछ उसी तरह मध्य प्रदेश के इस गांव में फुटबॉल को लेकर जुनून है। खास बात यह है कि पहले इस गांव की छवि कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन फुटबॉल की तरह इस गांव के लोगों का रुझान कुछ इस कदर बढ़ा कि अब गांव की तस्वीर ही बदल गई। अभी इस गांव के 5 खिलाड़ी जर्मनी से ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं, जिनका दिल्ली में शानदार तरीके से स्वागत किया गया।

0: इंसान अगर कुछ ठान ले और उसके लिए दृढ़ संकल्प और अटूट मेहनत के साथ प्रयास करे तो कामयाबी की राह खुद ब खुद बनती चली जाती है। ये बच्चे उसी राह पर अपने सफर को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ये वो 5 बच्चे हैं जो एक छोटे से गांव से निकलकर जर्मनी तक का सफर पूरा कर लौटे हैं।
1: मध्य प्रदेश का एक छोटा सा इलाका बिचारपुर, जहां पर सबसे ज्यादा नशे का काम होता था, इसलिए वो बदनाम था। लेकिन आज इन बच्चों ने उस जगह का नाम रोशन कर दिया है। पूरे देश दुनिया इन बच्चों को जान रही है, बिचारपुर का नाम जान रही है, और जरिया बना है फुटबॉल। फुटबॉल की वहाँ पर एक ऐसी ललक जगी इन बच्चों में कि फिर उन्होंने खेलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया।
0: ये 5 बच्चे मध्य प्रदेश के शहडोल के उसी बिचारपुर गांव के हैं, जहां इन पर फुटबॉल खेलने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि अब जैसे सब कुछ उसी के लिए समर्पित कर चुके हैं। इनका ये जुनून इन्हें विदेश तक ले गया। ये सभी जर्मनी से फुटबॉल की ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं।
2: वहां तो पहले हम लोग पहले दिन गए तो हम लोग सर से जो हमारे मेन थे उनसे अब मुलाकात की है। फिर उसके हमारे दूसरे दिन हमारे ट्रेनिंग हुआ। फिर मैं एक डिफेंडर हूँ, फिर हमको डिफेंडिंग जो कैसे करना है और कैसे बॉल बचाना है तो वो सिखा रहे थे।
1: आप कभी सोचा था गांव में कि क्या बनना है बड़े होके? इस फुटबॉल के पहले कोई करियर, कुछ गोल, कुछ सोचा था?
2: पहले तो हम लोग फुटबॉल ही नहीं खेलते थे। फिर जब सर हमको बोले खेलने के लिए, फिर हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट किए। हमारे पास पहले जूते भी नहीं थे तो खाली पाँव भी आते थे खेलने। फिर उसके बाद धीरे धीरे मम्मी पापा ने भी सपोर्ट करने लगा। फिर उसके बाद हम लोग खेलना भी स्टार्ट अच्छे से किया।
3: थोड़ा आर्थिक व्यवस्था जो है, हमारे आर्थिक स्थिति वो थोड़ी खराब होती थी, इसलिए
1: चिंता रही कि फुटबॉल के शूज कहाँ से आएंगे, महंगी किट कहाँ से आएगी।
3: हाँ, वो स्टार्टिंग थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, फिर हो गया। अब खेलना था तो खेलना है।
4: पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं कि इतना सोचे भी नहीं थे इतना आगे जाने के लिए। अभी अब पूरा ध्यान फुटबॉल में देना है।
0: इन होनहार बच्चों की वजह से बिचारपुर गांव अब देश विदेश में फुटबॉल की नर्सरी और मिनी ब्राजील के रूप में मशहूर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में इस गांव का जिक्र कर चुके हैं।
5: एमपी के शहडोल में एक गांव है बिचारपुर। बिचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। कुछ साल के भीतर ही यहां फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि बिचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहां फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है।
0: कभी अवैध शराब और नशे के लिए बदनाम बिचारपुर गांव को वहां के बच्चों और युवाओं ने फुटबॉल को अपना कर एक नई पहचान दी है। वहां से कई ऐसे खिलाड़ी निकल चुके हैं जो नेशनल और स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं और बड़ी संख्या में बच्चे इस खेल को लेकर अपना जुनून दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस गांव के बच्चों की प्रतिभा का जिक्र किया तो जर्मन फुटबॉल कोच डाइटमार बियर्सडॉर्फ भी बिचारपुर गांव पहुंचे थे और बच्चों को ट्रेनिंग देने की पेशकश की थी। ये 5 बच्चे वही हैं जो जर्मनी के मशहूर क्लब FC इंगोलस्टैड 4 में ट्रेनिंग लेकर लौटे। सोनिया सुहानी, प्रीतम, वीरेंद्र और मनीष, इन सभी को जर्मनी के फुटबॉल क्लब में आधुनिक तकनीक, फिटनेस, टीम वर्क और प्रोफेशनल गेम कल्चर की ट्रेनिंग दी गई। बिचारपुर की कहानी सिर्फ खेल की नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की भी मिसाल है। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था, जिसके शुरुआत गांव के कोच और स्थानीय लोगों ने दशकों पहले की थी। पहले बच्चों को खेल के लिए तैयार किया गया, फिर उनके अभिभावकों को मनाना पड़ा। बच्चों की इस खेल की जरूरी सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद जुटाई गई, तब जाकर एक नई क्रांति जैसी आई। और अब जब बच्चे विदेश तक ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो कोच का खुश होना और फख्र करना तो बनता ही है।
6: गांव तो बिचारपुर नशे के नाम से जाना जाता था पहले, क्योंकि फुटबॉल वहां का पूरा संभाग का लोकप्रिय खेल है, इसलिए सारे गांव में फुटबॉल चलती थी। लेकिन यह कि एक कोई स्तर नहीं था, अपने स्तर में बच्चे खेलते थे। तो मैं खुद भी राष्ट्रीय खिलाड़ी था। फिर उसके बाद जब मैंने NIS की ट्रेनिंग लिया तो मुझे लगा कि एक कोच की अहमियत क्या होती है और कुछ मुझे करना है बच्चों के लिए। फिर जो कि हम लोग को उस तरह से कोचिंग नहीं मिल पाई, जिससे हम लोगों ने उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाए, तो मैं ऐसे गाँव के बच्चों को तैयार करने की ठानी और वहाँ पर फिर मैंने 2002 से इनको कोचिंग देना शुरू किया। फुटबॉल के लिए इनको टेक्निकल की जरूरत थी, फिजिकली ये तो ठीक थे, तो टेक्निकल मैंने डेवलप किया इनको ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सकें, और फिर इनके छोटे छोटे पांचवीं छठवीं के बच्चे लेकर के मैंने काम किया।
0: जो पांच बच्चे जर्मनी से ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं उनमें दो लड़कियां भी शामिल हैं। पहले बिचारपुर की लड़कियों के लिए फुटबॉल खेलना महज एक सपना जैसा था, लेकिन अब यहां की लड़कियां न सिर्फ फुटबॉल खेल रही हैं, बल्कि इनमें आगे बढ़ने का गजब का हौसला भी नजर आ रहा है।
7: सर तो मैं पहले फुटबॉल नहीं खेलती थी, फिर रही सर ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम गोलकीपर के लिए अच्छा खेल सकती हो, तो सर तो फिर मैं डेली रही सर के पास प्रैक्टिस जाने लगी, फिर जाते जाते मैंने विचारपुर में ज्वाइन कर लिया, फिर वहाँ से मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया फुटबॉल पर कि अब मुझे फुटबॉल ही खेलना है। फिर हमें पता चला कि हम जर्मनी जाने वाले हैं, तो सर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से गाँव से बिलोंग करते थे, तो ये भी नहीं सोच सकते थे कि हम फ्लाइट में कभी जाएंगे, हमें तो ट्रेन में जाने का भी मौका कभी कभार मिलता था।
8: अच्छा लगता है कि हम लोग इतने दूर गए खेलने और हम लोग का नाम इतना चल रहा है मिनी ब्राजील, तो फैमिली और गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं कि हम लोग का इतना डेवलपमेंट हुआ वहाँ, मिनी ब्राजील को पीएम मोदी जी ने हमारा नाम इतना वो किया, तो अच्छा लगता है सबको।
0: फुटबॉल ने बिचारपुर गांव के बच्चों को न सिर्फ नशे और अपराध से दूर किया बल्कि गांव की छवि को भी चमका दिया, और अब वहां के बच्चे कड़ी मेहनत से नई गाथा लिख रहे हैं।
1: फीमेल कोच भी हमारे साथ में है, बहुत बड़ा रोल होता है कोच का हो या कोऑर्डिनेटर को हो, इन सब का रोल बहुत बड़ा है एक टीम को खड़ा करने में, उस टीम को इतना दूर ले जाने में। मैम आप कितना मुश्किल, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुश्किल आपके लिए रहा होगा, लड़कियों को बच्चियों को तैयार करना, उनके पेरेंट्स को मनाना, कितना मुश्किल ये काम था?
9: मेरे टाइम में तो नहीं रहा क्योंकि सर बहुत मेहनत किए थे, तो पहले से ही पेरेंट्स मान गए कि लड़कियाँ आगे जा सकती हैं, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई पेरेंट्स को मनाने में।
1: जो जगह कभी नशे के लिए मशहूर थी वो जगह आज उसको लोग मिनी ब्राज़ील बोलते हैं, इन बच्चों की वजह से ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा जैसे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे दिल्ली।
10: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
13: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
14: दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: और चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और ये वीडियोस जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे और इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जो आपको गुदगुदाएंगे और हैरान भी कर देंगे।
18: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बारातियों ने गर्मी का ऐसा तोड़ निकाला है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स के पसीने छूट जाएं। अक्सर शादियों में आपने नाच गाना और बैंड बाजा देखा होगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही निराला है। बाराती ठंडी हवा के झोंकों के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक छोटी सी ट्रॉली पर बड़े बड़े कूलर रखे गए हैं। अब आप सोचेंगे कि सड़क पर कूलर चलेंगे कैसे, तो भाई इसका भी सॉलिड इंतजाम है। कूलर को पावर देने के लिए साथ में एक पोर्टेबल जनरेटर फिट किया गया है, मतलब बारात जहाँ जहाँ जा रही है ठंडी हवा का पूरा काफिला साथ चल रहा है। एक दुल्हन की विदाई के समय धान या चावल फेंकने की रस्म निभाई जा रही है। पीछे खड़ी उसकी माँ अपने आंचल को फैलाकर उसे रोकने का काम कर रही है। अब तक माहौल पूरा दुख भरा लगता है, लेकिन अगले ही पल जो कुछ भी होता है उसे देख किसी के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगी। दरअसल इस रस्म के दौरान जब दुल्हन अपने हाथ से पीछे की तरफ बिना मुड़े धान या चावल को फेंकती है तो उनमें से कुछ दाने उछलकर उसकी माँ के मुँह में चले जाते हैं, जिसके बाद माँ का रोना धोना तुरंत बंद हो जाता है और वो अपने मुँह से धान के दानों को निकालने की पूरी कोशिश करने लगती है। वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि शेरों का एक पूरा कुनबा एक अकेले भैंसे को घेर कर खड़ा है। शेर उस पर कहर बनकर टूट पड़े हैं, लेकिन भैंसा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सामने आए एक शेर को जोरदार सींग मारकर हवा में उछाल दिया। हालांकि 3-4 शेर लगातार उस पर हमला कर रहे थे और उसे नोच रहे थे, लेकिन इस बीच अचानक दूर से धूल का गुबार उठा और भैंसे के करीब एक दर्जन साथी गैंगस्टर की तरह वहां पहुंच गए। अपने दोस्त को मुसीबत में देख बाकी भैंसों ने आओ देखा न ताओ और शेरों पर हमला बोल दिया। नजारा ऐसा था कि भारी भरकम भैंसे शेरों को फुटबॉल की तरह हवा में उछाल रहे थे। शेरों को भी समझ आ गया कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, खिसक लेने में ही भलाई है। बड़े बुजुर्गों को अक्सर नई पीढ़ी तकनीक सिखाती है। ये लोग सीखते भी बड़े मन से हैं, लेकिन अपने तरीके से। जैसे पहले सब कुछ लिखकर सीखा जाता था, एक नानी का ऐसा ही वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर धूम मचाए हुए है। वीडियो में नानी सीख रही हैं और नातिन से खा रही है। ये मोमेंट याद रखने वाला बन गया है। वीडियो की सबसे खास बात यह है कि नानी सिर्फ सीख नहीं रही थी, वो सब कुछ याद कर लेना चाहती थी, इसलिए वो एक एक पॉइंट लिख रही थी। अच्छे से समझने के लिए वो डायग्राम भी बना रही थी। उनका डेडिकेशन भी तो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। रंगोली ऐसी कला है जिसको बनाने में धैर्य चाहिए होता है। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट अपनी उंगलियों से कुछ ऐसा गढ़ देते हैं कि आंखों को यकीन भी नहीं होता है। साउथ कोरिया की सड़कों पर ऐसी ही अद्भुत रंगोली बनाई गई है। ये रंगोली एक इंडियन आर्टिस्ट भाग्यश्री ने बनाई है। ये आर्ट इतना सुंदर है कि इसके बनते बनते सड़क पर भीड़ ही इकट्ठा हो गई। ये बेसफुट ऊंची रंगोली भाग्यश्री ने 4 घंटों में बनाई। वीडियो में पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें भाग्यश्री सड़क पर बैठकर पहले से बनाई आकृति में सावधानी से रंग भरती दिख रही है, जबकि आसपास के लोग उन्हें घेरे हुए हैं और उनके आर्ट को देखकर हैरान हो रहे हैं।
10: खान पान गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
16: देश के नए सीडीएस होंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजसुब्रमणि, हाथ में होगा तीनों सेना का कंट्रोल, वे वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान की जगह लेंगे। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख नियुक्त, 31 मई से शुरू होगा कार्यकाल, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माने जाते हैं विशेषज्ञ। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं भक्त। पैतृक गांव पंचूर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की हरि विष्णु पंचदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जागरण में भी हुए शामिल, अपने पैतृक घर में बिताई रात। वाराणसी में गंगा तट पर सजी सांझ प्रणामी संगीतांजलि, शास्त्री गायिका पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी की जयंती पर आयोजन, मालिनी अवस्थी सहित कई बड़ी हस्तियां रही मौजूद। क्रिकेट पिच के बाद टेलीविजन पर छाएंगे रोहित शर्मा, लेकर आ गए हैं नया रियलिटी शो, होगा सबसे बड़ा डेब्यू।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे।
16: मौसम विभाग के मुताबिक तय समय से भारत पहुंचेगा मानसून, 1 जून को केरल तट पर बरसेंगे मानसून के बाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून का आना करीब 2 हफ्ते दूर, भारत में सबसे पहले यही होती है मानसून बारिश। ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है भारत की मानसून का रास्ता, ऑस्ट्रेलिया में बारिश का मौसम खत्म होने का सीधा असर भारत के मानसून पर पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो चुकी है बारिश। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून के समय पर आने की वजह अलनीनो की स्थितियां बनने की संभावना बहुत कम। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु पुडुचेरी और केरल में अगले 7 दिनों में बारिश होगी, मानसून के सही समय पर आने का बड़ा संकेत होगी बारिश। मौसम के मिजाज में बदलाव का सिलसिला रहेगा जारी, उत्तर भारत के कई इलाकों में जारी रहेगा बारिश, गरज चमक और बढ़ते तापमान का असर। उत्तराखंड में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली तेज हवाओं के साथ गरज चमक का सामना करने की संभावना। 10 मई से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली समेत पहाड़ी राज्यों में होगी बारिश, चलती रहेंगी तेज हवाएं। पश्चिमी बंगाल और झारखंड में 9 और 10 मई के बीच 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान भी आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में 9 मई तक छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर बारिश जारी रहने की संभावना, अरुणाचल प्रदेश असम और मेघालय में 12 से 13 मई को कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे दर्शन, अब तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हो चुके हैं शामिल। केदारनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हर दिन करीब 25,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे बाबा के धाम, फिलहाल श्रद्धालुओं को मिल रहा है मौसम का साथ। बद्रीनाथ धाम में उमड़ रहा है आस्था का मेला, अब तक 2,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी भक्तों का तांता, बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड में भी श्रद्धालुओं का जोश आया, यमुनोत्री में 1,45,000 से ज्यादा तो यमुनोत्री में 1,43,000 श्रद्धालु ले चुके हैं आशीर्वाद। केदारनाथ धाम में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अस्पताल का किया लोकार्पण, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस इस अस्पताल से स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती, केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दी जा रही विशेष प्राथमिकता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया अस्पताल का उद्घाटन, बाबा केदार के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जल कल्याण की कामना की। चारधाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम के सफाई अभियान में जुटे आईटीबीपी के जवान, तप्त कुंड से लेकर ब्रह्म कपाट तक अलकनंदा नदी के तटों की हो रही है सफाई। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा लेख, विभाजित दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश, 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। गर्मी की छुट्टियों में दक्षिण भारत घूमने का शानदार मौका, IRCTC ला रहा है 11 दिन का स्पेशल टूर पैकेज। 26 जून से शुरू होने वाली यात्रा में तिरुपति रामेश्वरम और कन्याकुमारी के कराए जाएंगे दर्शन, ऋषिकेश में चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, यूपी के कई स्टेशन से यात्री कर सकेंगे सफर। IRCTC के नए टूर पैकेज में ट्रेन सफर, होटल और खाने की पूरी सुविधा शामिल, बुकिंग पहले आओ पहले पाओ आधार पर शुरू। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के इच्छुक लोगों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए चलाई विशेष ट्रेन, ऋषिकेश से 12 जून को चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। आसमान से उतरे सेना के K9 वॉरियर्स, मणिपुर में दिखाया अदम्य साहस। अभ्यास में 5 डॉग टीम्स ने लिया हिस्सा, डॉग हैंडलर्स और गौरव पर्यटक ट्रेन। आसमान से उतरे सेना के K9 वॉरियर्स, मणिपुर में दिखाया अदम्य साहस। अभ्यास में 5 डॉग टीम्स ने लिया हिस्सा, डॉग हैंडलर्स और मिलिट्री डॉग्स के बीच दिखा जबरदस्त तालमेल और आत्मविश्वास। युद्ध और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये डॉग्स निभाते हैं अहम किरदार, अभ्यास में सैनिकों के साथ मिलकर काम करने की बारीकियों को परखा गया। इन योद्धाओं को हथियार छीनने और घुसपैठियों को दबोचने की मिलती है खास ट्रेनिंग, खामोशी से मिशन को अंजाम देने में सक्षम है ये डॉग्स। लीमा कोम गिलेट्री स्टेशन पर अभ्यास को दिया गया अंजाम, घने जंगलों के छिपे दुश्मनों को ढूंढने की क्षमता को परखा गया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के करौली टाइगर रिजर्व पहुंचा चीता, वन विभाग की टीम ने 24 घंटे में ट्रेस की लोकेशन। रेडियो कॉलर से हो रही चीते की निगरानी, वन विभाग ने लोगों को दी सतर्क रहने की सलाह। राजस्थान में चीता कॉरिडोर बनाने की योजना पर भी चल रहा है काम, धौलपुर से रावत भाटा तक करीब 400 किलोमीटर के वन क्षेत्र में बनेगा चीता कॉरिडोर। कोची के तट पर भारत नीदरलैंड का शक्ति प्रदर्शन, INS शारदा और रॉयल नीदरलैंड नेवी के फ्रिगेट HNLMS डी रॉयटर के बीच अभ्यास। मॉनसून की दस्तक से पहले आज गृहमंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, हीटवेव से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा। गुजरात के गिरनार के जंगलों में शेरों की बढ़ती आबादी को बचाने के लिए वन विभाग की बड़ी पहल, हाईवे पर तैनात की गई विशेष पेट्रोलिंग टीम। शेरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग सतर्क, कई मौकों पर ट्रैफिक रोककर शेरों और शावकों को पार करवाया जा रहा है सड़क। वन विभाग हाईवे पर स्पीड ब्रेकर्स और चेतावनी साइन बोर्ड लगाने की कर रहा है तैयारी, शेरों की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कैमरा और सेंसर सिस्टम लगाने की योजना। जूनागढ़ वन विभाग की लोगों से अपील, सड़क पर अगर शेर दिखाई दे तो वाहन चलाएं धीमे, हॉर्न न बजाने और वन्य जीवों को न परेशान करें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के सनशाइन पीक से 24 सैलानियों का सफल रेस्क्यू, बिगड़ते मौसम की वजह से मुश्किल में थे सैलानी, रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के विमानों का इस्तेमाल। सहारनपुर में दूल्हे ने लौटाए दहेज के 2.5 लाख रुपए, शगुन में लिया सिर्फ 1 रुपया और नारियल, दूल्हा शिवा सैनी की दहेज प्रथा के खिलाफ बड़ा संदेश। दूल्हा शिवा सैनी के फैसले की सराहना, युवाओं के लिए प्रेरणा साबित होगा शिवा का निर्णय, सादे समारोह में किया मीनाक्षी संघ विवाह। बिहार में फिल्म सिटी के विकास के लिए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से मिले गोरखपुर के सांसद रवि किशन, फिल्म सिटी बनने से फिल्म निर्माण का मिलेगा विकल्प। मथुरा वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं, अक्रूर घाट का होगा कायाकल्प। अक्रूर घाट के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी, घाट पर बनेंगे प्लेटफॉर्म, सीढ़ियां समेत कई आधुनिक चीजें। उत्तराखंड दौरे पर अपने पैतृक गांव पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, विष्णु मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लिया हिस्सा। वैदिक मंत्रों से गूंजा हरि विष्णु पंचदेव मंदिर परिसर, मंदिर में भगवान विष्णु, भगवान गणेश, महादेव, आदि शक्ति मां दुर्गा और संकट मोचन हनुमान जी की मूर्तियां एक साथ की गई स्थापित। पंचूर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से की मुलाकात, अपने परिजनों और ग्रामीणों से भी मुलाकात की। जयपुर में सेना का महामंथन, नए डोमेन में सैन्य क्षमता बैठक की थीम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों ने लिया हिस्सा। ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कॉग्निटिव वॉरफेयर और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मंथन, रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक पर भी चर्चा। कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल में लगातार चौथी जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने 142 रन बनाए, कोलकाता ने 40 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। फिन एलन की नाबाद 100 रन की तूफानी पारी, 47 गेंदों में लगाए 5 चौके और 10 छक्के, कोलकाता नाइट राइडर्स की लगातार चौथी जीत। कैमरन ग्रीन ने दिलाए कोलकाता को आसान जीत, दिल्ली की प्लेऑफ उम्मीदों को बड़ा झटका, KKR की उम्मीदें बरकरार। प्लेऑफ में आज राजस्थान रॉयल्स का गुजरात टाइटंस से मुकाबला, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की भूत बंगला की धूम, 21 दिन में फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई 235 करोड़ के पार। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 63 करोड़ पहुंचा, इतिहास रचने के करीब मराठी फिल्म। भारत ही नहीं विदेशों में भी मोहनलाल ममूटी की फिल्म पैट्रियट का जलवा बरकरार, दुनिया भर में 73 करोड़ से ज्यादा का किया कारोबार। बॉक्स ऑफिस पर जुनैद खान साई पल्लवी की जोड़ी का नहीं चला जादू, फिल्म एक दिन ने एक हफ्ते में महज 4 करोड़ का बिजनेस किया। दुनिया भर के थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद धुरंधर 2 अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक, 14 मई को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। एक्टर जयदीप अहलावत की फिल्म दलदल का पोस्टर रिलीज, गले तक दलदल में फंसे नजर आए जयदीप, जल्द रिलीज डेट का होगा ऐलान। फिल्म NH 404 से पोस्टर से राकेश बेदी का फर्स्ट लुक आउट, कैप्शन में लिखा अगर रोड रोलर देख लो तो लेफ्ट और राइट देखकर क्रॉस करो। गुल्लक सीजन 5 का हुआ ऐलान, जल्द मिश्रा परिवार की होगी वापसी, अनु भैया यानी वैभव राज गुप्ता के रोल में नजर आएंगे अनंत वी जोशी। ईशा अंबानी ने फैशन की दुनिया में फिर से बिखेरा जलवा, कस्टम मेड शनेल हाउती काउचर साड़ी गाउन पहनकर सबको किया मंत्रमुग्ध। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, फैंस खूब पसंद कर रहे हैं लुक की जमकर तारीफ। अभिनेता संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल का धमाकेदार ट्रेलर आउट, विवादित मुद्दों को उठाती है फिल्म, समीरा रेड्डी और नमाशी चक्रवर्ती आएंगी नजर, 15 मई को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन का पोस्टर जारी, सुपर हीरो दादा के किरदार में अभिनेता जैकी श्रॉफ, फिल्म 29 मई को होगी रिलीज। आस्था और भावनाओं से भरपूर कृष्णा और चिट्ठी का टीजर आओ, दर्शकों के दिलों को छू गया टीजर, एक्टर अरुण गोविल और दर्शन सफारी मुख्य भूमिका में, 29 मई को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। 3 जून को होगा एक्टर रामचरण स्टार स्पोर्ट्स ड्रामा पेरी का प्रीमियर, फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, एक्ट्रेस जानवी कपूर भी आएंगी नजर। माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णा अवतारम पार्ट 1 हृदयम ने थिएटर्स में छोड़ी छाप, भव्यता पर भारी पड़े भाव, भगवान कृष्ण के रूप में सिद्धार्थ गुप्ता की एक्टिंग की जा रही है तारीफ। इमरान हाशमी दिशा पाटनी स्टारर आवारापन 2 पर बड़ा अपडेट, पैन मरुधर ने खरीदे आवारापन 2 के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, फिल्म 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। कांस फिल्म फेस्टिवल में फिर देखा बॉलीवुड हसीनाओं का जलवा, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन आलिया भट्ट अदिति राव हैजी ने रेड कार्पेट पर आएंगी नजर, 12 मई से 23 मई तक कांस फिल्म फेस्टिवल। बोले धुरंधर 2 के एक्टर सुविंदर विकी, 20 साल पहले ओटीटी होता था वो, मैं आज हीरो होता। सुविंदर विकी ने धुरंधर 2 में ब्रिगेडियर जहांगीर बनकर बटोरी थी सुर्खियां। और 2026 टूर में अपने गीतों से जलवा बिखेर रहे हैं सिंगर दिलजीत दोसांझ, सोशल मीडिया पर वीडियो के पोस्ट, फैंस को कहा शुक्रिया, दिलजीत का अगला कॉन्सर्ट शिकागो में। दुनिया की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप बनी डेजर्ट वॉरियर, 1400 करोड़ की लागत से फिल्म ने सिर्फ 6 करोड़ कमाए, 99.6% प्रोडक्शन बजट डुबोया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एनएस राजा सुब्रमणि होंगे देश के नए सीडीएस, मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान की लेंगे जगह। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन होंगे देश के नए नौसेना प्रमुख, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। संगम नगरी प्रयागराज के युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर की सौगात, नगर निगम ने यमुना नदी में शुरू किया एडवेंचर स्पोर्ट। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 250 करोड़ की लागत से शुरू किया गया वाटर स्पोर्ट, नगर निगम प्रयागराज ने यमुना रिवर बैंक वोट क्लब पर वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का आगाज। वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रयागराज के लोगों को अब दूसरे शहरों को नहीं करना होगा रुख, दूसरे शहरों के युवाओं को भी मिलेगा वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने का मौका। टेक कंपनी एप्पल ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया, क्वीन मैक्स के साथ 150 MW क्षमता का निर्माण करने की योजना। देश का रियल एस्टेट बाजार 5.8 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद, फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक 2034 तक 906 अरब डॉलर के नए घरों के निर्माण की संभावना। ईईएस रिपोर्ट के मुताबिक 6000 यूरोपीय कंपनियां भारत की जीडीपी में लगभग 5% दे रही हैं योगदान। पिछले 10 सालों में भारत ने 218 बिलियन यूरो का निवेश किया। अगस्त से भारतीय रेलवे के 40 साल पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम को बदलकर नया आधुनिक सिस्टम लागू करेगी। टिकटिंग और रिजर्वेशन में भी होगा बदलाव। एक साल में अमेरिका में भारतीय आम के दाम 4200 से बढ़कर 5600 रुपए प्रति बॉक्स हुए। महाराष्ट्र के अल्फांसो, गुजरात का केसर, उत्तर भारत का चौसा, दक्षिण भारत का बंगलपल्ली बने पसंदीदा। फिलिस्तीन में एक बार फिर लौटी रौनक, लंबे इंतजार के बाद फिलिस्तीन मैराथन का आयोजन। वेस्ट बैंक की सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने मैराथन में लिया हिस्सा। फिलिस्तीन मैराथन में शामिल हुए रिकॉर्ड 13,000 प्रतिभागी, विदेशों से भी पहुंचे लोग। इटली में पोप लियो का भव्य रोड शो, पोम्पेई शहर में उमड़ा जन सैलाब। कैथोलिक चर्च के प्रमुख के रूप में पोप लियो ने पूरा किया एक साल, पोम्पेई में बच्चों से भी की मुलाकात। कैलिफोर्निया में फ्री पेट्रोल के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें, विजिट लास वेगास ने 100 लोगों को $100 तक का फ्यूल और गिफ्ट कार्ड दिए। लास वेगास टूरिज्म बढ़ाने के लिए अनोखा प्रमोशन शुरू किया गया, समर सीजन में लोगों को कार से वेगास आने के लिए फ्री गैस ऑफर दी गई। अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर लास वेगास में 8 हफ्तों तक आतिशबाजी होगी। ये शानदार शो 6 जून से लगातार आयोजित किया जाएगा। बढ़ती फ्यूल कीमतें यात्रियों के लिए बड़ी चिंता, इसी वजह से लोगों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त पेट्रोल कैंपेन चला गया। महंगे पेट्रोल के दौर में मदद के लिए लोगों के लिए बड़ी राहत, साथ ही साथ शानदार आतिशबाजी देखने को भी मिली। मेक्सिको सिटी की सड़कों पर बीटीएस का जादू, सड़क चढ़कर बोला स्टेडियम के बाहर, हजारों फैंस हुए जमा। बीटीएस के गाने गाकर माहौल को रंगीन बना रहे थे फैंस, फैंस के नारों से गूंज उठा पूरा इलाका। बीटीएस वीवर ने मेक्सिको सिटी को पूरी तरह से अपने रंग में रंग दिया, युवा फैंस हाथों में पोस्टर लिए बीटीएस के नाम के नारे लगाते दिखे। स्टेडियम के बाहर बैंगनी रोशनी और म्यूजिक के बीच फैंस लगातार नाचते गाते और डांस करते दिखे, कुछ फैंस के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा म्यूजिक मोमेंट। कई फैंस ने अपने पसंदीदा बैंड की एक झलक पाने के लिए घंटों किया इंतजार, बैंगनी रंग के आउटफिट्स और लाइट स्टिक्स के साथ जमा हुए थे फैंस।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
20: छोटे बच्चे का मल जिस प्रकार माताएं हाथ से साफ करती हैं, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारी कमियों को अपनी जीभ से साफ करता है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, भक्तमाल के ग्रंथ में ये वर्णन आया है। इसलिए हमारी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई तुम्हें भला बुरा कहे ना, टेंशन में मत रहा करो।
21: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
22: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
23: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
10: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: खान पान में बदलाव करके शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने व्यवहार में क्या सुधार करें कि शुक्र मजबूत हो जाए, किस देवी देवता की पूजा करने से शुक्र मजबूत हो जाता है, क्या हैं शुक्र को मजबूत करने के सरल उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: बैटलफील्ड के बाहुबली को मिलेगा सुपर कवच, जमीन से आसमान तक हर खतरा होगा ध्वस्त, इंडियन बैटल टैंक को मिला अमर होने का वरदान। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
16: देश के नए सीडीएस होंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, हाथ में होगा तीनों सेना का कंट्रोल, वे वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान की जगह लेंगे। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख नियुक्त, 31 मई से शुरू होगा कार्यकाल, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माने जाते हैं विशेषज्ञ। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं भक्त। पैतृक गांव पंचूर में सीएम योगी ने की हरि विष्णु पंचदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जागरण में भी हुए शामिल, अपने पैतृक घर में बिताई रात। वाराणसी में गंगा तट पर सजी सांझ प्रणामी संगीतांजलि, शास्त्रिका गायिका पद्म विभूषण, गिरिजा देवी जी की जयंती पर आयोजन, मालिनी अवस्थी सहित कई बड़ी हस्तियां रही मौजूद। क्रिकेट पिच के बाद टेलीविजन पर छाएंगे रोहित शर्मा, लेकर आ रहे हैं नया रियलिटी शो, होगा सबसे बड़ा डेब्यू।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज आपको दिखाएंगे भारत के भव्य इतिहास का वो अध्याय जिसे आज से 75 साल पहले लिखा गया था, वो अध्याय जिसे बार बार मिटाने की कोशिश की गई लेकिन वो गौरवशाली अध्याय ना मिटा ना हल्का हुआ। गुजरात का सोमनाथ मंदिर जिसके लोकार्पण को 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी के बाद आई पहली दीपावली के मौके पर सरदार पटेल ने सोमनाथ में सागर तट पर खड़े होकर मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा ली थी। जल्द ही ये प्रतिज्ञा फलीभूत हुई, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और लगभग 4 साल में मंदिर बनकर तैयार हो गया। आखिरकार 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। वो तारीख थी 11 मई 1951 की। आने वाली 11 मई यानी सोमवार के दिन उस भव्य उत्सव को 75 साल पूरे हो जाएंगे और उसी की याद में सोमनाथ में एक बार फिर से अमृत उत्सव का आयोजन होने जा रहा है जिसका हिस्सा 11 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनेंगे और सोमनाथ धाम में आस्था रखने वाले असंख्य शिव भक्त भी।

0: अडेगास था और सनातन स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ धाम में सोमनाथ अमृत महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। सोमनाथ धाम में भव्य और दिव्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 2026 का साल सोमनाथ मंदिर के इतिहास में कई अहम पड़ाव लेकर आया है। पहले इसी वर्ष जनवरी महीने में इस पवित्र मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण और उसके बाद भी मंदिर के अडिग रहने को 1000 साल पूरे हुए और अब सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण के 75 साल पूरे होने का अवसर आ रहा है। 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण हुआ था। 2026 की 11 मई यानी आने वाले सोमवार को भगवान सोमेश्वर के वर्तमान स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के लोकार्पण के 75 साल पूरे हो जाएंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत के वैभव का प्रतीक ये धाम अपने पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने का गौरवशाली उत्सव मना रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं। 11 तारीख को मुख्य उत्सव से पहले मंदिर में यज्ञ अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है।
1: सोमनाथ मंदिर में लिंग की प्राण प्रतिष्ठा को 75 साल 11 मई को पूरे हो रहे हैं। वो दिन अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की, जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, वो आएंगे और पूजा करेंगे और आज तारीख 8 से लेकर 11 तक के 4 दिनों में वहाँ यज्ञ होगा, मंत्रोच्चार होगा, मंत्र लेखन होगा, कई लोगों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। इस तरह धार्मिक एवं अन्य तरीके से ये अमृत महोत्सव पर्व हम मना रहे हैं।
0: तय कार्यक्रम के अनुसार 11 मई को सुबह 10 बजे पीएम मोदी सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां पर हेलीपैड से मंदिर तक रोड शो होगा। इसके बाद पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन और विशेष पूजा करेंगे। फिर मंदिर परिसर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। पूजा और यात्रा के बाद पीएम मोदी सोमनाथ धाम क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और सोमनाथ के पुनर्निर्माण के इतिहास पर बात करेंगे।
2: यही जो वो रास्ता है जो 1 किलोमीटर का, यहीं पर प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है। दोनों तरफ लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। यहाँ पर अलग अलग जो देश के नृत्य है वो डांस का आयोजन भी किया गया है। बंगाली परिवार है वो भी प्रधानमंत्री का इसी रोड शो में स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन और पूजा करेंगे महादेव की। इसके अलावा यहां पर एक एयर शो का भी आयोजन किया गया है, जो पहली बार सोमनाथ मंदिर में इस एयर शो का आयोजन किया गया है।
0: 1000 साल की यात्रा में ये एक और मील का पत्थर है। सोमनाथ मंदिर का अमृत उत्सव उन लोगों के लिए और भी खास है जो मंदिर निर्माण से लेकर इसके पुनरुत्थान की यात्रा का साक्षी प्रथम पंक्ति से रहे हैं। नरेंद्र मोदी उन्हीं लोगों में से एक हैं। वे देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। मंदिर के लोकार्पण की स्वर्ण जयंती के समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब प्रधानमंत्री के तौर पर वे अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं। इस अवसर पर एक लेख के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए लिखा, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है, जिसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ।

0: मंदिर के पुराना मंदिर जो फोटोग्राफ पर देखते हैं वहाँ उसकी जगह पर एक सिर्फ सिर्फ खाड़ा था, मतलब गड्ढा था जिसमें कोई मूर्ति मूर्ति थी नहीं, पर हरेक स्थल उस जगह पर भी कुछ पानी चढ़ाकर, कुछ चंदन चढ़ाकर, कुछ गलाल छांट कर भगवान उसमें ही ऐसा ऐसा महसूस कर उसकी पूजा तो करते ही थे।
1: एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज सोमनाथ धाम के स्वर्ण मंडित गर्भगृह में पूरी शान से विराजे हैं सोमेश्वर महादेव। कभी जिस मंदिर की दुर्दशा देखकर सागर का खारा जल सरदार पटेल की आंखों में उतर आया था, आज मंदिर को इस रूप में देख पाते तो शायद भावों के अतिरेक में आज एक बार फिर उनकी आंखें भीग जाती।
0: अब तो 75 साल हो गए मंदिर को पूर्ण हुए, तो इतना बदलाव है, तब जिसने मंदिर की पुनरुद्धार किया उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे ड्रीम से भी पार कोई अच्छा मंदिर बन गया जिसे राष्ट्र के सम्माननीय व्यक्तियों उसके साथ जुड़ी है, श्रद्धालु व्यक्ति जुड़ी हुए और देश विदेश से, विदेश में से भी आने वाले जुड़ते हैं, साधु संत जुड़ते हैं।
1: आज सोमनाथ मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 125 करोड़ को पार कर चुकी है। कभी जो चढ़ावे की रकम लाखों में गिनी जाती थी आज 1 अरब के आंकड़े को छू चुकी है।
2: आज से 15 साल पहले मंदिर की आमदनी 8 करोड़ थी, आज 118 करोड़ है। तब 25 लाख लोग आते थे, आज 125 करोड़ लोग सालाना आ रहे हैं। तो अभी जो 75 साल आए हैं ये एक ऐसा लैंडमार्क है जिसके सेलिब्रेशन से सारे विश्व में एक नया संदेश जाएगा।
1: सोमनाथ धाम के निर्माण की इसी यात्रा को मनाने का पर्व है अमृत महोत्सव। मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि सोमनाथ धाम की वर्तमान भव्यता को देखते हुए आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में अमृत महोत्सव के अवसर पर अगले 50 सालों के लिए मंदिर में सुरक्षा और सुविधा से जुड़े इंतजामों को बेहतर बनाने की योजना पर भी काम किया जाएगा।
2: आज सोमनाथ मंदिर पूरे कार्विंग के साथ गर्भगृह सुवर्ण मंडित होने के बाद और शिखर भी जो उस पर कलश है वो भी पहले सुवर्ण मंडित था और आज 1500 से ज्यादा कलश हैं, वो सब सुवर्ण मंडित होने से एक नए प्रकार की एक भव्यता और दिव्यता का लोगों को एहसास करा रहा है। इसलिए 75 साल पे जो ये काम हो रहा है उसमें यात्रियों की सुविधा, यात्रियों की सुरक्षा एवं मंदिर की सुरक्षा हर पहलू को ध्यान में लेते हुए अगले 50 साल में जो भी हो सकता है वो अभी से उसके करने की शुरुआत कर रहे हैं।
1: एक सहस्राब्दी का इतिहास गवाह है कि हर विध्वंस के बाद ये मंदिर और अधिक भव्य होकर खड़ा हुआ, ये संदेश देते हुए कि महादेव की आस्था अमर है, सनातन अडिग है, सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष और अमृत महोत्सव उसी आस्था का भव्य उत्सव है जिसमें सारा सोमनाथ क्षेत्र एक बार फिर से मगन दिख रहा है। सोमनाथ से ब्रजेश दोषी और दिलीप मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: भारत के गौरवशाली इतिहास में दर्ज आस्था की अनुपम धरोहर है सोमनाथ मंदिर, एक ऐसी धरोहर जिसके बिना भारत का इतिहास अधूरा है। लेकिन इतिहास से परे सनातन धर्म में सोमनाथ मंदिर का अलग ही महत्व है। इसकी कहानी जुड़ी है सोमदेव यानी चंद्रमा से, जिनके नाम पर महादेव स्वयं यहां सोमनाथ कहलाते हैं। एक ऐसा वैभवशाली और अद्वितीय मंदिर जिसकी भव्यता के किस्से विदेशी आक्रांताओं और लुटेरों को भारत तक खींच लाए।

0: महाराष्ट्र के प्रभास तीर्थ क्षेत्र में सागर के तट पर आस्था की लहरों के बीच शान से विराजमान हैं सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव यानी चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को उन पत्नियों में सिर्फ रोहिणी से लगाव था। बाकी बेटियों ने जब अपने पिता को इस भेदभाव के बारे में बताया तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। दक्ष के श्राप से चंद्रमा का तेज हर दिन घटने लगा। श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने घनघोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और श्राप से मुक्ति पाई। श्राप मुक्ति के बाद चंद्रदेव ने दूसरे देवताओं के साथ मिलकर प्रार्थना की कि शिव माता पार्वती के साथ वहीं रह जाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। अपने निर्माण से लेकर कई शताब्दियों तक प्रभास तीर्थ क्षेत्र में शान से सर उठाए खड़ा रहा सोमेश्वर महादेव का ये मंदिर। अपने अद्भुत वैभव और अकूत संपदा के साथ अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर की भव्यता का वर्णन विस्तार से किया है। लेकिन फिर आई 11वीं सदी। उस दौर में समय की आंखों ने वो मंजर देखा जो भारत की पावन धरती पर कभी नहीं देखा गया था। विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया सोमनाथ के वैभव का वर्णन गजनवी जैसे लुटेरों को हिंदुस्तान की चौखट तक खींच लाया था।
1: प्रथम विध्वंस के आक्रमण के पहले ये भव्य शिवालय की बहुत दूर देशों तक प्रसिद्धि थी, क्योंकि उनकी मंदिर की जो घंटियां थी उनमें सबसे बड़ी घंटी थी उनका वजन 2 मन 40 किलो था। उनकी जो सांकड़ तंबी थी वो करीबन 4000 किलो सोने से बनी सांकड़ थी। तो इतना वैभव इस सोमनाथ मंदिर के पास था। तो विध्वंसकारी आक्रमणकारी वर्ग सोचा कि इतना धन हमारे पास हो तो को केवल इसी धन की पिपासाओं ने उन लोगों ने इस मंदिर पे आक्रमण करने की योजना बनाई।
0: पूरे हिंदुस्तान की तरह विदेशी आक्रांताओं के लालच, क्रूरता और रक्तपात से सोमनाथ क्षेत्र का सीना छलनी होने वाला था। जो सोमनाथ मंदिर 11वीं सदी तक भारत की भूमि पर सागर के किनारे अपने मूल रूप में बना रहा, सन 1026 में पहली बार उस मंदिर ने विध्वंस का सामना किया। उस घटना को 1000 साल बीत चुके हैं। गजनवी ने न केवल मंदिर को तहस नहस किया बल्कि गजनवी मंदिर में मौजूद सोनी चांदी का एक एक टुकड़ा अपने साथ लेता गया। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया, लेकिन इसे हर बार फिर से बनाया गया, पहले से भव्य, पहले से दिव्य।

इतिहास बताता है कि गजनवी के मंदिर पर आक्रमण के 750 साल बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का एक अनमोल अध्याय है। इसके प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हाल के सालों में सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार और कई नए निर्माण करवाए हैं।

आज सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र का विस्तार कर इसे विराट रूप दे दिया गया है। मंदिर के लंबे चौड़े प्रांगण में करीब 42 मंदिर हैं, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाली रानी अहिल्याबाई के बनाए प्राचीन सोमनाथ मंदिर परिसर का भी पुनर्निर्माण करवाया है।

0: आज यदि आप सोमनाथ मंदिर के प्रांगण को देखें, तो यकीन नहीं कर पाएंगे विध्वंसक इतिहास के थपेड़ों का एक भी निशान यहां आज बाकी नहीं दिखता। सोमनाथ मंदिर अगर दिन में सोने सा दमकता है, तो रात में लाइट एंड साउंड शो के दौरान मंदिर की छटा और भी अद्भुत हो जाती है। यानी एक प्रमुख धर्म स्थल होने के साथ साथ सोमनाथ मंदिर अब पर्यटन, अध्यात्म और इतिहास का अनूठा संगम बन गया है। सोमनाथ प्रांगण में दूर से ही दिखाई दे जाती है मंदिर को निहारते लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। सरदार पटेल ने ही आखिरी बार मंदिर को फिर से बनवाने की शुरुआत की थी। आज मौजूद सोमनाथ मंदिर देश को उन्हीं की देन है। मंदिर का ये स्वरूप कभी साकार न हो पाता अगर देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस दिन वो प्रतिज्ञा न ली होती। 13 नवंबर 1947 को एक विशेष ट्रेन के कोच में सवार होकर पहले जूनागढ़ और फिर वहां से सोमनाथ पहुंचे थे सरदार पटेल। आजादी के बाद वो पहले बड़े नेता थे जो मंदिर की उस खस्ता हालत को देखने पहुंचे थे। मंदिर की हालत देखकर सरदार पटेल को बेहद ठेस पहुंची थी। उसी दिन मंदिर के पीछे समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर लौह पुरुष ने प्रतिज्ञा की कि चाहे जो हो जाए मंदिर का पुनः निर्माण होकर रहेगा। सरदार पटेल मंदिर निर्माण का प्रस्ताव लेकर महात्मा गांधी के पास पहुंचे। गांधी जी ने मंदिर के लिए जनता से धन इकट्ठा करने का सुझाव दिया और देखते ही देखते मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा के दादा पद्मश्री प्रभा शंकर सोमपुरा को मंदिर का आर्किटेक्ट नियुक्त किया गया और 1951 में चालुक्य वास्तुकला शैली में बनकर तैयार हुआ भव्य सोमनाथ मंदिर। 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। सोमनाथ मंदिर ने फिर से अपनी भव्यता को प्राप्त कर लिया। वो समारोह ऐतिहासिक था जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे। भोलेनाथ अनादि हैं, उनका न आरंभ है न अंत, लेकिन उनका ये धाम इतिहास और वर्तमान के बीच आरंभ और अनंत के चक्र से कई बार गुजर चुका है। लेकिन ये भी सत्य है कि बनने और मिटने के इस सदियों पुराने सिलसिले के बीच भी सोमनाथ मंदिर की ख्याति और इस धाम के प्रति लोगों की आस्था कभी कम नहीं हुई। दुनिया भर से श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर की भव्यता देखने हर दौर में पहुंचते रहे। अद्भुत है त्रिपुरारी सोमेश्वर का ये धाम, जिसने हजारों साल के इतिहास में कितने ही क्रूर आक्रांताओं के वार झेले हैं। अतीत के थपेड़ों से डिगा जरूर, लेकिन मिटा नहीं, बल्कि आज भी शान से खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है कि मुझे मिटाने की कोशिशों में जाने कितने मिट गए, पर मैं आज भी सौराष्ट्र के आकाश में चंद्र सा दमकता हूँ, सिंधु के भाल पर चंदन सा चमकता हूँ। गिर सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज के हमारे इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बेशक दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी है, देखते रहिए जीएनटी।
2: छोटे बच्चे का मल जिस प्रकार माताएं हाथ से साफ करती हैं, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारी कमियों को अपनी जीभ से साफ करता है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, भक्तमाल के ग्रंथ में ये वर्णन आया है। इसलिए हमारी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई तुम्हें भला बुरा कहे ना, टेंशन में मत रहा।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
5: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachchai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और ये वीडियोस जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे, और इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जो आपको गुदगुदाएंगे और हैरान भी कर देंगे।
9: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बारातियों ने गर्मी का ऐसा तोड़ निकाला है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स के पसीने छूट जाएं। अक्सर शादियों में आपने नाच गाना और बैंड बाजा देखा होगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही निराला है। बाराती ठंडी हवा के झोंकों के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक छोटी सी ट्रॉली पर बड़े बड़े कूलर रखे गए हैं। अब आप सोचेंगे कि सड़क पर कूलर चलेंगे कैसे, तो भाई इसका भी सॉलिड इंतजाम है। कूलर को पावर देने के लिए साथ में एक पोर्टेबल जनरेटर फिट किया गया है, मतलब बारात जहाँ जहाँ जा रही है ठंडी हवा का पूरा काफिला साथ चल रहा है। एक दुल्हन की विदाई के समय धान या चावल फेंकने की रस्म निभाई जा रही है। पीछे खड़ी उसकी माँ अपने आंचल को फैलाकर उसे रोकने का काम कर रही है। अब तक माहौल पूरा दुख भरा लगता है, लेकिन अगले ही पल जो कुछ भी होता है उसे देख किसी के लिए भी अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगी। दरअसल इस रस्म के दौरान जब दुल्हन अपने हाथ से पीछे की तरफ बिना मुड़े धान या चावल को फेंकती है, तो उनमें से कुछ दाने उछल कर उसकी माँ के मुँह में चले जाते हैं, जिसके बाद माँ का रोना धोना तुरंत बंद हो जाता है और वो अपने मुँह से धान के दानों को निकालने की पूरी कोशिश करने लगती है। वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि शेरों का एक पूरा कुनबा एक अकेले भैंसे को घेर कर खड़ा है। शेर उस पर कहर बनकर टूट पड़े हैं, लेकिन भैंसा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सामने आए एक शेर को जोरदार सींग मारकर हवा में उछाल दिया। हालांकि 3-4 शेर लगातार उस पर हमला कर रहे थे और उसे नोच रहे थे, लेकिन इस बीच अचानक दूर से धूल का गुबार उठा और भैंसे के करीब एक दर्जन साथी गैंगस्टर की तरह वहां पहुंच गए। अपने दोस्त को मुसीबत में देख बाकी भैंसों ने आओ देखा न ताओ और शेरों पर हमला बोल दिया। नजारा ऐसा था कि भारी भरकम भैंसे शेरों को फुटबॉल की तरह हवा में उछाल रहे थे। शेरों को भी समझ आ गया कि दाल नहीं गलने वाली, खिसक लेने में ही भलाई है। बड़े बुजुर्गों को अक्सर नई पीढ़ी तकनीक सिखाती है। ये लोग सीखते भी बड़े मन से हैं, लेकिन अपने तरीके से। जैसे पहले सब कुछ लिखकर सीखा जाता था, एक नानी का ऐसा ही वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर धूम मचाए हुए है। वीडियो में नानी सीख रही है और नातिन से खा रही है। ये मोमेंट याद रखने वाला बन गया है। वीडियो की सबसे खास बात यह है कि नानी सिर्फ सीख नहीं रही थी, वो सब कुछ याद कर लेना चाहती थी, इसलिए वो एक एक पॉइंट लिख रही थी। अच्छे से समझने के लिए वो डायग्राम भी बना रही थी। उनका डेडिकेशन भी तो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। रंगोली ऐसी कला है जिसको बनाने में धैर्य चाहिए होता है। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट अपनी उंगलियों से कुछ ऐसा घर देते हैं कि आंखों को यकीन भी नहीं होता है। साउथ कोरिया की सड़कों पर ऐसी ही अद्भुत रंगोली बनाई गई है। ये रंगोली एक इंडियन आर्टिस्ट भाग्यश्री ने बनाई है। ये आर्ट इतना सुंदर है कि इसके बनते बनते सड़क पर भीड़ ही इकट्ठा हो गई। ये 20 फुट ऊंची रंगोली भाग्यश्री ने 4 घंटों में बनाई। वीडियो में पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें भाग्यश्री सड़क पर बैठ कर पहले से बनाई आकृति में सावधानी से रंग भरती दिख रही है, जबकि आसपास के लोग उन्हें घेरे हुए हैं और उनके आर्ट को देखकर हैरान हो रहे हैं।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें,
10: खान पान में बदलाव करके शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने व्यवहार में क्या सुधार करें कि शुक्र मजबूत हो जाए, किस देवी देवता की पूजा करने से शुक्र मजबूत हो जाता है, क्या हैं शुक्र को मजबूत करने के सरल उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
11: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत, दस की उम्र में लगा गहरा सदमा, दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
12: बैटलफील्ड के बाहुबली को मिलेगा सुपर कवच, जमीन से आसमान तक हर खतरा होगा ध्वस्त। इंडियन बैटल टैंक को मिला अमर होने का वरदान। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
14: सीनियर्स होंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, हाथ में होगा तीनों सेना का कंट्रोल, वे वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान की जगह लेंगे। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख नियुक्त, 31 मई से शुरू होगा कार्यकाल। कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माने जाते हैं विशेषज्ञ। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं भक्त। शकीरा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए ऑफिशियल सॉन्ग दाई दाई का फर्स्ट लुक आया नजर, नाइजीरिया गायक बॉन बॉय भी शामिल। 14 मई 2026 को पूरी तरह से होगा रिलीज। क्रिकेट पिच के बाद टेलीविजन पर छाएंगे रोहित शर्मा, लेकर आ रहे हैं नया रियलिटी शो, होगा सबसे बड़ा डेब्यू।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी कुंडली के, अपने जीवन के शुक्र को सरल उपायों से कैसे बेहतर बना सकते हैं। शुक्र कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में और उसको मजबूत कैसे बनाया जाए, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 2:02 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 11:24 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में और मंगल तथा शनि फिलहाल विद्यमान है मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप किन छोटे छोटे उपायों से, किन सरल तरीकों से शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, जैसे बृहस्पति को देव गुरु कहते हैं, वैसे ही शुक्र को दैत्य गुरु कहा जाता है। शुक्र को गुरु और मंत्री का दर्जा प्राप्त है। शुक्र का संबंध जीवन में सुख, वैभव और विलासिता से होता है। शुक्र व्यक्ति के जीवन में आनंद लाता है, खुशियां लाता है, चकाचौंध लाता है, ग्लैमर लाता है। शुक्र से व्यक्ति को ज्ञान भी मिलता है और खुशियां भी मिलती हैं। अगर शुक्र कुंडली में कमजोर हो जाए तो व्यक्ति जीवन में तमाम प्रयास करने के बावजूद सुखी नहीं होता, या तो विवाह होता नहीं या उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। जीवन में किसी भी प्रकार का आनंद और सुख
व्यक्ति को नहीं मिलता अगर उसकी कुंडली में शुक्र अनुकूल नहीं है। व्यक्ति को आंखों की, मन की और भावनाओं की समस्या परेशान करती है। तो एक लाइन में ये समझिए कि अगर आप जीवन में चैन से रहना चाहते हैं, अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली के शुक्र को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे मजबूत करेंगे उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन आसानी से मिलेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की रुकावट दूर होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, व्यक्ति के जीवन में उसके ग्रहों पर, उसकी सोच पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है उसके खान पान का। तो अपने खान पान के द्वारा, उसमें बदलाव के द्वारा आप अपने शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं? स्वच्छ और सुंदर खाद्य पदार्थ खाइए, जो खाना साफ हो और अच्छा दिखाई भी दे, ऐसा भोजन ग्रहण करिए। भोजन में कच्चे फल और सलाद का प्रयोग करिए, अच्छा रहेगा। भोजन में दही का प्रयोग जरूर करें, खास तौर से दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा ठंडा पानी, बहुत लोगों को चिल्ड पानी पीने की आदत होती है, तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। कांच के गिलास से जल पीने का प्रयास करिए। कांच के गिलास से अगर पानी पिएंगे तो बहुत अच्छा होगा। खान पान के अलावा आप अपने व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं, और अपने व्यवहार में बदलाव के द्वारा
आप शुक्र को बेहतर बना सकते हैं। तो अपने व्यवहार के द्वारा शुक्र को कैसे ठीक करेंगे? अपने व्यवहार को मधुर और कोमल बनाइए, प्रेम से अच्छी तरह से बात करिए। चीखना चिल्लाना, गाली देना, ये सब बंद करिए। बड़े प्रेम से, मिठास से बात करिए। स्त्रियों का विशेष सम्मान करिए, चाहे आपके घर की स्त्रियां हों, चाहे बाहर की स्त्रियां हों। नियमित रूप से सुगंध का प्रयोग करिए। रोज सुबह स्नान करने के बाद सुगंध का प्रयोग करना अच्छा होगा। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसे आपके जूते हैं, आप बात कैसे करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, अपने प्रेजेंटेशन पर विशेष ध्यान दीजिए। माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करिए। रोज शाम के समय में थोड़ा समय निकाल करके माता लक्ष्मी की उपासना करें। कुछ नहीं कर सकते तो शाम को लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाकर उनकी आरती करिएगा। अपने गुरु की अवहेलना मत करिए, अपने गुरु की बात मानिए और उनके निर्देशों का पालन करिए। शुक्र को मजबूत करने के कुछ और उपायों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कर्ज की समस्याओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, चिंताओं से राहत मिलेगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन की हानि हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो अपने खान पान में, अपने व्यवहार में, अपने तौर तरीकों में आप बदलाव करके शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। कुछ और उपायों की भी बात करते हैं जिनसे आप शुक्र को मजबूत बना सकते हैं। रात के समय में उपासना या ध्यान करना शुरू करिए।
सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, अच्छी बात है, वो करिए, लेकिन रात के समय में 2-4 मिनट 10 मिनट उपासना करिए या रात के समय में ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, लाभ होगा। नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करें, खास तौर से संध्या काल में या रात के समय में माता लक्ष्मी की उपासना बहुत बेहतर होगी। नियमित रूप से रोज सुबह स्नान के बाद सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा, माथे पर, कंठ पर सफेद चंदन का तिलक लगाना अच्छा होगा। सप्ताह में एक बार किसी भी देवी के मंदिर में जाइए, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी या माता काली के मंदिर में जाएं। अपने साथ हमेशा क्रीम रंग का रुमाल रखिएगा। एक सफेद रंग के स्फटिक की माला अपने गले में अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मन आपका शांत होगा, चिंताएं आपकी दूर होंगी और शुक्र आपका मजबूत होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, आर्थिक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने शुक्र को मजबूत करने के सरल उपायों पर चर्चा की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर जीवन के सुख चैन में कमी रहती हो, आप सुख से, शांति से, चैन से नहीं रह पाते हो, तो रोज शाम को माता लक्ष्मी की विधिवत आराधना करना शुरू कर दीजिए। अब जान लेते हैं दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, इसके बाद हनुमान जी से
कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: बच्चे का मल जिस प्रकार माताएं हाथ से साफ करती हैं, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारी कमियों को अपनी जीभ से साफ करता है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, भक्तमाल के ग्रंथ में ये वर्णन आया है। इसलिए हमारी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई तुम्हें भला बुरा कहे ना, टेंशन में मत रहा करो।
4: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: बैटलफील्ड के बाहुबली को मिलेगा सुपर कवच। जमीन से आसमान तक हर खतरा होगा ध्वस्त। इंडियन बैटल टैंक को मिला अमर होने का वरदान। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: कोई तुम्हारी निंदा करे ना, मेरे पागल परेशान मत हुआ करो, एक दीपक जला करके धन्यवाद दिया करो। जो आदमी तुम्हारी निंदा कर रहा, सुनो, भक्तमहल में पूज्य श्री नाभादास जी ने एक बात कही, बड़ी प्यारी कही। आहा, छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों का मल माताएं अपने हाथ से साफ करती हैं। हाँ जी या ना जी, बोलो। छोटे छोटे बच्चों का मल माताएं अपने हाथ से साफ करती हैं, उन्हें घृणा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारा है, सुंदर दिखेगा, स्वस्थ रहेगा, बढ़िया दिखेगा, लोग उसको खिलाएंगे। इसलिए छोटे बच्चे का मल जिस प्रकार माताएं हाथ से साफ करती हैं, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारी कमियों को अपनी जीभ से साफ करता है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, भक्तमाल के ग्रंथ में ये वर्णन आया है, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति जीभ से तुम्हारी कमियों को साफ करता है। इसलिए हमारी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई तुम्हें भला बुरा कहे ना, टेंशन में मत रहा करो। तुम टेंशन लेने थोड़ी आए हो, टेंशन तो हम प्रार्थना आपको करें, कोई निंदा करे तो आप प्रत्युत्तर मत दो, आप टेंशन मत लो। हनुमान जी से सीखो, न जाने क्या क्या रावण ने कहा, लंका में लोगों ने क्या क्या कहा, पर धन्य है हनुमान जी। अरे हनुमान जी को तो बीच यात्रा में कहा, रुक जाओ, ठहर जाओ, आराम कर लो, पर हनुमान जी से सीखो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, जब तक राम काज नहीं हो जाएगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। तो धन्य है सुंदरकांड। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है क्योंकि यहाँ बड़ों की बात छोटे सुनते हैं। जहाँ बड़ों की बात की आज्ञा छोटे माने वहां सुंदरकांड सिद्ध होता है, और जहां छोटे आज्ञा अपने बड़ों को दें वहां लंका कांड सिद्ध होता है। हनुमान जी महाराज जामवंत जी से पूछते क्या करना है, तब जामवंत जी कहते जो कल हमने कहा।

जामवंत के वचन सुहाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। और तभी लगी मोहे पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। और हनुमान जी बोले जब लगी आब सीता देखी। सुनो हम लंका जा रहे हैं, आप लोग यहीं पर बैठ करके फल खाओ। तो जामवंत जी के बाणों वचनों को सुनकर हनुमान जी लंका जा रहे और कह क्या रहे, आप लोग यहीं बैठो फल खाओ। तो किसी ने कहा कि हमें तो टेंशन है, तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे, हम फल खाते ही रह जाएं। हनुमान जी बोले टेंशन मत लो, हम राम काज करने जा रहे हैं और राम काज का फल तो मीठा ही होता है, तो मीठे मीठे फल खाओ, हम जा रहे हैं। और हम आएंगे कब, बोले सीता ही देखी, हम जानकी माता को देख करके ही आएंगे। जामवंत जी बोले देख के ही आना, कहीं विस्फोट मत कराना। ऑपरेशन सिंदूर का प्रचलन तो हनुमान जी ने ही शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो हमारे बजरंगबली का ही फर्स्ट ट्रायल है, उन्होंने ही लंका में घुस करके रावण के यहाँ पर धूम धड़ाका किया था, उसी का वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखने को मिला है। पहला ऑपरेशन तो हनुमान जी ने ही ऑपरेशन सिंदूर किया था लंका में, हाहाकार मचा दिया था। कैसे उलट पलट

की यात्रा के लिए तैयार हैं। एक बात मेरे पागलो तुम समझना, राम काज करने वाले व्यक्ति को एक बात समझ लेनी है। हमने पिछली कथा में प्रार्थना की थी, फिर प्रार्थना करते हैं हम लोग। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं राम के बंदर, हम लोग हैं काम के बंदर। हैं? हम लोगों से पूछो क्या कर रहे तुम, कथा में क्यों नहीं आए? गुरु जी आना तो था पर काम से गए थे, और जो आदमी काम से जाता है वो काम से ही चला जाता। हम लोग काम के बंदर हैं, हनुमान जी राम के बंदर हैं। राम काज करवे को वातर, इसलिए मेरे पागलो अगर तुम्हें अपने हर काम सफल करना सीखना है तो हनुमान जी से सीखो, सुंदर कांड से सीखो, अपने काम काज को ही राम काज बना डालो। बोलो सीताराम। के समय जब पूरा शिष्य मंडल हमारा सो गया, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं, तो खुले मैदान में पानी के मटका रखे हुए थे, हमने मटकों के पानी को सिर पर डाला और एक मटका में पानी भरा और सोचा हनुमान जी को जल चढ़ाया जाए, कम से कम अर्जी सुन लें, कोई मन में प्रेरणा दे दें ताकि व्यवस्था बन जाए, ताकि हमारी चिंता दूर हो जाए। और जैसे ही हम मंदिर पर चढ़ने लगे, भैया चौथी पांचवी सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखा, पूज्य श्री सन्यासी बाबा बोल पड़े, जा चिंता ना कर, कल सुबह तक तेरी व्यवस्था हो जाएगी। वहां पर मंदिर में भोले बाबा का मंदिर है धाम पर, भोले बाबा के मंदिर से बड़े हुंकार की गर्जना आई, जाओ तुम्हारी सुबह तक व्यवस्था हो जाएगी। तो पहले तो हमें बड़ा डर लगा, फिर पता लगा कि ये तो हमारे मन में बात थी, ये किसने बोली है। तो हम भागे भागे मटका छोड़ दिया, भागे भागे मंदिर पे बड़ी जोश जोश में गए, तो बड़ा तेज सा प्रकाश सन्यासी बाबा का अंदर प्रकाशित हो रहा। चमीटा लिए हुए सन्यासी बाबा खड़े हैं और हुंकार करते हुए वहां पर खड़े हुए देखा, तो हमने कहा कि आप हमारे गुरु जी हो क्या? वहीं अंदर से हुंकार भरी, तो हमारा मन गदगद हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। अब वो फिर से बोले, जा वापस उतर जा और जाके सो जा, सुबह तेरी यज्ञ की व्यवस्था हो जाएगी। अब सुनना भैया, हम तो बड़े प्रसन्न हो गए, थोड़ी देर में ऐसी हालत हो गई जैसे बेहोश हो गए हो। तो कुछ देर तक वहीं पड़े रहे, वापस आए तो सो गए, अब तो टेंशन फ्री थे तो खूब देर तक सोए, 8-9 बजे सुबह तक। सुबह जैसे ही जागे तो रोज की तरह नित्य नियम किया, जहां बागेश्वर धाम आप मंदिर जाओगे तो दरवाजे के पास में एक पीपल का पेड़ है, तो हम पीपल के पेड़ के नीचे वहां सोफा डाल के बैठते थे, तो सोफा पे जाके बैठ गए। अब टेंशन तो दूर हो गई, गुरुजी ने कह दिया, पर ये नई मन में टेंशन आ गई कि आएगा कैसे। उस समय में बहुत ज्यादा भीड़ होती नहीं थी, आहा फिर क्या, हमारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठते ही आहा हा, एक बोलेरो गाड़ी आई और उसमें एक सज्जन व्हाइट शर्ट पहने हुए काला पेंट पहने हुए उतरे, सबसे मिल रहे थे, 400-500 लोग बैठे थे, हम भभूति बांट रहे थे। उन्होंने आकर के कहा, महाराज जी आपकी जय हो। हमने कहा, भैया कहाँ से आए? बोले, गुरुजी झांसी से आए हैं। हम कहा, बहुत बढ़िया, भोजन पा लेना। हमें तो सामान्य अब ऐसा तो कुछ पता नहीं था, तो सीधे साधे आदमी। हमने कहा, भैया भोजन पा लेना, यज्ञ के दर्शन कर लो। बोले, जी गुरुजी हो गया, हम कुछ सामान लाए हैं। हम कहा, क्या लाए हो? बोले, कुछ सहयोग लाए हैं। हम कहा, वहां कार्यालय में दे दो और रसीद ले लेना। बोले, हमें कार्यालय में नहीं देना, आपको ही देना है। एक छोटा सा बैग उन्होंने पकड़ा दिया, हमें लगा कपड़ा होंगे, मिठाई बिठाई होगी, भैया हमने धर लिया। अब वो हमारे ही आंखों के देखते वापस चले गए। जैसे ही एक कमरा बना था, बहुत बड़ा आश्रम तो था नहीं, एक कमरा बना था, तो एक तिवारी जी हमारे पास रहते थे, विजय तिवारी जी। विजय तिवारी जी को हमने वो बैग दिया और जैसे ही खोला तो ऊपर लाल पेन की एक चिट्ठी रखी थी, उस पर पहले नंबर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जय सिया राम। और जब बैग खोल करके देखा, पूरे यज्ञ की चुकती हो गई, ब्राह्मणों की दक्षिणा चुक गई और 50,000 रुपया बच गए। हाँ, हम ना उनको जानते, आज तक हमारा परिचय नहीं,
मोटरसाइकिल लेके हम गांव के बाहर तक गए, हमको नहीं मिले, हम बड़े चौंक गए। फिर अंदर ही अंदर सन्यासी बाबा की प्रेरणा आई, तू टेंशन ना ले, व्यवस्था हो गई, वापस जा। तब हमें खूब रोना आया कि धन्य है गुरुदेव, हमारे कारण उनको ये रूप बना करके आना पड़ा, हमारी यज्ञ को सफल करवाना पड़ा। पंचकुला के पागलो, हम हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं, तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो, वो तुम्हारी नाक नहीं कटने देंगे। हाँ, वो दिन है कि आज का दिन है, आज तक हनुमान जी की कृपा से भैया हमने फिर लौट के मुड़ के नहीं सोचा। जब हॉस्पिटल के निर्माण की संरचना चल रही थी, भूमि पूजन होना था, हमें सबने डांटा कि बहुत बड़ा संकल्प है, आप कर नहीं पाओगे, आप किसी से मांग पाते नहीं हो, हनका जो होगा देखा जाएगा। हमारे मन में आया है, इस देश में 1,000 करोड़ के मंदिर बने हैं, हम अस्पताल बना करके जाएंगे। प्राप्त करने के लिए जिद तो बहुत जरूरी है, अगर आप जिद्दी नहीं बनोगे तो आप प्राप्त कर नहीं पाओगे। आपको जिद्दी तो बनना पड़ेगा, चाहे वो भगवान को

बताओ। परमहंस जी बोले नदी चलो। बेचारा नदी चला गया। नदी जैसे ही पहुंचा तो फिर बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले नदी में कूद। वो कूद गया। अब फिर कूदते हुए तैरते हुए बोला हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी ऊपर से कूद गए। वो फिर ऊपर आया, हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी ने गर्दन पकड़ ली और डुबो दिया। वो फड़फड़ा गया, अब लगा के मर जाएगा। फिर छोड़ा और जैसे ही छोड़ा तो फुरफुर करता हुआ बाहर दौड़ के गया। बोले हमें पहले कंफर्म नहीं था कि तुम पागल हो, आज कंफर्म हो गया पागल हो। हमने पूछा है भगवान को पाना है, उपाय बताओ, तुम हमें नदी में लाकर के मारने ले आए। परमहंस जी बोले बेटा मारने नहीं लाए हैं, उपाय बतलाने लाए हैं। ये गला दबाना कौन सा उपाय है? बोले बेटा जिस प्रकार पानी में तू श्वास के लिए तड़प रहा था वैसे ही तू परमात्मा के लिए तड़पने लगे तो भगवान मिल जाएगा। जैसे श्वास के लिए भगवान का मिलना कठिन नहीं है, तड़प का आना जरूरी है। मीरा तड़पी है इसलिए उसे कलयुग में भी गोविंद मिले। सूरदास तड़पे हैं इसलिए उन्हें कलयुग में भी गोविंद मिले। तुलसीदास तड़पे हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। किस तुलसीदास की भी आंखों में सदा भाव रहता। तुलसीदास जी भी सूरदास जी गाते अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास भी तड़पे, तुलसीदास जी भी तड़पे। भैया जब तक अंदर तड़प नहीं होगी ना तब तक सफलता नहीं मिलेगी। चाहे भगवान को पाना हो, चाहे सफलता को पाना हो, या सक्सेसफुल को पाना हो। पढ़ने वाले बच्चे एक बात तय कर लें, जिद्दी बनो, जिद्दी बनो। जिद्दी का मतलब गुस्सेल मत बन जाना कि कल से ही तुम गुस्सेल हो जाओ। सफलता पाने के लिए जिद्दी बनो। तुम अपने ही शरीर से सीखो, नाखून और बाल बचपन से कट रहे हैं फिर भी नाखूनों ने कभी बढ़ना नहीं छोड़ा, बालों ने कभी बढ़ना नहीं छोड़ा। कितनी बार कटे फिर भी बढ़ रहे हैं। ऐसी जिंदगी में कितनी भी बार गिरो पर चलना मत छोड़ना। तुम उड़ नहीं सकते कोई दिक्कत नहीं, तुम उड़ नहीं सकते दौड़ो। तुम दौड़ नहीं सकते चलो। तुम चल नहीं सकते रेंगो पर शांत मत पड़े रहो, चुप मत पड़े रहो, लगे रहो। हमारे गुरु कहते हैं डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। भगवान के चरण पकड़े रहो। संत कहते कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम, कभी तो भगवान के कानों में पुकार जाएगी। कभी भरत जी के चरित्र को सुनना, भरत जी कितने आर्तनाद स्वर में राम जी को पुकारते, इतने आर्तनाद स्वर में भरत जी राम जी को पुकारते। जब राम जी से मिलने जाते चित्रकूट कि भरत जी के आर्तनाद करुण पुकार स्वर को सुनकर के पत्थर के पहाड़ों के पर्वत के पत्थर पर्वतों के पत्थर पिघलने लगते और वो भी भगवान से प्रार्थना करने लगते कि जो होना हो सो हो जाए। पर भरत जी के कहने पर राम जी वापस लौट आए। इतनी तड़प। कभी तुम मछली को देखना जल के बिना तड़पती है, इतनी तड़पती जल के बिना पूछो मत। इतनी तड़पती कि वो प्राण त्याग देती अगर जल ना मिले तो वो फिर जीती नहीं है। वो कहती जीऊंगी तो जल में वरना जीऊंगी नहीं। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। परम पूज्य श्री रामायण जी कहते हैं जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त मंजूर ना हो तो जिंदगी में जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। अगर सफलता ना मिले तो रूठ जाओ, जिद्दी बनो। याद रखना मेरे पागलो, जब तुम बचपन में रहते हो, जब शुरुआत पढ़ाई करते हो तब तुमको पेंसिल दी जाती है। क्यों? क्योंकि पेंसिल में मिटाने का ऑप्शन होता है, छुटाने का। लेकिन जैसे ही तुम बड़े हो जाते हो पेन पकड़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर रफ नहीं पचता, जिंदगी फेयर बन जाती है, मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं। बड़े होते ही तुम्हें पेन पकड़ा दिया जाता। ऐसी जिंदगी है। अगर पाना है तो जिद्दी बनो। अगर पाना है बहुत नींद मत लो, कम सो। अगर प्राप्त करना है तड़पो ज्यादा। अगर तुम्हें प्राप्त करना है विचार ज्यादा करो, तुम्हें जो पाना है उसके बारे में सोचो। हमको रामानंद सागर की महाभारत का एक सूत्र बड़ा प्यारा लगता, जब हमने टीवी पर देखा और शकुनी मामा एक बहुत अच्छी बात बोलते, अपने भांजों को कह रहे थे मेरे बच्चों रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। अगर आपको रणभूमि में कुछ खेलना है तो पहले मनोभूमि में खेलो, विचार करो। विचारों का कोई टैक्स थोड़ी है, दिन ना रात विचार करो। पढ़ने वाले बच्चों हनुमान जी से सीखो लगन। जब तक लंका पहुंच नहीं गए

0: राम काज कीन्हे बिन मोही कहां विश्राम। हनुमान जी कहते जब तक राम काज नहीं कर देंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। मेरे पागलो, तुम्हें भी जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक तुम रुकना नहीं। एकमात्र हनुमान जी हैं जिन्होंने अपनी मां के दूध का कर्ज चुकाया। हां, एकमात्र हनुमान जी हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने अपनी मां के दूध का कर्ज चुकाया। आप सुन के चौंकेंगे मेरे बाप पागलो, जब रावण मर गया, दशानन मारा गया और हनुमान जी महाराज, मां जानकी जी, राम जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद, दधिमुख, केहरि, सब बानर पुष्पक विमान पर बैठे जाने लगे वापस, तो हाथ जोड़ लिए हनुमान जी ने, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी से बहुत दिन से मिले नहीं, हम अपनी माता जी से मिले आए, बीच रास्ते में आप हमें उतार देना, हम माता जी के चरण छूने के लिए, माता जी को प्रणाम करने के लिए चले जाएंगे, जब से आए हैं तब से गए ही नहीं, जब से सुग्रीव जी के पास आए हैं रक्षा के लिए बहुत दिन हो गए, गए नहीं। अच्छा, तुम्हारी माता जी कहां रहती? राम जी ने पूछा। महाराज, वेंकटाचल पर्वत पर रहती हैं। राम जी ने पुष्पक विमान की ओर इशारा किया, इस विमान को अंजना पर्वत की तरफ ले जाया जाए। जैसे ही हनुमान जी ने यह सुना तो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु आप चल रहे? राम जी बोले, हनुमान जब तुम इतने दिन हमारे साथ रह सकते हो, हमारे लिए इतना समर्पण कर सकते हो, हम भी तुम्हारे साथ चल करके जरा देखें तो वो कौन माँ है जिसका लाल इतना कमाल का है, जिसका लाल इतना बलवान है, जिसका पुत्र इतना बलवान है, जरा हम भी तो देखें वो कौन है। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, प्रभु ये तो बड़ी कृपा हमारे ऊपर। और पुष्पक विमान अंजना पर्वत की तरफ जाने लगा। अंजना पर्वत के ऊपर आकर के पुष्पक विमान रुक गया। राम जी ने इशारा किया, मन के संकल्प से चलने वाला था, नीचे उतारा। हनुमान जी बोले, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पहले चले जाए, माता जी का अवगत करा दे। हाँ हाँ कराओ। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए। जिसका बालक इतना भगत हो, मां तो होगी ही होगी, हनुमान जी परम भक्त तो मां भी परम भक्त। माता अंजना गुफा में बैठी हुई नाम नाम जप कर रही है। हनुमान जी ने बाहर से आवाज लगाई, माते मां, अरे कौन आया है? मां आपका लाल आया है। भागी भागी अंजना माता दौड़ी दौड़ी आई, अंक में भर लिया। हनुमान जी को बहुत दिन बाद मिली, कभी चूमे, कभी सिर पर हाथ रखे, कभी पूछ को पकड़े, कभी मुख को खिलावे, कभी गोद में ले लेवे, कभी अंक में भर लेवे। नेत्र सजल हैं, हनुमान जी के भी सजल हैं। और हनुमान जी दोनों हाथ जोड़े हुए शांत भाव से चिवक गए माँ को। माँ ने सिर पर हाथ रखा, बेटा कैसे हो, बड़े दिन बाद आए? माँ ठीक हूं, पर माँ एक बात बोलू? हाँ बोल। माँ हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ कोई आया है। कौन? चलो बाहर आओ। मां को बाहर लेके हनुमान जी आए, राम जी भी आ गए थे। मां ये वही राम जी हैं जिनकी सेवा में तुमने हमें भेजा था। जैसे राम जी की मूर्ति को देखा, राम जी के स्वरूप को देखा, वह धनुष बाण को हाथ में देखा, वो नीलांबर स्वरूप देखा, वो बड़ी बड़ी भ्रकुटी देखी, वो प्यारे प्यारे नेत्र देखे, आहा वो चमकता दमकता चेहरा देखा, वो पीतांबर पहने हुए देखा, वो मधुर मुस्कुराहट देखी, वो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम कोमल शरीर को देखा, श्री रघुनाथ जी को देखकर, उनके चरणों को देखकर, उनके गले की माला को देखकर, उनकी भुजाओं को देखकर अंजना माता भाव विभोर हो गई, आनंदित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। और तुरंत राम जी ने तुरंत हाथ जोड़े। मां ने कहा हाथ मत जोड़ो, आओ। तुरंत राम जी को गले लगा लिया। एक तरफ राम को गले लगाया तो दूसरी तरफ हनुमान को गले लगा लिया। और हनुमान को गले लगाकर पहली बार माता अंजना हनुमान जी के सिर पर हाथ रख करके बोली, जो भारत के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में हुआ है, वो ये बोली, बेटा जा, आज मैं तुझे अपने दूध के ऋण से मुक्त करती हूं। मैंने ऐसा लाल पाया है, मैंने ऐसा सुत जाया है, मुझे गर्व है अपने दूध पिलाने पर, मुझे गर्व है अपने लालन पालन पोषण पर, मैंने ऐसा बालक पाया है जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जगदीश जगदात्मा जगदाधार उस ब्रह्म को मेरे घर लेकर के आ गया, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। जा, तू हमारे दूध के ऋण से मुक्त है। एकमात्र हनुमान जी ऐसे देवता हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में एकमात्र, जो माँ के स्तन के ऋण से, माँ के दूध के ऋण से मुक्त हुए हैं, वो हमारे हनुमान जी हैं। मेरे पागलों, हम हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन इतना कहना चाहते हैं बहुत विनम्रता पूर्वक, हनुमान जी का पूरा जीवन सीखने योग्य है। हनुमान जी में लगन है तो हनुमान जी में बल है, हनुमान जी में बल है तो हनुमान जी में बुद्धि है, हनुमान जी में बुद्धि है तो हनुमान जी में विद्या है, हनुमान जी में विद्या है तो हनुमान जी का पूरा जीवन सीखने योग्य है। हनुमान जी में लगन है तो हनुमान जी में बल है, हनुमान जी में बल है तो हनुमान जी में बुद्धि है, हनुमान जी में बुद्धि है तो हनुमान जी में विद्या है, हनुमान जी में विद्या है तो हनुमान जी में विनम्रता भी है।
1: क्या सूर्य देव के राशि परिवर्तन से राजनीतिक हलचल बढ़ने वाली है? क्या सूर्य देव का इस बार का राशि परिवर्तन किसी बड़ी दुर्घटना की सूचना दे रहा है? क्या सूर्य देव का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर अच्छा और बुरा असर डालने वाला है? क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का चक्र, जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Cybersecurity isn't just about stopping threats. It's about starting your future. At WGU, you'll earn a cybersecurity degree packed with AI-integrated training, up to 16 certifications, and real-world skills.
3: Without the degree from WGU, I wouldn't have got the job. As soon as I graduated, they promoted me up to systems analyst.
2: And right now, you could also qualify for a $6,000 cybersecurity scholarship. Learn more at WGU.edu.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: बैटलफील्ड के बाहुबली को मिलेगा सुपर कवच, जमीन से आसमान तक हर खतरा होगा ध्वस्त। इंडियन बैटल टैंक को मिला अमर होने का वरदान। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: देश के वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयास रंग ला रहे हैं। इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि 20 साल बाद अरुणाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार रॉयल बंगाल टाइगर दिखा है। आपको दिखाते हैं ऐसा क्या है अरुणाचल की इस सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिस वजह से यहां बंगाल टाइगर की चहलकदमी बरसों बाद नजर आई है।
9: बंगाल टाइगर की इस तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। दशकों बाद रॉयल बंगाल टाइगर के दर्शन अरुणाचल के जंगलों में हुए हैं। ये घटना इसलिए भी खास है क्योंकि 2 दशकों से अरुणाचल में बंगाल टाइगर नहीं देखे गए थे और चिंता जताई जा रही थी कि क्या जंगल के बदले मिजाज ने रॉयल बंगाल टाइगर्स को अरुणाचल के घने जंगलों से दूर कर दिया है। अरुणाचल के जंगल में ये तस्वीर उस वक्त खींची गई जब डंपर ट्रक ड्राइवर्स ने पुराने कोमली घाट रोड पर बंगाल टाइगर को चहलकदमी करते देखा। यही नहीं, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने बंगाल टाइगर को सड़क से कुछ दूरी पर पेड़ों की छांव में आराम करते हुए भी देखा। लोगों के अनुसार कुछ देर दिखने के बाद टाइगर वापस जंगल की तरफ चला गया, लेकिन ये तस्वीर सुकून का पक्का सबूत बन गई। कुछ दिन पहले अरुणाचल के जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर के पंजे देखे गए थे, लेकिन ये पहली बार है जब बंगाल टाइगर को इतने पास से देखा गया और उसका वीडियो बनाया गया है। फिलहाल टाइगर के इस दीदार के बाद से अरुणाचल का वन विभाग खुश है। यहाँ बंगाल टाइगर की मौजूदगी इस बात का भी सबूत है कि अरुणाचल के डियरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के जंगलों का इकोसिस्टम अब बेहद हेल्दी है। अरुणाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बंगाल टाइगर का दिखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेंचुरी 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। ये जंगल लुप्तप्राय बंगाल फ्लोरिकन का भी ठिकाना है, लेकिन करीब 2 दशक बाद यहाँ बंगाल टाइगर का होना इस बात की गारंटी बन गया है कि दुनिया के सबसे बड़े शिकारी के लिए यहाँ पर्याप्त शिकार मौजूद है। अरुणाचल की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जश्न है, लेकिन एक डर भी है, वो ये कि कहीं ये टाइगर आसपास के गांवों पर हमला बोल लाना शुरू कर दे। अरुणाचल के इस इलाके में बंगाल टाइगर की मौजूदगी का सबसे पुख्ता सबूत सामने आने के बाद वन विभाग ने आसपास के गांव के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से रात के समय जंगल की ओर ना जाने की अपील की गई है। रॉयल बंगाल टाइगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। भारत में अभी 3,680 जंगली बाघ हैं, जो दुनिया की कुल बाघ आबादी का करीब 75% माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: की दुनिया में एक भारतीय बेटी ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कम उम्र में ही 44 वाद्य यंत्र बजाने वाली नियति ने एक इतिहास रच दिया है। 44 वाद्य यंत्रों को बजाने वाली नियति ने इसी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों की पहचान कर उन्हें प्ले किया।

0: संगीत के साथ ये गहरा रिश्ता अब एक विश्व कीर्तिमान के साथ पूरी दुनिया में नियति का नाम रोशन कर रहा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में नियति ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों को पहचान कर नियति ने इतिहास रच दिया। लेकिन नियति का हुनर सिर्फ वाद्य यंत्रों को पहचानने तक सीमित नहीं है। इस छोटी सी उम्र में ही नियति 44 वाद्य यंत्र बजा लेती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की कमाल की पकड़ है।
1: फाइव 50 इंस्ट्रूमेंट्स याद किए अलॉन्ग विद देयर बेसिक्स एंड लास्ट में जाके सेकेंड नवम्बर 2025 पर मैंने 1 मिनट के अंदर रैंडमाइज करके 74 इंस्ट्रूमेंट्स रिकोगनाइज किए।
2: 74 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने पहचाना है सिर्फ 1 मिनट के भीतर। सिर्फ पहचाना नहीं है बल्कि उनके बेसिक्स भी बताए हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए होता है, कैसे बजता है, कैसे काम करता है।
0: नियति को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां ने हर कदम पर उनका सहयोग किया। संगीत के प्रति नियति के लगाव को उन्होंने बहुत कम उम्र में पहचान लिया था। नियति जब महज 6 महीने की थी तभी माँ ने कीबोर्ड और जाइलोफोन से नियति को रूबरू कराया। 4 साल की उम्र में नियति ने काबिलियत हासिल कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले भी नियति कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। में नियति ने आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो पर शिव तांडव स्त्रोत बजाया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। 2023 में नियति ने 65 सेकंड में 15 वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाया। इस उपलब्धि पर उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया।
3: उठती हूँ और 4 बजे से लेके मेरे पास पूरे दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, क्योंकि नियति को स्कूल छोड़ना, लेके आना इसकी म्यूजिक क्लासेस के लिए, फिर और इसके प्रोग्राम्स वगैरह चलते रहते हैं उसमें सब में, और मेरा अपना ऑफिस का वर्क भी रहता है और घर की जिम्मेवारियां तो है ही है, तो उसमें मेरे को पूरे दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। कुछ इसके बियॉन्ड मैं सोच पाऊँ मेरे पास समय नहीं है। सिंगर संघर्ष साकार होते वो नजर आ रहा है कि मतलब मैंने जो इतना एफर्ट्स किए हैं कि नियति कुछ बच पाए, अपनी जगह समाज में बना पाए, उसके लिए मैंने पूरे एफर्ट्स किए थे। और आज लग रहा है जब लोग आके हमसे पूछते हैं कि आपके बच्चे ने इतना अचीव किया तो बहुत खुशी होती है।
0: संगीत के साथ नियति साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, एनिमेशन और रैप क्रिएशन में भी माहिर है। हिंदी और अंग्रेजी में कविता और गीत लिखने वाली नियति को अब तक 17 देशों में सम्मान मिल चुका है। संगीत में रुचि के साथ ही नियति पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही है।
1: प्रिंटआउट लेके स्कूल में जाके याद करती थी और मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरे को बहुत इनकरेज किया एंड हेल्प किया सब कुछ याद करने में, बेसिक्स याद करने में। एंड एग्ज़ाम्स थे तो पढ़ाई भी थी, तो उसके साथ पढ़ाई को भी अच्छे से समय देना था।
2: गिनीज का रिकॉर्ड भी आ गया, स्कूल का रिजल्ट भी आ गया। कितने परसेंट मार्क्स है?
1: 96% इन क्लास 9th।
2: 96% मार्क्स आए हैं, उसके साथ गिनीज का रिकॉर्ड आया है। आप सोचिए कि नियति कितनी टैलेंटेड है और कितनी डेडिकेटेड है उस काम के लिए जिस काम को वो करती है।
0: बचपन में एक छोटे से खिलौने के साथ शुरू हुआ संगीत का ये सफर आज नियति को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा चुका है और उनकी ये कामयाबी आज की नई पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल बन गई है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay, come on, let it go. Nora Jones, my heart is drained. Daniel Caesar, more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
8: गुड न्यूज टुडे.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह आज से, शुभेंदु अधिकारी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के कई दिग्गज समारोह में शामिल। देश के नए सीडीएस होंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, हाथ में होगा तीनों सेना का कंट्रोल, वे वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान की जगह लेंगे। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख नियुक्त, 31 मई से शुरू होगा कार्यकाल, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माने जाते हैं विशेषज्ञ। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं भक्त। शकीरा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए ऑफिशियल सॉन्ग दाई दाई का फर्स्ट लुक आया नजर, नाइजीरियाई गायक बना बॉय भी शामिल, 14 मई 2026 को पूरी तरह से होगा रिलीज। क्रिकेट पिच के बाद टेलीविजन पर छाएंगे रोहित शर्मा, लेकर आ रहे हैं नया रियलिटी शो, होगा सबसे बड़ा डेब्यू।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका फैक्ट चेक में। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, तो कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर भी कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। जी हाँ, तो फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के एक कार्यकर्ता पट्टी बांधकर चोटिल होने का नाटक कर रही थी, लेकिन कैमरे के सामने उसका भेद खुल गया। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये आगे आपको बताएंगे। तो वहीं हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के समर्थकों ने हावड़ा ब्रिज पर जश्न मनाया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल है। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता पट्टी बांधकर चोटिल होने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसका भेद खुल गया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
5: वीडियो बना रही थी तो मैं वीडियो बंगाल में अब बीजेपी का राज है। टीएमसी को सत्ता से बेदखल करके बीजेपी ने बंगाल में बदलाव की नई कहानी लिख दी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर मीडिया कर्मी से बात करती हुई एक गुलाबी साड़ी पहने महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके पूरे सिर पर पट्टी बंधी दिख रही है। कहा जा रहा है कि ये महिला चोटिल होने का नाटक कर रही थी, लेकिन बातचीत के दौरान ही किसी ने उसकी पट्टी खींच कर सारी पोल खोल दी। पट्टी खुलने पर ये दिखता है कि उसके सिर पर चोट के कोई निशान नहीं है। महिला की पट्टी खुलते ही वहां मौजूद लोगों के बीच हाथापाई होने लगी। कई लोग इस वीडियो को वायरल करते हुए ये कह रहे हैं कि टीएमसी की एक कार्यकर्ता पट्टी बांध कर चोटिल होने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसका भेद खुल गया। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, चुनाव हारने के बाद टीएमसी वालों को भाजपा वालों ने पीटा है, अब बेचारे अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो ये बीजेपी वाले कैमरे के सामने भी इनको अपनी बात नहीं रखने दे रहे, अरे पट्टी बाद में उतार देते। कई न्यूज आउटलेट्स ने अपनी रिपोर्ट्स में गुलाबी साड़ी वाली महिला को चोटिल होने का नाटक करती टीएमसी कार्यकर्ता बताया है।
6: वीडियो बना रही थी तो मैं
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद कई जगह से हिंसा की खबरें सामने आई, इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा कर रहे हैं कि टीएमसी की एक कार्यकर्ता पट्टी बांधकर चोटिल होने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसका भेद खुल गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और जांच के दौरान सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। पहले तो ये सुनाई दिया कि महिला क्या कह रही है, आप उसे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। सुना आपने महिला के टोन को, जब आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें बांग्ला पुट नजर नहीं आया।
6: वीडियो बना रही थी तो मैं वीडियो देखने दो ना, ये वीडियो बना रही थी तो मैं वीडियो देखने दो ना।
4: तो महिला के उच्चारण को ध्यान से सुनने से ऐसा लग रहा है कि ये बंगाल का वीडियो नहीं हो सकता। जी हाँ, इसके बाद महिला के सर पर जो पट्टी दिख रही है वो भी बिल्कुल सफेद दिख रही थी, उस पर ना तो दवाई और ना ही जख्म दिख रहा है। अमूमन ये होता है जब किसी को चोट लगती है तो डॉक्टर चोट की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इलाज करता है, पट्टी के साथ साथ दवाई भी लगाई जाती है। जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो पट्टी पर दवाई या खून के निशान भी दिखते हैं, लेकिन यहां पर महिला को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने खुद ही पट्टी बांध ली। ऐसे में हमें वायरल वीडियो के दावे पर शक हुआ, लिहाजा इसके अलावा हमने सर्च के दौरान एक ऐसी प्रमाणिक रिपोर्ट को भी देखा जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल जो निकल कर आया वो ये कि अगर दावा सही है तो वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही।
5: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इससे हम एक यूट्यूब चैनल पर पहुंचे जहां 6 मई को अपलोड किया हुआ ये मिला। यहाँ वीडियो के वॉइस ओवर में एक व्यक्ति कह रहा है कि ये वीडियो भ्रामक दावे के साथ शेयर हो रहा है।
7: मुजफ्फरपुर एसकेएमसीए से जुड़ा एक पुराना वीडियो इन दिनों पश्चिम बंगाल में गलत दावों के साथ तेजी से वायरल किया जा रहा है।
5: सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि ये वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का है। ये अस्पताल के स्ट्रेचर उठाने वाले कर्मचारियों और एक मरीज और उसके परिजनों के बीच हुए टकराव से संबंधित है। हमने SKMCH हॉस्पिटल के कुछ वीडियो देखे और वायरल वीडियो से उसकी तुलना की। इससे साफ हो जाता है कि वायरल वीडियो इसी अस्पताल का है। हमने इसके बारे में और जानने के लिए वीडियो बनाने वाले रिपोर्टर प्रेम शंकर से भी संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये वीडियो उन्होंने 28 अप्रैल को SKMCH हॉस्पिटल में ही बनाया था। उस दिन अस्पताल में स्ट्रेचर उठाने वाली एक महिला कर्मचारी अपने सिर पर पट्टी बांधे हुए कुछ मीडिया कर्मियों को बता रही थी कि कि उसे एक मरीज के परिजनों ने पीटा है। ये देखकर मरीज तुरंत ही वहां आ गया और उसने महिला की पट्टी खींचकर निकाल दी। प्रेम ने ये वीडियो 4 मई को अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा था, मीडिया वालों को ये दिन भी देखना पड़ता है, हालांकि सभी पर कार्रवाई हुई। प्रेम शंकर ने अपने फोन की मीडिया गैलरी में सेव किए हुए इस वीडियो का स्क्रीनशॉट फैक्ट चेक टीम के साथ शेयर किया। इसमें 28 अप्रैल की तारीख साफ दिख रही है। सर्च के दौरान हमें इस घटना से जुड़ी 29 अप्रैल 2026 को छपी कई न्यूज रिपोर्ट भी मिली। इन खबरों के मुताबिक ये टकराव श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हुआ था। घटना के बाद अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने सिक्योरिटी एजेंसी को वहां मौजूद सभी स्ट्रेचर उठाने वाले कर्मचारियों को हटा देने का आदेश दिया था। बंगाल के चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे। साफ है, बिहार का एक पुराना वीडियो अब चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी कार्यकर्ता की चोटिल होने की नौटंकी के दावे के साथ शेयर हो रहा है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार शेयर हो रहा है। इस वीडियो में लोगों की भीड़ पश्चिम बंगाल के हावड़ा ब्रिज पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव की जीत के बाद बीजेपी के समर्थक हावड़ा ब्रिज पर जश्न मना रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
8: टीएमसी को हराकर बीजेपी ने बंगाल में बदलाव की नई कहानी लिख दी है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने बंगाल में इतिहास रच दिया, जबकि सत्ता विरोधी लहर में टीएमसी 100 सीटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में हावड़ा ब्रिज पर लोगों के हुजूम को धार्मिक नारे लगाते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को बंगाल में बीजेपी की जीत के जश्न का बताकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स शेयर कर रहे हैं। एक फेसबुक पेज ने वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया है कि हावड़ा ब्रिज पर जीत के रुझानों के बीच बीजेपी समर्थकों का उत्साह देखने को मिला। समर्थक जुटकर जश्न मनाते नजर आए, जहां नारेबाजी और जोश का माहौल बना रहा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोगों की भीड़ एक ब्रिज पर खड़ी हुई नजर आ रही है। वो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उसके कार्यकर्ता हावड़ा ब्रिज पर पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने वायरल वीडियो की जांच की, और दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमें बैकग्राउंड में होली है जैसे कुछ शब्द सुनाई मिले। इससे यह इशारा हुआ कि वीडियो होली के समय का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट और लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर ये बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद का होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में खबर जरूर होती, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, और सबसे पहला सवाल ये कि अगर दावा सही है तो वायरल वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से जोड़कर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही, लोगों के बीच गलतफहमी तो नहीं फैलाई जा रही।
8: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर होने लगा, तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के पड़ताल में जुट गई। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें ये वीडियो होली के जश्न के नाम पर कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिला। सर्च के दौरान असली वीडियो हमें 9 मार्च 2026 की तारीख को अपलोड किया हुआ मिला, जिसे एक इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया था। सर्च के दौरान इस जश्न का दूसरा वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। इस वीडियो को 1 मार्च 2026 को अपलोड किया गया था। इसमें 3 मिनट की टाइमलाइन के पास हमें फूलों से सजा मिनी ट्रक और उसमें सवार लोग नजर आए, जो बीजेपी की जीत के नाम पर वायरल वीडियो में दिख रहे हैं। साफ है बंगाल में बीजेपी की जीत के जश्न के नाम पर हावड़ा ब्रिज का वायरल वीडियो होली का निकला। कई महीने पुराने वीडियो को अब गलत दावे के साथ वायरल करके झूठ फैलाया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि लव जिहाद में फंसाने की कोशिश कर रहे एक बांग्लादेशी शख्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने पीटा। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
9: सोशल मीडिया पर एक युवक को चप्पल से पीटे जाने का ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि लव जिहाद में फंसाने की कोशिश कर रहे एक बांग्लादेशी शख्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने पीटा। वायरल वीडियो 16 सेकंड का है जिसमें कुछ छात्राएं लोगों की मौजूदगी में गाड़ी में बैठे एक युवक को चप्पल से पीटती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो को एक्स पर एक यूजर ने शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि एक बांग्लादेशी जिहादी दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए झूठी सलाह दे रहा था, तब छात्राओं ने साहस दिखाया और उस जिहादी को रंगे हाथों पकड़ लिया और जूते चप्पलों से उसकी पिटाई की। इसके बाद उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा यह वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बताकर हिंदी कैप्शन के साथ एक्स पर भी शेयर किया गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ छात्राएं लोगों की मौजूदगी में गाड़ी में बैठे एक युवक को चप्पल से पीटती हुई नजर आ रही हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि लव जिहाद में फंसाने की कोशिश कर रहे एक बांग्लादेशी शख्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने पीटा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर भी किया जा रहा है। जी हां, ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो ये बांग्ला लगा। आप भी सुनिए इन आवाजों को। तो बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो रही है और सारी आवाजें बांग्ला में सुनाई दे रही हैं। ये कुछ अटपटा नहीं लग रहा। इसके अलावा फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो को लेकर इंटरनेट को खंगाला, लेकिन यहां पर भी दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई विश्वसनीय रिपोर्ट हमें नहीं मिली। क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ होता तो ये अपने आप में बड़ी खबर होती और कहीं ना कहीं ये खबर जरूर होती, लेकिन कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल ये निकल कर आया कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। कहीं कोई डेट या कहीं कोई जगह तो मेंशन है नहीं। और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को लव जिहाद का एंगल देकर लोगों के बीच वायरल तो नहीं किया जा रहा। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है।
9: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें एक बांग्ला न्यूज के यूट्यूब अकाउंट से 29 अप्रैल को अपलोड किया गया वीडियो मिला, जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद थे। वीडियो के साथ मौजूद डिस्क्रिप्शन में ढाका यूनिवर्सिटी जैसे हैशटैग मौजूद थे, जिसके अलावा बांग्ला टाइटल में भी लिखा था जिसका हिंदी अनुवाद है, ढाका विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में छात्रों ने आरोपी को जूते चप्पलों से पीटा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें एक और बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट के फेसबुक अकाउंट पर भी 26 अप्रैल 2026 को अपलोड किया गया ये वीडियो मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे ढाका यूनिवर्सिटी का ही बताया गया था। एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अपलोड किया गया ये वीडियो मिला। इस पोस्ट में मौजूद कैप्शन में वीडियो को ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बाद आरोपी को पीटे जाने का बताया गया है। एक बांग्लादेशी न्यूज वेबसाइट पर 26 अप्रैल को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यह घटना 26 अप्रैल को ढाका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ बिजनेस स्टडीज में घटी थी और इसकी पुष्टि सहायक डॉक्टर अली मोहम्मद कौसर ने भी की थी। डॉक्टर के अनुसार उक्त शख्स छात्राओं को देखकर अभद्र इशारे कर रहा था, जिसके बाद छात्रों ने पकड़कर उसे सामूहिक रूप से पीटना शुरू कर दिया। पीटने के बाद आरोपी शख्स को पुलिस को सौंप दिया गया। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की घटना का बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो असल में बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पकड़े गए आरोपी की पिटाई का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: फैक्ट चेक में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
10: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
11: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
12: Keep it on smooth jazz.
13: This is Roots Reggae.
14: Exclusively on TuneIn.
15: This is classic hip-hop.
16: Exclusively on TuneIn.
10: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
17: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, जब हम पेश करने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
18: दोस्त बनाने की कोशिश हो रही है, नाम पूछा जा रहा है। अब भला शुरुआत तो ऐसे ही होती है, पहले नाम तो पता चले फिर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन लगता है कि बात सामने वाले की समझ में नहीं आ रही, चेहरे पर कोई भाव नहीं, मानो को सुना ही नहीं इसने। लेकिन बच्चा जिस तरह से बछड़े से बात करने की कोशिश कर रहा है, वो लोगों का दिल चुरा रहा है। छोटे बच्चे को संभालना आसान काम थोड़े ही है, लेकिन इन्हें देखकर आप कहेंगे कि इतना भी मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे दिमाग लगाया है इन्होंने, काम में हाथ बटाने की जिम्मेदारी दे दी। बेचारा बच्चा कभी कपड़े को बाल्टी में तो कभी बाल्टी से जमीन पर, बस इधर उधर करने में व्यस्त है, और पापा का काम भी निपट गया। देखिए धुल गई बाई चकाचक, और बेबी भी खुश कि आज उन्होंने बड़ों वाला काम किया है, पापा का साथ जो निभाया है बाइक धुलने में। पापा की परी यूं ही नहीं होती बेटियां, देखिए जरा इनको, पापा धूप में बाइक चला रहे हैं, ऐसे में बच्ची उनके सिर पर मसाज कर रही है। नन्हे हाथों से एक छोटी सी कोशिश कि उसके पापा को सुकून मिल सके। छोटी बच्ची जिस तरह से अपने पापा का ख्याल रख रही है, वो लोगों का दिल छू रही है।
19: Why did you come to the police station?
18: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक छोटा बच्चा सीधे एक पुलिसकर्मी के पास पहुंचकर उसे रिंग के साथ प्रपोज कर देता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा बेहद कॉन्फिडेंस के साथ पुलिसकर्मी के सामने खड़ा होकर रिंग आगे बढ़ाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग बच्चे की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस बहुत कम लोगों में होता है। वहीं कई यूजर्स ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये बच्चा आखिर किसका है जिसने सीधे पुलिस वाली को ही प्रपोज कर दिया। हालांकि कुछ लोग इस वीडियो को एआई तकनीक की मदद से बनाने का दावा भी कर रहे हैं। माता पिता के लिए कुछ खास करने का सपना हर बच्चे का होता है, लेकिन जब वो सपना हकीकत बनता है तो वो पल बेहद भावुक कर देता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटे ने अपने माता पिता को ऐसा सरप्राइज दिया कि उनकी आंखें खुशी से भर आई। टेक प्रोफेशनल और कंटेंट क्रिएटर बेटे ने अपने माता पिता को सरप्राइज देने के लिए एक अनोखा प्लान बनाया। उन्होंने अपनी माँ को बताया कि वो पापा के लिए एक स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। माँ ने उन्हें चेतावनी भी दी कि पापा इतनी बड़ी खर्च पर नाराज हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि बेटा 1 से 1.5 लाख की स्कूटी खरीद रहा है। लेकिन असली सरप्राइज कुछ और ही था। सिद्धार्थ अपने माता पिता को पार्किंग एरिया में ले गए और पापा को एक चाबी थमा दी। जैसे ही उन्होंने बटन दबाया, सामने खड़ी BMW X1 की लाइट्स जल उठी। पहले तो माता पिता को समझ ही नहीं आया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उनकी खुशी और हैरानी देखने लायक थी। सोशल मीडिया पर डांस का ये वीडियो लाखों लोगों का दिल जीत रहा है। एक पिता और उसकी बेटी की ये जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो की सबसे खास बात ये है कि जिस अंदाज में ये मासूम हर बीट को समझकर परफॉर्म कर रही है, उसे देखकर लोग हैरान हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
3: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: पश्चिम बंगाल में आज से शुभेंदु अधिकारी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में शपथ, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद। देश के नए सीडीएस होंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएच राजा सुब्रमणि, हाथ में होगा तीनों सेना का कंट्रोल, वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान की लेंगे जगह। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख नियुक्त, 31 मई से शुरू होगा कार्यकाल, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माने जाते हैं विशेषज्ञ। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं भक्त। शकीरा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए ऑफिशियल सॉन्ग दाई दाई का फर्स्ट लुक आया नजर, नाइजीरियाई गायक बर्ना बॉय भी शामिल, 14 मई 2026 को पूरी तरह से होगा रिलीज।

नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा की, जहां रोज आस्था का नया कीर्तिमान बन रहा है। लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा बाबा बागेश्वर की हो रही है, जो बद्रीनाथ में 21 दिन की एकांत साधना में लीन है। श्रद्धालुओं के बीच मौजूद होने के बावजूद कोई उनके दर्शन नहीं कर पा रहा। इस वक्त बद्रीनाथ में धीरेन्द्र शास्त्री की विशेष साधना के क्या मायने हैं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा बद्री विशाल के धाम पर भक्ति का जन सैलाब भी दिखाएंगे। कठिन मौसम के बावजूद देश के कोने कोने से यहाँ लोगों का आना लगातार जारी है। क्या है महत्व भगवान विष्णु के इस धाम का, और क्यों अधिक मास में यहाँ पूजा आराधना अहम मानी जाती है, आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ चलेंगे केदार घाटी, जहां शिव भक्तों का जोश देखने लायक है। सरकार और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे इंतजामों पर भी आज चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं बाबा बागेश्वर से, जो इस साल भी बद्रीनाथ गए हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा उनके 21 दिन की विशेष साधना की हो रही है। 6 मई को बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ पहुंचे और अब अलकनंदा और ऋषिगंगा नदियों के तट पर मौजूद खाक चौक आश्रम में बने प्राचीन हनुमान मंदिर में कठिन साधना कर रहे हैं। भगवान विष्णु की तपोभूमि पर बाबा बागेश्वर की विशेष साधना इस वक्त क्यों हो रही है और इसका मकसद क्या है, आइए समझते हैं।

0: दिव्य दरबार न भक्तों की भरमार, छोड़ दुनिया के जंजाल, बाबा बागेश्वर भगवान विष्णु की तपोभूमि पर एकांत साधना में लीन है। समर्थकों को खबर है बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु भी उनकी मौजूदगी से वाकिफ हैं, मगर बद्रीनाथ में होते हुए भी बागेश्वर सरकार भीड़ से अलग है। न तो किसी से मुलाकात, न प्रवचन और न ही बद्री विशाल के दर्शन। बताया गया है कि खांक चौक अलकनंदा ऋषि गंगा के तट पर मौजूद इस आश्रम में वो साधना कर रहे हैं। बुधवार को बाबा बागेश्वर यहाँ पहुँचे और उसी दिन से आश्रम में उनकी साधना शुरू हुई जो 21 दिनों तक चलने वाली है।
1: हर कोई चाहता है बद्रीनाथ धाम में एक महीना जो अधिक मास का होता है, खासकर जो भगवान विष्णु से संबंधित है, तो इसमें बद्रीनाथ धाम में जब तब पूजा पाठ भागवत कथा अनेकों श्रवण करने का मौका मिलता है। ऐसे में खुद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे हनुमान कथा का आयोजन भी करेंगे। उसके बाद जब 21 दिनों की साधना पूरी हो जाएगी, क्योंकि 21 दिन का जो विशेष महत्व निकाला है वो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विशेष तौर पे बद्रीनाथ धाम में ही निकाला है। ऐसे में वो ऋषि गंगा और अलकनंदा के तट पर विराजमान है और यहीं पे जो नगर पंचायत द्वारा जो साधना कुटी बनाई है उनमें भी उनका हो सकता है कि साधना का कार्यक्रम हो, लेकिन अभी तक वो जो प्राचीन हनुमान मंदिर का जो आश्रम है वहीं पे मौजूद है। और आने वाले धीरे धीरे जो दिन बीतेंगे उसके बाद हनुमान कथा का आयोजन यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार करेंगे।
0: बद्रीनाथ से बागेश्वर सरकार का आध्यात्मिक जुड़ाव पुराना है। पिछले 3 वर्षों से वो धाम पर आते रहे हैं, कथा कहानी भी सुनाते रहे हैं। लेकिन इस साल जब छतरपुर से धीरेन्द्र शास्त्री चले तो साफ कर दिया कि यात्रा का विशेष मकसद है।
2: आराम पागलो, अपना ख्याल रखना, आनंद में रहना। साधना का मतलब है स्वयं को साधना, मन को साधना, इंद्रियों को साधना। स्वयं को साधोगे तभी तो दुनिया को साध पाओगे। एक महीना की यात्रा है, 21 दिन हम साधना करेंगे, फिर 5 दिन 26 मई से 30 मई तक वही बद्रीनाथ में कथा कहेंगे। हमारी साधना पहाड़ों पर है, हमें आशीर्वाद दो, हमारी साधना सफल हो गए, मनोरथ पूरा हो गए। हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन के उत्थान के लिए हम ये साधना करने जा रहे हैं। और जो हमारे शुभ चिंतक है, और कुछ हमारे ऐसे भी शुभ चिंतक है जो हमारा सुख देखकर चिंता में पड़ जाते हैं, उनको एक महीना शांति है, तो तुम भी आशीर्वाद दो कि हमारी साधना सफल हो गए।
0: पहले भी जब बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ धाम आए हैं, सबसे पहले खांक चौक आश्रम में पहुँचते हैं जहाँ उनके गुरु भाई बालकनाथ महाराज योगेश्वर दास महाराज का आश्रम है। इसी आश्रम में प्राचीन हनुमान मंदिर मौजूद है जहाँ वो नियम से दर्शन पूजन करते हैं।
3: हमें मंदिर के अगर दर्शन नहीं भी हो तो याद रखना शिखर के दर्शन करना चाहिए। भगवान के दर्शन ना हो गए, शिखर के दर्शन कर लो, वहां की भूमि को प्रणाम कर लो। और जब दर्शन करने जाओ तो सेल्फी में मत पड़ो, फोटो अच्छी आ रही कि नहीं, भगवान को माला चढ़ी कि नहीं, तुम्हारा आधा दिमाग तो इसी में खराब रहता है।
0: इसी आश्रम में बाबा बागेश्वर विशेष ध्यान साधना में लीन है। लक्ष्य है स्वयं को साधना, स्वयं को समझना, नई ऊर्जा प्राप्त करना ताकि सनातन और देश के लिए बड़ा काम कर सके। ये जानते हुए भी कि बाबा बागेश्वर किसी से नहीं मिलेंगे, आश्रम के बाहर श्रद्धालु जमा है, सभी उनके दर्शन के लिए बेताब हैं, पर कुछ हासिल नहीं। हाँ, 21 दिनों के बाद वो यहीं पर हनुमान कथा का आयोजन जरूर करेंगे। 26 से 30 मई तक हजारों की तादाद में जुटने वाले समर्थकों और श्रद्धालुओं से मुलाकात भी होगी।
3: हमका जो भगवान के यहाँ भी ये कहें कि हमने भी पैसा दिए हैं, इन्हें तो मंदिर में भी घुसा दो तब भी भगवान दिखने वाला नहीं है। अंदर भी गर्भगृह में कर दो भगवान दिखने वाला। दर्शन का नियम विनम्रता पहला नियम, वहां दूसरा नियम हम झगड़ने ना जाएं। मंदिर के दर्शन हमें झगड़ना नहीं, विनम्रता, कोई गाली भी दे दे सहज बस स्वीकार कर लो। मंदिर के दर्शन का तीसरा नियम हमको प्रदर्शन नहीं करना, बहुत ध्यान रखना। और तीसरे नियम में यह भी याद रखना कि हमारे दर्शन करते समय किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है।
0: बाबा बागेश्वर की बद्रीनाथ यात्रा और ये साधना इसलिए चर्चा में है क्योंकि पहली बार वो इतने लंबे समय के लिए एकांत में गए हैं। अब सवाल ये है कि साधना के लिए बद्रीनाथ ही क्यों?

0: सीधा संबंध बद्री विशाल से माना जाता है और पूजा आराधना और साधना के लिए यह समय सबसे उपयुक्त माना जाता है।
1: अधिक मास भजन पूजन कथा श्रवण के लिए होता है, इसमें शादी ब्याह नहीं होते हैं, इसमें शेष कर्म नहीं होते हैं। अधिक मास माने असंक्रांति मास हो द्विमास स्फुटस्यात्, जिसमें संक्रांति न हो, ऐसा चंद्रमान का मास अधिक मास कहलाता है। वो अधिक मास इस समय है और मई आधे यानी 15 मई से और 15 जून तक लगभग ये मास रहेगा। इसमें धर्म कर्म होते हैं। वस्तु ये मास मल मास कहते हैं, मल माने अपवित्र वस्तु, मल माने अपवित्र चीज, इसका नाम मल मास आया। ये भगवान विष्णु के शरण में गया, स्वयं बद्रीनाथ जी के शरण में मल मास आया है और कहा बाबा मुझे तो लोग मल कहते हैं, मुझे अपवित्र चीज कहते हैं, मैं और दुनिया में रहने लायक नहीं हूँ, मैं तो नरक हो गया मेरे को। भगवान ने अपने शरणों में लिया। इत्युक्ता बद्रीनाथो, भगवान के पास गया, भगवान ने उसे कथा सुनाई और कथा प्रत्येक दिन एक दिन की एक कथा, 30 दिन की 30 कथा श्री बद्रीनाथ उवाच, यहाँ से प्रारंभ होती है। इत्युक्ता बद्रीनाथो बिरराम महामुनि, यहाँ तक भगवान एक दिन कथा बोलते, 2 दिन कथा बोलते, ऐसे चतुर्मास की कथा, ये ऐसा अधिक मास की कथा में आया है। 30 दिन की कथा सुनी, मास पवित्र हो गया। भगवान ने कहा कि तुम्हें लोग मल मास कहते हैं, अपवित्र कहते हैं, नहीं, आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा, मेरे नाम से तुम्हारा नाम चलेगा, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और भगवान के सानिध्य हो जाना पुरुषोत्तम मास में बहुत लाभ की बात होती है। भगवान की कथा सुन लेना पुरुषोत्तम मास की, भागवत की या शिव पुराण की ये कथा सुन लेना, बड़े लाभ की बात समझते हैं।
0: बद्रीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में फिर से नहीं आना पड़ता, ऐसी मान्यता जुड़ी है इस पावन भूमि से। विष्णु जी की तपस्या के कारण ही इस जगह का नाम बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ पड़ा। पौराणिक कथा के मुताबिक जब विष्णु जी तपस्या कर रहे थे तब कठोर मौसम से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री यानी कि बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया और तब भगवान विष्णु ने इस जगह का नाम बद्रिकाश्रम रखा। कथा ये भी है कि इसी जगह पर पहले भगवान विष्णु का वास था, पर तपस्या के लिए भगवान विष्णु ने बालक रूप धारण करके माता पार्वती से ये जगह मांग ली, शिव केदार चले गए और ये पावन भूमि विष्णु का धाम हो गई। बद्रीनाथ में नर और नारायण नाम के 2 पर्वत हैं। कहते हैं कि यहीं पर विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। तब तपस्या आराधना और साधना की इसी पवित्र भूमि पर बाबा बागेश्वर मौजूद हैं और एकांत में विशेष साधना कर रहे हैं। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बद्रीनाथ की पावन भूमि हमेशा से साधु संतों और सन्यासियों के लिए साधना और आराधना की जगह रही है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद ये धाम आध्यात्मिक तौर पर तो अहम है ही, प्राकृतिक रूप से भी बेहद खूबसूरत है। इसीलिए हर साल देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। इस साल भी कठिन मौसम के बावजूद हर रोज करीब 15,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो चलिए आपको भी बद्री विशाल के दरबार का दर्शन करवाते हैं।

बद्री विशाल के धाम पर आस्था का सैलाब है। यात्रा शुरू हुए 2 हफ्ते हुए हैं और श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2 लाख पार जा चुका है। सड़कों पर गाड़ियों की कतार है तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बेशक मौसम की चुनौतियां हैं, बेहद कम तापमान और बारिश की वजह से मुश्किलें हैं, लेकिन बद्री विशाल से जुड़ी श्रद्धा ऐसी है कि किसी भी दिन तादाद जरा भी कम नहीं होती।

0: आज हम बद्रीनाथ जा रहे हैं।
1: सिर्फ बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि यात्रा मार्ग के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने से पहले या बाद में लोग जोशीमठ के नृसिंह मंदिर पहुंच रहे हैं।

0: हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ।
1: नाथ धाम हमारा हो गया, व्यवस्था सारी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, रोड्स वगैरह सारी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, ऊपर बद्रीनाथ धाम पे भी बहुत ऑर्गेनाइज था।
2: मदुरई से हूँ तमिलनाडु, तीर्थ यात्रा के साथ आया हुआ है, वो फंटास्टिक यात्रा टीम है। हम पूरा गंगोत्री यमुनोत्री पहले ऋषिकेश आया, देन यमुनोत्री देखा, गंगोत्री देखा, देन केदारनाथ पूरा। यस्टरडे मैं तुंगनाथ तक जी होके आया।

0: वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत ठंडा है केदारनाथ में, तो बहुत अच्छा है। 12 डेज का यात्रा है, वेरी गुड, वेरी नाइस।
1: हम लोग जयपुर से आए हैं, राजस्थान से, और सिर्फ बद्रीनाथ ही जाने के लिए आए थे। अब वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा व्यू है और बहुत अच्छा एक देखने लायक सब कुछ, बहुत अच्छा लगा।
2: मौसम खराब था?
1: नहीं, यहाँ बहुत अच्छा, हमें अच्छा मौसम मिला, बिल्कुल कहीं भी खराब नहीं मिला। और मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी जो आती हैं यहाँ, कहीं भी धार्मिक स्थान पे जाओ आप।
3: नीचे बारिश हो रही थी, ऊपर स्नोफॉल हो रही थी, स्नोफॉल के टाइम पे पहुंचे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अगले दिन सुबह दर्शन करके हम लगभग 8 घंटे में वापस आए। रात आके हम गुप्तकाशी में रुके और उसके बाद बहुत अच्छा ट्रिप रहा।
4: भक्त देश के कोने कोने से आए हैं, गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं और अभी तो सिलसिला शुरू हुआ। माना जा रहा है कि मई में जब स्कूलों की छुट्टियां होंगी, बड़ी तादाद में श्रद्धालु बद्रीनाथ का रुख करेंगे। अभी भी बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड से लेकर ब्रह्म कपाल तक श्रद्धालुओं का तांता लगा है।
5: अब देखने को मिल रहा है वही बद्रीनाथ धाम में, अब तक 2 सप्ताह का समय हो चुका है, 2 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। जहां 2 सप्ताह का समय हो चुका है वहीं अब धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या 17,000 के पार होने लगी है। ऐसे में दिन प्रतिदिन, क्योंकि अब मई का महीना शुरू हो गया है, मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रचंड दौर देखने को मिलेगा, वहीं पहाड़ों में ठंड हो रही है। ऐसे में अब श्रद्धालुओं की संख्या भी जो है बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ और तमाम जगहों पर जो चारधाम या मार्ग हैं, ये चारधाम हैं, वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई देखी जा सकती है। श्रद्धालु आ रहे हैं बाबा बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ, हर जगह दर्शनों के लिए जो अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। ऐसे में हर तरफ इस समय उत्साह जो है चारधाम यात्रा मार्ग का, चाहे वो ढाबे हो या फिर होटल हो, हर कोई उत्साहित है क्योंकि हर तरफ अब श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। जो यात्री हैं वो बद्रीनाथ धाम और सिर्फ धामों में ही नहीं बल्कि जो यात्रा मार्गों के मंदिर हैं, तमाम मंदिरों में, चाहे शीतकालीन हो या फिर ग्रीष्मकालीन हो या अलग मंदिर हो, उन जगहों पर भी इस समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई उत्साहित है इस बार सुगम यात्रा और आसान दर्शन जो यात्रियों को हो रहे हैं वो बेहद आनंददायक है। मौसम लगातार करवट बदल रहा है, ठंड है, बारिश है, बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, लेकिन यात्रियों की आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई किसी के चेहरे पे थोड़ी सी भी नाराजगी दिखाई नहीं दे रही है। हर कोई उत्साहित होकर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच रहा है।
4: मौसम की चुनौतियों का सामना करते हुए यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराना आसान काम नहीं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मंदिर से जुड़े लोग भी श्रद्धालुओं की सहायता के लिए हर पल तैयार हैं।
6: में 2 लाख से अधिक लोग अभी 2 हफ्ते में आ चुके हैं, यानी यात्रा स्वयं में, और साथ ही व्यवस्थाएं भी ठीक है। मौसम यद्यपि बहुत अनुकूल नहीं, लगभग 3-4 दिन से देख रहे हैं अनुकूल नहीं है, लेकिन यात्रा चकाचक चल रही है, बहुत सुंदर चल रही है, रास्ते में कहीं गड़बड़ी नहीं, रास्ते भी ठीक हैं। विशेष रूप से मैं तो बद्रीनाथ के बारे में कहूं कि जो भी लोग आ रहे हैं दर्शन करके ही लौट रहे हैं, कोई ऐसा नहीं बिना दर्शन के तकलीफ में आया हो। यहाँ तक कि जो लोग अस्वस्थता के कारण या सांस के कारण बद्रीनाथ नहीं रुकते हैं, जोशीमठ, पौंडकेश्वर या पीपलकोटी रुक रहे हैं, वो लोग भी पीपलकोटी या जोशीमठ से बद्रीनाथ दर्शन करके शाम को वापस लौट पा रहे हैं और दर्शन करके प्रसन्न मुद्रा में आ रहे हैं। मैं समझता हूँ व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है और लोग दर्शन भी बड़े सुंदर से कर रहे हैं।
4: बद्रीनाथ धाम पर सुविधाओं के साथ फोकस साफ सफाई पर भी है। यात्रा के 2 हफ्ते पूरे होने के बाद ITBP माड़ा की तरफ से बद्रीनाथ धाम में सफाई अभियान चलाया गया। जवान तप्त कुंड से लेकर ब्रह्म कपाट तक अलकनंदा नदी के तटों की सफाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी धाम के सभी जगहों से कूड़े को उठाया जा रहा है। चमोली से कमल नैन सिलोड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: उम्मीद के मुताबिक ही बद्रीनाथ और केदार घाटी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। करीब दो हफ्ते में ही यात्रियों की तादाद 9 लाख के आसपास हो चुकी है और सबसे ज्यादा भीड़ बाबा केदार के दरबार में है। हालांकि बर्फबारी और बारिश की वजह से केदारनाथ की यात्रा उतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सरकार और प्रशासन भी यात्रियों के लिए सुविधा मुहैया कराने में दिन रात जुटे हैं।
1: आस्था, भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच शिव भक्ति के रंग। श्रद्धालु की भरमार, पहाड़ों की बदली रंगत। देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के साथ पूरा हिमालयी क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आ रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए देवभूमि पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था ने इस यात्रा को एक महोत्सव में बदल दिया है और खास बात यह है कि इस बार उत्तराखंड का मौसम भी श्रद्धालुओं का पूरा साथ देता नजर आ रहा है। साफ आसमान, ठंडी हवाएं और मनमोहक वादियां यात्रियों के सफर को और भी सुखद बना रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो हर रोज 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यमुनोत्री धाम में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माँ यमुना का आशीर्वाद ले चुके हैं, तो वहीं गंगोत्री धाम में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माँ गंगोत्री धाम पहुंचकर मत्था टेक चुके हैं और केदारनाथ धाम में करीब 4 लाख श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं और बद्रीनाथ धाम में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन का पुण्य कमा चुके हैं। चार धाम यात्रा में कुल श्रद्धालुओं की बात की जाए तो करीब 9 लाख श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं।
2: हाल के दिनों में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण टेम्परेचर काफी कम हुआ है और लोगों को मौसम के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में हमारा जो आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ से पूरे रूट की मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर लैंडस्लाइड की संभावना है, यदि है तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं जेसीबी इत्यादि वो डिप्लॉयड हैं कि नहीं है। साथ ही जो हमारे ट्रैक रूट है उसको सेक्टर्स में बांटा गया है, वहाँ पर हमारे सेक्टर ऑफिसर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और मंदिर परिसर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी कैमरे के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। हमारी टीम्स भी लगी हुई हैं, सेक्टर ऑफिसर्स वहाँ पर भी डिप्लॉयड हैं। तो जो हमारे चिकित्सा विभाग है, जो हमारे निर्माण विभाग है, वो सभी मिलकर के एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर यात्रा को अस्थायी रूप से घंटे दो घंटे के लिए रोका भी जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगह पर रोका जाता है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचाया जा सके।
1: केदारनाथ में भक्तों में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार के 2 बार दर्शन कर चुके हैं और आज जब सीएम केदार धाम पहुंचे तो वहां उन्होंने पहले बाबा केदार के दर्शन किए, पूजा पाठ किया और फिर यात्रियों के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल का लोकार्पण किया। रुद्रप्रयाग में यात्रा मार्ग पर अस्पताल बनने से काफी मदद मिलेगी। दरअसल यात्रा मार्ग पर चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य जाँच केंद्रों, ऑक्सीजन सुविधाओं एवं आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
3: प्रत्येक दिन 20,000 से कम श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुंचे। लगभग मुझे लगता है कि 22 तारीख को कपाट खुले थे और 22 तारीख से लगभग 4 लाख का ये आंकड़ा हमारा यहाँ पहुंचने वाला है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
1: जाहिर है देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों आस्था अपने चरम पर है। हरिद्वार से लेकर केदार घाटी तक हर तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें हैं तो वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव और जय बद्री विशाल के जयकारों से पूरी वादियां भक्तिमय माहौल में डूबी हुई हैं और ये उत्सव केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं स्थानीय लोगों के लिए भी खुशियों की सौगात लेकर आया है। बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुँचने से स्थानीय लोगों का कारोबार भी रफ्तार पकड़ने लगा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: हमारे इस विशेष बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
9: सूर्य देव के राशि परिवर्तन से राजनीतिक हलचल बढ़ने वाली है. क्या सूर्य देव का इस बार का राशि परिवर्तन किसी बड़ी दुर्घटना की सूचना दे रहा है? क्या सूर्य देव का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर अच्छा और बुरा असर डालने वाला है? क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का चक्र, जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: छोटे बच्चे का मल जिस प्रकार माताएं हाथ से साफ करती हैं, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारी कमियों को अपनी जीभ से साफ करता है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, भक्तमाल के ग्रंथ में ये वर्णन आया है। इसलिए हमारी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई तुम्हें भला बुरा कहे ना, टेंशन में मत रहा कर।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
3: Thank God I get to wake up.
2: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
5: You're listening to CNBC.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
7: Keep it on smooth jazz.
8: This is Roots Reggae.
9: Exclusively on TuneIn.
10: This is classic hip-hop.
11: Exclusively on TuneIn.
4: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
12: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
15: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
16: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता माखनलाल का किया सम्मान, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। देश के नए सीडीएस होंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजसुब्रमण्यम, हाथ में होगा तीनों सेना का कंट्रोल, वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान की लेंगे जगह। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख नियुक्त, 31 मई से शुरू होगा कार्यकाल। कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माने जाते हैं विशेषज्ञ। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं भक्त। प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रकृतिवादी और ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबरो ने मनाया 100वां जन्मदिन। पिकाडिल सर्कस में विशेष लाइट शो से दी गई शुभकामनाएं, दुनिया भर से मिल रही है बधाई।
14: एनईसीसी संडे हो या मंडे, रोज खावंडे।
17: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अपनी राशि कुछ दिनों में बदलने वाले हैं और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अगले एक महीने तक हम सबके जीवन पर गहरा असर डालने वाला है। तो आज हम ये जानेंगे कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है और अलग अलग राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है? सप्ताह का मंत्र है ए ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते, ए ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः, अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः। जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं और सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो जल चढ़ाने के बाद 3 बार कम से कम ये श्लोक पढ़िएगा। ए ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः। अगर जल चढ़ाने के बाद 3 बार ये श्लोक सूर्य देव के सामने पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहेगी। देखिए सूर्य देव हर महीने में अपनी राशि बदल लेते हैं, कुल 12 राशियां हैं तो हर महीने में एक राशि बदलते हैं और साल भर में 12 बार अपनी राशि बदल लेते हैं। अब ये जो सूर्य देव का राशि परिवर्तन है इसकी पूरी स्थिति क्या है? देखिए सूर्य देव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, प्रातः काल प्रवेश करेंगे, यानी 15 मई को वृषभ संक्रांति है। सूर्य देव जिस समय प्रातः काल वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं उस समय वृषभ लग्न का ही उदय हो रहा है। लगभग सूर्योदय के आसपास सूर्य देव प्रवेश कर रहे हैं, उस समय वृष लग्न का उदय हो रहा है। राशि परिवर्तन के समय सूर्य बुध के साथ लग्न में विद्यमान होंगे। 15 मई को जब सूर्य देव वृषभ में प्रवेश करेंगे तो वो बुध के साथ वृष लग्न में आ जाएंगे। शनि देव पहले से मीन राशि में बैठे हुए हैं तो शनि देव की अब 15 तारीख से सूर्य पर दृष्टि पड़ने लगेगी। सूर्य एक तो भैया बुध के साथ हो जाएंगे और दूसरा सूर्य केंद्र में राहु केतु से आ जाएंगे। राहु जो हैं वो कुंभ में हैं, केतु जो हैं वो सिंह में हैं। तो आप देखिए कि सूर्य बुध के साथ शनि की दृष्टि, राहु और केतु का केंद्रीय प्रभाव सूर्य के ऊपर बन जाएगा। सूर्य का मतलब होता है राजनीति, शासन, नेतृत्व। इसीलिए ये जो एक महीना है ना 15 मई से 15 जून वाला, इसमें राजनैतिक रूप से बहुत बड़े उतार चढ़ाव देश दुनिया में दिखाई देंगे क्योंकि लोकतंत्र का मालिक शनि, राज्य का मालिक सूर्य, दोनों का संबंध बनना अगले एक महीने तक राजनीति में बड़े उतार चढ़ाव का कारण बनेगा। और इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर अलग अलग राशियों पर लगभग एक महीने तक प्रभाव बना रहेगा। तो ये जो राशि परिवर्तन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में चुनावी युद्ध की राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं और इस समय में सूर्य शनि का संबंध राजनीति में जबरदस्त चमत्कारी परिणाम दिखा सकता है। अब सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन 15 मई को होने जा रहा है या 15 मई को होगा, इस राशि परिवर्तन का सामान्य प्रभाव क्या होगा वो भी जानते हैं। देखिए वृषभ राशि जो है ना, जहां सूर्य जा रहे हैं, जहां शनि का प्रभाव है, जहां बुध विद्यमान है, ये जो वृष राशि है ना, ये पैसे की राशि है, फाइनेंशियल राशि मानी जाती है। इसका फाइनेंस से, धन से बड़ा गहरा लेना देना है, इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट में, बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव घट सकता है, बड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। मूल्यवान धातुओं के मूल्य में भी इस समय उतार चढ़ाव की संभावनाएं बन जाएंगी। लोगों के स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा होंगी और खास तौर से ज्यादा लोगों को चोट लगेगी, ज्यादा लोगों को हड्डियों की और आंखों की दिक्कत इस समय परेशान कर सकती है। रोगों के मामलों में वृद्धि हो सकती है। वैसे एक बात मैं बता दूं कि रोग तो बढ़ेंगे, मौसम भी बार बार करवट लेगा। शुक्र की राशि में सूर्य, वहां बुध का पाया जाना और शनि का प्रभाव, ये मौसम में भी उतार चढ़ाव दिखा सकता है। कभी प्रचंड गर्मी और कभी भयंकर आंधी तूफान और बरसात। तो चूंकि मौसम बार बार ऊपर नीचे होगा, इसलिए लोगों के बीमारियों के मामलों में वृद्धि हो सकती है। वायरल फीवर, सर्दी जुखाम, ये लोगों को परेशान कर सकता है। राजनैतिक रूप से पूरी दुनिया में, और अगर भारत की बात करें तो भारत में भी बड़े परिवर्तन राजनैतिक हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों की कुर्सियां जा सकती हैं और जो बहुत सारे लोग सत्ता की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उनकी उम्मीद पर पानी फिर सकता है। तो राजनैतिक रूप से ये समय बड़े परिवर्तनों का और बड़े उतार चढ़ाव का हो सकता है। सामान्य आदमी को सलाह दी जाएगी कि इस समय गाड़ी चलाने के मामले में और आग के कार्यों में, वाहन चलाने में और अग्नि के कार्यों में इस समय विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अगला एक महीना लापरवाही करने पर पैसे का बड़ा नुकसान करवा सकता है और धन की एकदम से आपको हानि हो सकती है, दुर्घटना जीवन में घट सकती है। तो अलग अलग राशियों पर भी सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अगले एक महीने तक अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताते हैं कि अलग अलग राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा और अलग अलग राशि के लोग अगले एक महीने तक नियमित रूप से कौन सा उपाय करें ताकि सूर्य देव का राशि परिवर्तन उनके लिए नकारात्मक यानी निगेटिव ना हो। मेष राशि की बात करें देखिए, अगर आपकी राशि मेष है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। इस समय सेहत को लेकर के सतर्क रहें। आंखों की दिक्कतें, सर दर्द की समस्या, सर में चोट जैसी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। पैसे रुपए के लेन देन में, पैसा रुपया लगाने में, इन्वेस्टमेंट करने में बड़ी सावधानी रखिएगा। इस समय लापरवाही से पैसे रुपए का बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक मामलों में सावधान रहें। इस समय अगर आप कोई परिवर्तन का निर्णय लेते हैं या अचानक से जीवन में कोई परिवर्तन अपने आप हो जाता है तो इस समय का परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। क्या उपाय करेंगे मेष राशि के लोग? अगले एक महीने तक रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन आपको कहीं से भी दिक्कतें नहीं देगा। वृषभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन वृषभ में ही होने जा रहा है, तो वृषभ वालों को बता दें कि आपकी प्रॉपर्टी की समस्या, आपकी संपत्ति की समस्या इस समय हल हो सकती है। हो सकता है कोई नई संपत्ति खरीदें या प्रॉपर्टी में किराएदार आने वाले हों वो आ जाएं, या आप प्रॉपर्टी बेच लें। आपकी प्रॉपर्टी की संपत्ति की जो समस्या है वो इस समय हल होगी। लेकिन इस समय आपको रेगुलर सरदर्द रह सकता है, सर के पिछले हिस्से में, गर्दन में, पीठ में दर्द हो सकता है और आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। परिवार में अगले एक महीने में कृपा करके शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि इस समय में पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। खास तौर से पति पत्नी के संबंधों में, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी राशि वृषभ है और आप अगले एक महीने तक मुश्किलों से बचे रहना चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्य मंत्र का जप करिएगा। रोज सवेरे उठकर स्नान करके 108 बार सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। अगर आप ऐसा अगले एक महीने तक करें तो बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। मिथुन राशि, धन का मामला, कर्ज का मामला आपको परेशान करेगा। धन को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे और पुराने कर्ज, पुरानी जिम्मेदारियों को चुकाने में आपका पैसा काफी खर्च होगा, तो धन और कर्ज के मामले आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय अगर आपको लंबी यात्रा पर जाना है, 15 मई से लेके 15 जून के बीच में, तो सोच समझकर यात्रा करिएगा। जो कठिन यात्रा हो या जिस यात्रा में रिस्क हो ऐसी यात्रा इस समय मत करिएगा, सोच समझ कर यात्रा करिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है, और अगर मिथुन राशि वाले कोई चेंज ऑफ प्लेस करते हैं या इस समय चेंज ऑफ प्लेस हो जाता है तो ये उनके लिए कुल मिला जुला कर अच्छा रहेगा। चेंज ऑफ प्लेस करने में आपके लिए दिक्कतें नहीं हैं। बड़े नुकसान से आपको बचना है, सूर्य के राशि परिवर्तन की मुश्किलों को कम करना है तो हर रविवार को गुड़ का दान करिएगा। हर रविवार को निर्धन व्यक्ति को या तो गुड़ का दान करें या नियमित रूप से हर रविवार को गाय को गुड़ खिलाइएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है, लाभकारी दिख रहा है। अगर कर्क वाले इस समय कोशिश करें तो आपके तमाम रुके हुए काम, खास तौर से करियर का काम, पैसे का काम आपका पूरा होगा, आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। करियर में सकारात्मक बदलाव हो सकता है, करियर में नया मौका मिल सकता है, करियर में बड़ा पद मिल सकता है, पैसे का फायदा हो सकता है, करियर में बड़े लाभ का समय है और निरंतर आपके पास पैसा आता जाएगा। फंसा हुआ, डूबा हुआ, रुका हुआ पैसा निरंतर आपके पास आता जाएगा, आपकी आर्थिक समस्याएं हल होती चली जाएंगी। देखिए, कर्क वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन कुल मिला जुला के अच्छा है। आप ऐसा करिएगा, लाल रंग का प्रयोग थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। अगर आपकी राशि कर्क है तो एक लाल रुमाल अपने साथ में रखना शुरू कर दें और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ा के केवल प्रार्थना करिए कृपा करने की। अगर इतना कर्क वाले नियमित रूप से करने लगे तो इस एक महीने में अपनी बहुत सारी मुश्किलों को हल कर ले जाएंगे। सिंह राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है, आपके लिए कुल मिला जुला के अच्छा दिख रहा है, इसीलिए सिंह राशि वालों को करियर में इस समय सफलता मिलेगी, करियर में लाभ होगा। पिछले दिनों काम को और करियर को लेकर जो तनाव चला आ रहा था वो तनाव दूर होगा, करियर में लाभ होगा। पिछले दिनों काम को और करियर को लेकर जो तनाव चला आ रहा था वो तनाव दूर होगा। स्वास्थ्य की स्थिति, मन की स्थिति लगातार अच्छी होगी, स्वास्थ्य लगातार आपका अच्छा होता जाएगा, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होगा। इस समय आगे बढ़ करके साहस के साथ अपना काम करने का प्रयास करिए, आपको लाभ होगा और आपके शत्रु और तमाम विरोधी इस समय परास्त होंगे। अगर कोई मुकदमा है, वाद विवाद है, झगड़ा झंझट है, इस समय निपटाने का प्रयास करिए, आपको फायदा होगा। पूरा लाभ उठाने के लिए अगले एक महीने में आपको लाभ हो, आपको सफलता मिले, इसके लिए सूर्य देव को जल अर्पित करना शुरू करिएगा। अगला एक महीना आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि। कन्या वालों को इस समय दुर्घटनाओं से बहुत सावधान रहना है। चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, बैंडेज करवाना पड़ सकता है। चोट चपेट और दुर्घटनाओं से अगले एक महीने तक बचिएगा। संतान के करियर को लेकर, संतान के जीवन को लेकर, संतान के स्वास्थ्य को लेकर इस समय आपको समस्याएं हो सकती हैं, ये संभावनाएं बन रही हैं। संतान पक्ष पर ध्यान देना शुरू करिए। करियर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। करियर में इस समय कोई भी जोखिम, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। बिना सोचे विचारे नौकरी बदल लेंगे, अगर बिना सोचे विचारे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, व्यापार में पैसा लगा देंगे एकदम से, तो पैसा डूब जाएगा। इसलिए करियर में इस समय कोई भी जोखिम ना लें। हर रविवार को अगर आप गुड़ का दान करना शुरू कर दें तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बचेंगे। हर रविवार को गुड़ का दान करें या गाय को अगर गुड़ खिलाएं तो काफी बेहतर होगा। तुला राशि की बात करें, देखिए तुला राशि वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन विशेष नकारात्मक है, ज्यादा निगेटिव है। तुला वाले इस समय अपने करियर को लेकर और अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहेंगे। करियर में कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा वरना बड़ी मुश्किल आएगी, और स्वास्थ्य के मामले में कोई लापरवाही मत करिएगा। चोट चपेट, दुर्घटना और आंखों की समस्या का ध्यान दीजिएगा। पुरानी समस्याएं जो नौकरी की हैं, करियर की हैं, वाद विवाद की हैं, वो दोबारा आ सकती हैं और दोबारा आपको परेशान कर सकती हैं। दोबारा से गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पुरानी समस्याओं को मत बुलाइए। पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा, खास तौर से पति पत्नी का ध्यान रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। पति पत्नी अपने रिश्तों का बहुत ध्यान देंगे क्योंकि वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं, और पिता और बड़े भाई के सेहत में भी इस समय दिक्कत आ सकती है, उसका ध्यान बनाए रखिएगा। ये जो एक महीने का कठिन समय है ये आसानी से निकल जाए, आसानी से बीत जाए, इसके लिए क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान के मंत्र का जप करिएगा। रोज सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान करके सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह जप करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वृश्चिक राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए थोड़ी सावधानियों की सूचना दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों को मैं कहूंगा कि अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप कारोबारी हैं, तो अपने व्यापार का ध्यान दीजिएगा। इस समय व्यापार में कोई रिस्क मत लीजिएगा, व्यापार आराम से चलने दें, व्यापार में झगड़े विवाद और रिस्क से बचिएगा। अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान बनाए रखिएगा, मैरिटल लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। और वृश्चिक राशि के वो लोग जिनका कोई प्रेम चल रहा है, जिनका कोई लव अफेयर चल रहा है, वहां पर उनके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए वृश्चिक वाले इस समय ध्यान दें कारोबार में, प्रेम में, रिश्तों में, पड़ोसी के साथ, ऑफिस में बेवजह के विवाद ना हो, क्योंकि वृश्चिक वालों का दिमाग थोड़ा गर्म रह सकता है, थोड़ा एग्रेशन बढ़ सकता है, उसका ध्यान दीजिए। खान पान को लेकर के सतर्कता बनाए रखिएगा, क्योंकि डाइजेशन को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ज्यादातर एसिडिटी की और कॉन्स्टिपेशन की समस्या परेशान कर सकती है। क्या उपाय करेंगे? अगले एक महीने तक रविवार को गुड़ का या गेहूं का या आटे का दान करिए। किसी एक चीज का करेंगे तो भी काम चलेगा, नहीं तो गुड़ और गेहूं का दान करिए या आटे का एक पैकेट खरीदिए, किसी गरीब आदमी को रविवार को दिन के समय में दे दीजिएगा। अगले एक महीने में 4-5 रविवार जो भी पड़ते हैं, उतने रविवार को आप आटे या गुड़ का दान करिएगा, मुश्किलों से बचे रहेंगे। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है। और धनु राशि वालों को बता दूं कि अगर इस एक महीने में आप कोशिश करें तो आपको करियर के मामले में और धन के मामले में काफी सफलता मिलेगी, आपका करियर बेहतर होगा, आपको निरंतर धन की प्राप्ति होगी, करियर

राशि वालों को करनी चाहिए। धनु राशि वालों के मनचाहे स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धनु वालों का मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है सही जगह पर। लाभ के साथ करियर में परिवर्तन आ सकता है। और जो लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे, जो आपके शत्रु और विरोधी हैं, इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। इस समय नियमित रूप से अपने कंठ पर या अपने माथे पर रोज सुबह नहाने के बाद कुमकुम का या रोली का लाल तिलक लगाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा एक महीने तक अलर्ट रहिए। खान पान का, डाइजेशन का, अपने पेट का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का, विशेषकर पाचन तंत्र का, डाइजेशन का बहुत ध्यान रखें। पेट से संबंधित दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। इस समय चोट लग सकती है, पैरों में चोट आ सकती है।

करियर में कोई रिस्क लेना, कोई बदलाव करना आगे चल करके आपको मुसीबत में डाल सकता है। मकर वाले अगर लापरवाही ना करें, थोड़ी सावधानी से रहें, तो एवरेज समय है, इस समय से बाहर आ जाएंगे। लेकिन डाइजेशन के मामले में, खान पान के मामले में सावधानी बनाए रखेंगे। रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, प्रेशर बहुत है, 7.5 भी उतर रही है, मेंटल प्रेशर भी दिख रहा है, और उसी में सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए फेवरेबल नहीं है। नतीजा यह है कि आपका क्रोध बढ़ सकता है, आप क्रोधी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, क्रोध में किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्रभु अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, तो बहुत मेहनत करिए, क्योंकि जरा सी चूक से आपको असफलता मिल सकती है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की जो छोटी छोटी समस्याएं भी हैं, उन मामलों में लापरवाही मत करिएगा। हड्डियों, नसों, सर दर्द, शरीर दर्द, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। रोज सवेरे सूर्य मंत्र का जप करें, नित्य प्रातः उठ करके स्नान कर लें, और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का रोज सुबह अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके मुश्किल समय में आपके लिए राहत की सांस है। मीन वाले बड़े दिन से प्रयास कर रहे थे कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है वो हो जाए, नौकरी वाला काम हो जाए, प्रॉपर्टी वाला काम हो जाए, सब रुका हुआ था। अब क्या है, अगर अगले एक महीने तक कोशिश करें आप, इस एक महीने का ध्यान रखें, तो रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अगर आपकी राशि मीन है, अगले एक महीने में पूरी ताकत लगाएं, रुके हुए काम बन जाएंगे। करियर में नए अवसर मिलेंगे। इस समय आपने पहले इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। कोई इंटरव्यू आ गया है, कोई परीक्षा आ गई है, पास कर जाएंगे। करियर में नए अवसर और सफलता आपको मिलेगी। और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रिनोवेट कराना चाहते हैं, या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो इस समय संपत्ति का या वाहन का लाभ आपको हो सकता है। अगला एक महीना आपके बहुत सारी उलझनों को सुलझाएगा, आपके रुके हुए उलझे हुए कामों को रास्ते पर लाएगा। इसीलिए अगले एक महीने का सही प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस पूरे महीने का लाभ उठाने के लिए जितने दिन सूर्य देव वृषभ राशि में हैं, रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिए,
आपको लाभ होगा। देखिए, जितने दिन सूर्य देव वृषभ राशि में रहते हैं, यानी इस बार 15 मई से लेके लगभग 15 जून तक, इस समय को वृषभ संक्रांति का समय कहा जाता है और ये समय दान के लिए बड़ा पवित्र माना जाता है। जितने दिन सूर्य देव वृषभ राशि में हैं, अगर आप जल का दान करें, पानी वाले फल का दान करें, पंखों का दान करें या लोगों के जल पीने की व्यवस्था करें, तो आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होगी और आप

0: बीच में नियमित रूप से यथाशक्ति लोगों को जल का दान करें, जल पिलाएं, ठंडे पानी का शरबत पिलाएं। अगर ऐसा पूरे एक महीने करें तो मानसिक स्थिति में सुधार होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search Classic Hip-Hop or tell your device to play Classic Hip-Hop on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: और चलिए बात थोड़ी बॉलीवुड की कर लेते हैं। लगता है कि सैफ अली खान की तरह ही बॉबी देओल भी करियर की दूसरी पारी खेल रहे हैं। वो सैफ की तरह ही दमदार भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। अपकमिंग फिल्म बंदर में भी बॉबी देओल ने ऐसा ही एक दमदार किरदार निभाया है, एक ऐसा किरदार जिससे आपको मोहब्बत हो सकती है और नफरत भी, जिसकी झलक बंदर के टीजर में दिखाई दे रही है। ये फिल्म 5 जून को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: इस धमाकेदार टीजर ने दर्शकों की बेसब्री को और बढ़ा दिया। एक सुपरस्टार का अंदाज और एक रॉक स्टार जैसा स्वैग लिए बॉबी देओल का किरदार इस फिल्म में बेहद जुदा दिख रहा है।
1: समीर मेहरा, थाने चल, बुलाया तेरे को।
2: वो लड़की छोटी है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है।
0: अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। लंबे अरसे से फैंस इस फिल्म की एक झलक पाने को बेताब थे। कल बंदर का टीजर रिलीज हुआ तो फिल्म के लिए फैंस का क्रेज और बढ़ गया और इसके साथ ही सामने आ गया है बॉबी देओल का वो वर्सटाइल अंदाज जो उनके करियर की दूसरी पारी में प्रमुखता से नजर आ रहा है।
2: और लिटरली वो रेफरेंस है इस फिल्म में कि बॉबी देओल था 25 साल पहले, अब नहीं है।
0: बंदर के टीजर में बॉबी पुराने जमाने के डिस्को डांसर जैसे लुक में दिख रहे हैं। टीजर की शुरुआत में वो चमचमाती जैकेट में स्टेज पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं तो टीजर के अगले हिस्से में ही फिल्म में आगे आने वाले ट्विस्ट की झलक भी दिख रही है। टीजर से अंदाजा लग रहा है कि इस फिल्म की कहानी काफी इंटेंस और उलझनों से भरी हुई है। बंदर में बॉबी का किरदार बता रहा है कि वो पर्दे पर हीरो बनकर नहीं एक एक्टर बनकर आ रहे हैं जिसमें एक्टिंग की भूख है। बॉबी की इस भूख को बॉलीवुड ने आश्रम सीरीज के बाद ही पहचानना शुरू कर दिया था जो आने वाली फिल्मों के साथ और बढ़ती चली गई और अब बंदर उनकी इस अदाकारी की भूख की अगली कड़ी है जिसे फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपने अनुभव से और बढ़ा दिया है।
2: बॉबी को ने एक बहुत बड़ी बात मेरे को बोली थी कि मैं 40 का था तब पहली बार किसी ने मुझे बोला यार बॉबी तेरे को एक्टिंग सीखनी चाहिए। मुझे किसी ने बचपन से नहीं बोला था कि मुझे एक्टिंग सीखनी चाहिए और फिर उसने वो चीज पे अमल किया। उसने जब आश्रम किया या लव हॉस्टल गया उसने उस तरह के कैरेक्टर के जैसा वो इंसान नहीं है। बोलता है कि मैं ऐसा कैरेक्टर करके आ रहा हूं जिससे होता ना आपको अपने आप से घृणा हो जाए लेकिन मैंने देखा उसको किस तरह से ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट किया मेरा फिर कैरेक्टर करने का मन करता है क्योंकि मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जब तक मैं मिला उनसे तब तक काफी प्रकाश झा शंकर जिन्होंने लव हॉस्टल बनाई या क्लास ऑफ 83 अतुल सबरवाल या एनिमल ये इससे गुजर चुके थे तो मेरे पास एक वो एक्टर आया था जो नया करना चाहता था जो अपने आप के साथ और खेलना चाहता था डिस्कवर करना चाहता था।
0: मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये क्राइम थ्रिलर फिल्म रियल लाइफ घटनाओं और मी टू मूवमेंट से प्रेरित है। इनमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे एक झूठा आरोप किसी व्यक्ति के पूरे करियर और उसके सम्मान को तबाह कर सकता है। टीजर से साफ झलक रहा है कि बॉबी किसी फेक डेटिंग ऐप के चक्कर में पड़कर जेल पहुंच जाते हैं। अब इन आरोपों को बॉबी कैसे झूठा साबित करते हैं कैसे जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आते हैं यही फिल्म की यूएसपी है। बंदर 5 जून को बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है। फिलहाल तो टीजर ने फिल्म में दिखने वाली टेंशन और ड्रामा की झलक दिखाकर दर्शकों की दिलचस्पी तो बढ़ा ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देश में वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयास रंग ला रहे हैं। इनकी तस्दीक इस बात से

0: होती है कि 20 साल बाद अरुणाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार रॉयल बंगाल टाइगर दिखा है। आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्या है अरुणाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जिस वजह से यहां बंगाल टाइगर की चहलकदमी बरसों बाद नजर आई है।
1: बंगाल टाइगर की इस तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। दशकों बाद रॉयल बंगाल टाइगर के दर्शन अरुणाचल के जंगलों में हुए हैं। ये घटना इसलिए भी खास है क्योंकि दो दशकों से अरुणाचल में बंगाल टाइगर नहीं देखे गए थे और चिंता जताई जा रही थी कि क्या जंगल के बदले मिजाज ने रॉयल बंगाल टाइगर्स को अरुणाचल के घने जंगलों से दूर कर दिया है। अरुणाचल के जंगल में ये तस्वीर उस वक्त खींची गई जब डंपर ट्रक ड्राइवर्स ने पुराने कोमली घाट रोड पर बंगाल टाइगर को चहलकदमी करते देखा। यही नहीं, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने बंगाल टाइगर को सड़क से कुछ दूरी पर पेड़ों की छांव में आराम करते हुए भी देखा। लोगों के अनुसार कुछ देर दिखने के बाद टाइगर वापस जंगल की तरफ चला गया, लेकिन ये तस्वीर सुकून का पक्का सबूत बन गई। कुछ दिन पहले अरुणाचल के जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर के पंजे देखे गए थे, लेकिन ये पहली बार है जब बंगाल टाइगर को इतने पास से देखा गया और उसका वीडियो बनाया गया है। फिलहाल टाइगर के इस दीदार के बाद से अरुणाचल का वन विभाग खुश है। यहाँ बंगाल टाइगर की मौजूदगी इस बात का भी सबूत है कि अरुणाचल के डियरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के जंगलों का इकोसिस्टम अब बेहद हेल्दी है। अरुणाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बंगाल टाइगर का दिखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेंचुरी 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। ये जंगल लुप्तप्राय बंगाल फ्लोरिकन का भी ठिकाना है, लेकिन करीब दो दशक बाद यहाँ बंगाल टाइगर का होना इस बात की गारंटी बन गया है कि दुनिया के सबसे बड़े शिकारी के लिए यहाँ पर्याप्त शिकार मौजूद है। अरुणाचल की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जश्न है, लेकिन एक डर भी है। वो ये कि कहीं ये टाइगर आसपास के गांवों पर हमला बोल लाना शुरू कर दे। अरुणाचल के इस इलाके में बंगाल टाइगर की मौजूदगी का सबसे पुख्ता सबूत सामने आने के बाद वन विभाग ने आसपास के गांव के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से रात के समय जंगल की ओर ना जाने की अपील की गई है। रॉयल बंगाल टाइगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। भारत में अभी 3,680 जंगली बाघ हैं, जो दुनिया की कुल बाघ आबादी का करीब 75% माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: संगीत की दुनिया में एक भारतीय बेटी ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कम उम्र में ही 44 वाद्य यंत्र बजाने वाली नियति ने एक इतिहास रच दिया है। 44 वाद्य यंत्रों को बजाने वाली नियति ने इसी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों की पहचान कर उन्हें प्ले किया।

0: संगीत के साथ ये गहरा रिश्ता अब एक विश्व कीर्तिमान के साथ पूरी दुनिया में नियति का नाम रोशन कर रहा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में नियति ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों को पहचान कर नियति ने इतिहास रच दिया। लेकिन नियति का हुनर सिर्फ वाद्य यंत्रों को पहचानने तक सीमित नहीं है। इस छोटी सी उम्र में ही नियति 44 वाद्य यंत्र बजा लेती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की कमाल की पकड़ है।
1: फाइव 50 इंस्ट्रूमेंट्स याद किए अलॉन्ग विद देयर बेसिक्स एंड लास्ट में जाके

0: नवम 2nd November 2025 पर मैंने 1 मिनट के अंदर रैंडमाइज करके 74 इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्नाइज किए।
1: 74 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने पहचाना है सिर्फ 1 मिनट के भीतर। सिर्फ पहचाना नहीं है बल्कि उनके बेसिक्स भी बताए हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए होता है, कैसे बजता है, कैसे काम करता है।
2: नियति को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां ने हर कदम पर उनका सहयोग किया। संगीत के प्रति नियति के लगाव को उन्होंने बहुत कम उम्र में पहचान लिया था। नियति जब महज 6 महीने की थी तभी मां ने कीबोर्ड और जाइलोफोन से नियति को रूबरू कराया। 4 साल की उम्र में नियति ने काबिलियत हासिल कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले भी नियति कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। में नियति ने आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो पर शिव तांडव स्त्रोत बजाया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। 2023 में नियति ने 65 सेकंड में 15 वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाया। इस उपलब्धि पर उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया।
3: उठती हूँ और 4 बजे से लेके मेरे पास पूरे दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, क्योंकि नियति को स्कूल छोड़ना, लेके आना इसकी म्यूजिक क्लासेस के लिए, फिर और इसके प्रोग्राम्स वगैरह चलते रहते हैं उसमें सब में, और मेरा अपना ऑफिस का वर्क भी रहता है और घर की जिम्मेवारियां तो हैं ही हैं, तो उसमें मेरे को पूरे दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। कुछ इसके बियॉन्ड मैं सोच पाऊँ मेरे पास समय नहीं है। सिंगर संघर्ष साकार होते वो नजर आ रहा है कि मतलब मैंने जो इतना एफर्ट्स किए हैं कि नियति कुछ बन पाए, अपनी जगह समाज में बना पाए, उसके लिए मैंने पूरे एफर्ट्स किए थे। और आज लग रहा है जब लोग आके हमसे पूछते हैं कि आपने, आपके बच्चे ने इतना अचीव किया, तो बहुत खुशी होती है।
2: संगीत के साथ नियति साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, एनिमेशन और रैप क्रिएशन में भी माहिर है। हिंदी और अंग्रेजी में कविता और गीत लिखने वाली नियति को अब तक 17 देशों में सम्मान मिल चुका है। संगीत में रुचि के साथ ही नियति पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही है।
0: प्रिंट आउट लेके स्कूल में जाके याद करती थी और मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरे को बहुत इनक्रेज किया एंड हेल्प किया सब कुछ याद करने में, बेसिक्स याद करने में। एंड एग्ज़ाम्स थे तो पढ़ाई भी थी, तो उसके साथ पढ़ाई को भी अच्छे से समय देना था।
1: गिनीज का रिकॉर्ड भी आ गया, स्कूल का रिजल्ट भी आ गया। कितने परसेंट मार्क्स है?
0: 96% इन क्लास 9th।
1: 96% मार्क्स आए हैं, उसके साथ गिनीज का रिकॉर्ड आया है। आप सोचिए कि नियति कितनी टैलेंटेड है और कितनी डेडिकेटेड है उस काम के लिए जिस काम को वो करती है।
2: बचपन में एक छोटे से खिलौने के साथ शुरू हुआ संगीत का ये सफर आज नियति को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा चुका है और उनकी ये कामयाबी आज की नई पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल बन गई है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता माखनलाल का किया सम्मान, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 9,20,000 के पार, 4 लाख ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम, पद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं भक्त। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, माथा टेककर आशीर्वाद लिया, परिवार के सदस्य भी साथ में रहे मौजूद। तमिलनाडु में 12 मई तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में तेज हवाओं की चेतावनी, चेन्नई में जमकर बरस रहे हैं बादल। प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रकृतिवादी और ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबरो ने मनाया 100वां जन्मदिन, पिकाडिल सर्कस में विशेष लाइट शो से दी गई शुभकामनाएं, दुनिया भर से मिल रही है बधाई।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
12: मौसम विभाग के मुताबिक तय समय से भारत पहुंचेगा मॉनसून, 1 जून को केरल तट पर बरसेंगे मॉनसून के बादल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मॉनसून का आना करीब 2 हफ्ते दूर, भारत में सबसे पहले यही होती है मॉनसूनी बारिश। ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है भारत के मॉनसून का रास्ता, ऑस्ट्रेलिया में बारिश का मौसम खत्म होने का सीधा असर भारत के मॉनसून पर पड़ता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून के समय पर आने की वजह अल नीनो। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला में अगले 7 दिनों में होगी बारिश, मॉनसून के सही समय पर आने का बड़ा संकेत। मौसम के मिजाज में बदलाव का सिलसिला रहेगा जारी। उत्तर भारत के कई इलाकों में जारी रहेगा बारिश, गरज चमक और बढ़ते तापमान का असर। उत्तराखंड में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, आधी तूफान की भी संभावना। 10 मई से सक्रिय हो रहा है नया पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली समेत पहाड़ी राज्यों में होगी बारिश, चलेंगी तेज हवाएं। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 9 और 10 मई के बीच 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, आधी तूफान की भी संभावना। पूर्वोत्तर भारत में 9 मई तक छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश की संभावना, अरुणाचल, असम और मेघालय में 12 और 13 मई को कुछ जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन, अब तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हो रह चुके हैं शामिल। केदारनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हर दिन करीब 25,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं बाबा के धाम, फिलहाल श्रद्धालुओं को मिल रहा है मौसम का साथ। बद्रीनाथ धाम में उमड़ रहा है आस्था का मेला, अब तक 2,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड में भी श्रद्धालुओं का जोश है, यमुनोत्री में 1,45,000 से ज्यादा तो यमुनोत्री में 1,43,000 श्रद्धालु ले चुके हैं आशीर्वाद। पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम ने केदारनाथ धाम में अस्पताल का किया लोकार्पण, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस इस अस्पताल से स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती, यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दी जा रही है प्राथमिकता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया अस्पताल का उद्घाटन, बाबा केदार के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। चारधाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम के सफाई अभियान में जुटे आईटीबीपी के जवान, तप्त कुंड से लेकर ब्रह्म कपाट तक अलकनंदा नदी के तटों की कर रहे हैं सफाई। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस का कायाकल्प, जन सेवा कनेक्ट स्कीम के तहत रेनोवेशन, कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये पोस्ट ऑफिस। आसमान से उतरे सेना के K9 वॉरियर्स, मणिपुर में दिखाया अदम्य साहस। अभ्यास में 5 डॉग्स टीमों ने लिया हिस्सा, डॉग हैंडलर्स और मिलिट्री डॉग्स के बीच दिखा जबरदस्त तालमेल और आत्मविश्वास। युद्ध और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये डॉग्स निभाते हैं अहम किरदार, अभ्यास में सैनिकों के साथ मिलकर काम करने की बारीकियों को परखा गया। इन योद्धाओं को हथियार छीनने और घुसपैठियों को दबोचने की मिलती है खास ट्रेनिंग, खामोशी से मिशन को अंजाम देने में सक्षम है ये डॉग्स। लीमाखोंग मिलिट्री स्टेशन पर अभ्यास को दिया गया अंजाम, घने जंगलों में छिपे दुश्मनों को ढूंढने की क्षमता को परखा गया।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
13: You use AI every day, but what if you built what it runs on? At WGU, you'll earn your software engineering degree online, on your schedule, and packed with certifications from AWS, CompTIA, and more. With training in Java or C#, hands-on experience, and a focus on AI-powered systems, you won't just learn to code, you'll learn to build what's next. Learn more at WGU.edu.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाई और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये, इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
15: साइबर सिक्योरिटी isn't just about stopping threats, it's about starting your future. At WGU, you'll earn a cybersecurity degree packed with AI-integrated training, up to 16 certifications, and real-world skills.
16: Without the degree from WGU, I wouldn't have got the job. As soon as I graduated, they promoted me up to systems analyst.
15: And right now, you could also qualify for a $6,000 cybersecurity scholarship. Learn more at WGU.edu.
17: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just

0: upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
1: Thank God I get to wake up.
0: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: Achhi khabrein. Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
4: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: बैटलफील्ड के बाहुबली को मिलेगा सुपर कवच। जमीन से आसमान तक हर खतरा होगा ध्वस्त। इंडियन बैटल टैंक को मिला अमर होने का वरदान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता माखन लाल का किया सम्मान, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं भक्त। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, माथा टेक कर आशीर्वाद लिया, परिवार के सदस्य भी साथ में रहे मौजूद। तमिलनाडु में 12 मई तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में तेज हवाओं की चेतावनी, चेन्नई में जमकर बरस रहे हैं बादल। प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रकृतिवादी और ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबरो ने मनाया 100वां जन्मदिन, पिकाडिली सर्कस में विशेष लाइट शो से दी गई शुभकामनाएं, दुनिया भर से मिल रही है बधाई। दुनिया में यूएफओ यानी उड़न तस्करी को लेकर फिर छिड़ी बहस, अमेरिका ने जारी किया यूएफओ के दस्तावेज, पेंटागन ने कहा लोग खुद करें डिसाइड एलियन होते हैं या नहीं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी और लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और बेटिया का ये वीकेंड स्पेशल एपिसोड। वीकेंड है तो फन है, मस्ती है, पार्टी है, तो क्यों ना आज आप घर बैठे बैठे हो जाएं हमारी इस पार्टी में शामिल जो है सितारों से भरपूर। सो लेट्स स्टार्ट द पार्टी, लेकिन उससे पहले नजर हमारी हेडलाइंस पर।
1: सास बहू और बेटिया की

0: एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, शादी का होगा शुभारंभ, अनु का आया वेडिंग कार्ड, निहारिका, राध्या और रूही की भागम भाग, फिर एक बार मुश्किलों में घिरेगी आरंभी। खतरे में होगी लाला की जान, लगेगा किशोरी पर इल्जाम, संदीप ने दिया गुरु के हाथों अपनी बहना का हाथ, फिर एक बार बनी रूहानी गुरु की दुल्हनिया।
1: वाह मम्मी, लगता है आपने पॉप्स को इनसे रिप्लेस कर ही दिया।
0: राही को पड़ा करारा थप्पड़, माँ की बेइज्जती करने का मिला इनाम।

और करेंगे मन अति सुंदर की एकता यानी कि सृष्टि मित्रा से खास मुलाकात। देखेंगे कैसे इन्होंने पूरा किया सास बहू और बेटियां का शॉपिंग चैलेंज, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: वैसे कितना मजा आएगा ना अगर अनु और आर्यवर्धन भी साथ मिलकर करें एक सैटरडे वाली पार्टी। वैसे अगर यहाँ पर होगी पार्टी तो फिर से आ जाएगा ट्विस्ट का तूफान, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर होगी ट्विस्ट की पार्टी। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको तुम से तुम तक के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग हो रहा है इनकी कहानी में आज। क्या आ रही है यहाँ से कोई गुड न्यूज या फिर से कहानी में आया है कोई नया ड्रामा?
1: आ गया है अनु और आर्यवर्धन की शादी का न्योता। सास बहू और बेटियां बनेगा खास मेहमान। जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है मौसम शादी का। जी हाँ, जल्द ही शादी के बंधन में बंधेंगे अनु और आर्यवर्धन, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। मैं इनकी शादी में कई रुकावटें आई, लेकिन अब फाइनली ये शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसका इनविटेशन अनु ने खुद अपने हाथों से दिया। और ऐसे में अनु के साथ है उसके मम्मी पापा, जो दे रहे हैं न्योता।
2: अरे शर्मा जी, ये इतना बड़ा बॉक्स, अरे इतना चमकीला, अरे ऐसा गिफ्ट तो दिवाली में भी नहीं देखा, पर ये है क्या?
3: अनु की शादी का गायत्री जी ने भेजा है।
2: क्या शादी का इन्विटेशन है?
3: इन्विटेशन नहीं, इन्विटेशन होता है।
2: इतना बड़ा गिफ्ट, इतना चमकीला, देखो इसमें लाइट भी लगी है। शादी में भी कोई नहीं देता, ये तो सिर्फ शादी का न्योता है। जो न्योता ऐसा है तो फिर शादी के काम कितने होंगे? आर्या जी की शादी तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा। शर्मा जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, हमें भी अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 25 तारीख को ज्यादा दिन नहीं है।
4: बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है एक लड़की के माँ के लिए, इससे प्रेशियस मोमेंट क्या हो सकता है? शादी का इन्विटेशन करो वो इतना बड़ा, और हम तो मिडिल क्लास, हमारे झंडी जी तो कभी कभी कहते हैं कि आप तो गरीब हो। हम कहते नहीं, हम मिडिल क्लास है। वो कहते नहीं, आप गरीब हो। तो मिडिल क्लास है हम रहते हैं यहाँ पे चांदनी चौक में, हमारा घर भी है, बट इतना बड़ा इन्विटेशन कार्ड तो हमने पूरी लाइफ में कभी देखा नहीं था, है ना?
5: इतनी बड़ी मैं दिखी हूँ बस इनको सबसे बड़ी, उसके बाद में ये कार्ड दिखा इनको। तैयारियां तो उधर से तो शुरू ही हो गई है, और हम लोग भी अब शुरू कर रहे हैं यहाँ से तैयारियां।
4: हम भी पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम कर लेंगे, हमने कहा है कि हम सब कर लेंगे।
5: हाँ, खाने की चीजें अच्छी होनी चाहिए, एक से एक मिठाई, कम से कम दो तरह की मिठाई होनी चाहिए, दो तरह की सब्जी होनी चाहिए, पूरी, फिर पुलाव या फिर जीरा राइस, है ना, एक कढ़ी होगी, एक दाल होगी, और पापड़ तो होना ही चाहिए शादी में।
4: सही है।
5: सलाद,
4: और
5: सलाद में ज्यादा कुछ नहीं, बस ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज।
4: मतलब खाने के बारे में इनकी विश लिस्ट है। हाँ। और शादी कैसी हो इसकी मेरी एक विश लिस्ट है कि वह कहीं कोई विघ्न ना आए, सब कुछ ठीक हो जाए और मेरी बेटी की विदाई बहुत अच्छे से हो जाए, है ना?
5: हमारे तो म्यूजिक सुनते ही डांस निकल जाता है।
4: बेटी की शादी में वैसे भी माँ बाप नाचते रहते हैं, तो हम नाचने वाले इधर उधर,
5: लड़के वाले नचाते हैं, लड़की वाले नाचते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, हम खुशी से नाचेंगे।
4: नाचेंगे, हाँ बिल्कुल नाचेंगे।
5: मिक्स फीलिंग है, जितने खुश है उतने दुखी भी हैं, और जितने दुखी है उससे ज्यादा खुश हैं।
4: बट एक दूसरे को हम समझाते रहते हैं पूरे इसमें, हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो हम निभा लेते हैं उस सिचुएशन को, है ना?
5: नहीं, उन्होंने पूरी तरह से हमें, हमारे पे छोड़ दिया है कि हम जैसा चाहे वैसा अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं।
4: यस,
5: तो हमारे हिसाब से तो एकदम परफेक्ट है। जैसे एक पति को होना चाहिए, जो जिम्मेदार हो, समझदार हो, इज्जतदार हो, और बहुत प्यार करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो। तो हमारी तरफ से सब कुछ अच्छा है, वो हमारी बेटी को भी बहुत रिस्पेक्ट करता है और हमें भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।
4: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे माँ बाप को लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी को पाला है, तो उसका पति भी उसे उस नजर से देखे, वैसे ही उसको रखे, तो उसमें हमको खुशी होती है, माँ बाप को खुशी होती है ना।
5: हाँ।
4: तो इसी हमें खुशी है आज की आर्यवर्धन जी है।
5: शादी का तो सबसे फेवरेट लड़की वालों की तरफ से होता है कि ये गलियां ये दोबारा, यहाँ ना ना दोबारा, अब हम तो भाई पर दे
4: मेरी तो आम है पुष्पा जी
5: नहीं बची हूँ
6: एक और हमारी अनु और आर्या जी की शादी होने वाली है और सास बहू और बेटिया को हमारी तरफ से निमंत्रण है, आप शादी में जरूर आए और खूब मचाए।
4: जरूर आइएगा।
7: बिगेस्ट वेडिंग ऑफ दिस ईयर अनु आर्या की शादी में मैं इनवाइट करना चाहती हूँ सास बहू और बेटियों। आई थिंक अनु भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और निहारिका भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ऑलमोस्ट एक साल कंप्लीट होने आया है शो को और अब फाइनली हम उस ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं जो आप सब बेसब्री से देखना चाहते थे। तो आई थिंक अनु तो है ही साथ में आसमान पर, निहारिका भी बहुत खुश है। नहीं अभी तो ये सिमो की शादी की मेहंदी है, अभी अनु की शादी की मेहंदी लगनी बाकी है और वो जब लगेगी तो आई थिंक वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। अनु आर्या दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि फाइनली अब एक 25 मई की जो तारीख है वो अनु आर्या की लाइफ बदलने वाली है। सो दे बोथ आर वेरी वेरी एक्साइटेड। अब तो होगी ही, आई थिंक ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है एंड मैं जानती हूँ आप सब एज व्यूअर्स अनु आर्या को एक होते हुए देखना चाहते हो और अब वो दिन दूर नहीं। बहुत ही प्यारा इनविटेशन आर्य सर ने क्रिएट किया है, पूरे मोहल्ले में हम सबको बांट रहे हैं और अनु के लिए बहुत ओवरवेलमिंग सा मोमेंट है क्योंकि आर्य सर हमेशा उसके लिए ऐसे जेस्टर्स करते रहते हैं जो उसके सोच के भी परे हैं। तो शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी और पूरा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है उसे बहुत ज़्यादा। अनु आर्य सर से बहुत प्यार करती है, आप सब जानते ही हैं, और आर्य सर अनु के लिए सब कुछ है। तो अब फाइनली इतनी सारी मुसीबतों से लड़के, सोसाइटी, पेरेंट्स, फाइनली अब अनु आर्या एक होने जा रहे हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आई थिंक सारे फंक्शंस बहुत अच्छे होने वाले हैं अनु आर्या के और बहुत ग्रैंड वेडिंग होने वाली है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। मेरी तो काफ़ी बार हो चुकी है अगर आप शोज की बात करें, बट मैं इस वाले के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अनु आर्या की एक अनुर्या की जो ग्रैंड वेडिंग है उसका हम इतने टाइम से बिल्डअप दे रहे हैं। तो अब मैं एज निहारिका देखना चाहती हूँ कि हम कैसे शूट। आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आई थिंक आप सबका प्यार है और आप शो को इतना प्यार देते हो, हमें इतना प्यार देते हो और मेरे सारे शोज को आपने इतना प्यार दिया है कि कहीं ना कहीं मैं अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द क्रेडिट गोज टू यू ऑडियंस। ऐसी तो कोई विशलिस्ट नहीं है उनका, तो अभी ऐसा है कि बस हम दोनों एक साथ हो जाएं। अनु आप सब जानते हैं मटेरियलिस्टिक लड़की है ही नहीं, उसने कभी आर्य सर की किसी चीज़ से प्यार नहीं किया, उसने सिर्फ आर्य सर से प्यार किया। तो बस अनु बस अब फेरे लेने का और वरमाला एक्सचेंज करने का वेट कर रही हूँ किस चीज़ का। प्यार बहुत ज़्यादा मायने रखता है आई थिंक हर एक इंसान के लिए और अनु का तो पहला और आखिरी प्यार है आर्य सर और बहुत ही वो प्योर लव है दोनों का। मैं तो एज निहारिका लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि मेरा एक सोलो डांस परफॉर्मेंस हो और एक शरद सर के साथ भी हो, बट अनु के कैरेक्टर में जो गाना जाएगा और अनु आर्या की केमिस्ट्री को जो ब्यूटीफुली डिफाइन करेगा आई थिंक वो सॉन्ग सिलेक्ट करेंगे एंड आई थिंक मेरे राइटर्स, प्रोड्यूसर्स इन सब चीज़ों में माहिर हैं। तो देखिए
0: तो भाई हो जाइए तैयार जल्दी अनु और आर्यवर्धन की शादी देखने के लिए, जिसकी सारी झलकियाँ आप तक लेकर आएगा सास बहू और बेटियाँ।

आराध्या और रूही की भगदड़। आराध्या की मुश्किलें। टीवी के सीरियल मन अति सुंदर और मन सुंदर में आज देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से रूही और राध्या दोनों निहारिका का पीछा कर रहे हैं। असल में निहारिका अस्पताल पहुंची है रिपोर्ट्स को चेंज करने के लिए, वही वो नहीं चाहती कि कोई भी इल्जाम उस पर लगे। ऐसे में राध्या और रूही दोनों ही उसको देख लेते हैं। ऐसे में वो भागने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, निहारिका का ड्रेस नाहर की व्हीलचेयर में फंस जाता है और देखिए कैसे वो अपने साथ वो नाहर को भी अपने साथ यहाँ से लेकर भाग रही है। भाई ऐसे में वो कोशिश तो पूरी करती है कि वो अपने कपड़े को इस व्हीलचेयर से निकाल सके, लेकिन भाई वो नाकाम हो जाती है और तभी वहाँ रूही और राध्या दोनों ही पहुँच जाते हैं। ऐसे में निहारिका हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजाती है और देखिए कैसे अस्पताल में मच जाती है अफरा तफरी और निहारिका को मौका मिल जाता है यहाँ से भाग निकलने का, वो भी नाहर के साथ।

तो मैं हॉस्पिटल में ही भागा दौड़ी हो गई है और मैंने ही मचा दी है ये भगदौड़। तो होता ये है कि मुझे राध्या और रूही देख लेती है और मैं वहाँ पे रिपोर्ट्स चेंज करने आई हूँ और यही सारी चीज़ें, और वो मुझे देख लेती है। मैं उन लोगों से बचते बचाते भाग रही हूँ कैसे भी, मास्क पहन के, कोट पहन के, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे राध्या और रूही देख लेती है। उसी दौरान मैं मतलब ऐसी हड़कंप मचा देती हूँ, इमरजेंसी स्विच ऑन कर देती हूँ, जिससे पूरे मतलब हॉस्पिटल में लगता है सबको कि इमरजेंसी क्रिएट हो चुकी है और सब भागा दौड़ी मच जाती है। और उसी दौरान मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा ड्रेस उसके व्हीलचेयर में अटक जाता है और मैं इतनी ज़्यादा जल्दी में हूँ कि मैं उसे निकाल रही हूँ लेकिन निकल ही नहीं रहा है। तो मैं फिर उसके व्हीलचेयर को घसीटते घसीटते ही भागने लगती हूँ नहार को साथ में लेके।

मल्लिका का पीछा करते करते रूही और राध्या दोनों ही थक चुके हैं। भाई देखिए कैसे वो हर गली हर मोहल्ले में बस निहारिका और नाहर को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका पता उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते दोनों ही बेहद परेशान हैं।

0: ऐसे में बिगड़ गई है राधिया की तबीयत। भाई इतनी कड़कती धूप में भागा दौड़ मचेगी तो चक्कर आने लाजमी है, और ऐसा ही कुछ राधिया के साथ हो रहा है, जिसके चलते भाई उसे आया प्रथम का ख्याल। भाई आखिरकार निहारिका को ढूंढने के पीछे का कारण प्रथम की बेगुनाही ही तो है। तभी तो भाई जैसे ही वो चक्कर आने पर बैठ जाती है, उसके सामने प्रथम आ जाता है, वो भी नारियल पानी लेकर। भाई राधिया का जिस तरीके से ख्याल प्रथम रखते हैं और कोई नहीं रख सकता, और ये देखकर राधिया बेहद खुश हो जाती है। लेकिन भाई आप मत खुश होइए, क्योंकि ये हकीकत नहीं बल्कि राधिया का एक प्यारा सा सपना है। असल में नारियल पानी तो ये एक छोटा सा बच्चा लेकर आया है।
1: तो वो कहीं ना कहीं जल्द इतनी जल्दबाजी में हूँ मैं कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं है कि नहार है और इसे मैं साथ में लेके जा रही हूँ वगैरह। तो काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है मेरे दिमाग में और जल्दबाजी भी है, तो बस यही सारा ड्रामा मचा हुआ है।
0: ऐसे में देखना होगा कि क्या रूही और राध्या निहारिका को ढूंढने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: मुझे तो ऐसा लगता है कि अनुपमा जितनी सारी सिचुएशंस का सामना करती हैं, जितना ड्रामा आता है उनकी जिंदगी में, वो भी एक ब्रेक डिजर्व करती हैं। अनुपमा, आपके लिए ओपन इनविटेशन है, आप कभी भी आ सकती हैं सास बहू और बेटिया के स्टूडियो और कर सकती हैं इस पार्टी को ज्वाइन। फिलहाल तो यहाँ भी चल रहा है एक हाई वोल्टेज ड्रामा, तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको अनुपमा के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
1: मैं अपनी माँ पे चिल्लाई तो आपको इतना बुरा क्यों लग गया? हाँ, वाह मम्मी, लगता है आपने पॉप्स को इनसे रिप्लेस कर ही दिया।
2: राही को पड़ा थप्पड़। अनुपमा से बदतमीजी करने की सजा।
3: अपनी जिंदा माँ का तर्पण करने वाली बुरी बेटी तू है राही।
2: घर में मचा बवाल।
3: मैं बुरी माँ नहीं हूँ, तू बुरी है, तू बहुत बहुत बहुत बुरी है, बहुत बुरी।
2: स्टार्प्लस की सीरियल अनुपमा में भाई राही का गुस्सा अनुपमा के लिए इतना ज्यादा है कि उसने अपनी सभी मर्यादाओं को लांग दिया। भाई इतना ही नहीं, अपनी ही माँ पर लालछन लगाया।
1: इन्होंने अपनी फैमिली को इतना ज्यादा दुखी कर दिया कि वे सब लोग इनसे दूर भागना चाहते हैं। लेकिन इन्हें इन्हें चाहिए अटेंशन। जब तक सारी दुनिया इन्हें ना देखे, इनकी ना सुने, इनके हिसाब से ना चले, तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ता। घर में अगर कोई ध्यान नहीं देता है तो ये बाहर जाकर सबका ध्यान खींचती है, और अगर ध्यान देने वाला कोई मर्द हो तो बस इनकी तो लाइफ बन जाती है।
3: इनफ
1: क्या? इनफ क्या? इनफ आज इन्हें बोलना है इनफ। इनके लिए कुछ भी इनफ नहीं होता है।
4: तूने एक शब्द और बोला ना मैं भूल जाऊंगा मेरी क्या लगती है तू।
1: ये खुद बोलिए कि मैं इनकी क्या लगती हूँ, तो भूल ही जा भाई।
5: ये लास्ट इट राही, बिल्कुल बिना सर पैर की बातें करी जा रही हो।
6: अरे मेल अटेंशन की बीमारी तो पाखी दी थी और मुझे थी स्टूपिड।
7: माही तू अपनी बात रखना, मुझे बीच में क्यों घसीट रही है?
8: इसने कुछ गलत बोला हो तो बोल, वरना चुपचाप जहाँ खड़ी है वहाँ खड़ी रही।
9: अरे मम्मी के प्यार ने आप सबके दिमाग खराब कर दिए।
6: और राही, अनुमा ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आप उन्हें ये सब सुनाए, ऐसी नहीं, लेकिन आपने भी बहुत गलतियाँ की है। हम सब ने किया और अनुमा ने हमें बार बार माफ किया है। अनुमा ने हमारे कितना कुछ किया है राही।
1: हाँ हाँ हाँ, इन्होंने सबके लिए किया है, तेरे लिए किया है, अंश के लिए किया है, परी के लिए किया है, सबके लिए किया है। अरे मम्मी तो अभी जया की भी अनुमा बन गई, बस मेरी माँ नहीं बन पाई।
2: ऐसे में दिग्विजय से ये सब कुछ देखा नहीं जाता कि किस तरीके से उसकी वजह से अनुपमा की इतनी बेइज्जती हो रही है। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने जाता है, भाई देखिए कैसे राही उसे भी नहीं छोड़ती और अपने बातों के गुस्से में उसे भी लपेट लेती है, जिसे सुनकर अनुपमा का हाथ उठ जाता है।
1: मैं अपनी माँ पे चिल्लाई तो आपको इतना बुरा क्यों लग गया? हाँ, वाह मम्मी, लगता है आपने पॉप्स को इनसे रिप्लेस कर ही दिया।

0: भाई अनुपमा ने तो हर बार राही को अपना प्यार दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इनके बीच गलत फहमियाँ बन ही जाती है। लेकिन आज तो अनुपमा के दिल का गुबार कुछ इस तरीके से निकला कि उसने अपनी ही बेटी को बुरा भला कह दिया।
1: तू माँ की बेइज्जती करके पापा का दिल दुखाने वाली, दोस्ती मर्यादा सम्मान के रिश्ते को गंदा घटिया नाम देने वाली, अपने पापा की सिखाई हुई हर बात को भूलकर एक सड़क झाप नीच सोच रखने वाली, अपनी जिंदा माँ का तर्पण करने वाली बुरी बेटी तू है राही। मैं बुरी माँ नहीं हूँ, तू बुरी है, तू बहुत बहुत बहुत बुरी है, बहुत बुरी।
0: भाई इन सब तमाशों के बाद माँ ने भी हार मान ली और अनुपमा से दिग्विजय के कैफे में काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन भाई अनुपमा तो अनुपमा है और वो कैसे किसी भी गलत फैसले का साथ देगी।
1: मैं जीना चाहती हूँ, मैं खुल के हंसते खेलते जीना चाहती हूँ, मैं मेरे अनुज के सपनों को पूरा करते हुए जीना चाहती हूँ, अपने सपनों को पूरा करते हुए जीना चाहती हूँ, कान्हा जी की भक्ति में लीन होकर गाते हुए जीना चाहती हूँ, अपनी धुन में नाचते हुए जीना चाहती हूँ बा, मैं अपने शर्तों पे जीना चाहती हूँ बा, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ और इसे मैं जी के दिखाऊंगी। ये मेरा आपसे नहीं, अपने आप से बात है, मैं ऐसे जी के दिखाऊंगी। माँ के प्यार में स्वार्थ नहीं होता, लेकिन बच्चों के प्यार में हमेशा इतनी सारी शर्तें क्यों होती है।
2: मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं कभी उनकी नंबर वन प्रायोरिटी नहीं बन सकती।
1: हमें जाके कैफे को तैयार करना है।
0: ऐसे में अब देखना होगा कि भाई क्या कुछ और अनुपमा की जिंदगी में इस कैफे खुलने तक होता है। क्या ये कैफे खुल भी पाएगा या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: इसलिए आया है क्योंकि वो हमसे कल का बदला लेना चाह रही है। अनुपमा जी,
1: कोई क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
3: कुछ ऐसा करना होगा कि अनुपमा जी का ये कैफे खुल ही ना पाए।
4: वैसे कितना मजा आएगा ना अगर डॉक्टर आरएमवी भी अपना वो लैब कोट निकाल कर, अपना स्टेथोस्कोप फेंक कर वो भी लें एक ब्रेक, क्योंकि देखिए जितना ड्रामा था इनके घर पर उससे भी ज़्यादा ड्रामा अब हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि ये डॉक्टर अवंतिका, डॉक्टर विश्वास हमेशा रहते हैं इनके आसपास और बस इनकी ज़िंदगी में है सुपर नेगेटिविटी। हम तो चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी भी भर जाए ढेर सारी खुशियों से और हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी। वैसे होने वाला है यहाँ पर भी कुछ नया, कैसे ऐसे।
5: अवंतिका और विश्वास की नई चाल, सीरियल में हुई दादी की एंट्री, आरंभ करेगी दादी की सर्जरी। कलर्स टीवी के सीरियल आरंभी में भाई आरंभी डॉक्टर बन प्रैक्टिस तो कर रही है, ऐसे में सीरियल में दादी की एंट्री भी हो चुकी है। वैसे आपको बता दे कि दादी भाग्य लक्ष्मी में भी थी, जिन्होंने लक्ष्मी के साथ यानी कि डॉक्टर आरंभी के साथ काम किया था और अब फिर इन दोनों की जोड़ी बन गई है। और इस बार दादी पहुंची हैं अस्पताल में पेशेंट बनकर, जो हो गई हैं आरंभी से काफी इम्प्रेस। ऐसे में दादी चाहती है कि सर्जरी के वक्त डॉक्टर आरंभी मौजूद रहे। हालांकि डॉक्टर आरंभी घबरा रही है, तभी वहां पर पहुंचती है डॉक्टर अवंतिका और विश्वास तो है ही और दोनों ने चली है चाल, जो कर रहे हैं फोर्स डॉक्टर आरंभी को दादी की सर्जरी करने की। ऐसे में आरंभी बहुत मना करती है, लेकिन डॉक्टर अवंतिका विश्वास उनकी नहीं सुनते और दादी भी चाहती है कि डॉक्टर आरंभी उनके साथ रहे।
6: चाहती हूँ कि मेरी सर्जरी के दौरान डॉक्टर आरंभी मेरे साथ रहे।
7: आप जो उसके कोई सीट होती है, मतलब डॉक्टर लता, डॉक्टर विश्वास, ये दोनों बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। आपको पूरा ख्याल रखेंगे, मेरी खुद से लूँगा।
8: अरे नहीं डॉक्टर आरुण भी, पेशेंट का बहुत बहुत माइंड
7: है।
8: अगर मैम चाहती है कि आप उनके साथ रहें तो आपको रहना पड़ेगा। आपको जो काम हो ही जाए प्लीज उसको आराम कर
9: लीजिए। वहाँ रहोगे तुम तो अपने सीनियर से कुछ सीखोगे, और कुछ नहीं तो कुछ एक्सपीरियंस होगा तुम्हें। वहाँ रहोगी तो अपने सीनियर से कुछ सीखोगी, और कुछ नहीं तो कुछ एक्सपीरियंस ही लोगे। और देखो इतने समय से तुम मेरा इलाज कर रही हो, तो तुम्हें ही मेरी सर्जरी में साथ रहना चाहिए।
8: थैंक यू वेरी मच। अमेजिंग मैम, सर्जरी की तैयारी कर लीजिए। और राइट ऑफ जानू में कल सैंपल्स कलेक्ट कर लीजिए, कभी कल दबे वोट्स आ जाए
10: चमच आ जाए।
0: वैसे आपको बता दें कि डॉक्टर अवंतिका और विश्वास की चाल है कि वो सर्जरी में कोई गड़बड़ करें जिसका इल्जाम आरंभी पर आए और आरंभी इस हॉस्पिटल से निकाली जाए। अब देखना होगा कि इनकी ये चाल कामयाब होती है या फिर डॉक्टर आरंभी अपनी सर्जरी में सक्सेसफुल होकर इनकी ये चाल को नाकामयाब करती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: अगली एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज तो जुड़ी है मन अति सुंदर की एकता यानी सृष्टि मित्रा से। आज हमारी टीम संग वो कर रहे हैं स्ट्रीट शॉपिंग, तो ऐसा क्या क्या है उनकी शॉपिंग लिस्ट में आज? वेल, यहाँ तो है ढेर सारी मस्ती और ढेर सारा फन। आइए जानते हैं सृष्टि को अप क्लोज एंड पर्सनल।

0: राध्या की जेठानी का शॉपिंग फंडा। प्रथम की भाभी चली खरीदारी करने, एकता संग फंडे। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है मन अति सुंदर में एकता का किरदार निभाने वाली सृष्टि मित्रा, जिनके साथ आज हम एक पूरा दिन बिताने वाले हैं। भाई आज है इनका डे ऑफ, यानी कि शूटिंग से मिल गई है इन्हें छुट्टी, और अपने छुट्टी वाले दिन को और भी ज्यादा फन दिन बनाने के लिए ये पहुंच गई हैं सास बहू और बेटियां संग स्ट्रीट शॉपिंग का मजा उठाने के लिए। जी हाँ, आज कुछ इस तरह अपने छुट्टी वाले दिन का सदुपयोग करने वाली है एकता यानी कि सृष्टि। आज देखेंगे हम सृष्टि का बार्गेनिंग टैलेंट।
1: नहीं, 450 तो बहुत ज्यादा।
0: इन्हें दिया जाएगा शॉपिंग का अनोखा चैलेंज।
2: 3000 में आप क्या कुछ खरीद सकते हैं हेड टू टो
1: चैलेंज तो है ये, लेकिन ठीक है, लेट्स ट्राई।
0: और देखेंगे कि ये क्या क्या शॉपिंग करने वाली है, क्योंकि आज तो स्ट्रीट शॉपिंग में ढेर सारी चीजें हैं। तो चलिए इस मस्ती भरे दिन की करते हैं शुरुआत, और करते हैं सृष्टि से ये खास मुलाकात, क्योंकि शॉपिंग वाला डे आउट भी तो शुरू करना है।
1: हाय, माय नेम इज सृष्टि मित्रा उर्फ एकता, और आज सास बहू और बेटियां के साथ मेरा है डे आउट, तो पूरा मैं दिन स्पेंड करने वाली हूँ। सो आज हम फन डे आउट करने वाले हैं, एंड वी हैव प्लान्ड फ्यू थिंग्स। आई थिंक स्ट्रीट शॉपिंग करेंगे, कुछ और मस्ती करेंगे, कुछ और बातें करेंगे, तो लेट्स सी कैसा कैसा क्या क्या होता है। आइए।
0: तो भाई शुरू हो चुका है ये सफर, और सफर थोड़ा लंबा है। ऐसे में सृष्टि ने बताया अपना सफरनामा, कैसे उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की, क्या है उनकी हॉबीज, और बहुत सारी खास बातें।
1: ओके, सो टू बी ऑनेस्ट, बचपन से तो ये कीड़ा नहीं काटा था, लेकिन बचपन से बॉलीवुड फिल्म्स देखने का बहुत शौक था, चटपटी मूवीज देखना और ये सब। और उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड माय कॉलेज, तो मैंने अपनी पढ़ाई विस्लिंग वुड से पूरी की है। आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, एंड अब पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, वैसे पता ही होगा, दैट्स अ फिल्म स्कूल। तो फिल्म स्कूल में ऑब्वियसली देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एक्टिंग का एक डिपार्टमेंट है, फिर सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, तो वहाँ पे फुल फिल्म मेकिंग सिखाई जाती है। तो वहाँ से चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई मेरे लिए, क्योंकि आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दैट वर्ल्ड ऑल्सो। उसके पहले तक मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिला था, टू बी ऑनेस्ट। एंड तो कुछ कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें लगने लगी, कुछ कुछ चीज़ें मन को भाने लगी, एंड यस, तो अभी आप यहाँ पे मुझे देख पा रहे हैं एज एन एक्टर। मैंने एक हमारे कॉलेज में ना डिप्लोमा फिल्म्स बनती हैं, तो जो जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो अपनी एक फुल फ्लेज्ड आई थिंक 15-20 मिनट्स की डिप्लोमा फिल्म बनाते हैं। तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, हालांकि मैं एक एक्टिंग स्टूडेंट नहीं थी, आई वाज अ BBA स्टूडेंट, बट स्टिल क्योंकि उनको कुछ तो शायद अच्छा लगता था मुझे देखना स्क्रीन पर या व्हाटएवर, आई डोंट नो, तो दे गेव मी दैट चांस, एंड दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, वन शॉर्ट फिल्म, डिप्लोमा फिल्म। ओ भाई साहब, इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। तो मन अति सुंदर, तो ऑब्वियसली ऑडिशन राउंड्स होते हैं, एंड हर एक्टर को उसके थ्रू जाना ही पड़ता है, तो मेरे साथ भी वही हुआ, डिफरेंट डिफरेंट ऑडिशन के राउंड्स हुए, एंड सडनली आई लैंडेड दिस रोल, जहाँ पे मुझे पता चला कि एक ऐसा सीरियल है जहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर दिस पार्ट, सो आई गिव दैट ऑडिशन, एंड कुछ चीज़ें क्लिक हुई, एंड आई वॉज लकी इनफ टू लैंड दिस रोल। हॉबीज की बात करें तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है, एक्चुअली आई एम अ डांसर, आई एम कथक ट्रेन डांसर, एंड उसके अलावा आई हैव बीन ट्रेनिंग माई सेल्फ इन टू वेस्टर्न डांस फॉर्म्स, जैसे सालसा, जाइव, बचाटा एंड वो सब। उसके अलावा, डांस के अलावा, मुझे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखना पसंद है, जैसे वो फिल्म मेकिंग सॉफ्टवेयर, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो, जैसे डावनशी हुआ एंड ऐसे, तो ये सब सीखने में, नई नई चीज़ें सीखने में मज़ा आता है।
0: तो भाई हम बातें करते करते पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां पर ढेर सारी शॉपिंग आज होने वाली है और जिसके लिए सृष्टि भी काफी एक्साइटेड है क्योंकि इन्हें सास बहू और बेटियां की तरफ से मिला है 3000 में हेड टू टो तक शॉपिंग करने का चैलेंज, जो चैलेंज सृष्टि ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है।
2: बेटिया के साथ आज आप स्ट्रीट शॉपिंग कर रही हैं, तो आपको बता दूं सास बहू और बेटिया आपको एक चैलेंज दे रहा है जिसमें आपको ये चैलेंज मिलेगा कि 3000 में आप क्या कुछ खरीद सकती हैं हेड टू टो। क्या आपको लगता है 3000 में आप खरीद पाएंगी?
1: चैलेंज तो है ये, लेकिन ठीक है, लेट्स ट्राई। अब लड़कियों की तो बिजनेस कभी खत्म नहीं होती ना, वो तो कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता ही रहता है। कुछ कुछ आइटम्स है विश लिस्ट में, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। अब क्योंकि ये चैलेंज आ गया है, 3000 की लिमिट है और उसमें मुझे हेड टू टो पूरा चीज यू नो फिगर आउट करना है, तो आई थिंक आई विल एंजॉय दैट चैलेंज मोर देन शॉपिंग।
0: तो भाई शॉपिंग की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले सृष्टि पहुँच गई है इस बैग शॉप में जहाँ पर तरह तरह के ढेर सारे बैग्स हैं। भाई बैगवती तो है सबकी ही खास फ्रेंड क्योंकि इसमें ढेर सारी चीजें जो होती हैं और इम्पोर्टेंट चीजें भी, और यहाँ के दाम सुनकर तो सृष्टि को मजा ही आ गया। तो चलिए देखते हैं आज इस बैग शॉप में सृष्टि ने क्या कुछ खरीदा।
1: दादा कैसे करके दिए ये बैग? 100। और ये वाला?
3: सब
1: 100 के है। ओके, और बड़े बैग्स भी हैं आपके पास? नहीं नहीं, इससे बड़े वाले, इससे बड़े वाले नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। तो ये 100 का है ना?
3: कलर भी
1: हाँ, और क्या क्या कलर है?
3: ये कलर आएगा, एक ये दो कलर।
1: ओके,
2: क्यूट बैग देखो।
1: ये कितने का है? ये भी 100। अब ये ऑलरेडी इतना कम प्राइस बोल रहे हैं तो मैं इसमें क्या बार्गेन करूँ। बट आई थिंक आई एम लाइकिंग दिस। और भी उधर है?
3: कलर, कलर
1: हाँ कलर दिखाइए। वैरायटी है भाई, वैरायटी 100 में भाई साहब। खैर ठीक है, बट मुझे यही वाला, अरे कहाँ गया बोला, हाँ आई थिंक हाँ मुझे ये वाला पसंद आ रहा है। सी इट्स क्यूट ना? ठीक है, तो आई थिंक विल टेक दिस। और उसके बाद अब एक बड़ा बैग भी देखते हैं। यस चलो, तो अब एक छोटा बैग तो हमने खरीद लिया है, अब एक रिक्वायरमेंट है बड़े बैग की क्योंकि भाई अब 3000 की शॉपिंग करनी है तो कुछ तो कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए बड़ा बैग चाहिए। तो नाउ हम देखते हैं बड़ा बैग। 500 का है, नॉट बैड ना दादा, लेकिन कितना कितने का लगा सकते हैं? रेट फिक्स है? देखिए ना, कुछ कम करने की कोशिश करिए ना। नहीं, वैसे प्राइस बुरा नहीं है, ठीक है। और ये वाला? अच्छा सारे 500 है क्या? अच्छा सब अलग अलग कुछ कुछ है। अच्छा अच्छा ठीक है।

0: सीरीज 2, ये वाला मुझे इसका पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन हमारा जो आज का मेन एम है, जो एक बड़ा बैग चाहिए जिसमें हम छोटी छोटी चीजें रख सके, तो प्रैक्टिकलिटी वाइज मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. तो आई थिंक हम प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करते हैं, ठीक है? एंड आई थिंक आई विल गो विद दिस वन. तीन चीजें, सबसे पहले फोन, फिर ऑब्वियसली वॉलेट, दैट छोटू वॉलेट जिसमें थोड़े बहुत पैसे रहते हैं, और उसके बाद लिप बाम. चलिए अब थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हैं, कोशिश करते हैं बार्गेनिंग की. हालांकि ज़्यादा प्राइस नहीं बोला है इन्होंने, बट स्टिल थोड़ा सा अगर 10-15 रुपए भी बच कर गए तो बहुत दिल को सुकून मिलेगा. चलिए दादा, इसका सही सही दाम बताइए ना, थोड़ा कुछ 19-20, कुछ भी नहीं? ठीक है, चलिए तो ये दे दीजिए. ओके, सो अभी हमने दो बैग्स ले लिए हैं, एक बड़ा एक छोटा. तो छोटा वाला वॉज 100 एंड बड़ा वाला अभी कम नहीं किया उन्होंने, 600 में ही दिया. तो खैर, तो अभी हमारा टोटल 700 तक पहुंच चुका है. तो मतलब अब हमारे पास 2300 बचे. तो 2300 में देखते हैं और क्या क्या ले सकते हैं.
1: तो भाई, सृष्टि ने खरीद लिए हैं एक नहीं बल्कि दो दो बैग्स. अब बारी टोपी खरीदने की. वैसे इसी के साथ गर्मी के मौसम में सृष्टि ने कैप के साथ साथ खरीद लिया है ये काला चश्मा.
0: ओके, तो भाई गर्मी बहुत है एंड धूप तो कुछ ज्यादा ही है, तो लेट्स चेक आउट सम कैप्स. ठीक है, तो ये देखिए दादा, कुछ तो ऐसे मेरे साइज के कैप्स दिखाइए ना. ओके, कैसा लग रहा है? हाँ दादा, मेरी मुंडी छोटी है, छोटे वाला. हाँ ठीक है,
2: छोटा बड़ा सब कर सकते
0: हैं. हाँ, थोड़ा छोटा ही रखिए,
2: अंदर भी जाएगा,
0: परफेक्ट परफेक्ट. हाँ नाइस. आई एम लाइकिंग दिस. ओके, इसका लेकिन कुछ दाम 150, ठीक है. एंड आई थिंक अभी हमारा फिर टोटल कितना हुआ, 700 प्लस 150, ठीक है. अभी वी हैव होलसम, ठीक है. ये नहीं, आपके पास शेड्स है ना? हाँ शेड्स, मेरे साइज के कुछ शेड्स दिखाइए ना.

0: तो आई थिंक मुझे ये दोनों कॉम्बो अच्छा लग रहा है. दादा ये दो कॉम्बो आप फाइनल. ओके ठीक है. 620 थोड़ा ज्यादा हो रहा है. इसको राउंड फिगर कर दीजिए ना. 600 राउंड. चलो तो 150 एंड 600 तो 750 है.
1: तो भाई चैलेंज के आधे से ज्यादा पैसे अभी बाकी है और सृष्टि निकल पड़ी है फुटवेयर की ओर. यहाँ पर है ढेर सारी वैरायटीज अलग अलग हील्स और फ्लैट सैंडल्स की, जिसकी दीवानी हो चुकी है सृष्टि. तो आइए देखते हैं इस शॉप से इन्होंने क्या खरीदा.
0: अभी हमने दो बैग्स खरीदे, उसके अलावा हमने एक गॉगल्स खरीदा एंड कैप खरीदा. तो टोटल हमारा अभी 1450 हो चुका है. ठीक है, तो दैट मीन्स 1550 अभी बचा हुआ है. और 1550 में अभी और भी चीज़ें हमें लेनी है. तो आई थिंक अभी जो बारगेनिंग का जो टैलेंट है वो थोड़ा प्रो मैक्स लेवल पे लेके जाना पड़ेगा. तो चलिए अब कुछ खरीदते हैं पहनने के लिए. ठीक है,

0: ओके, सो अभी हमारी गाड़ी आके रुकी है फुटवेयर की दुकान पे, एंड यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन मुझे नजर आ रहा है। ऐसे तो मुझे फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट है, बट देखते हैं मन को क्या लुभाता है। ऐसे देखिए, इनके पास बहुत सारे कैसे कलेक्शन है। इसकी प्राइसिंग क्या है?
1: अच्छा, 13, 15 या फिर 600

0: ओके गाइस, तो ये वाला मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है कि ये थोड़ा कुशनी सा है एंड लेकिन मुझे विजुअली ये वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट भी है, तो प्रैक्टिकली फिर ये वाला, बट ठीक है देखते हैं, बार्गेन करने की कोशिश करते हैं। दादा सुनिए ना, ये इसका लास्ट क्या लगाएंगे?
1: 400
0: ठीक है, और ये वाला
1: 450
0: नहीं, 450 तो बहुत ज्यादा।

0: हेड टू टो रेडी होना है, तो ऐसे में आउटफिट पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए पहुंच गई हैं इस शॉप में जहां से उन्होंने खरीदा ये डेनिम टॉप।
1: ओके, सो अभी हमने दो बैग्स ले लिए, एक गॉगल्स ले लिया, एक कैप लिया और एक फुटवेयर लिया। सो इन टोटल, अच्छा फुटवेयर हमारा 350 का आया, सो टोटल अभी 1800 खर्च हो चुके हैं एंड 1200 बाकी है। सो 1200 में अब देखते हैं, एक तो शॉप मुझे नज़र आ रही है, तो देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या मिल सकता है। एंड आई थिंक हो तो जाएगा चैलेंज पूरा, देखते आगे।

ओके सो हम जिस शॉप में आए हैं यहाँ पे दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन, दे हैव समर कलेक्शन. तो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ चीज़ें भी पसंद आई है, मैं अभी शेयर करूँगी आपके साथ. सो समर्स में यूजुअली लोग कॉटन पहनना पसंद करते हैं या तो लेनिन पहनना पसंद करते हैं. तो उस सिनेरियो में मुझे एक लेनिन की ड्रेस मिली है यहाँ पे, ये देखिए. सो सी इट्स वेरी ईजी गोइंग लेनिन ड्रेस. एंड समर्स में तो लेनिन इज सुपर्ब. तो और इसको एक्सेसराइज भी कर सकते हैं विद गुड नेक पीस एंड यू नो हाथ में ज्वेलरी एंड ब्यूटिफुल लगेगा ये वाला. सो आई थिंक ये अब जैसे समर्स में ना ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं. थोड़ा सा ब्राइट कलर्स ना, एक तो ऑब्वियसली ब्राइट कलर है तो सन को बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं तो आपको कम हीट लगेगी. तो ब्राइट कलर्स में एक तो मुझे ये पसंद आ रहा है, ये कॉटन का है. सो कॉटन ड्रेस ठीक ही अच्छा लग रहा है मुझे. एंड इसके अलावा एक ये, अब ये कॉटन नहीं है बट ये इतना ब्यूटीफुल सा कलर है, आई एम लविंग द कलर. तो यस इट्स वेरी वो वाला होता है ना कलर, ऐसे पेपी एंड वैसे बबली सा मूड जो कर दे, ये वो कलर है. सो आई थिंक एंड समर्स में मूड सही रखना इज मेन टास्क. तो आई थिंक यस दिस कलर इज डूइंग दैट. तो अभी मैं तीनों ट्राई करूंगी एंड देखते हैं कि फिट वाइज कैसा है एंड एक्स वाई जी कैसी है, उसके बाद फिर बार्गेनिंग करेंगे.

टॉप मुझे पसंद आ रहा है, वेरी इजी गोइंग, लाइट, बहुत ही लाइट वेटेड है. एंड गर्मियों में भाई लाइट लाइट कलर के कपड़े एज वेल एज लाइट वेटेड कपड़े गोज बेस्ट. सो मुझे एक ये पसंद आ रहा है.

0: ये दोनों हमें पसंद आ रहा है। इसका प्राइसिंग आप बताइए।
1: क्या है मैडम, हमारे इधर टोटल सेल सिस्टम है, टोटल ऑलमोस्ट डिस्प्ले रहता है और टोटल सेल सिस्टम रहता है। ये 850 का है, ये वाला स्लीवलेस वाला जो वन पीस है, ड्रेसेस ये जो है 850 का आएगा। और ये शॉर्ट जो है डेनिम वाला, ये आपका 450 का है।
0: 850 एंड 450, थोड़ा कुछ सही दाम लगाइए ना प्लीज।
1: टोटल हमारा सेल सिस्टम है, हमारे इधर बार्गेनिंग नहीं होता।
0: हाँ लेकिन थोड़ा तो दादा प्लीज ना। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ ये वाला ये चाहिए होगा तो
1: ये चाहिए तो आपको 400 आएगा।
0: 400 50 रुपीज़
1: मेरे तरफ से आप डिस्काउंट लेके जाइए, आगे डिस्काउंट नहीं रहता है।
0: ठीक है चलिए, ये 400 का होगा। ठीक है डन, थैंक यू दादा। तो हमने ये फिक्स किया है और ये 400 में फिक्स हुआ है। 50 रुपए की छूट मिली है हमें। तो अब हमारा टोटल बचता है 800। सो 1200 में से 400 माइनस किया, कितने बचे बच्चों? 800। यस, तो 800 अभी और बाकी है। चलो,
2: तो टॉप तो खरीद लिया, अभी बाकी बचे पैसों से ये खरीदेंगे अपने लिए स्कर्ट। तो चलिए चलते हैं स्कर्ट के इस शॉप में।
0: ओके, सो हेड टू टो में हमने कैप खरीदा, गॉगल्स खरीदे, हमने बैग खरीदा, फुटवेयर खरीदा एंड एक टॉप भी खरीद लिया। तो अब सिर्फ बचता है लोअर एंड यहाँ पे ना हमें दिखे हैं स्कर्ट्स। तो आइए स्कर्ट का कलेक्शन देखते
2: हैं। इस मार्केट में सृष्टि तो अपनी शॉपिंग में बिजी थी कि यहाँ आ गए एकता के फैंस। और देखिए कैसे इन्हें देखकर ये फैंस हो गए हैं काफी खुश। भाई ऑडियंस का प्यार ही तो है जो इन एक्टर्स को मिलता है, तो ऐसे में सेल्फी भी तो बनती ही है।
3: हाय, आप कैसे हो? आप रोज देखते हो हमारे सीरियल? मेरा नाम क्या है?
4: एक भी एपिसोड हम मिस नहीं करते हैं, हमारी मम्मी भी देखती है।
0: तो यहाँ पे हमारे फैंस भी मिल गए हैं शॉपिंग करते वक्त। तो आपका नाम क्या हुआ?
4: आंचल।
0: आंचल, हाँ मैम। आपका नाम?
4: मंजू।
0: मंजू, आपको भी पसंद आता है? हाँ, मनती सुंदर।
4: हाँ, देखती हूँ।
0: कैसा लगता है?
4: बहुत अच्छा लगता
0: है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही होलसम फीलिंग आती है, बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है कि मन अति सुंदर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हमें ये अनुभव करने का मौका मिलता है। एंड थैंक यू सो मच, आपके ज़रिए मैं सारे ऑडियंस को भी थैंक यू बोल रही हूँ जो हमें इतना सारा प्यार दे रही है। एंड थैंक यू।
2: और अब बारी समर के इस मौसम में समरी स्कर्ट खरीदने की।
0: ओके, सो मुझे एक ये स्कर्ट पसंद आ रही है एंड एक और जो मुझे पसंद आ रही है, आई थिंक दिस वन। नाइस ना, ब्राइट ब्राइट सा कलर है। आई थिंक मुझे ये वाली ज्यादा पसंद आ रही है। मतलब दिस इज नाइस सिंपल, लेकिन इसके कलर में कुछ तो है, थोड़ा डेप्थ है इस कलर में। पूछते हैं दादा से कितने की है। दादा ये कितने की है? कितने का?
5: 550
0: का है, हमारे लिए 450 लगाएंगे। अरे ये तो हमारे लिमिट में आ जाएगा। ठीक है, तो दादा ये वाला फिर दे दीजिए। सो गर्मी में इधर कॉटन नहीं तो लेनिन, मुझे पर्सनली लेनिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है मुझे उसमें। सो यस लेनिन।
2: तो भाई इतनी सारी शॉपिंग करने के बावजूद भी सृष्टि के पास कुछ और पैसे बचे हैं जिससे ये खरीदेंगी एक्सेसरीज, यानी कि इनका लुक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।
0: ओके, सो लास्ट हमने खरीदा स्कर्ट विच वाज फॉर 450। तो अब हमारे पास जो बैलेंस बचा है वो बचा है 350। सो 350 में हम ट्राई करेंगे कि 300 के अंदर हम ज्वेलरी खरीद लें एंड उसके बाद फिर बाहर जाके कुछ जूस वूस पिया जाए, इतनी गर्मी है भाई। तो चलो हम आ गए हैं ज्वेलरी स्टोर में एंड देखिए यहाँ पे इनके पास सुंदर सुंदर सा कलेक्शन है। एंड सांप सांप सांप सांप ए स्टारफिश, आई लाइक स्टारफिश। एक ये बहुत मुझे क्लासी लग रहा है, आई थिंक किसी भी ड्रेस टॉप एंड किसी के साथ भी जाएगा। और ये थोड़ा सा अनोखा सा लग रहा है। नाउ पर्सनली आई लाइक स्टारफिश, तो आई थिंक इसलिए भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट देखते हैं। दादा दोनों में ये इसका क्या कॉस्ट है? 250 का, थोड़ा कुछ सही लगाइए ना। हाँ लेकिन थोड़ा कुछ तो सही लगाइए। हाँ नहीं रीजनेबल तो पता ही है, सब रीजनेबल ही होता है, लेकिन थोड़ा कुछ सही लगा दीजिए।
1: 230
0: ठीक है, ठीक है ठीक है, तो फिर ये वाला दे दीजिए।

0: मुझे ये वाला ज्यादा पसंद आ रहा है। तो दादा ये आपने क्या फाइनल प्राइस बोला? 70 बोला?
1: 230।
0: हाँ तो 230 में आप ये पैक कर दीजिए। सो हमने अभी वो तो फिक्स कर लिया, इयर रिंग फिक्स कर ली, लेकिन इनके पास और भी बहुत सारा कलेक्शन है, जैसे कि बैंगल्स हुए, चनचन वाले बैंगल्स हुए, फिर ये कुछ ब्रेसलेट्स हुए। आई थिंक एकता से ज़्यादा ब्रेसलेट्स की दीवानी है निहारिका, वो इस शॉप में आके पागल हो जाएगी। बट ठीक है, कोई नहीं, हम उसकी याद में शॉपिंग करेंगे।

एक तो बाबा मेरे साइज के बैंगल्स और ब्रेसलेट्स मिलते ही नहीं है, इतना पतला सा हाथ है. बट ये जो प्रेसिबल एंड एडजस्टेबल बैंगल्स एंड ब्रेसलेट्स इज लाइक ब्लेसिंग फॉर मी. तो आई थिंक मैं इन्हीं में से कुछ सिलेक्ट करूँगी. नहीं 200 का मतलब दोनों 200 का कि दोनों अलग अलग. नहीं वो तो ठीक है दादा कुछ, लेकिन सही लगाइए ना इसका, सही लगाइए ना. तो ये 120 में कर दीजिए प्लीज. ठीक है 120 में डन. ठीक है डन. ठीक है दादा ये पैक कर दीजिए. सास बहू और बेटिया ने जो मुझे चैलेंज दिया था वो अब कंप्लीट हो चुका है. हेड टू टो स्ट्रीट शॉपिंग विद इन 3,000 रुपीज. चलिए अब कुछ पीते हैं भाई, बहुत गर्मी है. तो बाहर मुझे एक स्टॉल नजर आ रहा है फ्रूट जूस का, तो चलते हैं वहां पे. आइए. तो भाई हमारी स्ट्रीट शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई है, दिन भी थोड़ा बहुत ढल गया है. लेकिन इन सब के बीच में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत जरूरी होता है. तो हम आए एक फ्रूट स्टॉल के पास, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के फ्रूट्स हैं. आई थिंक आई एम गोइंग टू सिलेक्ट वाटरमेलन. सो यस हम वाटरमेलन जूस पिएंगे. वाटरमेलन ऐसे भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए एंड ज्यादा उसमें वाटर कंटेंट होता है, इन जनरल वो आपको हाइड्रेट रखता है. एंड जूस के फॉर्म में मिल गया तो डायरेक्ट हाइड्रेशन.

0: तो भाई अब वक्त हो चला है एकता यानी कि सृष्टि को बाय बाय कहने का, क्योंकि उन्हें अपना छुट्टी का बाकी दिन अपने कामों में भी तो बिताना है।
1: ओके सो आज मैंने कैमरे के सामने दिन बताया, लेकिन बहुत ही अलग सा दिन बताया है कैमरे के सामने, और एंड ऑल थैंक्स टू सास बहू और बेटियाँ जिन्होंने मेरा एक इतना प्यारा सा डे आउट करवाया। इतने टाइम बाद में स्ट्रीट शॉपिंग पे आई, क्योंकि यूजुअली हम आर्टिस्ट को, इनफैक्ट जो भी टीवी इंडस्ट्री में है, हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है कि हम सेट से ज़्यादा देर तक दूर रह पाए बिकॉज ऑफ द वेरी हेक्टिक स्केड्यूल एंड एवरीथिंग। बट आज मेरा डे ऑफ था एंड लकीली सब कुछ अलाइन हो गया। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये अलाइन हुआ, एंड थैंक्स टू सास बहू और बेटियाँ जिन्होंने इतना प्यारा डे आउट करवाया। हमने 3,000 के अंदर हेड टू टो शॉपिंग की है। बहुत ऐसे अलग सा फील हो रहा है। दो, मुझे शॉपिंग की इतनी नॉलेज नहीं है या फिर इतनी मैं प्रो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये चैलेंज था तो चैलेंज फुलफिल करने में तो मुझे बड़ी मज़ा आती है।

0: मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: वैसे मन्नत और विक्रांत, पार्टी तो आप दोनों को भी करनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं, एक दूसरे के साथ। अब वो अलग बात है कि जब भी आप आते हैं एक दूसरे के साथ, आपकी कहानी में जो नेगेटिव किरदार है ना, इन सबको प्रॉब्लम होने लगती है। फिर वो करते हैं प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं आप दोनों के बीच, क्रिएट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर आप हो जाते हैं एक दूसरे से जुदा, फिर से आप आते हैं एक दूसरे के पास और कहानी इसी तरह चलती रहती है। लेकिन फिर भी कहानी हमें सुपर एंटरटेन करती है। लेकर चलते हैं आप सबको मन्नत के सेट पर।
0: बेहोश हुई दुआ, देखी विक्रांत की चिंता, लेकर मन्नत और धैर्य हुए परेशान।

0: टीवी के सीरियल मन्नत में दुआ को सदमा लगा है। उसे ये पता चल चुका है कि विक्रांत भी उसके बाबा है। ऐसे में देखे कैसे वो अकेली कहीं जा रही होती है कि बेहोश हो जाती है, लेकिन वो तो शुक्र है कि वहाँ पर विक्रांत मौजूद थे जो उसे नीचे गिरने से बचाते हैं। और ऐसे में देखिए कैसे वो उसे बेहोशी की हालत से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेहोशी की हालत में भी दुआ अपने बाबा को लेकर ही काफी चीजें बोल रही है। ऐसे में विक्रांत को कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि उसने कस्टडी का केस डालकर काफी गलत किया है। उसने मन्नत, धैर्य और दुआ की फैमिली तोड़ी है और उनकी खुशियों में दर्द भर दिया है।
1: दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ, दुआ

0: वहीं दूसरी तरफ दुआ घर पहुंचती है और वहां पर देखिए कैसे वो मन्नत और धैर्य से सवाल कर रही है, खासकर मन्नत से कि आखिर उसके दो दो बाबा क्यों हैं। ऐसे में मन्नत उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दुआ तो चाहती है कि वो मन्नत और धैर्य के साथ ही रहे और वो उनसे दूर नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो नाराज होकर वहां से चली जाती है और बेचारी मन्नत बहा रही है आंसू। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो दुआ को समझाए तो कैसे समझाए, और दुआ के लिए भी इस उम्र में ये सब कुछ समझना काफी मुश्किल है।
1: आप तो कुछ झूठ बोला पापा, आप ही कहते हो ना बैड लोग झूठ बोलते हैं, आप तो बैड नहीं हो ना।
2: कभी कभी ना अच्छे लोगों ने भी गलत पहुंचा दिया।
3: मैं
2: तो डर गई थी, सोची थी मैं कौन गई थी तो, पर मैं कभी तुम्हारे ऐसा नहीं करूं। बेटा बाबा जी ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जब बाबा जी किसी से बहुत प्यार करते हैं ना तो वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में इतने सारे लोग हो जो उनसे बहुत सारा प्यार करें। जैसे पापा आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, आप हमसे दूर कोई नहीं करेगा, कहीं नहीं करता। आपके पिता है पर आपको तो
1: ना, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मुझे पता है मिलते जरूर ना मुझे आपसे और बाबा से दूर कर देंगे, इसलिए आपने मुझे कुछ नहीं बताया।
0: खैर इन सब के बाद अब मन्नत ने फैसला ले लिया है कि वो विक्रांत को छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी और इस बात से काफी खुश हो रहे हैं मल्ला और याशिका। देखिए कैसे वो आपस में बातें तो कर ही रहे हैं, साथ ही मन्नत के जाने का इंतजार भी कर रहे हैं। तो भाई अब क्या वाकई मन्नत घर छोड़कर चली जाएगी या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: सास बहू और बेटा के रिपोर्टर्स जाते हैं अलग अलग सेट्स पे और लेकर आते हैं आपके लिए ताजा ताजा एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो इस पार्टी में भी हम कर रहे हैं आपको अपडेट। तो ऐसी कौन सी ताजा खबर लेकर आई है हमारी टीम सास बहू और बेटियां, आइए देखें।
0: खतरे में पड़ी लाला की जान, किशोरी पर लगा इल्जाम, किशोरी पर भड़के लाला की मम्मी और मंजरी,
5: क्यों कहा तुमने, हम पूछ रहे हैं क्यों कहा तुमने।
0: दंगल टीवी के सीरियल पतिया नाड़ी में कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां आज लाला पानी में कूद गया था और कुछ लोग उसे बचा कर लेकर आए हैं, लेकिन लाला बेहोश है। ऐसे में लाला की मम्मी और उसकी बहन मंजरी काफी परेशान हो गए हैं क्योंकि वो होश में ही नहीं आ रहा। और ऐसे में किशोरी लाला की जान बचाती है और लाला को होश आ जाता है, लेकिन होश में आते ही लाला बताता है कि ऐसा करने को उसे किशोरी ने ही कहा था। बस फिर क्या था, मंजरी और लाला की मम्मी का गुस्सा किशोरी पर फूट जाता है और वो उसे खरी खोटी सुनाने लगती है।

0: तुझे पूरे पानी की छलांग क्यों मारी? डाला
1: सब कुछ होने के बावजूद भी देखिए कैसे किशोरी लाला को अपने दुपट्टे से ढक देती है। ऐसे में सभी लोग वहाँ खड़े हंसने लगते हैं। तभी मंजरी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने भाई लाला को वहाँ से ले जाती है।
2: लाला से सारे घर वाले बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और मेरे ख्याल से घर वाले भी ये सोच रहे हैं कि अगर शादी होगी तो लाली की जिम्मेदारी अभी ज्यादा है लाला के प्रति, तो उसने क्यों नहीं मानी बात या फिर फोटो क्यों नहीं खिंचाया, इसलिए उनका गुस्सा होना भी जायज है इस वक्त।
3: ऐसा होता है ना कभी कभी इरिटेट जब हो जाता है ऐसा, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ एकदम हंगामा मचा है मेरे दिमाग में, तो उसमें लाला आपसे बार बार मुझे बोल रहा है कि चलो फोटो खींचने चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसको चाहिए मस्ती करना है, मुझे लाली के साथ मजे करना है ये वो ऐसे करके, और मुझे बाबू जी को ढूंढना है, तो मैं उस दिमाग से लगी हुई हूँ कि मैं बाबू जी को कैसे ढूंढ सकूँ। तो हम बच्चे को जब उठे जाए ऐसे बोल देते ना, वैसे ही मैं नॉर्मली लाला को बोल देती हूँ कि तुम्हें जहाँ जाना जाओ बस हमें अकेला छोड़ ऐसे।
1: फिर लाला तो वहाँ से चला गया, लेकिन इसके बाद हुआ सास और बहू का आमना सामना, जहाँ पर किशोरी अपनी सासू माँ को सवाल कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि लाला की मम्मी ने झूठ बोलकर उसकी शादी करवाई है।
4: हम मानते हैं कि हमें ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर आप ये समझती हैं कि हमें ये

0: जब से ये झूठ पे झूठ बोलती जा रही है उसका क्या?
1: ऐसे में किशोरी ले आई है ये घड़ा जिसमें वो पानी भर भर कर अपनी सासू माँ को उनके झूठ गिना रही है।
2: आपका दूसरा झूठ कि हमारा नाम किशोरी मिश्रा है। आपका तीसरा झूठ झूठ पे झूठ बोल के आपने हमें हमारे बाबूजी से नहीं दिया। हमारा सबर का बांध भी अब टूट चुका है। हमें सच जानना है, सब सच। आपको माँ है, अच्छे से जानती है अपने बेटे को। फिर भी आपने क्यों हमारी शादी से? वो भी एक झूठ के साथ। आपने हमसे और हमारी बाबूजी से झूठ क्यों बोला? क्यों?
1: ऐसे में घड़ा तो फूट जाता है, लेकिन असली सच का खुलासा तो तब होता है जब सासू माँ किशोरी को ये बताती है कि ये सारा किया धरा उसी के पापा का है। पैसे लेकर किशोरी के पापा ने उसकी शादी करवाई थी। ये सच जानकर टूट जाती है किशोरी और बहाती है आंसू।
2: हमने काम वाली की बेटी को अपने घर की बहू बनाई। झूठे हम नहीं, झूठे वो है। जाकर पूछो अपने बाप से कि वो 4 लाख का हिसाब दे जो उन्होंने तुम्हारी शादी के बदले हमसे लिए है। तुम अपने परिवार में से कभी नहीं मिल सकते। पूरे होश और हवास में उन्होंने हमारी सारी शर्तें मानी थी। आज झूठ का खिलाफ होता है ना, वो तुम्हारे पापा का है। आज तुम्हें मान सम्मान इज्जत मिल रही है ना, वो सिर्फ इसलिए मिल रही है कि तुम लाला की पत्नी हो, जमाल खानदान की बहू हो। तुम्हें ही रिश्ता यही रखना है ना। चली जाओ हम सबकी जिंदगी से, चली जाओ।

0: वो मुझे ये बोलते हैं कि तो मैं जो करना है करूँ, फिर मुझे जब पता चलता है कि वो हर चीज झूठ बोल रही है मेरे बारे में, मेरा नाम किशोरी मिश्रा नहीं है, फिर भी मैं मेरा नाम किशोरी मिश्रा बना रही है और बोल रही है कि मैं अभी घर से हूँ, हालांकि हूँ तो नौकरानी की बेटी। तो फिर मैं ऐसे पूछती हूँ उनसे कि झूठ पे झूठ क्यों बोल रही हैं आप, हर बात पर झूठ बोलती जा रही है। उन्होंने मुझसे अपने बाबूजी से भी मिलने नहीं दिया, जबकि मैंने देखा था बाबूजी को मेरे सामने, तो उन्होंने बोला कि नहीं जा सकती तुम। तो मैं बस ये क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, जो मेरे मन में चल रहे हैं, वही पूछ रही हूँ उनसे कि क्यों आपने झूठ बोला। और वो कहती है कि तुम्हारे बाबूजी से पूछो, हमने तो सब कुछ बताया था उनको, उन्होंने तुमने क्यों तुम्हें क्यों नहीं बताया। तो और उसके बदले में उनको 4 लाख रुपए दिए होते हैं जो टीकू को देने होते हैं, उसकी वजह से बाबूजी ने लिए होते हैं। तो बोलते हैं, बोलती है कि तुम उनसे पूछो, उनसे सवाल करो, और तुम्हें रहना है तो रो, नहीं रहना तो नहीं रो, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे लाला पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो बस यही है हमारा, इसी चक्कर में फेस ऑफ हो रहा है। हालांकि गलती किसी की नहीं है, वो भी अपने लाला के बारे में सोच रही है, मैं अपने बाबूजी के बारे में सोच रही हूँ, अपने बारे में सोच रही हूँ कि मैं एक अनाड़ी के साथ कैसे रह सकती हूँ घर।
1: तो भाई अब किशोरी का तो

0: दिल टूट गया है, अब वो अपने पापा से जाकर सच जानेगी और हो सकता है अपने पति अनाड़ी को अपना ले। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: आज तो सास बहू और बेटा की ये पार्टी चलेगी नॉनस्टॉप, और उसी तरह है हमारे पास एंटरटेनमेंट का सिलसिला भी नॉनस्टॉप, और एग्जैक्टली ऐसा ही है इनकी कहानी का अपडेट जो लेकर आ रहा है हमारे लिए भरपूर मनोरंजन। तो क्या कुछ हो रहा है गुरु और रूहानी की जिंदगी में आज, क्या आ रही है यहाँ से कोई गुड न्यूज, या फिर से आया है कहानी में कोई नया ड्रामा? लेट्स चेक इट आउट।
2: संदीप ने सौंपा गुरु के हाथों रूहानी का हाथ।

ऐसे में संदीप ने रूहानी का हाथ हमेशा हमेशा के लिए गुरु के हाथों में सौंप दिया और अपने भाई होने का फर्ज निभाया। लेकिन संदीप के जाते ही देखिए कैसे रूहानी फूट फूट कर रोने लगी। भाई कहीं न कहीं वो भी जानती है कि उसके परिवार वाले उसके और गुरु के रिश्ते से खुश नहीं है, तभी तो वो संभाले नहीं संभल रही।

0: अनएक्सपेक्टेड तो थी एक्चुअली. क्या हुआ, इससे पहले जो सीन हुआ है उसमें रूहानी के साथ मैं, मतलब रूहानी बोल रही है कि मैं चली जाऊंगी, घर चली जाऊंगी. तो मैंने उसको समझाया ऐसा ऐसा है, गुरु हमारा अपना नहीं है, हम सब अपने हैं, वो फैमिली तुम्हारी नहीं है, ये फैमिली अपनी है, बट वो नहीं मानते. तो एज अ संदीप, संदीप को आइडिया नहीं था कि उसके मतलब दिल में भी कुछ है वो पॉइंट. तो वो पहली बार उसने देखा कि वो भी थोड़ा अफेक्शन है उस फैमिली से रिलेटेड. हाँ, तो फिर संदीप डिसाइड करता है कि नहीं, अब उसने सोच ही लिया है. तो फिर वो गुरु को फ़ोन करता है और ऐसे ऐसे बुला लेता है कि आ जाओ, तुम आ जाओ और लेके जाओ इसे, अब ये तुम्हारी है. तो फिर वो बारात लेके आता है, तो वो सब मतलब खुश नहीं है इससे, बट एक होता है ना कि जाना तो पड़ेगा, तो उसको भेजते हैं.
1: लेकिन ऑफ स्क्रीन की बात करें तो देखिए कैसे ये कलाकार कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं मस्ती करने का. तभी तो सेट पर ढोल आते ही इनके ताल थिरकने लगे और ये सब मिलकर डांस करने लगे.

0: अरे वो ढोल ढाल बजते हैं तो यार अपने आप अंदर से जाग ही जाता है। चाहे हम सोच तो रहे थे शादी हो तो फिर अच्छे से हो, रूहानी की विदाई अच्छे से हो, बट नहीं बना, कुछ ऐसी चीजें हो गई तो सोचा मजे ले लेते हैं।
1: तो देखा आपने भाई, ऑन स्क्रीन चाहे इनके बीच कितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन इनकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग होती है। उम्मीद करते हैं कि भाई इनकी कहानी आपका यूं ही मनोरंजन करते रहे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अपने दोस्तों के साथ करना एक सैटरडे वाली पार्टी जो सेट कर दे हम सबका मूड, ये तो होता है बहुत ही रॉकिंग। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पार्टी का डीजे हो डल एंड बोरिंग तो नहीं सेट होगा मूड और हो जाएगा शॉकिंग। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं कलर्स टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी की, जिसका नया प्रोमो सामने आया है। भाई इस प्रोमो में आपको बता दे कि खतरे में है अक्षत की जान, जिसे बचाने के लिए मंगल ने भी दांव पर लगाई है अपनी जान।
3: मिशन के लिए मंगल ने लगा दी जान की बाजी।
4: मंगल जी लालच के साथ हैवान बन चुकी हो, मेरे मंगल की जिंदगी के साथ खेलने चली तुम।
5: कृष्णा ने तिकड़म से संगम के साथ कर ली शादी।
1: नजर डालते हैं बरेली के बच्चन के इस नए प्रोमो पर, जहां देखने बड़ा मजा आएगा कि कैसा होगा संगम की शादी का ये सफर।
5: कृष्णा ने तिकड़म से संगम के साथ कर ली शादी, पर औरत रहित इस घर में सिर्फ मर्दों की है आबादी। भैया ससुराल में मचा है छीछा लेदर, कैसे रहेगी संगम बरेली वाले बच्चन के घर। बरेली के बच्चन
1: बहुत जल्द भुवन भाम शुरू करने वाले हैं आने वाली अपनी सीरीज ढिंडोरा 2 की शूटिंग। भाई इसका सीजन 1 2021 में आया था, जिसे दर्शकों ने बेहद ज्यादा पसंद किया। इसी के साथ साथ ढिंडोरा 2 की शूटिंग खत्म होते ही वो शुरू करेंगे अपनी थिएट्रिकल फिल्म कुकू की कुंडली की शूटिंग।

फिर एक बार मोनी रॉय का छाने वाला है जादू कांस फिल्म फेस्टिवल में, जहां वो पहुंचेंगी अपनी इंडो अमेरिकन प्रोडक्शन फिल्म बॉम्बे स्टोरीज के लिए, जिसकी स्क्रीनिंग कांस फेस्टिवल 2026 में होगी। और आपको बता दे कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राहत शाह काजमी ने।

तमन्ना भाटिया की सुपरनैचुरल थ्रिलर रागिनी 3 में अब उनके साथ जुड़ गए हैं आयुष शर्मा भी, वो भी लीड किरदार में।

0: जैकी श्रॉफ की आने वाली फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन रिलीज होगी 29 मई 2026 को। इसका पहला पोस्टर सामने आया है, आइए डालते हैं इस पर एक नजर।
1: मैं चेक सोसाइटी ऑफिस में नहीं सरका पाया।
0: जेठालाल का प्लान क्या फिर एक बार भीड़ ने बर्बाद कर दिया। जी हाँ, देखने के लिए देखिए इसका ये नया प्रोमो।
2: कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
3: हम एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को यहाँ बुला लेते हैं।
4: गरम बॉइलिंग पानी में इसमें ज्वार बाजरा रागी राइस है।
0: मैं अपना कुकिंग टैलेंट दिखा रही है नीना गुप्ता। देखिए ऐसे में वो कैसे भाकरी बनाती हुई नजर आई।
4: जाएगा इसके दो पेड़े बना लेने हैं और अच्छा फूलनी चाहिए। ओके
5: पता नहीं
4: इसका मतलब ये पक गई है ना। ऊपर से घी लगा देंगे और बंद करके रख देंगे। ऐसे घी अंदर भी डाल देते हैं थोड़ा।
0: बीती शाम हुआ दीपाली सैयद का बर्थडे बैश। ऐसे में इनके बर्थडे पार्टी में नजर आए किशोरी शाहने, रुचिता, विशाल कोटियान और बिग बॉस के विनर तन्वी। इसके साथ साथ कई कलाकार इस पार्टी के खास मेहमान बने।

0: जूही उठ गई होगी।
1: कलर्स टीवी लेकर आ रहा है नया शो जिसका नाम है जूही मुई। इसका प्रोमो सामने आया है। आपको बता दे, इस सीरियल में संजय सूरी कंफर्म तो थे ही, लेकिन अब सई देवधर भी इस शो के प्रोमो में नजर आ रही हैं और साथ साथ नजर आ रही हैं ईशा सिंह भी।
2: ग्रीन हर दिन के लिए एक अलग रंग है।
3: फूलों से बातें करती है जूही।
4: ये दुनिया है जूही की।
5: हेलो
4: पाइनएप्पल पापा,
5: यहाँ रख दो बेटा। हाँ मिश्रा जी,
4: वो जितनी दुनिया को अलग नजर आती है उतनी ही दुनिया उसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती है, पर छोटी सी बात
2: करण
4: ठीक से नहीं कह पाती।
6: दी, यू आर जीनियस पापा। वी गॉट द आंसर। हम हफ्तों से ट्राई कर रहे थे, इन्होंने 3 मिनट में क्रैक कर दिया। पापा मुझे नहीं, इन्हें ट्रेन करो फॉर लॉ। क्यों दी?
5: मेरा फर्ज जूही से दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करवाना नहीं है, जूही को दुनिया से बचाना है। राइट जूही?
2: राइट पापा।
1: बॉलीवुड आइकन शिल्पा शेट्टी फिर एक बार तैयार है एक कुकिंग शो को होस्ट करने के लिए। जी हाँ, लेकिन इस बार OTT पर, जिसका नाम है माँ है ना। आपको बता दे कि ये कॉम्पिटिशन में होंगे कई सारे कलाकार जो अपनी फैमिली के साथ इस बैटल को खेलेंगे, यानी कि कुकिंग के कॉम्पिटिशन को। आपको बता दे कि शो का हिस्सा फिलहाल है उर्वशी ढोलकिया जो अपने बेटे के साथ नजर आएंगी।
7: तो कैसा रहा हमारे ये वीकेंड स्पेशल? हमने आपको घर बैठे बैठे करवा दिया ना एंटरटेनमेंट की दुनिया का सफर। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहु और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। एंजॉय द वीकेंड। बाय बाय।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
10: Thank God I get to wake up.
9: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
12: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
8: Good news today is really good. In this, there is no news of the news. It's not a news. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज़ टुडे।

0: बैटलफील्ड के बाहुबली को मिलेगा सुपर कवच। जमीन से आसमान तक हर खतरा होगा ध्वस्त। इंडियन बैटल टैंक को मिला अमर होने का वरदान। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में फिर बदलेगा मौसम। आईएमडी ने जारी किया आंधी बारिश का अलर्ट, 11 से 14 मई के बीच कई राज्यों में दिखेगा इसका असर। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे भक्त। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता माखन लाल का किया सम्मान, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, माथा टेक कर आशीर्वाद लिया, परिवार के सदस्य भी साथ में रहे मौजूद। मॉस्को में दिखा विक्ट्री डे परेड का शानदार नजारा, फ्लाई पास्ट के दौरान आसमान हुआ सतरंगी, ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर से विमानों ने भरी उड़ान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
5: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे दर्शन, अब तक 9,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु हो चुके हैं इसमें शामिल। केदारनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु, अब तक 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु ने किए दर्शन। हर दिन करीब 25,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे बाबा के धाम, फिलहाल श्रद्धालुओं को मिल रहा मौसम का साथ। बद्रीनाथ धाम में उमड़ रहा आस्था का मेला, अब तक 2,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड में भी श्रद्धालुओं का जोश हाई, यमुनोत्री में 1,45,000 से ज्यादा, तो यमुनोत्री में 1,43,000 श्रद्धालु ले चुके हैं आशीर्वाद। पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम ने केदारनाथ धाम में अस्पताल का किया लोकार्पण, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को मिलेंगे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस इस अस्पताल से स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती, यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दी जा रही है प्राथमिकता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया अस्पताल का उद्घाटन, बाबा केदार के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। चारधाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम के सफाई अभियान में जुटे आईटीबीपी के जवान, तप्त कुंड से लेकर ब्रह्म कपाट तक अलकनंदा नदी के तटों के कर रहे हैं सफाई। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस का कायाकल्प, जन सेवा कनेक्ट स्कीम के तहत रेनोवेशन, कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये पोस्ट ऑफिस। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, माता टेक कर लिया मां का आशीर्वाद, परिवार के सदस्य भी साथ में रहे मौजूद। वाराणसी में गंगा तट पर सजी सांझ प्रणामी संगीतांजलि, शास्त्रीय गायिका पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी की जयंती पर हुआ आयोजन, मालिनी अवस्थी सहित कई बड़ी हस्तियां रही मौजूद। अगस्त से भारतीय रेलवे 40 साल पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम को बदलकर लागू करेगा नया सिस्टम, टिकटिंग और रिजर्वेशन में भी होगा बदलाव। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में तेंदुए के हमले के बाद गांव वालों ने दिखाई दिलेरी, तेंदुए को घेर कर बांधा, बाद में वन विभाग ने जंगल में छोड़ा। प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रकृतिवादी और ब्रॉडकास्टर सर डेविड एंटनबरो ने मनाया 100वां जन्मदिन। पिकाडिली सर्कस में विशेष लाइट शो से दी गई शुभकामनाएं। मौसम के मिजाज में बदलाव का सिलसिला रहेगा जारी। उत्तर भारत के कई इलाकों में जारी रहेगा बारिश, गरज चमक और बढ़ते तापमान का असर। उत्तराखंड में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, आंधी तूफान की भी है संभावना। 10 मई से सक्रिय हो रहा है नया पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली समेत पहाड़ी राज्यों में होगी बारिश, चलेंगी तेज हवाएं। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 9 और 10 मई के बीच 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, आंधी तूफान की भी संभावना। पूर्वोत्तर भारत में 9 मई तक छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश की संभावना, अरुणाचल, असम और मेघालय में 12 और 13 मई को कुछ जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक तय समय से भारत पहुंचेगा मॉनसून, 1 जून को केरल तट पर बरसेंगे मॉनसून के बादल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मॉनसून का आना करीब 2 हफ्ते दूर, भारत में सबसे पहले यही होती है मॉनसून की बारिश। ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है भारत के मॉनसून का रास्ता, ऑस्ट्रेलिया में बारिश का मौसम खत्म होने का सीधा असर भारत के मॉनसून पर पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो चुकी है बारिश। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून के समय पर आने की वजह अलनीनो। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में अगले 7 दिनों में होगी बारिश, मॉनसून के सही समय पर आने का बड़ा संकेत। आसमान से उतरे सेना के K9 वॉरियर्स, मणिपुर में दिखाया अदम्य साहस। अभ्यास में 5 डॉग टीमों ने लिया हिस्सा, डॉग हैंडलर्स और मिलिट्री डॉग्स के बीच दिखा जबरदस्त तालमेल और आत्मविश्वास। युद्ध और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये डॉग्स निभाते हैं अहम किरदार, अभ्यास में सैनिकों के साथ मिलकर काम करने की बारीकियों को परखा गया। इन योद्धाओं को हथियार छीनने और घुसपैठियों को दबोचने की मिलती है खास ट्रेनिंग, खामोशी से मिशन को अंजाम देने में है सक्षम ये डॉग्स। लीमाखोंग मिलिट्री स्टेशन पर अभ्यास को दिया गया अंजाम, घने जंगलों में छुपे दुश्मनों को ढूंढने की क्षमता को परखा गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एनएस राजा सुब्रमणि होंगे देश के नए सीडीएस, मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान की लेंगे जगह। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन होंगे देश के नए नौसेना प्रमुख, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। संगम नगरी प्रयागराज के युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर की सौगात, नगर निगम ने यमुना नदी में शुरू किया एडवेंचर स्पोर्ट्स। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 250 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया वाटर स्पोर्ट्स, नगर निगम प्रयागराज ने यमुना रिवर बैंक वोट क्लब पर वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का किया आगाज। वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रयागराज के लोगों को अब दूसरे शहरों का नहीं करना होगा रुख, दूसरे शहरों के युवाओं को भी मिलेगा वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने का मौका। गुजरात के गिरनार के जंगलों में शेरों की बढ़ती आबादी को बचाने के लिए वन विभाग की बड़ी पहल, हाईवे पर तैनात की गई विशेष पेट्रोलिंग टीम। शेरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग सतर्क, कई मौके पर ट्रैफिक रोककर शेरों और शावकों को पार करवाया जा रहा है सड़क। वन विभाग हाईवे पे स्पीड ब्रेकर और चेतावनी साइन बोर्ड लगाने की कर रहे हैं तैयारी, शेरों की मूवमेंट में नजर रखने के लिए कैमरा और सेंसर सिस्टम लगाने की योजना। जूनागढ़ वन विभाग के लोगों से अपील, सड़क पर अगर शेर दिखाई दे तो वाहन धीमे चलाएं, हॉर्न न बजाने और वन्य जीवों को परेशान न करने की हिदायत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से के सनशाइन पीक से 24 सैलानियों का सफल रेस्क्यू, मौसम खराब होने पर फंसे थे पर्यटक, सेना के विमान की मदद से उन्हें किया गया रेस्क्यू। 1 रुपए में खाना खिलाकर सैकड़ों गरीबों को सहारा बना गाजियाबाद का एक दंपति, कोरोना महामारी के समय शुरू किया था लोगों को खाना खिलाने का ये नेक काम। पिछले 4.5 साल से रोजाना लोगों को 1 रुपए में खाना खिलाते हैं गाजियाबाद के पंडित गोपाल पुजारी, अब 800 से ज्यादा लोगों को खिलाते हैं 1 रुपए में खाना। 1 रुपए की थाली में मिलती है रोटी, सब्जी, चावल, दाल और मिठाई, रोज बदलता है खाने का मेन्यू, 1 रुपए लेने के पीछे स्वाभिमान को सम्मान दे रहा है मकसद। गरीबों, जरूरतमंदों के लिए बड़ा सहारा है पंडित गोपाल पुजारी की रसोई, गोपाल ने बताया धीरे धीरे मिशन से जुड़े बहुत लोग हर रोज दे जाते हैं जरूरी चीजें। लोगों का पेट भरने के साथ साथ समाज सेवा और इंसानियत का संदेश देना है इस मुहिम का मकसद। यूपी के सहारनपुर में दूल्हे ने लौटाए दहेज के 2.5 लाख रुपए, शगुन मिलिया सिर्फ 1 रुपए और नारियल। दहेज प्रथा के खिलाफ दिया संघर्ष। दूल्हा शिवा सैनी के फैसले की हो रही है सराहना, युवाओं के लिए प्रेरणा साबित होगा शिवा का यह निर्णय। शादी समारोह में किया मीनाक्षी संग विवाह। बिहार में फिल्म सिटी के विकास के लिए सीएम सम्राट चौधरी से मिले गोरखपुर के सांसद रवि किशन। फिल्म सिटी बनने से पहले फिल्म निर्माण का मिलेगा विकल्प। मथुरा वृंदावन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। अक्रूर घाट का होगा कायाकल्प। अक्रूर घाट के सौंदर्यकरण के लिए करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी। घाट पर बनेंगे प्लेटफॉर्म सीढ़ियां। टेक कंपनी एप्पल ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 करोड़ रुपए के निवेश का किया ऐलान। क्लीन मैक्स के साथ 150 मेगावाट क्षमता निर्माण की योजना। देश का रियल एस्टेट बाजार 5.8 लाख करोड़ रुपए डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद। फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक 2034 तक 906 अरब डॉलर के नए घरों के निर्माण की संभावना। ईईएस रिपोर्ट के मुताबिक 6000 यूरोपीय कंपनियां भारत की जीडीपी में लगभग 5% दे रही है योगदान। पिछले 10 साल में भारत में 218 बिलियन यूरो का किया गया निवेश। अगस्त से भारतीय रेलवे 40 साल पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम को बदलकर नया आधुनिक सिस्टम लागू करेगी। टिकटिंग और रिजर्वेशन में भी होगा बदलाव। अमेरिका में भारतीय आम के बड़े दाम, एक साल में 4200 से 5600 रुपए प्रति बॉक्स हुई इसकी कीमत। अल्फांजो, केसर, चौसा और बंगन पल्ली आम की अच्छी डिमांड।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
10: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद। यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जर्नल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
11: What about me, Jack? What about me?
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
12: Well played, Jack. Well played.
7: Jack FM, playing what we want.
6: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
13: Good news today.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में फिर बदलेगा मौसम। आईएमडी ने जारी किया आंधी बारिश का अलर्ट, 11 से 14 मई के बीच कई राज्यों में दिखेगा इसका असर। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे भक्त। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता माखन लाल का किया सम्मान, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, माथा टेक कर लिया मां का आशीर्वाद, परिवार के सदस्य भी साथ में रहे मौजूद। मॉस्को में दिखा विक्ट्री डे परेड का शानदार नजारा, फ्लाई पास्ट के दौरान आसमान हुआ सतरंगी, ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर से विमानों ने भरी उड़ान।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ही खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। देखिए, शनि की कृपा जिसको मिल जाए उसके तो वारे न्यारे ही हो जाते हैं। जिंदगी में खुशहाली और ऐश्वर्य का बसेरा हो जाता है। शनि की शुभता मिलने से साढ़े साथी और ढैया का प्रभाव भी शुभ फल देने लगता है। तो ऐसे में आज हम आपको शनि देव के चमत्कारी धामों की महिमा बताएंगे। देखिए, माना जाता है कि शनि धाम के दर्शन करने वाले हर भक्त पर शनि की कृपा बरसती है। तो चलिए चलते हैं शनि देव के धाम, जिनके दर्शन से हर भक्त की प्रार्थना होगी स्वीकार।

0: ज्योतिष के संसार में माना जाता है जो मानव सदैव सत्कर्म करता है सच का साथी होता है, वो सदैव शनि देव की कृपा पात्र होता है। और जो मानव अधर्म का साथ देता है वो जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शनि के दंड का अधिकारी हो जाता है। जीवन में खुशियों की सौगात पाने के लिए शनिदेव की कृपा पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि शनिदेव के ग्रहों में सबसे प्रभावशाली माना गया है और वो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं।
1: शनि केवल उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति धर्माचारी होता है। किसी भी धर्माचारी व्यक्ति को शनि कष्ट नहीं देते। पाराशर ने कहा, शनि जिसको जैसा देखता है वैसा फल देता है। तो शनि की दृष्टि उस व्यक्ति पे पड़ती है, कुदृष्टि, जो व्यक्ति पापी हो, चरित्र अच्छा ना हो और विशेष तौर पे वंचितों को कष्ट देता हो, जो गरीब हैं, जो दया के पात्र हैं, उन लोगों को जो व्यक्ति कष्ट देता हो, शनि उसको निश्चित कष्ट ही देगा, चाहे उसका राजयोग कारक क्यों ना पड़ा हो।
0: यही वजह है कि लोग शनिदेव की पूजा में बहुत सावधानी बरतते हैं और उनके प्रकोप से बचने के लिए शनिवार के दिन उनकी पूजा करते हैं। देश के हर कोने में शनिदेव को पूजा जाता है, लेकिन शनिदेव के मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। आज हम आपको शनिदेव के उन धामों के बारे में बताएंगे जहां विराजते हैं शनिदेव। तो सबसे पहले जानते हैं शनि शिंगणापुर की महिमा।
1: इस कलयुग में इसमें शनिदेव सर्वप्रथम पूजनीय कहलाए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस कली काल में शनि की पूजा करने वाला व्यक्ति जीवन के कष्टों से मुक्ति पाता है। शनि के कुछ स्थान ऐसे अति महत्वपूर्ण हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं, जिनमें से एक शनि शिंगणापुर है। शनि शिंगणापुर में भगवान शनि स्वयं प्रकट हुए और स्वयं स्थापित है। ऐसा दिव्य स्थान है कि शनिकृत पीड़ा ही नहीं, जीवन के किसी भी प्रकार के दुर्योग चले आ रहे हो व्यक्ति को, तो यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति के जीवन में आनंद भरने लगता है, उसकी पीड़ाएं कम होने लगती हैं।
0: महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। शिंगणापुर के चमत्कारी शनि मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा है। ये प्रतिमा 5 फीट 9 इंच ऊंची और 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव की इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। कहते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करना। और ये सब संभव हो सकता है उत्तम कर्म और सदाचार से। चलिए अब आपको शनिदेव के दूसरे पावन धाम में लेकर चलते हैं, जो बना है रजवाड़ों के शहर इंदौर में। माना जाता है कि इस धाम में आने वाले भक्त की हर कामना पूरी करते हैं शनिदेव। शनिदेव का प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर जूनी इंदौर में स्थित है। ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जूनी इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनि देवता स्वयं पधारे थे। मंदिर के स्थान पर लगभग 300 वर्ष

0: ख्याति शनिचरा मंदिर के नाम से है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास एंटी गांव में शनिदेव मंदिर है। इस त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। माना जाता है कि यह प्रतिमा आसमान से टूटकर गिरे एक उल्का पिंड से निर्मित है। ज्योतिष और खगोलविद मानते हैं कि शनि पर्वत पर निर्जन वन में स्थापित होने के कारण ये स्थान विशेष प्रभावशाली है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनि शिला भी इसी शनि पर्वत से ले जाई गई है। मान्यता है कि हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था। मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है।
1: कुछ चीजों का लोगों का अपमान ना करें, विशेष तौर पे अपने से छोटे वंचित दलित जो लोग हैं उनका अपमान कभी ना करें। शनि का कहना यह है कि मैं वंचितों में वास करता हूँ, जो कोई व्यक्ति इनको कष्ट देगा मैं उसको कष्ट दूंगा। तो चरित्र अच्छा रखें, भोजन और भजन इन बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और शनि भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं, उनके भक्त हैं, तो जो भगवान कृष्ण के नामों का जाप भगवान शनि के निमित्त करता है, उनके सामने बैठ करता है, उस व्यक्ति को शनि तुरंत अपनी कृपा में ले लेते हैं।
0: माना जाता है कि शनिदेव के इन सिद्ध धामों के दर्शन मात्र से ही शनिदेव की विशेष कृपा मिल जाती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है।
2: ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि शनि की कृपा से जीवन का हर वैभव पाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें कर्म फल दाता माना जाता है। हमने अब तक आपको शनि देव के 3 चमत्कारी धामों की महिमा बताई। यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी करते हैं शनि देव। शनि का ऐसा ही चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी है, जहाँ शनिदेव भक्तों को देते हैं कामना पूर्ति का वरदान।

0: जो ईश्वर के चरणों में झुकाता है शीश, उसी के पक्ष में फैसला करते हैं न्यायाधीश। शनि की दृष्टि से कोई नहीं बचा, वे पाप और पुण्य का लेखा जोखा साथ रखते हैं शनि देव। माना जाता है कि जो भी इंसान धर्म संगत जीवन शैली का पालन करता है, शनि कृपा से उसके जीवन में खुशहाली और सफलता का वास हो जाता है। जी हाँ, शनि अगर मेहरबान हो जाए तो आपकी तरक्की नहीं रुक सकती, लेकिन अगर आप अधर्म करेंगे और शनि की नजर आप पर पड़ गई, तो आपको संकट और परेशानियां घेर सकती हैं। सुनने में ये डरावना लगता है, लेकिन यही सच है कि शनि खुश तो यशवान बनाते हैं, शनि नाराज तो अपयश देते हैं। ज्योतिष के जानकार भी मानते हैं कि शनि देव दुष्टों को परेशान कर देते हैं, उनके साथ सख्ती करते हैं और उनको अपयश देकर न्याय करते हैं, तो वहीं सज्जनों को यशवान बनाकर वरदान देते हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण करते हैं शनि देव। वैसे तो आप शनि के किसी भी दरबार में जाकर हाजिरी लगा सकते हैं, लेकिन देश के कुछ शनि मंदिर शनि की कृपा के लिए खास माने गए हैं। माना जाता है कि अगर आप शनि के बुरे प्रभाव और उनकी कुदृष्टि से बचना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ शनि मंदिर में अर्जी लगाएं, जिससे आप पर बरसती रहे शनि देव की कृपा। आइए आपको शनि देव के इस खास धाम की महिमा बता देते हैं।
1: किसी व्यक्ति को अगर शरीर में रोग या उसको अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी चल रही हो, तो वो शनि देव के दर्शन करके उनको तेल चढ़ाए। विशेष तौर पे जो व्यक्ति वहां पर छाया पात्र का दान कराए, उनके चरणों में निवेदन कराए, उस व्यक्ति के शारीरिक पीड़ाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। किसी का भाग्य मंद चल रहा हो तो शनि देव के मंदिर में जाकर भगवान को जल और तेल का अभिषेक करने के पश्चात भगवान को काले रंग के वस्त्र दान करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको जीवन में तुरंत तकलीफें दूर होकर उन्नति मिलने लगती है।
0: शनिदेव का यह मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। ये शनि धाम के रूप में विख्यात है। ये मंदिर प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से 2 किलोमीटर दूर कुशवरा के जंगल में है। भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। यहां प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने की परंपरा है। माना जाता है कि शनि सूर्य पुत्र हैं, जो सूर्य की उपासना

0: उपासना करता है उसकी कुंडली का सूर्य स्वतः ही बलवान हो जाता है। और माना जाता है कि जिसका सूर्य बलवान होता है वो धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित होता है। माना जाता है कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करना सर्वश्रेष्ठ तरीका है। और यदि इसके साथ शनिदेव का व्रत भी रखा जाए तो आप पर शनिदेव की बरस सकती है महाकृपा। देश की राजधानी दिल्ली में भी बना है शनिदेव को समर्पित मंदिर, जो बना है फतेहपुर बेरी में। आइए जानते हैं इस शनि धाम की महिमा। यह मंदिर दिल्ली के मेहरोली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति विद्यमान है। ये मूर्ति अष्ट धातुओं से बनी है। यहाँ आने वाले भक्त की मुराद पूरी होती है। शनि का यह धाम भक्तों की आस्था का केंद्र है।
1: किसी व्यक्ति को संतान संबंधी आदि परेशानी चल रही हो, या किसी के वाहन, किसी की फैक्ट्री आदि में तकलीफ लगातार चल रही हो, उनका तैलाभिषेक करे तो उस व्यक्ति की बंद पड़ी फैक्ट्रियां भी चलने लगती हैं, उसके वाहन आदि से आने वाली परेशानियां लगातार दूर होने लगती है। जिन लोगों को लगातार रोड एक्सीडेंट्स का खतरा या लगातार रोग बना रहता है, वो भी शनि की कृपा लें अगर, तो उनको इन सब पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है। किसी व्यक्ति के रोजगार आदि में समस्या लगातार चल रही हो तो वो दर्शन मात्र से अपने रोजगार की पीड़ा से मुक्ति पा लेता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि शनि की कुदृष्टि अगर पड़ जाए तो किसी का भी बचना असंभव है। शनि के प्रकोप से ना तो रावण बच पाया और ना ही दुष्ट बच सकते हैं। तो आप भी शनि देव की कृपा पाने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए और शनि के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए शनि के धाम जाइए। शनि देव प्रसन्न होंगे और आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे।
2: शनिदेव के चमत्कारी धामों की महिमा बता रहे हैं। अब तक हमने आपको शनिदेव के 5 चमत्कारी धाम के बारे में बताया, तो चलिए अब आपको बताते हैं उसके कुछ खास उपाय जिससे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं शनिदेव।

0: माना जाता है कि शनि की ढैया, शनि की क्रूर दृष्टि, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी को भी भयभीत कर देते हैं। शनिदेव के बुरे प्रभाव और उनकी क्रूर दृष्टि से बचने के लिए शनि को प्रसन्न करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं शनि को प्रसन्न करने के कारगर किन उपायों से आप पर मेहरबान होंगे शनिदेव।
1: हर व्यक्ति को 7.5 में 3 ढैया शामिल होती है। 3 बार से 2.5 साल की व्यक्ति के ऊपर किसी भी राशि के ऊपर आती है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर 7.5 आ रही हो तो किसी व्यक्ति को 3 अलग अलग पायों से आएगी। जिस पाए से आएगी उसका फल कहाएगा। लेकिन शनि की 7.5 कभी भी किसी व्यक्ति को ये ज्ञान देने के लिए आते हैं उसने जीवन में क्या किया, या उसके जीवन में जो लोग हैं वो उसके लिए जो दिख रहे हैं वही हैं या नहीं, ज्ञान दिखाने आती है। तुला पे तोलने के लिए आते हैं हर व्यक्ति हर रिश्ते को। 7.5 के प्रभाव में हर व्यक्ति को उसके मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसकी क्षमताओं का ज्ञान हो जाता है और उसके रिश्तों का ज्ञान हो जाता है। अगर पहले शुरुआत में ही शनि के 7.5 आते ही आपको पीड़ा दे रही है तो अंत में जाती हर पीड़ा का मूल्य आपको चुका के जाती है। और ढैया भी इसी प्रकार से, ढैया किन पांव से आई है, जिन राशियों पे किसी धर्माचारी व्यक्ति को ढैया हो 7.5 हो नहीं बुरा प्रभाव देती, और शनि की कृपा होगी तो व्यक्ति ढैया और 7.5 में भी तरक्की करता है।
0: काला तिल, तेल, काला वस्त्र, काली उड़द शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। इसी से ही शनि की पूजा होती है। शनिवार व्रत रखें और शनि स्त्रोत का पाठ करें। शनिवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। शनिदेव की प्रतिमा की विधि पूर्वक पूजा करें। शनि मंदिर में नीले लाजवंती के फूल, तिल, तेल, गुड़ अर्पित करें। शनिदेव के नाम से दीप जलाएं। पूजा के बाद अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। शनिदेव की पूजा के बाद राहु केतु की पूजा भी करें। शनिवार को पीपल में जल दें और पीपल पर सूत्र बांधकर 7 बार परिक्रमा करें। उत्तम फल पाने के लिए उत्तम कर्म करना भी जरूरी है, क्योंकि मेहनत करने से ही कामयाबी देते हैं शनिदेव। धर्म ग्रंथों में शनिदेव को कृपालु माना गया है। उनकी छत्र छाया में आए हर इंसान का कल्याण होता है। तो आस्था के इन पावन धाम में शीश झुकाइए, आपकी हर समस्या दूर करेंगे शनिदेव।
2: तो हम भी यही आशा करते हैं कि आप पर भी बरसे शनिदेव की कृपा। खैर, इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: अक्सर कहा जाता है कि वक्त बड़ा ही कीमती होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। घड़ी देखकर हर काम किया जाता है, घड़ी की सुइयां थम जाए तो सब गड़बड़ होने लगता है। तो देखिए अभी के दौर में जो घड़ी हमें दिखाती है, वक्त दिखाती है, मगर एक वैदिक घड़ी भी होती है जो वक्त, मुहूर्त, तिथि, वार और नक्षत्र तक बता सकती है।

0: ये वैदिक घड़ी सिर्फ समय बताने का यंत्र नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति और खगोलीय ज्ञान का प्रतीक है। हाल ही में बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक घड़ी स्थापित की गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी भी वैदिक घड़ी को देखने पहुंचे थे। अब काशी की तरह पूरे देश के मंदिरों में वैदिक घड़ी लगाने की योजना है। ये विक्रमादित्य काल की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने की कोशिश है, क्योंकि ये घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, ये वैदिक घड़ी सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक की समय गणना करती है और एक दिन को 30 मुहूर्त में बांटती है। प्रत्येक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है, साथ ही नक्षत्र और तिथि जैसी जानकारी भी देती है। दुनिया जानती है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में संसार की पहली वैद्यशाला है। पश्चिमी देशों से पहले उज्जैन से ही समय की गणना होती थी। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं। काल की गणना की वजह से उन्हें महाकाल कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर देश भर के मंदिरों में वैदिक घड़ी लगाने का काम हो रहा है। इसी के तहत वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक घड़ी स्थापित की गई, जिसका वजन लगभग 700 किलोग्राम है। अब सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में वैदिक घड़ी लगाने की योजना है। इसके अलावा अयोध्या के राम मंदिर में भी वैदिक घड़ी लगेगी। देश के सभी बड़े मंदिरों में ऐसी ही वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी। भविष्य में जब पूरे मंदिरों में ये वैदिक घड़ी बजेगी, तो हर घंटी के साथ सनातन का संदेश घर घर तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ये ऐसे वीडियो हैं जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे, और इसके साथ कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और आपको हैरान भी कर देंगे।
2: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बारातियों ने गर्मी का ऐसा तोड़ निकाला है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स के पसीने छूट जाएं। अक्सर शादियों में आपने नाच गाना और बैंड बाजा देखा होगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही निराला है। बाराती ठंडी हवा के झोंकों के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक छोटी सी ट्रॉली पर बड़े बड़े कूलर रखे गए हैं। अब आप सोचेंगे कि सड़क पर कूलर चलेंगे कैसे, तो भाई इसका भी सॉलिड इंतजाम है। कूलर को पावर देने के लिए साथ में पोर्टेबल जनरेटर फिट किया गया है, मतलब बारात जहाँ जहाँ जा रही है ठंडी हवा का पूरा काफिला साथ चल रहा है। एक दुल्हन की विदाई के समय धान या चावल फेंकने की रस्म निभाई जा रही है। पीछे खड़ी उसकी माँ अपने आंचल को फैलाकर उसे रोकने का काम कर रही है। अब तक माहौल पूरा दुख भरा लगता है, लेकिन अगले ही पल जो कुछ भी होता है उसे देख किसी के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगी। दरअसल इस रस्म के दौरान जब दुल्हन अपने हाथ से पीछे की तरफ बिना मुड़े धान या चावल को फेंकती है, तो उनमें से कुछ दाने उछल कर उसकी माँ के मुँह में चले जाते हैं, जिसके बाद माँ का रोना धोना तुरंत बंद हो जाता है और वो अपने मुँह से धान के दानों को निकालने की पूरी कोशिश करने लगती है। वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि शेरों का एक पूरा कुनबा एक अकेले भैंसे को घेर कर खड़ा है। शेर उस पर कहर बनकर टूट पड़े हैं, लेकिन भैंसा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सामने आए एक शेर को जोरदार सींग मारकर हवा में उछाल दिया। हालांकि 3-4 शेर लगातार उस पर हमला कर रहे थे और उसे नोच रहे थे, लेकिन इस बीच अचानक दूर से धूल का गुबार उठा और भैंसे के करीब एक दर्जन साथी गैंगस्टर की तरह वहां पहुंच गए। अपने दोस्त को मुसीबत में देख बाकी भैंसों ने आओ देखा न ताओ और शेरों पर हमला बोल दिया। नजारा ऐसा था कि भारी भरकम भैंसे शेरों को फुटबॉल की तरह हवा में उछाल रहे थे। शेरों को भी समझ आ गया कि यहां दाल नहीं गलने वाली, खिसक लेने में ही भलाई है। बड़े बुजुर्गों को अक्सर नई पीढ़ी तकनीक सिखाती है। ये लोग सीखते भी बड़े मन से हैं, लेकिन अपने तरीके से। जैसे पहले सब कुछ लिखकर सीखा जाता था, एक नानी का ऐसा ही वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर धूम मचाए हुए है। वीडियो में नानी सीख रही हैं और नातिन से खा रही है। ये मोमेंट याद रखने वाला बन गया है। वीडियो की सबसे खास बात यह है कि नानी सिर्फ सीख नहीं रही थी, वो सब कुछ याद कर लेना चाहती थी, इसलिए वो एक एक पॉइंट लिख रही थी। अच्छे से समझने के लिए वो डायग्राम भी बना रही थी। उनका डेडिकेशन भी तो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
3: ठीक है,
4: तो
3: इसका मतलब हो गया।
2: रंगोली ऐसी कला है जिसको बनाने में धैर्य चाहिए होता है। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट अपनी उंगलियों से कुछ ऐसा गढ़ देते हैं कि आंखों को यकीन भी नहीं होता है। साउथ कोरिया की सड़कों पर ऐसी ही अद्भुत रंगोली बनाई गई है। ये रंगोली एक इंडियन आर्टिस्ट भाग्यश्री ने बनाई है। ये आर्ट इतना सुंदर है कि इसके बनते बनते सड़क पर भीड़ ही इकट्ठा हो गई। ये 20 फुट ऊंची रंगोली भाग्यश्री ने 4 घंटों में बनाई। वीडियो में पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें भाग्यश्री सड़क पर बैठकर पहले से बनाई आकृति में सावधानी से रंग भरती दिख रही है, जबकि आसपास के लोग उन्हें घेरे हुए हैं और उनके आर्ट को देखकर हैरान हो रहे हैं।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
5: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
6: One more, let's go.
5: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
7: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your master's in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
8: पत्रकारिता करते हैं, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में फिर बदलेगा मौसम, आईएमडी की ओर से आंधी बारिश का अलर्ट, 11 से 14 मई के बीच कई राज्यों में दिखेगा इसका असर। पवित्र चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी लगातार था। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, पूजा अर्चना कर लिया मां का आशीर्वाद, परिवार के सदस्य भी साथ में रहे मौजूद। मॉस्को में दिखा विक्ट्री डे परेड का शानदार नजारा, फ्लाई पास्ट के दौरान आसमान हुआ सतरंगी, ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर से विमानों ने भरी उड़ान।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जेएनपी स्पेशल। तो देखिए, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही जो चीज सबसे पहले हमारे जहन में आती है, हमारे दिमाग में आती है, वो या तो सूरज की तपिश है या फिर मीठे और रसीले आम है जिनकी खुशबू और मिठास का देख रहे हैं जेएनपी स्पेशल। तो देखिए, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही जो चीज सबसे पहले हमारे जहन में आती है, हमारे दिमाग में आती है, वो या तो सूरज की तपिश है या फिर मीठे और रसीले आम है जिनकी खुशबू और मिठास का हर कोई दीवाना है। देखिए, दशहरे की बेमिसाल खुशबू से लेकर लंगड़े की मिठास तक, मालदा के रसीले स्वाद से लेकर चौसे की लज्जत तक, आम गर्मियों की शान है। या यूं कहें कि नाम भले ही इसका आम है लेकिन स्वाद सिर्फ खास नहीं बल्कि बेहद खास है। आज हम आपको आम की कहानी सुनाएंगे, आम के नामों से जुड़ा इतिहास भी बताएंगे और कैसे फलों का राजा आम कारोबार का भी राजा है ये भी बताएंगे।

हापुस की शाही खुशबू है तो लंगड़े की बेमिसाल मिठास। कशहरी की नजाकत है तो चौसे की लज्जत भी है। मालदा का रसीला स्वाद है तो तोता परी का जुदा अंदाज है। लेकिन ये खास होकर भी आम ही है। अलबत्ता नाम भले ही आम हो लेकिन स्वाद सिर्फ खास नहीं बेहद खास है। गर्मियों का मौसम आम के दीवानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं रहता। तपती गर्मी हो, सूरज की तपिश हो या फिर पसीने से तर बतर दोपहर, अगर इस मौसम में कुछ सुकून देता है तो वो फलों का राजा आम ही तो है। जिसकी बेमिसाल खुशबू और लाजवाब स्वाद जुबान पर मिठास घोल देता है। कहने को तो सबर का फल मीठा ही होता है लेकिन हम तो कहते हैं कि सबर का फल आम होता है क्योंकि आम का नाम आते ही मिठास खुद ही आ जाती है। आम की मिठास और इसकी खुशबू भारतीय जनमानस की रग रग में बसती है। इसे केवल एक फल कहना इसकी गरिमा को कम करने जैसा होगा। आम तो साक्षात अमृत फल है।

शाखों पर लदे इन आमों को देखिए, ये किसी तोहफे से कम नहीं है। हापुस, लंगड़ा, सिंदूरी, तोतापरी, दशहरी और चौसा, आप बस नाम लेते जाइए, जुबान पर लज्जत बढ़ती जाएगी।

इसका नाम भले ही आम हो लेकिन ये कितना खास है उसको बताने की जरूरत नहीं। कविताओं और साहित्य में इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोक गीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है।

0: ये सिर्फ एक फल नहीं, ये बचपन की वो यादें हैं जो आज भी हम और आप अपने दिलों में समेटे हैं। क्योंकि हर आम एक कहानी है और मिठास एक एहसास है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
1: देखिए, कहते हैं कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन बात जब आम की हो तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में मिलने वाले आमों का जिक्र होना तो लाजमी है। देखिए, महाराष्ट्र के रत्नागिरी का अल्फांजो हो, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद का दशहरी हो, बनारस का चौसा, दक्षिण भारत का बंगनपल्ली या सफेदा, कर्नाटक का बादामी और बंगाल के हिमसागर आम की तो अपनी ही डिमांड है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं।

0: कहने को तो आम की सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन भारत में आम की लगभग 1500 प्रजातियां पनपती हैं, जिनमें से करीब 1000 किस्में आम तौर से खाई और बाजार में बेची जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले हर आम का अपना एक अलग मिजाज, अपना रंग और अपनी एक खास मिठास होती है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर इलाके का अपना एक खास आम है, इसलिए भारत को आमों का देश भी कहा जाता है। दशहरी की बेमिसाल खुशबू, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मशहूर दशहरी आम की। लखनऊ के मलिहाबाद की गलियों में दशहरी की मिठास घुली मिलती है। पतली गुठली और लंबी बनावट वाला ये आम अपनी बेमिसाल मिठास के लिए मशहूर है। लगभग 200 से 300 साल पुराने इतिहास वाले इस आम का नाम काकोरी के पास दशहरी गांव से पड़ा है। सरकार ने भी 200 साल पुराने इस पेड़ को ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। रसीला लंगड़ा आम, वहीं वाराणसी का लंगड़ा आम अपने नाम की तरह ही दिलचस्प है। लंगड़ा नाम सुनते ही पहली बार में अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प मानी जाती है। कहते हैं बनारस के एक मंदिर में रहने वाले एक साधु जो पैरों से दिव्यांग थे, उन्होंने आम के पौधे लगाए थे। जब इन पेड़ों पर फल आए तो उनका स्वाद लोगों को पसंद आया, तभी से ये आम भी मशहूर होते चले गए और आज लंगड़ा आम बनारस ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है।
1: आम की किस्मों में भारत में इतनी अधिक विविधता है जिसको का वर्णन करना आसान नहीं है, लेकिन उतने ही इन आमों के नाम भी रोचक हैं। किसी आम को अलिफ लैला, अगरबत्ती, नाजुक बदन, बेनज़ीर के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पे कुछ बहुत ही कॉमन नाम भी हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो या हाफुस।
0: आमों का राजा अल्फांसो, महाराष्ट्र के कोंकण तट से आता है अल्फांसो यानी हापूस, जिसे दुनिया भर में आमों का राजा कहा जाता है। इसकी केसरिया रंगत और बेमिसाल स्वाद इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सुपरस्टार बनाता है। रत्नागिरी और देवगढ़ की मिट्टी से निकलने वाले इस आम की खुशबू इतनी तेज होती है कि एक आम पूरे कमरे को महका दे। इसकी कीमत भले ही थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन इसका शाही स्वाद इसे सबसे जुदा बनाता है। चौंसे की मिठास, आम के शौकीनों की पहली पसंद चौंसा आम, बेमिसाल स्वाद और लाजवाब सुगंध। आमतौर से बिहार में पाए जाने वाले इस आम की खेती अब उत्तर प्रदेश में भी जोर शोर से होती है। हालांकि चौंसा की उत्पत्ति बिहार से ही हुई है। कहा जाता है कि बिहार के चौंसा नाम की जगह पर इसकी पैदावार होती थी, जिसकी वजह से इसका नाम चौंसा पड़ा। ये आम की एक ऐसी किस्म है जिसकी फसल देर से तैयार होती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि जब दशहरी और लंगड़ा आम का सीजन खत्म हो जाता है तब चौंसा आम बाजार में आता है।
1: आम फलों का राजा है और भारतवर्ष आम की अपार किस्मों की संपदा के कारण विश्वविख्यात है। देश में 1500 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। कहीं पे लोग दशहरी चौसा को पसंद करते हैं तो कहीं नीलम बंगनापल्ली को। रत्नागिरी और महाराष्ट्र का अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है और इसको बहुत ही अच्छे दाम पर लोग फरवरी के माह में खरीदते हैं। हम देखेंगे,
0: यानी जब बाजार में आमों की तादाद कम होने लगती है तब चौंसा अपनी मिठास खोल देता है और महफिल लूट ले जाता है। दक्षिण और पूर्व का गौरव, दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश का बंगनपल्ली या सफेदा अपनी बड़ी बनावट और मिठास के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का हिमसागर है, देखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका स्वाद इतना मलाईदार है कि इसे मिष्टी दोई के देश का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन माना जाता है। सबसे बड़ा आम नूर जहां, लेकिन आम की दुनिया सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, यहाँ अजूबे भी हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पैदा होने वाला नूर जहां आम उन्हीं में से एक है, जिसके एक आम का वजन 4 किलो तक हो सकता है। मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर का कट्टीवाड़ा अपने झरनों, बारिश और नूर जहां आम के लिए भी जाना जाता है। मौसम और मिट्टी ने इस फल के पनपने के लिए एकदम सही हालात दिए हैं। नूर जहां को दुनिया का सबसे बड़ा आम माना जाता है। ये भारत में आम प्रेमियों के बीच जितना लोकप्रिय है उतना ही दुर्लभ भी है। सबसे महंगा आम, और अगर बात करें दुनिया के सबसे महंगे आम की, तो जापानी नस्ल का मियाज़ाकी अब भारत में भी उगाया जा रहा है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। गर्मियों का मौसम आम के दीवानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होता है। इस मौसम में हम और आप आम का जमकर लुत्फ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
2: देखिए, गर्मियों की दोपहर हो और जिक्र आम का ना हो तो लगता है जैसे महफिल में रौनक ही ना हो। लेकिन आम का रिश्ता सिर्फ हमारी जुबान से नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास के पन्नों और शायरों के मखमली कलम से भी रहा है। गालिब से लेकर गुलजार तक ने आम की लज्जत को अपनी कविताओं के जरिए शब्दों में पिरोया है। गालिब तो आम के इतने बड़े शौकीन थे, इतने बड़े फैन थे कि वो कहते थे कि आमों में बस दो ही खूबियां होनी चाहिए, एक तो वो मीठे हों और दूसरा वो बहुत सारे हों। उर्दू और हिंदी शायरों में आम को महबूब के मिठास और बचपन की यादों से जोड़कर देखा जाता रहा है। देखिए, इकबाल हो या अमीर खुसरो, हर किसी ने इस फल की तारीफ में कसीदे पढ़ लिखे हैं।

0: मीठा, रसीला और दिलों पर राज करने वाला आम। गर्मियों में लोग भले ही चिलचिलाती धूप और पसीने से परेशान रहते हैं, लेकिन इस मौसम में मिलने वाला आम किसी तोहफे से कम नहीं होता। बच्चे हो या बुजुर्ग, गरीब हो या अमीर, आम हर किसी को खास एहसास कराता है। आम सदियों से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और आज भी इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे पहले आम आम्रफल कहा जाता था। पुराने वैदिक ग्रंथों में इसे रसाला और सहकार नाम से भी जाना जाता था। इन नामों का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक, उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। यानी आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में आम की पैदावार हुई थी, जहां से ये दक्षिण भारत पहुंचा और तमिल में इसे आमकाय कहा गया, जो बोलचाल की भाषा में बदलकर धीरे धीरे मामकाय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर मांगा के नाम में बदल दिया। 16वीं सदी में पुर्तगाली कारोबारियों ने आम को अफ्रीका और ब्राजील तक पहुंचाया और धीरे धीरे ये आम फल खास बन गया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इतिहास के हर दौर में इसकी मिठास ने लोगों के दिलों को जोड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भी आम का इंतजार हर गर्मी में उतनी ही बेसब्री से किया जाता है। इतिहास में आम की खास अहमियत रही है। सम्राट अशोक से लेकर मुगल काल तक आम की दीवानगी देखी गई है। कविता और साहित्य में भी इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोकगीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है। आम के बारे में कवि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था कि आम में बस दो खूबियां होनी चाहिए, एक मीठा हो और दूसरा बहुत सारे हो। सिर्फ गालिब ही नहीं बल्कि गुलजार से लेकर अपने जमाने के मशहूर शायरों में शुमार सागर खयामी ने तो इस पर पूरी उर्दू कविता लिखी है। फल कोई जमाने में नहीं, आम से बेहतर करता है सना आम की गालिब सा सुखनवर। क्या बात है, आमों की हो देसी या विदेशी, सुर्खे हो सरौली हो कि तुखमे हो कि कलमे, चौसे हो सफेदे हो कि खजरी हो कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। हिंदी साहित्य में भी खासकर काव्य में आम लोगों को लेकर खूब लिखा रचा गया है। आम को लेकर आम का बाग नाम की कविता बेहद चर्चित है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहाँ अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर और तोतापुरी जैसी सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, जो हर राज्य की अपनी खास पहचान बन चुकी है। कुल मिलाकर आम सिर्फ स्वाद नहीं, एक हसीन एहसास है। एक ऐसा फल जो बचपन की यादें भी है और हर गर्मी की सबसे बड़ी खुशी भी। शायद इसीलिए हर साल जब आम आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: जब गर्मियों की दस्तक होती है तो सिर्फ तापमान नहीं बढ़ता बल्कि देश का फल बाजार भी अरबों रुपए के कारोबार से गुलजार हो उठता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आम की वजह से। देखिए, भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरी दुनिया के कुल आम उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा अकेले हिंदुस्तान से आता है। उत्तर प्रदेश का महिलाबाद हो, महाराष्ट्र का रत्नागिरी या फिर आंध्र प्रदेश के बगान, लेकिन तमाम आमों की मिठास और खुशबू अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों तक जाती है।

0: आम सिर्फ स्वाद का राजा नहीं है बल्कि करोड़ों अरबों के कारोबार का बादशाह भी है। उत्तर प्रदेश के बागों से लेकर अमेरिका की सुपरमार्केट तक फलों का राजा सिर्फ मिठास नहीं बिखेरता बल्कि करोड़ों का कारोबार भी देता है। गर्मी का मौसम आते ही आम की मिठास हर किसी के दिल को खुश कर देती है। खासकर भारतीय आम अल्फांसो, केसर और दशहरी जो दुनिया भर में अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर हैं। घरेलू बाजार की बात करें तो आम का बाजार करीब 2.30 बिलियन डॉलर यानी लगभग 19,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो सालाना 6-7% की दर से बढ़ रहा है। भारत में दुनिया के कुल आम उत्पादन का 40-50% हिस्सा पैदा होता है, यानी भारत सालाना 20 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा आम पैदा करता है। हालांकि इस भारी उत्पादन का केवल 1% ही एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत में तो आम के लिए दीवानगी जग जाहिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय आमों की विदेशों तक जबरदस्त डिमांड है? मतलब ये कि आम की डिमांड केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बम्पर होती है। दुनिया भर में लोगों के लिए भारतीय आम पहली पसंद है। तभी तो भारत हर साल 40 से अधिक देशों को आम सप्लाई करता है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 की अगर बात की जाए तो भारत ने करीब 30,000 मीट्रिक टन से ज्यादा आम एक्सपोर्ट किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का दशहरी हो, महाराष्ट्र का अल्फांसो, बिहार का मालदा हो या फिर गुजरात का केसर, भारत में आम की सैकड़ों किस्में हैं। जितनी किस्में उतनी ही हाई डिमांड दुनिया भर में होती है। विदेशों में सबसे ज्यादा मांग अल्फांसो और केसर की होती है, लेकिन बनारसी लंगड़ा, दशहरी और चौसा भी यूरोपीय बाजारों की रौनक बढ़ा रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के बंगनपल्ली और तोतापुरी आम की भी अच्छी खासी डिमांड है, जबकि भारतीय आमों का सबसे बड़ा दीवाना है यूएई। इसके बाद यूके, कतर, ओमान और अमेरिका का नंबर आता है।
1: आज जूनागढ़ मार्केटिंग यार्ड के अंदर यानी कि बॉक्स की आवक 10-12 हजार की बॉक्स की आवक है। आज आने वाले दिनों में केली की आवक बढ़ने वाली है, केली तारीख पीछे, और भाव 700 रुपए से लगा के 1200 रुपए 10 केजी का भाव है।
0: लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में भारतीय आमों को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। अमेरिका में आम महज एक फल नहीं बल्कि लग्जरी, टेस्ट और स्टेटस सिंबल जैसा बन गया है। अमेरिका में भारतीय मैंगो की कितनी डिमांड है उसका उदाहरण हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला। जब एक अमेरिकी सोशल मीडिया यूजर ने ये दावा किया कि मात्र 20 मिनट में अमेरिका में इंडियन मैंगो का स्टॉक खत्म हो जा रहा है। इंटरनेट पर किए गए दावे के मुताबिक भारत से पहुंचे आम के एक केस में 9 से 10 पीस होते हैं। ये केस 49.99 डॉलर का होता है, भारतीय रुपए में जिसकी कीमत 4800 रुपए होती है। इसे भारतीय रुपए में बदलें तो करीब एक आम की कीमत 480 रुपए तक पड़ती है। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका में भारतीय आम की दीवानगी पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। 5 मई को छपी इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय आम पाने के लिए अमेरिकी कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका में आम की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे बड़ी वजह है भारतीय और दक्षिण एशियाई आबादी का बढ़ना। लेकिन अब सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं बल्कि अमेरिका भी आम को हेल्दी और प्रीमियम फ्रूट के तौर पर देख रहा है। भारत में अगर आम स्वाद की पहचान है तो अमेरिका जैसे मुल्कों में आम कल्चर, क्लास और क्रेज का प्रतीक बन चुका है। कुल मिलाकर मलिहाबाद के बागान से लेकर अमेरिका के सुपरमार्केट तक आम की मिठास और कारोबार दोनों की डिमांड इन दिनों हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप जानते हैं कि हमारी प्राचीन मान्यताओं में आम को देवफल का दर्जा मिला हुआ है? देखिए, जिस फल के स्वाद के हम दीवाने हैं उसका हमारे धर्म पुराणों और शुभ कार्यों से एक अटूट और बेहद पवित्र रिश्ता है। कोई भी शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश हो या फिर किसी का विवाह हो, आम के पत्तों के बिना सब कुछ अधूरा है। घर के मुख्य द्वार पर लगाए जाने वाले आम के पत्तों के तोरण को केवल सजावट नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को रोकने और सुख समृद्धि के स्वागत का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथाओं में भी आम का जिक्र मिलता है।

0: आम सिर्फ स्वाद का ही नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का भी अहम हिस्सा है। इसकी मिठास जहां दिल जीत लेती है, वहीं इसकी मौजूदगी हमारे धार्मिक संस्कारों को भी पूरा करती है। क्या आप जानते हैं कि ये फल हमारी थाली तक पहुंचने से पहले हमारे मंदिरों और पूजा की चौकियों तक पहुंचता है? शास्त्रों में आम को साक्षात सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य आम के पत्तों के बिना अधूरा है, चाहे गृह प्रवेश हो या दीपावली की पूजा। द्वार पर बंधा आम का वंदनवार नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का सुरक्षा कवच माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आम की लकड़ी को समिधा के रूप में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि हवन में आम की लकड़ी के इस्तेमाल से वातावरण में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। भारत में आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक दिव्य वरदान है। इसी वजह से वेदों में आम को अमृत फल कहा गया है। ये अकेला ऐसा फल है जिसका जिक्र रामायण से लेकर महाभारत तक और अजंता की गुफाओं से लेकर मुगल काल तक मिलता है। पौराणिक कथाओं में आम को ज्ञान का फल माना गया है। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध कथा भी है, जिसके अनुसार एक दिव्य आम के लिए गणेश जी और कार्तिकेय के बीच महादेव और माता पार्वती ने प्रतियोगिता कराई थी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भगवान शिव एकाम्बरेश्वर यानी आम के पेड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ का 3500 साल पुराना आम का पेड़ आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसकी चार शाखाएं चारों वेदों का प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक संस्कार में आम की मौजूदगी रहती है, कहीं समिधा के रूप में तो कहीं पल्लव के रूप में। आम हर जगह मौजूद है, अक्षय तृतीया से लेकर वट सावित्री तक। आम का दान और नैवेद्य सौभाग्य की निशानी है। आम सिर्फ गर्मियों का स्वाद ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का भी अहम हिस्सा है। इसकी मिठास जहां जीवन में स्वाद भरती है, वहीं इसकी पवित्रता हमारे संस्कारों को मजबूत बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits.
2: Somebody save me.
1: To timeless favorites. And new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: बैटलफील्ड के बाहुबली को मिलेगा सुपर कवच। जमीन से आसमान तक हर खतरा होगा ध्वस्त। इंडियन बैटल टैंक को मिला अमर होने का वरदान। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में फिर बदलेगा मौसम, आईएमडी की ओर से आंधी बारिश का अलर्ट, 11 से 14 मई के बीच कई राज्यों में दिखेगा इसका असर। पवित्र चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी लगा तांता। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, पूजा अर्चना कर लिया मां का आशीर्वाद, परिवार के सदस्य भी साथ में रहे मौजूद। बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में कल ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। मॉस्को में दिखा विक्ट्री डे परेड का शानदार नजारा, फ्लाई पास्ट के दौरान आसमान हुआ सतरंगी, ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर से विमानों ने भरी उड़ान।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: कल तेलंगाना और कर्नाटक जाएंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी
0: दिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: कल तेलंगाना और कर्नाटक जाएंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के समारोह में लेंगे हिस्सा, ध्यान मंदिर का करेंगे उद्घाटन। हैदराबाद को पीएम मोदी देंगे 9400 करोड़ रुपए की सौगात, तेलंगाना और कर्नाटक के बीच यात्रा का समय 1.5 घंटे हो जाएगा कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में कैंसर के इलाज के लिए सिंधु अस्पताल राष्ट्र को करेंगे समर्पित, अस्पताल में हो सकेगा कैंसर का इलाज। 11 मई को गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोमनाथ अमृत महोत्सव में लेंगे हिस्सा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे दर्शन, अब तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हो चुके हैं इसमें शामिल। केदारनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने किए दर्शन। हर दिन करीब 25,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे बाबा के धाम, फिलहाल श्रद्धालुओं को मिल रहा मौसम का साथ। बद्रीनाथ धाम में उमड़ रहा आस्था का मेला, अब तक 2,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड में भी श्रद्धालुओं का जोश हाई, यमुनोत्री में 1,45,000 से ज्यादा, तो यमुनोत्री में 1,43,000 श्रद्धालु ले चुके हैं आशीर्वाद। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, माथा टेक कर माँ का लिया आशीर्वाद, परिवार के सदस्य भी साथ में रहे मौजूद। वाराणसी में गंगा तट पर सजी सांझ प्रणामी संगीतांजलि, शास्त्र गायिका पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी के जयंती पर आयोजन, मालिनी अवस्थी सहित कई बड़े हस्तियां रही मौजूद। अगस्त से भारतीय रेलवे 40 साल पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम को बदलकर लागू करेगा नया सिस्टम, टिकटिंग और रिजर्वेशन में भी होगा बदलाव। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में तेंदुए के हमले के बाद गांव वालों ने दिखाई दिलेरी, तेंदुए को घेर कर बांधा, बाद में वन विभाग ने जंगल में छोड़ा। प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रकृतिवादी और ब्रॉडकास्टर सर डेविन एंटन बरो ने मनाया 100वां जन्मदिन,

खामोशियों को दबोचने की मिलती है खास ट्रेनिंग। खामोशी से मिशन को अंजाम देने में सक्षम है ये लोग। लीमाखोंग मिलिट्री स्टेशन पर अभ्यास को दिया गया अंजाम। घने जंगलों में छुपे दुश्मनों को ढूंढने की क्षमता को परखा गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एनएस राजा सुब्रमण्य होंगे देश के नए सीडीएस। मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान के लेंगे जगह। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन होंगे देश के नए नौसेना प्रमुख। कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ हैं वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। संगम नगरी प्रयागराज के युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर की सौगात। नगर निगम ने यमुना नदी में शुरू किया एडवेंचर स्पोर्ट्स। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 250 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया वाटर स्पोर्ट्स। नगर निगम प्रयागराज ने यमुना रिवर बैंक बोट क्लब पर वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का किया आगाज। वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रयागराज के लोगों को अब दूसरे शहरों का नहीं करना होगा रुख। दूसरे शहरों के युवाओं को भी मिलेगा वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने का मौका। गुजरात के गिरनार के जंगलों में शेरों की बढ़ती आबादी को बचाने के लिए वन विभाग की बड़ी पहल। हाईवे पर तैनात की गई विशेष पेट्रोलिंग टीम। शेरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग सतर्क। कई मौके पर ट्रैफिक रोककर शेरों और शावकों को पार करवाया जा रहा है सड़क का रास्ता। वन विभाग हाईवे पे स्पीड ब्रेकर और चेतावनी साइन बोर्ड लगाने की कर रहे हैं तैयारी। शेरों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कैमरा और सेंसर सिस्टम लगाने की योजना। जूनागढ़ वन विभाग के लोगों से अपील, सड़क पर अगर शेर दिखाई दे तो वाहन धीमे चलाएं, हॉर्न न बजाएं और वन जीवों को न करें परेशान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के सनशाइन पीक से 24 सैलानियों का सफर रेस्क्यू। मौसम खराब होने से फंसे पर्यटकों का सेना के विमान की मदद से किया गया रेस्क्यू। एक रुपए में खाना खिलाकर सैकड़ों गरीबों का सहारा बना गाजियाबाद का एक दंपति। कोरोना महामारी के समय शुरू किया था लोगों को खाना खिलाने का यह नेक काम। पिछले 4.5 साल से रोजाना लोगों को 1 रुपए में खाना खिलाते हैं गाजियाबाद के पंडित गोपाल पुजारी। अब 800 से ज्यादा लोगों को खिलाते हैं 1 रुपए में खाना। 1 रुपए की थाली में मिलती है रोटी, सब्जी, चावल, दाल और मिठाई। रोज बदलता है खाने का मेन्यू। 1 रुपए लेने के पीछे स्वाभिमान को सम्मान दे रहा है मकसद। गरीबों जरूरतमंदों के लिए बड़ा सहारा है पंडित गोपाल पुजारी की ये रसोई। गोपाल ने बताया, धीरे धीरे मिशन से जुड़ रहे बहुत से लोग हर रोज दिए जाते हैं जरूरी चीजें। लोगों का पेट भरने के साथ साथ समाज सेवा और इंसानियत का संदेश देना इस मुहिम का मकसद। यूपी के सहारनपुर में दूल्हे ने लौटाए दहेज के 2.5 लाख रुपए। शगुन में लिया सिर्फ 1 रुपए और नारियल। दहेज प्रथा के खिलाफ दिया कड़ा संदेश। दूल्हा शिवा सैनी के फैसले की हो रही है सराहना। युवाओं के लिए प्रेरणा साबित होगा शिवा का ये निर्णय। सादे समारोह में किया मीनाक्षी संग विवाह। बिहार में फिल्म सिटी के विकास के लिए सीएम सम्राट चौधरी से मिले गोरखपुर के सांसद रवि कृष्ण। फिल्म सिटी बनने से फिल्म निर्माण का मिलेगा विकल्प। मथुरा वृंदावन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। अक्रूर घाट का होगा कायाकल्प। अक्रूर घाट के सौंदर्यकरण के लिए करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी। घाट पर बनेंगे प्लेटफॉर्म और सीढ़ियां। टेक कंपनी एप्पल ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 करोड़ रुपए के निवेश का किया ऐलान। क्लीन मैक्स के साथ 150 मेगावाट क्षमता निर्माण की योजना। देश का रियल एस्टेट बाजार 5.8 लाख करोड़ रुपए डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद। फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक 2034 तक 906 अरब डॉलर के नए घरों के निर्माण की संभावना। EEAS रिपोर्ट के मुताबिक 6000 यूरोपीय कंपनियां भारत की जीडीपी में लगभग 5% दे रही योगदान। पिछले 10 साल में भारत में 218 बिलियन यूरो का किया गया निवेश। अगस्त से भारतीय रेलवे 40 साल पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम को बदलकर नया आधुनिक सिस्टम लागू करेगा। टिकटिंग और रिजर्वेशन में होगा बदलाव। अमेरिका में भारतीय आम के बड़े दाम। एक साल में 4200 से 5600 रुपए प्रति बॉक्स हुई इसकी कीमत। अल्फांजो, केसर, चौसा और बंगनपल्ली आम की अच्छी डिमांड। कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल में लगातार 4थी जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने 142 रन बनाए। कोलकाता ने 14.2 ओवर में लक्ष्य किया हासिल। फिन एलन की नाबाद 100 रनों की तूफानी पारी। 47 गेंदों में लगाए 5 चौके और 10 छक्के। कोलकाता नाइट राइडर्स के

0: लगातार चौथी जीत। कैमरन ग्रीन ने दिलाया कोलकाता को आसान जीत। दिल्ली की प्लेऑफ उम्मीदों को बड़ा झटका। केकेआर की उम्मीदें बरकरार। प्लेऑफ में आज राजस्थान रॉयल्स का गुजरात टाइटंस से मुकाबला। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की भूत बंगला की धूम। 21 दिन में फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई 235 करोड़ रुपए के पार। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी के बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 63 करोड़ पहुंचा। इतिहास रचने के करीब मराठी फिल्म। भारत ही नहीं विदेशों में भी मोहनलाल ममूटी की फिल्म पेट्रियॉट का जलवा बरकरार। दुनिया भर में 73 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया कारोबार। बॉक्स ऑफिस पर जुनैद खान साईं पल्लवी की जोड़ी का नहीं चल पाया जादू। फिल्म एक दिन ने एक हफ्ते में महज 4 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। दुनिया भर के थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद धुरंधर 2 अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक। 14 मई को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। एक्टर जयदीप अलावत की फिल्म दलदल का पोस्टर हुआ रिलीज। गले तक दलदल में फंसे नजर आए जयदीप। जल्द रिलीज डेट का होगा ऐलान। फिल्म NH404 से पोस्टर से राकेश बेदी का फर्स्ट लुकआउट। कैप्शन में लिखा अगर रोड रोलर देखो तो लेफ्ट और राइट देख कर क्रॉस करो। गुल्लक सीजन 5 का हुआ ऐलान। चल मिश्रा परिवार की होगी वापसी। अनु भैया यानी वैभव राजगुप्ता के रोल में नजर आएंगे अनंत बी जोशी। ईशा अंबानी ने फैशन की दुनिया में फिर से बिखेरा जलवा। कस्टम मेड शनेल हाउट कुटियोर साड़ी गाउन पहनकर सबको किया मंत्रमुग्ध। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फैंस खूब पसंद कर रहे हैं उनका ये लुक। कर रहे उनकी जमकर तारीफें। सैफ अली खान संजय मिश्रा रसिका दुग्गल स्टारर क्राइम ड्रामा फिल्म कर्तव्य का ट्रेलर रिलीज। एक पुलिस वाले के नैतिक द्वंद्व की कहानी है। इसी महीने ओटीटी पर होगी रिलीज। फिल्म गवर्नर का टीजर रिलीज। 1990 के दशक में देश के सबसे बड़े आर्थिक संकट पर बेस्ड है ये कहानी। टीजर में RBI गवर्नर के रोल में नजर आएंगे मनोज। 12 जून को आएगी फिल्म। एक्टर रणदीप हुड्डा की वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज। वेब सीरीज में 1990 के दशक के उत्तर प्रदेश की दिखेगी झलक। रामचरण और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म पैडी के मेकर्स ने सेट से साझा किया BTS वीडियो। लिखा BTS के कुछ मजेदार पल जो हमारे दिल के हैं बेहद करीब। एक्ट्रेस शक्ति कपूर की सेहत को लेकर अटकलों पर बेटी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने जारी किया वीडियो। बताया पूरी तरह स्वस्थ है पिता शक्ति कपूर। रूस में विजय दिवस परेड का जश्न। जमीन से लेकर आसमान तक दिखा शौर्य और पराक्रम का नजारा। आसमान में गर्जे फाइटर जेट। सीज फायर के बावजूद मॉस्को में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर कदम ताल मिलाते नजर आए जवान। पहली बार बिना टैंक और मिसाइलों की निकली विजय परेड। की विक्ट्री परेड में कई देशों के नेताओं ने की शिरकत। बेलारूस कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान और स्लोवाकिया के नेता रहे इसमें शामिल। क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन ने विदेशी नेताओं की मेजबानी की। पूरे उत्साह के साथ किया गया विरासत का सम्मान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच राहत वाली गुड न्यूज। दोनों देश 3 दिन के युद्ध विराम और 1,000 कैदियों की अदला बदली पर हुए सहमत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव बोले राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल को किया स्वीकार। युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा 9-10-11 मई को युद्ध विराम और 1,000 युद्ध बंदी बदलने पर पुतिन की मिली सहमति। यूक्रेनी राष्ट्रपति की वेबसाइट पर प्रकाशित दस्तावेज के मुताबिक मॉस्को में विजय दिवस परेड पर हमले नहीं करेगा यूक्रेन। दस्तावेज पर जेलेंस्की का दस्तखत। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम और कैदी अदला बदली पर किया था पोस्ट। रूस ने विजय दिवस के लिए गुरुवार को ही 3 दिन के युद्ध विराम का किया था ऐलान। हॉलीवुड की सबसे मशहूर हस्तियों में से एक दिवंगत मॉडल और फिल्म स्टार मार्लन मुनरो से जुड़ी कई चीजों की होगी नीलामी। बिक्री के लिए रखे गए मार्लिन मुनरो से जुड़ी वस्तुओं में उनके कपड़े, गहने, चिट्ठियां, हाथों से लिखे नोट्स, पेंटिंग्स और कविताओं के कुछ अंश शामिल। मार्लिन मुनरो के 100वें जन्मदिन पर 1 जून को होगी नीलामी। नीलामी में मुनरो से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज भी शामिल हैं जो पहले कभी भी नहीं देखे गए हैं। 1926 में लॉस एंजलिस में जन्मे मार्लिन मुनरो मशहूर अभिनेत्री, मॉडल, गायिका थी। मार्लिन मुनरो ने 1962 में दुनिया को कहा था अलविदा। हेरिटेज ऑक्शन के पूर्वावलोकन के दौरान हॉलीवुड और मनोरंजन के वरिष्ठ निदेशक ब्रायन चेन्स ने मार्लिन को बताया सच्ची आइकन, कहा लोग उन्हें आज भी करते हैं बेहद प्यार। दुनिया में UFO यानी उड़नता अस्तरी को लेकर फिर छिड़ी बहस। अमेरिकी रक्षा विभाग ने जारी की अज्ञात सामान्य घटनाओं से जुड़ी लगभग 160 गोपनीय फाइलें। रक्षा विभाग ने जारी की कथित UFO देखे जाने से जुड़े दर्जनों गोपनीय फाइलें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर जारी किए गए दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियो। फाइलों में 1947 की उड़ने वाली तश्तरियों की रिपोर्ट भी शामिल, साथ ही चंद्रमा की सतह से ली गई अज्ञात घटनाओं की धुंधली तस्वीरें भी हैं शामिल। अमेरिकी रक्षा विभाग बोला भविष्य में जारी किए जाएंगे और दस्तावेज गोपनीय श्रेणी से हटाए जाने के बाद जारी किए जाएंगे वीडियोस। शुक्रवार को जारी गोपनीय फाइलों पर बोले एक्सपर्ट, पिछली सरकार ने जारी कर दी थी अधिकांश फाइलें, धरती से बाहर जीवों के अस्तित्व का ठोस प्रमाण नहीं।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: बैटलफील्ड के बाहुबली को मिलेगा सुपर कवच, जमीन से आसमान तक हर खतरा होगा ध्वस्त। इंडियन बैटल टैंक को मिला अमर होने का वरदान। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज चुड़ी पर।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
5: खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
3: with artists like James Bay,
4: so come on, let it go.
2: Nora Jones,
5: my heart is drained.
2: Daniel Caesar,
6: we both know how,
2: and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House. Or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
7: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
10: कौन से उपायों से माता के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? आपके किन उपायों से माता का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, और किसकी पूजा उपासना करने से माता का विशेष आशीर्वाद जीवन में मिल सकता है? क्या है मां की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
14: दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में फिर बदलेगा मौसम, आईएमडी की ओर से आंधी बारिश का अलर्ट। 11 से 14 मई के बीच कई राज्यों में दिखेगा इसका असर। पवित्र चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 से ज्यादा भक्त पहुंच चुके केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी लगा तांता। बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में कल ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर होगा कार्यक्रम।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।

जब मैदान जंग में धूल उड़ती है, गोलियां बरसती हैं और हर दिशा से खतरे मंडरा रहे होते हैं, तब एक शक्ति ऐसी होती है जो सब पर भारी पड़ती है और वो शक्ति है टैंक, बैटलफील्ड का बाहुबली, जिसे किंग ऑफ द किलिंग जोन भी कहा जाता है। ये गोलियां बरसाता है, गोले दागता है और तो और मिसाइल फायर करने की क्षमता भी रखता है। बावजूद इसके टैंक की राह में कदम दर कदम खतरा बहुत ज्यादा होता है। एंटी टैंक मिसाइल से लेकर ड्रोन और लैंडमाइन टैंक को डेंजर जोन में डाल देते हैं। लिहाजा मौजूदा दौर में टैंकों को ड्रोन और लैंडमाइंस जैसे खतरों से बचाने के लिए इन्हें अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड किया जाता है, ताकि टैंक को खतरे से बचाया जा सके। सेना के टैंकों को और मजबूती देने के लिए और इन्हें माइन से बचाने के लिए इन पेट्रोल सिस्टम लगाने के बारे में सोच रहा है भारत। T-72 और T-90 टैंकों पर इस सिस्टम को इंस्टॉल करेगा, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डर पर हस्ताक्षर भी कर दिए। ये कुल ऑर्डर होगा 975 करोड़ रुपए का। इन सिस्टम के इंस्टॉल हो जाने के बाद टैंकों को और ज्यादा ताकत मिलेगी। बताते चले कि ये सिस्टम टैंकों के अगले हिस्से में लगाया जाता है, जिससे टैंक की हिफाजत और ज्यादा सुरक्षित हो जाती है।

0: डील के तहत T-72 और T-90 टैंकों में ट्रॉल नाम का एक सिस्टम लगाया जाएगा। ट्रॉल एक तरह की मशीन है जिसे टैंक के अगले हिस्से में फिट किया जाता है। इसका काम रास्ते में दबी बारूदी सुरंगों को ढूंढकर उन्हें हटाना है। ट्रॉल का पहला हिस्सा एक रोलर होता है। ये वजन में बहुत भारी होता है कि टैंक के आगे की जमीन पर दबाव डालता है, जिससे जमीन के नीचे बिछी माइंस पहले ही फट जाती हैं। ट्रॉल का दूसरा हिस्सा माइन प्लाव कहलाता है। प्लाव यानी खेत जोतने वाला हल। ये हिस्सा मिट्टी को हटाता और उसे धकेलता है। इससे जमीन के नीचे छिपी माइंस रास्ते से साइड में चली जाती है। आमतौर पर ट्रॉल में एक बार में एक सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके दोनों हिस्सों को एक साथ ऑपरेट किया जा सकता है।
1: ट्रॉल का मतलब ये होता है कि टैंक के आगे एक कुछ हैवी चीज लगा दी जाए और दूसरे, जैसे हम खेती में ट्रैक्टर के पीछे खोदने का आइटम लगाते हैं, इसी तरह एक आगे लगा होता है। तो वो जो रोलर होता है, हैवी रोलर, वो रोलर क्या करता है कि सामने टैंक के सामने एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करेगा कि कोई भी जमीन के नीचे अगर माइन है तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। T-72 टैंक की बात करें तो ये दोनों आइटम लगने के वजह से, दैट इज द प्लाउ एंड द हैवी रोलर, टैंक का वजन बढ़कर तकरीबन 50 टन क्रॉस कर जाता है।
0: T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी ट्रॉल सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिलने से मेक इन इंडिया मिशन को नई ताकत मिलेगी। इस समझौते का मुख्य मकसद युद्ध की स्थितियों में सेना की गतिशीलता को बढ़ाना और जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ट्रॉल असेंबली इंडियन आर्मी की माइनफील्ड ब्रीचिंग यानी कि बारूदी सुरंगों को तोड़ने की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। साथ ही ये प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ्यूज वाली एंटी टैंक बारूदी सुरंगों से भरे इलाकों के बीच भी सुरक्षित रास्ता बनाएगा।
1: मैग्नेटिक फ्यूज की हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल MVN-72 या 80 MVN-80 एंटी टैंक माइंस में जो होता है, और जिसके अंदर एक सेंसर होता है जो डिटेक्ट करता है, जो माइन है उसके अंदर एक सेंसर होता है जो डिटेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। दैट मींस कोई अगर बड़ी हैवी या लोहे की चीज उसके आसपास आए तो वो अपने आप उसको फट जाए। उसका उसमें फायदा ये होता है कि जो एंटी टैंक माइन है के केस्ट वाली, ये उसके अंदर लगा हुआ होता है, और जैसे ही कोई मैग्नेटिक, दैट इज लोहे का मैग्नेटिक सिग्नेचर वो अपने दायरे के अंदर देखता है विद इन रेंज, तो वो अपने आप ब्लास्ट हो जाता है।
0: जंग के मैदान में जब एक टैंक उतरता है तो इसके विध्वंसक प्रहार की क्षमता इसे जमीनी जंग का सबसे पावरफुल हथियार बनाती है। न तो रेतीली धरती इसकी रफ्तार को रोक पाती है और न ही दलदली या पहाड़ी इलाका टैंक की राह में बाधा बनता है। टैंक अपने सामने आने वाली हर चीज को रौंदते हुए आगे बढ़ता है और दुश्मन की सरजमी पर अपनी हुकूमत कायम करता है। जंग के मैदान में एक पावरफुल टैंक से निपटना इतना आसान नहीं होता। मुश्किल से मुश्किल चुनौती को टैंक खुद ही निपट लेते हैं, लेकिन एक चीज है जो टैंक के लिए सबसे बड़ा खतरा और चुनौती बनती है, वो है लैंड माइंस। और इन्हीं से निपटने के लिए भारत ने अपने T-72 और T-90 टैंक को और ज्यादा ताकत देने के लिए 975 करोड़ की डील साइन की। युद्ध के समय सबसे बड़ी चुनौती कम समय में दुश्मन की घेराबंदी को तोड़ना होती है। अगर रास्ते में बारूदी सुरंगें हों तो सेना की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। नया ट्रॉल सिस्टम इसी देरी को खत्म कर देगा। यह तकनीक रात के अंधेरे में और खराब मौसम में भी सटीक तरीके से काम करने में सक्षम है। इसके इस्तेमाल से युद्ध क्षेत्र में हताहत होने वाले सैनिकों की संख्या में भारी कमी आएगी। ट्रॉल सिस्टम का पूरा प्रोजेक्ट दरअसल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसे DRDO ही विकसित कर रहा है और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरा सिस्टम शुद्ध तरीके से मेक इन इंडिया के तहत ही बनेगा और यहीं से भारत दुनिया को संदेश देगा कि रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत अब कितनी आगे तक पहुंच चुकी है।
2: टैंक दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीनों में से एक है, लेकिन
0: आधुनिक युद्ध क्षेत्र में इसकी राह में कई खतरे हैं। टैंक के लिए अहम खतरे क्या हैं? ये भी आपको बताते हैं। टैंक के लिए आसमान से सबसे बड़ा खतरा होता है आत्मघाती और FPV ड्रोन, टॉप अटैक मिसाइल। अटैक हेलीकॉप्टर टैंक के सबसे कमजोर माने जाने वाले ऊपरी हिस्से पर हमला करता है। टैंक के लिए जमीन के नीचे और छिपा हुआ खतरा रहता है। एंटी टैंक माइंस IED, एंटी टैंक गन से टैंक को तबाह किया जा सकता है। दुश्मन के टैंक यानी टैंक वर्सेस टैंक भी एक खतरा होते हैं, जो APFSDS गोले हैं और लेजर गाइडेड हथियार का इस्तेमाल करते हैं। जैमिंग और साइबर हमला टैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर टैंक के सेंसर या रडार को जाम कर दिया जाए तो उसे रोकना और तबाह करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही इलाके और तकनीकी चुनौतियां भी ताकतवर टैंक की राह में बहुत मुश्किलें खड़ी करती हैं। अमूमन एक टैंक का वजन 40 से 60 टन का होता है। नर्म और दलदली जमीन में यह धस भी सकता है, यानी चुनौतियां बहुत होती हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तो शहरी इलाके में होती है, जहां तंग गलियां होती हैं। टैंक के लिए मुड़ पाना, पोजीशन ले पाना। अमूमन एक टैंक का वजन 40 से 60 टन का होता है। नर्म और दलदली जमीन में यह धस भी सकता है, यानी चुनौतियां बहुत होती हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तो शहरी इलाके में होती है, जहां तंग गलियां होती हैं। टैंक के लिए मुड़ पाना, पोजीशन ले पाना आसान नहीं होता, और ऐसे में ऊंची इमारतों से सीधा इनको टारगेट किया जा सकता है। टैंकों के लिए ड्रोन से खतरा तेजी से उभर रहा है। यूक्रेन युद्ध में ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इन्हीं से बचने के लिए रूस लगातार नए और अजीब दिखने वाले टैंक सुरक्षा उपाय आजमा रहा है। पहले टर्टल टैंक और हेरी टैंक आए, जिनका मजाक भी उड़ाया गया। अब रूस ने एक नया डिजाइन पेश किया है, जिसे डैंडेलियन टैंक कहा जा रहा है। रूस के इस नए टैंक कवच को रूसी भाषा में ओदुवांचिक यानी कि डैंडेलियन कहा जाता है। इसमें लचीली धातु की छड़े पेड़ की शाखाओं की तरह कई परतों में फैलती है। इनके बीच मजबूत जाली लगाई गई है, जिससे टैंक के चारों ओर एक तीन आयामी सुरक्षा घेरा बनाया जा सके। अगर कोई विस्फोटक से लैस FPV ड्रोन टैंक की ओर आता है तो ये छड़े उसे टैंक से कुछ दूरी पर ही विस्फोट करने पर मजबूर कर सकती हैं। ड्रोन जितनी दूर फटता है टैंक को उतना कम नुकसान होता है। दिखने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन रक्षा जानकार मानते हैं कि ड्रोन से बचाव में फिलहाल ये सबसे असरदार तरीका हो सकता है।
1: डेंडेलियम एक्चुअली ना रशिया में एक पेड़ का नाम है, एक्चुअली एक प्लांट होता है, और उससे उन्होंने ये निकाला है कि अभी यूक्रेन वॉर में उन्हें दिखा कि ड्रोन्स का हमला उनके टैंक्स के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो रहा था, और उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया कि अपने टैंक के ऊपर मेटल की रॉड्स या सिंथेटिक या फाइबर ग्लास की जो रेट्रो बार्स हैं वो चारों तरफ लगाई, फैलाकर लगाई, लेयर्स में लगाई, टू दी एक्सटेंट के उन्होंने एक मेश भी लगाया, मतलब तारों का एक झुंड कह सकते हो, तारों का झुंड लगाया जो कि हैवी स्ट्रेंथ ऑफ सिंथेटिक मटेरियल था। सो एक लेयर्ड तरीके से आप टैंक के चारों तरफ ऊपर दाएं बाएं उन लेयर्स को लगा पा रहे हैं, बार्स को लगा पा रहे हैं, सो दैट कोई भी ड्रोन आएगा तो वो टैंक तक नहीं पहुंचेगा, टैंक से 1 फीट 2 फीट 4 फीट दूर हवा में वो फट जाएगा और उसका डैमेज जो है वो उन बार द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
0: पहले यूक्रेनी सैनिक रूसी टैंकों पर लगे पिंजरों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब वो खुद भी इसी तरह की सुरक्षा अपना रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन की एक बख्तरबंद गाड़ी पर डैंडेलियन जैसी संरचना, बालों जैसे ब्रसल्स और जंजीरों से लटकी धातु की प्लेटें देखी गई। हालांकि यह कवच पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, एक्स्ट्रा धातु से टैंक का वजन बढ़ जाता है, जिससे उसकी रफ्तार कम हो सकती है और वो ड्रोन के लिए आसान निशाना बन जाता है।
2: भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक रूस पर ही निर्भर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में भारत ने रूस पर से अपनी निर्भरता को कम किया है। इसमें दो चीजें हुई हैं। पहली बात तो यह है कि भारत खुद मेक इन इंडिया के तहत खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने पश्चिमी देशों से भी डील साइन की है, यानी भारत अब पूरी तरह से केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता।
0: भारत लगातार अपने हथियारों की ताकत को जांचने और परखने के लिए वॉर एक्सरसाइज करता रहता है। कभी समंदर में, कभी रेतीली धरती पर, तो कभी जंगल और पहाड़ों पर, ताकि किसी भी नई चुनौती से आसानी से निपटा जा सके। दिसंबर 2023 में इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड यानी पश्चिमी कमांड के युद्धाभ्यास के दौरान टैंक T-90 भीष्म के ऊपर टॉप अटैक प्रोटेक्शन केज लगा देखा गया, जिसे एंटी ड्रोन केज, कोप केज या स्लेट आर्मर भी कहा जाता है। ड्रोन्स की वजह से अब जंग का चेहरा बदल चुका है। बड़े ड्रोन्स जैसे अमेरिकन रीपर या तुर्की के बैरक्टर बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन टैंकों और जवानों पर अटैक के लिए सस्ते ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है, जिससे बचने में एंटी ड्रोन केज कारगर माने जाते हैं।

0: एंटी ड्रोन केज है, इसका बेसिक पर्पज है कि जो इसके प्रोपेलर हैं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके और ये प्रोपेलर जो है उसको भी नुकसान ना पहुंचे किसी वजह से। तो ये एक सिंपल सी एडवाइस है जो ड्रोन के ऊपर लगाई जाती है। जो स्लैट आर्मर है वो स्लैट आर्मर बेसिकली टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे जैसे ड्रोन्स का आसमान से अटैक करने का खतरा या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या आरपीजी राइफल प्रोपेल जो ग्रेनेड होते हैं उनकी वजह से ऊपर से अटैक करने अगर टैंक के ऊपर होता है तो ऊपर वाली आर्मर जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए और मजबूत किया जाए।
1: रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूसी टैंकों पर लोहे की एक जालीदार छत दिखती है, ऐसी छतरियां इजरायली टैंकों पर भी नजर आई। एंटी ड्रोन केज टैंक के ऊपर सवार मशीन गन चलाने वाले जवान को आत्मघाती ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइल, ग्रेनेड और हेलीकॉप्टर से आने वाली गोलियों के हमले से बचाता है। शब्द तब चलन में आया जब रूस यूक्रेन युद्ध के समय रूस ने इसे इस्तेमाल किया था। यूक्रेन में घुसपैठ के लिए रूसी टैंकों के ऊपर इसको लगाया गया था। हालांकि दावा यह भी किया जाता है कि इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था साल 2020 में नागोर्नो कारबाख के युद्ध में, बाद में इसके नाम बदलते चले गए।
2: टैंक के ऊपर लगे कोपकेच छोटे मोटे आत्मघाती ड्रोन अटैक से हिफाजत कर लेते हैं। इसमें जवान जख्मी हो सकते हैं लेकिन जान जाने का खतरा नहीं रहता। हालांकि ज्यादा ताकतवर ड्रोन बम या फिर एंटी टैंक मिसाइल या रॉकेट से बचा नहीं जा सकता। टी-90 टैंक के कमांडर साइट का रेट्रो मॉडिफिकेशन भी किया जा रहा है। इसकी मदद से टी-90 के कमांडर लंबी दूरी पर भी टारगेट का पता लगा सकेंगे। नए रेट्रो मॉडिफाइड कमांडर साइट में रात में भी टारगेट का पता लगाना आसान हो जाता है। थर्मल इमेजर की मदद से 8 किलोमीटर तक टारगेट का पता आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं LRF यानी लेजर रेंजर फाइंडर की मदद से 5 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्ट हो सकता है, जिससे लंबी दूरी तक लक्ष्य साधने की क्षमता बढ़ जाती है।
0: थर्मल इमेजर जो होते हैं वो बेसिकली जो हीट सेंसिटिविटी या हीट सिग्नेचर्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी दुश्मन का टारगेट है उसके जो हीट सिग्नेचर्स हैं उनको विजुअल कन्वर्शन करता है। तो आपको क्योंकि अलग अलग हीट सिग्नेचर्स होंगे, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट जो हैं या दुश्मन के जो टारगेट्स हैं उनके, तो उस तरह का विजुअल एक इसको मिलता है जो जिसने फायर करना है, जिसने टारगेट को एंगेज करना है उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा है लेजर रेंज फाइंडर। लेजर रेंज फाइंडर ये है कि लेजर को एक जो कि 300 गुना स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से जाता है वो जाके टारगेट के ऊपर टकरा के वापस आता है। तो उस टाइम से कि कितना टाइम लेता है लेजर की बीम जो है जाके टारगेट को स्ट्राइक करना और वापस आना, तो वो जो टाइम है उससे उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है।
2: टी-90 के कमांडर बैलिस्टिक सॉफ्टवेयर और LRF में सुधार के बाद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाने का पता लगा सकते हैं और उस पर निशाना साध भी सकते हैं और उन्हें बेअसर कर सकते हैं।
1: रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी टैंकों की कई खामियां भी नजर आए, जिसके बाद भारत ने अपने टैंकों को और ज्यादा ताकतवर और मजबूत बनाने की ठान ली। दरअसल भारत अब किसी सबक का इंतजार नहीं करेगा बल्कि दूसरी जंग से सबक लेते हुए अपने आप को और अपने टैंकों को अपग्रेड करने की लगातार कोशिश कर रहा है।
2: भारतीय सेना टैंकों को अपग्रेड करके अपने बेड़े को आधुनिक युग के युद्धों के लिए तैयार करना चाहती है, जिसमें टी-90 भीष्म का नाम भी शुमार है। भीष्म का प्राइमरी वेपन है 125 mm की कैनन, जो अलग अलग तरह के गोले दागने में सक्षम है, जिसमें मिसाइल दागने की क्षमता इसे खास बनाती है। बंजर रेगिस्तान में जहां सड़क का नामोनिशान तक नहीं होता, वहां भी T-90 तूफानी रफ्तार से दौड़ता है। T-90 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये 6 से 8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। करीब 50 टन के भीषण को ताकत मिलती है अपनी शक्तिशाली इंजन से, जिसकी बदौलत चाहे पहाड़ हो या फिर खाई, वो सब कुछ पार कर सकता है।
1: T-90 भीष्म टैंक में लगे कैटरपिलर ट्रैक्स इसके वजन को एक बड़े सरफेस एरिया में बदल देते हैं, जिस वजह से इसका वजन सीधे जमीन पर उतना नहीं पड़ता। यानी ये दलदली जमीन गहरे पानी तक में भी डूब नहीं सकता और वहां भी अपनी काबिलियत को सही तरीके से पेश करता है।
2: T-90 भीष्म टैंक को रोकना असंभव है। जमीनी जंग का महाबली रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। T-90 टैंक को पहाड़ी सीमाओं का सबसे बड़ा रखवाला कहा जाता है, जिससे पंगा लेना चीन और पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। T-90 भीष्म 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है। ये 1 मिनट में 7 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। थर्मल इमेजर की मदद से अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है T-90 टैंक। लेजर गाइडेड एनवार मिसाइल सिस्टम से लैस है T-90, जिसमें परमाणु हमले में बचाव की क्षमता भी है।
0: T-90 भीष्म टैंक एक थर्ड जनरेशन रशियन सीरीज का टैंक है। 2004 में भारत ने रशिया के साथ एक सौदा किया था और उसमें कुछ टैंक मंगवाए गए थे, और फिर ये भी हुआ था कि जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया ट्रांसफर करेगा। और अभी ये DRDO की मदद से जो आवडी में हैवी व्हीकल फैक्ट्री है वहां पर ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये एक बहुत बढ़िया टैंक इसलिए है कि एक तो इसके टरट के ऊपर कोई ग्लोइंग आईज लगाई हुई है, जो कि दुश्मन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या ड्रोन हमले को थोड़ा मिसगाइड करने में मदद करती हैं। ये टैंक 125 स्मूथ बोर गन है इसके अंदर, और इसके 1 मिनट में 8 राउंड फायर कर सकता है। 43 राउंड इसके अंदर रखे जाते हैं। इसका रेंज जो है 1 से 5 किलोमीटर तक का है।
2: T-90 टैंक को 3 हाईली ट्रेन्ड जवान कंट्रोल करते हैं, ड्राइवर, कमांडर और गनर। तीनों के तालमेल से जमीनी जंग का ये जांबाज रणभूमि में गरजता है। टैंक ऑपरेट कर रहे लोगों की हिफाजत करता है। टैंक के ऊपर लगा बेहद ही मजबूत कवच।
1: दुश्मन की एंटी टैंक मिसाइल को भी नाकाम कर सकता है। दरअसल इसकी परत 20 इंच मोटी होती है और साथ ही साथ इसमें नेक्स्ट जेनरेशन एक्सक्लूसिव आर्मर्स लगे हुए हैं, जो इसे और ज्यादा ताकत देते हैं। यानी अगर इस पर कोई भी हमला होता है तो एक्सक्लूसिव खुद ब खुद बाहर की तरफ फटते हैं, जो इसको नुकसान नहीं देते।

0: एंटी टैंक भी 360 डिग्री घूमकर हमला कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि 360 डिग्री घूमने के बावजूद टैंक के अंदर बैठे हर क्रू मेंबर अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं। भीष्म की डिजाइन ही ऐसी की गई है कि हल टेरर और एंटी एयरक्राफ्ट गन एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट कर सकते हैं। T-90 टैंक की एक और खासियत है और वो ये है कि हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है। हवाई खतरों से निपटने के लिए टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इससे मैन्युअली और रिमोट दोनों तरीके से चलाया जा सकता है। T-90 भीष्म में 12.7 mm की बुलेट्स लगी हैं, जिसकी मदद से 2 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को तबाह किया जा सकता है। भीष्म में लगी गन 1 मिनट में 800 गोलियां फायर कर सकती है। जरूरत के मुताबिक एंटी टैंक मिसाइल दागने में सक्षम केमिकल और रेडियोएक्टिव हमला बेअसर। पूर्वी लद्दाख में चीन और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की गुस्ताखियों को देखते हुए भारत कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता, क्योंकि चीन पर भरोसा करने का मतलब 1962 की गलती को दोहराना है। लिहाजा हिंदुस्तान लगातार अपनी युद्ध क्षमताओं को उधार दे रहा है। भारतीय सेना ने T-72 टैंक की मेन बॉडी और T-90 टैंक के टर्निट को मिलाकर एक नया वर्जन तैयार किया है। यह हाइब्रिड टैंक T-72 के मुकाबले ज्यादा घातक साबित होगा। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी लगाया गया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए बनाया है। इस हाइब्रिड टैंक में ATGM भी लगे हैं। नए हाइब्रिड टैंक का कई बार परीक्षण भी हो चुका है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा।
1: रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला लगातार और तूफानी रफ्तार से चल रहा है। दरअसल भविष्य के युद्धों को देखते हुए और आने वाली जंग की तैयारी भारत अभी से ही कर रहा है, ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई चूक ना रह जाए। भारत अपने हथियारों को तो अपग्रेड कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने मित्रों से मिले हथियारों को भी लगातार अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है नई तकनीक के साथ। भारत में मेन बैटल टैंक T-90 भीष्म, T-72 अजय और अर्जुन को आधुनिक बनाने के लिए मेक इन इंडिया मिशन के तहत कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के टैंकों को डिजिटल, ज्यादा घातक और अभेद बनाना है। डिजिटल और मारक क्षमता में सुधार के लिए पुराने संचार सेट को हटाकर आधुनिक SDR यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो लगाए गए हैं। इससे डेटा साझा करने में आसानी होती है और ये दुश्मन की जैमिंग से भी सुरक्षित रखते हैं। T-90 टैंकों में ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर लगाया गया है, जो मूविंग टारगेट को अपने आप लॉक कर देता है, जिससे गनर की सटीकता बढ़ जाती है।
0: डीआरडीओ ने नए फिन स्टेबलाइजर आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सेबोट गोले विकसित किए हैं, जो दुश्मन के सबसे मजबूत कवच को भी भेद सकते हैं।
6: SDR एक नया कंसेप्ट है जिसमें मैं कहूंगा कि सॉफ्टवेयर ऑब्वियस बात जैसे हम करते हैं, दैट मींस 80% इसकी डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर पर है, दैट अमाउंट्स टू एडवांसमेंट, क्योंकि हमारे टाइम में ये नहीं हुआ करता था। सो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो अगर हम बात करें, ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है सिक्योर कम्युनिकेशन का, जो मल्टीपल ब्रांड्स में अपने आप को ऑपरेट करता है, जो जिसको बोलते हैं ना हम, कि ये बिल्कुल रीडिफाइन कर देता है एक तरीके से रेडियो फंक्शनिंग को। क्योंकि अगर इसमें हम मोटे तौर पर देखें तो मल्टीपल फॉर्म का मेरा मतलब होगा कि मल्टीपल ब्रांड्स पर, मतलब ब्रांड विड्थ जो है उसके ऊपर काम करेगा, मोड्स पर भी काम करेगा। ब्रांड विड्थ और मोड्स का मेरा मतलब होगा कि वॉइस को भी ले सकता है, वीडियो को भी ले सकता है और डेटा ट्रांसफर को भी ले सकता है, तीनों को साइमल्टेनियसली ले पाता है, जो कि अपने आप में कम्युनिकेशन की स्पीड को बढ़ाता है, उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा देता है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी। क्योंकि आपके कोई एक बैंड अगर किसी वजह से ब्लॉक भी कर दिया जाए काउंटर मेजर्स में, फिर भी आप अपने आप उसमें काम कर पाते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी इसमें बहुत अच्छी हो जाती है।
0: पहले भारत के कई टैंक रात में देखने के लिए पुरानी रूसी तकनीक पर निर्भर थे, अब उन्हें स्वदेशी टीआई साइट से बदला जा चुका है, जिससे टैंक कमांडर 4 से 5 किलोमीटर दूर अंधेरे में भी साफ देख सकता है। यही नहीं, टैंक ऑपरेटर के लिए अनकूल थर्मल इमेजिंग कैमरे लगाए गए हैं ताकि वो बिना हेडलाइट जलाए रात में टैंक चला सके।
6: रात में टैंक में सबसे बड़ी मुसीबत एटलीस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस करी वो थी कि आपका जो नाइट का लॉस है, मतलब रात में आप एक तरह से गुम हो जाते हैं, और स्पेशली पिच डार्क अगर नाइट हो, अगर आप डेजर्ट्स में हो, आप जंगल में हो, एक रगेड टेरेन, रफ टेरेन के इलाके में हो, तो आपको एक तरीके से गुम होने का, दिमागी तौर पर गुम होने का एक अंदेशा रहता है, और आप हो भी जाते हैं। जिसको बोलते हैं ना, आजकल तो GPS सिस्टम वगैरह आ गए, हमारे टाइम में नहीं थे, तो एक बड़ा चैलेंज होता था कि रात में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलता था। सो सिर्फ हम अपने हाथ वाले हैंडहेल्ड मैग्नेट के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, जो रेंज दिखाता था हमको। अर्बन एरियाज में बड़ी तकलीफ होती थी हमें कि पूरा बिल्टअप एरिया है, तो उसमें कहां से घुसे, कहां से निकले, वो भी एक बड़ी तकलीफ थी। उसके अलावा एक सिचुएशनल के चारों तरफ क्या हो रहा है उसकी अवेयरनेस का हमें बहुत ही लिमिटेशन रहता था। अब इसके लिए हमने कैसे ओवरकम किया है, तो आजकल हम सभी को मालूम है कि थर्मल नाइट साइट्स आ गई हैं, लाइट इंटेंटिव इंटेंसिफायर्स आ गए हैं, जो टैंक की जो गर्मी है जिसको के थर्मल सिग्नेचर कहते हैं, उसको दुश्मन ना पकड़ पाए तो उसको कैमोफ्लेज करने के तरीके निकल आए हैं कि उसको कम कर लिया जाए, और इंडिपेंडेंट पावर्ड नाइट विजन्स आ गई हैं, जो टैंक का ड्राइवर है उसके पास एक नाइट साइट भी आती है।
0: टैंक को फौलाद बनाने और बाहरी खतरों से निपटने के लिए इसके ढांचे को ऐसी धातु और तकनीक से तैयार किया जा रहा है जिससे ये बारूदी प्रहार को भी झेल सके।
1: टैंक के बाहरी आवरण को मजबूत बनाने के लिए इस पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्स लगाए जाते हैं, जो एक ईंट और शील्ड की तरह काम करते हैं। अगर कोई भी मिसाइल इसके साथ टकराती है तो एक छोटा सा धमाका होता है जिससे आने वाली मिसाइल की मारक क्षमता काफी कम हो जाती है।
0: भारत के अर्जुन टैंक में स्वदेशी कंचन कवच का इस्तेमाल किया गया है, जो बेहद शक्तिशाली माना जाता है। साथ ही भारत ने स्वदेशी ERA MK2 यानी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर MK2 भी तैयार किया है, जो टैंक को दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइलों से हिफाजत करता है। इसकी खास बात यह है कि इस प्रोटेक्शन से टैंक के वजन को बढ़ाए बिना उसकी सुरक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है।
6: कंचन इज अ ओल्ड कंसेप्ट, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नई बात है, लेकिन यस उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर करी जा रही है। हमारे टाइम में भी ये कंचन आर्मर प्लेटिंग जो थी वो अर्जुन टैंक, जो हमारा मेन बैटल टैंक है 1 और 2 दोनों, मार्क 1 और 2 की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें हो जाता था। बेसिकली होता इसमें यह है कि एक मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर प्लेटिंग ये होती है, जो कि आपको एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देती है APFSDS, आर्मर्ड पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग साबो एमिनेशन और HEAT एमिनेशन, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, क्योंकि इन दोनों ही चीजों में आपके पास जो टैंक की जो बाहर की बॉडी है उसके ऊपर आकर जब ये शेल लगता था तो वो एक तरीके से कह सकते हैं उसका केमिकल इसको चिपका देता था, और चिपकाने के बाद उसकी गर्मी और काइनेटिक एनर्जी के वजह से वो दोनों चीजों में अंदर जाके ब्लास्ट करता था। कंचन आने से आपका एक तरीके का सैंडविच इफेक्ट आ गया है कि दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स के बीच में कंपोजिट मटेरियल उसके बीच में डाल दिया जाता है, और उसका जो आर्मर है टोटल आर्मर वो एक रोल्ड होमोजीनियस आर्मर की तरह काम करता है। दैट मींस कि अगर वो APFSDS या HEAT राउंड आकर आउटर लेयर पर लगता भी है तो भी वो उसको अंदर तक नहीं जाने देता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक तरीके का हमने जो कॉम्पोजिट मटेरियल डालकर उस आर्मर को बनाया है वो उसको न्यूट्रलाइज कर पाता है और काफी हद तक एक टैंक को प्रोटेक्शन दे सकता है, और इसीलिए इसे एक तरीके से कंचन सुरक्षा कवच भी बोला जाता है।
0: टैंक की सुरक्षा इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो कितना फुर्तीला है, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक में वो कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। भारी भरकम टैंक के लिए ये काम उनके पावरफुल इंजन करते हैं, यानी जितना ताकतवर इंजन टैंक की ताकत उतनी ज्यादा, लिहाजा सेना के मेन बैटल टैंक के लिए ज्यादा पावरफुल इंजन खरीदा जा रहा है।
1: भारतीय सेना की मेन बैटल टैंक T-90 और T-72 के लिए मजबूत इंजन की खरीद पर मुहर लग चुकी है। T-90 टैंक में फिलहाल 1000 हॉर्स पावर का इंजन है, जिससे बढ़ाकर 1350 हॉर्स पावर करने की तैयारी हो रही है, और इसी तरीके से T-72 को भी मजबूत इंजन के साथ लैस किया जाएगा ताकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी ये अपनी काबिलियत का प्रदर्शन अच्छे से कर सके।
0: मौजूदा समय में भारतीय सेना 1200 से ज्यादा T-90 टैंकों का संचालन करती है, जो अलग अलग संस्करणों में मौजूद है। अब जब T-90 टैंक को 1350 हॉर्स पावर के नए इंजन से लैस किया जाएगा तो इसकी क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। HP इंजन से भारतीय सेना को टैंक पर और ज्यादा सुरक्षा कवच, एडवांस सेंसर और नए हथियार सिस्टम लगाने की सुविधा मिलेगी। नया इंजन बेहतर ईंधन क्षमता के साथ आएगा, जिससे टैंक को ज्यादा दूरी तक चलाया जा सकेगा। लंबे अभियानों के दौरान कम ईंधन की खपत होगी, जिससे सप्लाई लॉजिस्टिक आसान होगी।
7: ये हमने लेसन सीखा है, स्पेशली लद्दाख के अंदर, जब 2020 के अंदर वहां पर हम चीनी वहां पर आ गए थे तो T-90 टैंक को वहां डिप्लॉय किया गया तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। मगर सच्चाई यह है ये वहां लेसन सीखा गया कि जो हाई एल्टीट्यूड में, क्योंकि रेयरफाइड इन्वायरमेंट होता है और वहां पर एक प्रकार एटमोसफियर में ऑक्सीजन कम होती है, तो आपको ज्यादा बड़ा इंजन चाहिए जिसकी हॉर्स पावर ज्यादा हो, वो मैन्यूवर कर सकता है, मोबिलिटी उसकी अच्छी होगी। तो ये सच्चाई है, अभी जो 1350 हॉर्स पावर का जो इंजन आएगा उससे जो टैंक है उसकी क्षमता काबिलियत और बढ़ेगी, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने में स्पीड भी बढ़ेगी।
0: साल 2020 में जब भारत और चीन की सेना के बीच LAC पर टकराव हुआ तो उस समय पूर्वी लद्दाख में T-90 टैंक ही तैनात किए गए थे। अब बदलाव के इस दौर में भारत के इस ताकतवर टैंक को और भी ताकतवर बनाया जा रहा है। हालांकि T-90 टैंक पहले से ही अपनी रफ्तार और रणनीतिक चपलता के लिए मशहूर है, नया इंजन ने और ज्यादा तेज और सक्षम बनाएगा, जिससे युद्ध क्षेत्र में तेजी से मूवमेंट किया जा सकेगा। यह इंजन रेगिस्तान, पहाड़ और ऊबर खाबड़ इलाकों में ज्यादा प्रभावी होगा। तीनों क्षमताओं को बढ़ाने में 1350 HP इंजन बेहद कारगर साबित होगा। मौजूदा समय में भारतीय सेना T-90 टैंकों में व्लादिमीर टैंक इंजन V-92S2 का इस्तेमाल कर रही है, जो 1000 हॉर्स पावर का है। वहीं नया 1350 HP इंजन ज्यादा रफ्तार, ताकत और लड़ाई में सहन शक्ति मुहैया कराएगा।
7: भारत का जो दो फ्रंट वॉर हो सकता है और हमारे को लड़ाई लड़नी पड़ सकती है हाई एल्टीट्यूड में भी, जो कि एक लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश है, और जिस प्रकार से वहां पर काफी इलाका ऐसा है जहां टैंकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और भारत ने टैंकों का इस्तेमाल किया भी है। इस बार जब लद्दाख के अंदर चीनी आ गए तो हमने अपने मेन बैटल टैंक को ले गए थे, T-90 भी, T-72 भी, और ये सच्चाई है कि अब वहां पर टैंकों की लड़ाई बड़े आराम से हो सकती है, और इसलिए टैंकों का आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए हमने अपने जो है अब आने वाले समय में लाइट टैंक कि भी जो एक प्रकार से हम खुद उसको बना रहे हैं, जोरावर टैंक जो कि एक मिनी टैंक होगा, और इसी प्रकार से जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि ये एक प्रकार प्लेन एरिया है या डेजर्ट है, वहां पर भी टैंकों का रोल बहुत ज्यादा होगा, और इसी प्रकार से वहां भी T-90 टैंक जो कि एक सामा एक मेन बैटल टैंक है भारत का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
0: T-90 रूस की ओर से विकसित किया गया था और इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया। अब आने वाले दिनों में 1350 HP इंजन के साथ T-90 टैंक न सिर्फ ज्यादा प्रभावी होगा बल्कि ये पाकिस्तान और चीन के टैंकों से मुकाबला करने में और भी ज्यादा सक्षम होगा।
1: दरअसल T-90 टैंकों को अपग्रेड करने का सिलसिला भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के तहत ही शुरू किया है। इसमें न केवल भारत T-90 टैंकों को अपग्रेड करेगा बल्कि साथ ही साथ अपनी रक्षा जरूरतों को अपने हिसाब से ही पूरा करने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है।
0: इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक है T-90 भीष्म, जो रूस में बना तीसरी पीढ़ी का टैंक है। राजस्थान पंजाब से लगी पाकिस्तान की सीमाएं और लेह से सटे चाइना बॉर्डर पर यह तैनात है। कारगिल वॉर के बाद पाकिस्तान ने यूक्रेन से T-84 टैंक लिए थे। इसके जवाब में भारत ने T-90 टैंकों का सौदा रूस से किया और 2005 में बड़ी तादाद में इनकी डिलीवरी हुई। भारतीय सेना ने इसे भीष्म नाम दिया। मौजूदा समय में भीष्म में लगे कई 5 स्वदेशी हैं और इन्हें देश में ही तैयार किया जा रहा है।
1: मार्च 2025 को भारत ने रूस के साथ एक बहुत अहम डील की है और ये डील है $248 मिलियन की, और ये डील है भारत के टैंक T-72 के इंजन को 1000 हॉर्स पावर तक अपग्रेड करने की। और इस डील की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर भी हस्ताक्षर हुए हैं, जो भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, यानी कि भविष्य में भारत

0: भारत की आर्टिलरी शक्ति जबरदस्त है। भारत के पास 4,201 टैंक है। टोड आर्टिलरी की तादाद 3,995 है। साइक्रोवेंड आर्टिलरी की संख्या 100 है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी कि रॉकेट आर्टिलरी की तादाद 264 है। वहीं आर्म्ड व्हीकल 1,48,594 है। अक्सर देखा गया है कि जमीनी जंग में टैंक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे उन्हें बैटलफील्ड का सबसे बड़ा बाहुबली भी कहा जाता है। अब टैंक को ये तगमा क्यों दिया जाता है और टैंक की असली ताकत क्या है, ये भी जान लीजिए। किसी भी टैंक की ताकत का आंकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होता है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं। इनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? ये आपको बताते हैं। पहला इंडिकेटर है वजन, स्पीड, पावर टू वेट रेशो, साथ ही हथियार और डिफेंस मैकेनिज्म, जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है।
1: टैंक को नापने के लिए चार चीजें जरूरी हैं। एक तो फायर पावर, मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और रेंज। तो इन चारों का तालमेल होना चाहिए कि आपकी जो फायर पावर है वो आपकी जो गन है, जैसे हमारे T-90 में 125 mm बोर, स्मूथ बोर गन है, तो उसकी कितना बोर का है उससे पता चलेगा कि आपकी फायर पावर कितनी होगी। आपके कोएक्सल गन क्या है, आपके जो दूसरे वेपन सिस्टम क्या है टैंक की मेन बैटल टैंक के आपके बैरल के अलावा, जो कि आपके मशीन गन भी है, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है और एंटी टैंक गन भी है। तो फायर पावर बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से मोबिलिटी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टैंक कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है।
0: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की उस ताकत से है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आपको बता दें कि ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़। टैंक का काम है हर जगह से निकलना। जहाँ बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स फंस जाते हैं, वहाँ से टैंक आसानी से निकल जाता है। जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए कि उसमें लोहे के पहिए लगे होते हैं, बावजूद इसके वो थमता नहीं है और न ही धसता है। अब भारी भरकम टैंक दलदले इलाके में क्यों नहीं फंसते, इसका एक सिंपल सा फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं है। टैंक अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलता है, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन सही शब्द है ट्रैक। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है कि टैंक का वजन जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया में बांट देता है और इसीलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी नहीं धसते।

0: टैंक एक ऐसा आपको कह सकते हैं वेपन सिस्टम है जो कि डेजर्ट में भी चल सकता है, एल्टीट्यूड में चल सकता है, कीचड़ में भी चल सकता है, रिवराइन ट्रेन में चल सकता है। उसकी वजह यह है, एक तो इसका इंजन जो है वो बहुत पावरफुल होता है, दूसरा इसके अंदर ट्रैक लगे होते हैं ना कि टायर लगे होते हैं। जो ट्रैक है वो उसके अंदर काबिलियत तो क्षमता होती है कि वो चाहे कीचड़ का इलाका हो, डेजर्ट का इलाका हो, या सेमी ब्रोकन इलाका हो, या आपका पहाड़ी इलाका भी हो, जो छोटे मोटे पहाड़ हैं उन पे भी चढ़ सकता है। तो सच्चाई है क्योंकि इसके अंदर जो एक एक बहुत ही पावरफुल इंजन होता है, दूसरा इसके अंदर जो एक प्रकार से आपकी जो चेन है जो कि ट्रैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैक जो है उसको कहीं पर भी ले जाने के लिए काबिलियत और क्षमता रखते हैं।
1: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक बिल्कुल भी नहीं फंसते। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आइडियली एक टैंक को मैन्यूवरेबल भी होना चाहिए और इसका सही और बढ़िया वेट टू पावर रेशो होना चाहिए। अब मैन्यूवरेबल से यहाँ सीधे तौर पर मतलब यह है कि अगर एक साइड से हमला होता है तो टैंक कितनी जल्दी से कितनी चपलता के साथ अपनी

0: डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और ये तभी हो सकता है जब उसका इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जो उसे रण क्षेत्र में और ज्यादा ताकत देता हो।
1: टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशो होगा उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
2: ज्यादा भारी टैंक होगा तो फिर आपको उसके लिए पावर ज्यादा चाहिए, और अगर तो इसलिए एक बहुत ही जो इसका मापदंड बड़ा ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो पावर टू वेट रेशियो में पावर भी हो और वेट कम भी कम हो, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एक अच्छे टैंक के लिए। तो आपको हर एक चीज को ये देखना पावर टू वेट रेशियो में कि अगर आप वेट बढ़ा देंगे तो फिर उसकी हो सकता है इसकी पावर कम हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए इंजन बहुत बड़ा चाहिए।

0: को ताकतवर बनाने में उसका फायर पावर भी अहम रोल निभाता है। टैंक की मारक क्षमता को बताने के लिए भी कई इंडिकेटर्स हैं। पहला है कैनन, यानी टैंक पर लगी तोप का साइज। कैनन का बोर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा गोला दागने में टैंक सक्षम होगा, यानी जितना बड़ा कैनन होगा वो उतना इफेक्टिव हो सकता है। एक मिनट में कितने गोले फायर किए जा सकते हैं इस पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी जितने कम समय में टैंक जितने ज्यादा गोले दागेगा उससे दुश्मन को बचने का वक्त भी कम मिलेगा, साथ ही उसे नुकसान भी काफी ज्यादा उठाना होगा। टैंक के लिए जितना अहम कैनन है उतना ही अहम है उसकी मैगजीन का साइज, यानी टैंक कितने गोले लेकर चल सकता है। ज्यादा गोले का मतलब युद्ध के मैदान में टैंक कितने समय तक दुश्मन से मुकाबला कर सकता है और कितने तरह के गोले इससे दागे जा सकते हैं। इन बातों से टैंक की ताकत को परखा जाता है। आजकल के टैंक तो मिसाइल भी फायर करने में सक्षम है। अब टैंक के कितने हिस्से होते हैं और उसका काम और अहमियत क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल टैंक के दो हिस्से होते हैं। टैंक के नीचे के हिस्से को हल कहा जाता है, वहीं ऊपरी हिस्से को टैरल कहा जाता है। ये 360 डिग्री पर मूव कर सकता है। टॉयलेट वाले एरिया में बैरल से लेकर मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक लगे होते हैं, जिससे दुश्मन से मुकाबला करना आसान होता है।
1: ये जो गन कंट्रोल सिस्टम होता है, जायरोस्कोपिक वेपन स्टेबलाइजर उसको बोलते हैं, इसका काम यह है कि एक रेफरेंस पॉइंट जो है उसको फिक्स करके उसके ऊपर ही वहीं पर गन को रखा जाए। तो ये एक सब टैंकों में यही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टैंक को तो ऊपर या नीचे उबड़ खाबड़ इलाके में चलना ही है, तो उसको एक पहले तो गन कंट्रोल सिस्टम जो है वो आता है और साथ ही साथ उसके फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी एक इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जायरोस्कोप जो है वो मदद करती है कि इसको सिंक्रोनाइज करके एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर जहाँ आपने फिक्स किया है वहाँ पर उसकी गन की बैरल को रखा जाए।
0: टैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है दुश्मन के रडार में आए बिना मिशन को अंजाम तक पहुंचाना। खुला इलाका या रेगिस्तान जहां चुनौती काफी बढ़ जाती है, ऐसे में टैंक स्मोक डिजास्टर का इस्तेमाल करते हैं। टैंक से निकलने वाले स्मोक से धुएं का बादल पसर जाता है, जिससे दुश्मन के लिए टैंक की सही पोजिशन को ढूंढ कर उस पर हमला करना मुश्किल हो जाता है।
2: जब टैंक बैटलफील्ड में है तो उसके लिए भी उसको भी एक प्रकार से जब वो दुश्मन के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो खुद भी टारगेट बन सकता है, दुश्मन के टैंकों का भी ड्रोन का भी। इसीलिए टैंक अपने आप को एक कैमोफ्लाज करने के लिए टारगेट एक बार अपने आप को बचाने के लिए स्मोक का डिस्चार्ज करता है, जिससे उसको छुपाव में आ जाता है और दुश्मन के टैंक जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या दुश्मन के ड्रोन या एंटी टैंक जो आपके गन सिस्टम है या आपके एंटी टैंक हेलीकॉप्टर है वो इस अटैक हैप्टर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन का दर्जा है।
0: युद्ध के मैदान में टैंक के लिए एंटी टैंक माइंस एक बड़ा खतरा माना जाता है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। अब दुश्मन के एंटी टैंक माइन से बचने के लिए माइन प्लगर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के मैन पोर्टेबल टैंक अर्जुन मार्क 1 में इसका इस्तेमाल किया गया है। माइंस प्लगर के पास ही सेंसर लगा होता है, जिसकी मदद से माइंस को डिटेक्ट किया जा सकता है और फिर प्लगर की मदद से उसे जमीन से उखाड़ दिया जाता है।
1: अगर जो टैंक है वो हल्का है, दैट इज वाई इसकी जो पावर टू वेट रेशियो है वो ज्यादा से ज्यादा रखी जाती है, ताकि वो क्विकली एक जगह से फायर करके फटाफट गेट अवे कर सके। एक तो ये तरीका है, और दूसरा अगर इसके पीछे जानबूझ के कुछ फ्लेयर जो है वो गिरा दी जाती है या ऐसी लाइटिंग की जाती है जिससे इंफ्रारेड रेज जो है दुश्मन के रडार की, उनको चीट करने की या मिसगाइड करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए टैंक का वेट जो है कम से कम रखा जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह से मैक्सिमम स्पीड से जा सके।
0: टैंक के क्रू मेंबर्स की हिफाजत के लिए एक तो इसके कवच को काफी मजबूत बनाया जाता है जो कि दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है। टैंकों के डिजाइन को लेकर भी खास सावधानी बरती जाती है। इसे कर्व जैसा आकार दिया जाता है ताकि गोली बेअसर साबित हो।
1: भी टैंक की आर्मर जो है ये एक्चुअली काफी मोटी होती है और आजकल कंपोजिट आर्मर जो है ना, सेल्फ रिपेयरिंग आर्मर्स वो भी आ गई हैं। होता यह है कि दो हार्ड जो फेसेस हैं उसके अंदर कंपोजिट बनाने के लिए उसके अंदर एक लो डेंसिटी वाला मटेरियल रखा जाता है। आइडिया ये है कि अगर कोई भी शेल आपके टैंक के ऊपर गिरे तो वो उसको पियर्स ना कर सके, उसके अंदर गोला करके उसके अंदर ना जा सके। तो इसके लिए कंपोजिट आर्मर और आज की टेक्नोलॉजी के युद्ध में बहुत बढ़िया बढ़िया आर्मर। आइडिया ये है कि टैंक का वेट भी ना बढ़े, जितना आप इसका आर्मर को मोटा करेंगे उतना टैंक का वेट बढ़ेगा। तो इसलिए ये एक ट्रेड ऑफ होता है कि कितना आर्मर मोटा या अच्छी क्वालिटी का ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए कि जो लाइट भी हो, टैंक की वेट को ना बढ़ाए और उसी तरीके से ये दुश्मन के गोले को या उसको भी बर्दाश्त कर सके।
0: टैंक के मेन गन से एमुनिशन यानी कि गोला फायर किया जाता है। इसे फायर करने के दौरान बैरल काफी गर्म हो जाता है, साथ ही बड़ी मात्रा में धुआं और जहरीली गैस निकलती है। ऐसे में खतरा ये रहता है कि बैरल के जरिए धुआं वापस टैंक के अंदर न दाखिल हो जाए, लिहाजा बैरल में एक इवैक्यूटर बना होता है जो धुआं और जहरीली गैस को वापस लौटने से रोक देता है। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Hey, it's Billy Bush. Tune in to my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: Good news today.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफर परीक्षण, MIRV तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बनाया निशान। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां, मंदिर के पास ही आसमान में एयर शो का रिहर्सल, सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम ने दिखाए करतब। बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में कल ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर हो गए कार्यक्रम। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD की ओर से आंधी बारिश का अलर्ट, 11 से 14 मई के बीच कई राज्यों में दिखेगा इसका असर। पवित्र चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी लगातार। अभिनेता विजय देवाकोंडा के जन्मदिन पर फैंस को मिला बड़ा तोहफा, राउडी जनार्दन का पोस्टर रिलीज, साउथ सुपरस्टार का दिखा दबंग अंदाज। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे नोरा फतेही, कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नोरा। मॉस्को में दिखा विक्ट्री डे परेड का शानदार नजारा, फ्लाईपास के दौरान आसमान हुआ सतरंगी, ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर से विमानों ने भरी उड़ान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने तमिलनाडु की सियासत में 59 साल बाद एक नई और दमदार लीक खींच दी है। तमिलनाडु में 59 साल बाद पहली बार ये मौका आया है जब डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही पार्टियां सत्ता से दूर हो चुकी है। इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बेदखल किया है तमिल फिल्मों के एक मसीहा ने।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु की सियासत में नई और मजबूत लीक खींचने वाले जोसेफ विजय चंद्रशेखर हैं। जी हाँ, तमिलनाडु की जनता जिन्हें प्यार से थलापति के नाम से बुलाती है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय ने 2 साल पहले रुपहले पर्दे को अलविदा कह एक राजनीतिक पार्टी बनाई और उसके बाद हुए पहले ही चुनाव में इतिहास रच दिया। तमिलनाडु के सत्ता पर पिछले 59 साल से 2 ही पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके काबिज होती रही, लेकिन थलापति विजय ने दोनों का डिब्बा गोल कर नई सियासी अध्याय की शुरुआत कर दी है।

0: लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव त्योहार की तरह होते हैं, एक ऐसा त्योहार जिसमें जनता अगले 5 साल के लिए अपने मुस्तकबिल पर मुहर लगाती है। लेकिन दशकों में कभी एक बार ऐसा भी होता है जब कोई चुनाव सिर्फ त्योहार न रहकर बहुत बड़े बदलाव का ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाता है। तमिलनाडु के सियासी मैदान में इस बार बड़े बदलाव की ऐसी ही क्रांति देखने को मिली है और इस क्रांति के मसीहा बनकर उभरे हैं तमिल फिल्मों के महानायक जोसफ विजय चंद्रशेखर। प्रशंसक प्यार से जिन्हें थलापति विजय के नाम से बुलाते हैं। बीते 4 मई को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सूबे की 6 दशक पुरानी द्रविड़ियन राजनीति का एक तरह से पटाक्षेप कर दिया है। 234 सीटों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतकर थलापति विजय ने अन्नादुरई, करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन और जयललिता की वर्षों पुरानी द्रविड़ियन राजनीति की मजबूत विरासत के धुर्रे बिखेर दिए। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम के शिखर पर पहुंचने के बाद थलापति विजय ने 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कड़गम के नाम से नई पार्टी बनाई और उसके बाद हुए पहले ही विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों को धराशायी कर दिया। पार्टी बनने के बाद से ही थलापति विजय का आत्मविश्वास उनके प्रचंड जीत की सरगोशी कर रहा था।
1: I'm seeing last 2 years is confidence level. Okay? His confidence level is fantastic. And faith, I'll come as a Chief Minister of Tamil Nadu.
0: थलापति विजय का आत्मविश्वास तब भी दिखा जब उनकी पार्टी ऐतिहासिक जीत के बाद भी बहुमत के आंकड़े से 10 कदम दूर रह गई। अपनी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर थलापति विजय 2 बार 6 और 7 मई को राजभवन गए, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं होने का हवाला देकर उन्हें वापस कर दिया। लेकिन तमिलनाडु के इस थलापति ने फरवरी 2024 में राजनीतिक पार्टी बनाने के साथ ही अटल निश्चय कर लिया था कि राज्य की सत्ता के शीर्ष तक हर हाल में पहुंचेगा। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने सत्ताधारी डीएमके को भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी बताया था, जबकि बीजेपी को उन्होंने अपना वैचारिक विरोधी माना था। कमाल यह है कि बहुमत का आंकड़ा जुटाने के दौरान उन्होंने इन दोनों पार्टियों से दूरी बनाए रखी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि थलापति विजय ने विधानसभा चुनाव में अपने स्टारडम को भुनाकर तमिलनाडु की सत्ता के शीर्ष तक का सफर तय किया है, तो वो गलतफहमी में हैं। आज विजय की कामयाबी की जो बुलंद इमारत आपको नजर आ रही है, उसकी नींव 2 दशक पहले ही पड़ चुकी थी। थलापति विजय ने राजनीतिक पार्टी वेशक फरवरी 2024 में बनाई, लेकिन सच्चाई यही है कि वे अपने फैन क्लब के जरिए पिछले 2 दशक से समाज सेवा और जन कल्याण के काम में जुटे हुए हैं। विजय का फैन क्लब थलापति विजय मक्कल यक्कम काफी पहले से सक्रिय है, जिसके तहत ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप लगाने जैसे काम तो किए ही जाते रहे हैं। गरीबों को खाना कपड़ा देने से लेकर सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों, पुलिस थानों, यहाँ तक कि कोर्ट के मामलों में भी बेसहारा जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती रही है।
1: As a human, you should not be as a only artist. You must have some social thinking. So last 30 years, was having in his mind, we have to do something for the society, for the Tamil people. It was there in his mind. Last, slowly he has developed that these things.
0: साफ है कि तमिलनाडु की जनता ने उन्हें अपना थलापति माना है, तो उसके पीछे ठोस वजहें हैं और इन्हीं वजहों की वजह से उन्होंने तमिलनाडु में 1967 के बाद पहली बार गैर द्रमुक सत्ता की नींव डाली है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के तब के लोकप्रिय नेता अन्नादुरई ने 1949 में पेरियार से अलग होकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की नींव डाली थी। 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद अन्नादुरई को साल 1967 में कामयाबी मिली और उन्होंने राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। सरकार बनाने के 23 महीने बाद ही अन्नादुरई का निधन हो गया, जिसके बाद डीएमके की कमान करुणानिधि के हाथों में आ गई। उधर तमिल फिल्मों के तब के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन ने रुपहले पर्दे के मायालोक को अलविदा कहकर 17 अक्टूबर 1972 को AIADMK की स्थापना की। साल 1977 के विधानसभा चुनाव में एमजी रामचंद्रन करुणानिधि को करारी शिकस्त देकर सूबे की सत्ता पर काबिज हो गए। तब से लेकर आज तक यानी करीब 59 साल से यही दोनों पार्टियां बारी बारी से सूबे की सत्ता का स्वाद चखती रहीं। लेकिन थलापति विजय ने आखिरकार सत्ता के एकाधिकार के इस द्रविड़ियन अश्वमेध पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि जोसफ विजय से पहले करुणानिधि और एमजी रामचंद्रन की जमी जमाई सियासी विरासत को चुनौती देने की कोशिश नहीं की गई। दक्षिण भारत के थलाईवार रजनीकांत ने 3 दिसंबर 2020 को पूरे जोशो खरोश के साथ ऐलान किया कि वे जनवरी 2021 में एक नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। लेकिन जनवरी 2021 आने से पहले 29 दिसंबर 2020 को ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर रजनीकांत ने सियासी अखाड़े से दूर रहने का बयान जारी कर दिया। दक्षिण भारत के एक और स्टार कमल हसन ने भी 21 फरवरी 2018 को पूरे उत्साह और जोश के साथ मक्कन निधि मैयम के नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तमिलनाडु की 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कमल हसन ने किस्मत आजमाई, लेकिन कोयम्बटूर दक्षिण से खुद ही हार गए। उसके बाद तो सियासी सुरमा बनने की उनकी हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। पर थलापति विजय ने अद्भुत आत्मविश्वास के साथ तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री मारी और पहली बार में ही विजय पताका लहरा दिया।
2: जोसफ विजय चंद्रशेखर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कामयाबी के सफर में कभी ठहराव या फिर बिखराव का आलम नहीं देखा। एक बार जिस काम पर पहुंच गए तो उससे ऊपर ही बढ़े, नीचे की ओर कभी देखा ही नहीं। तमिल फिल्मों में जबरदस्त स्टारडम हासिल करने के बाद जब सियासी अखाड़े में उतरे तो वहां भी बड़े बड़े सूरमाओं को चित्त कर दिया। लेकिन इस कामयाब इंसान को बचपन में एक बड़ा सदमा लगा था, ऐसा सदमा जिसने मासूम उम्र में ही उनकी खुशियां छीन ली, बचपना छीन कर इन्हें शांत और अंतर्मुखी बना दिया। लेकिन वही सदमा बाद में इनकी जिंदगी की कामयाबी का शरार बन गई।

0: नफरत और नस्लीय भेदभाव की बुनियाद पर शुरू हुई द्रविड़ियन राजनीति की चूले हिलाकर तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज हुए जोसेफ विजय चंद्रशेखर की जिंदगी का सफर सफलता की अनोखी दास्तान है। दुनिया के सफलतम लोगों की जिंदगी में झांकेंगे तो आपको गिरने और संभलने, चढ़ने और फिसलने का सिलसिला दिखाई देगा, लेकिन जोसेफ विजय चंद्रशेखर की जिंदगी बिना गिरे, बिना फिसले, बिना थके, बिना रुके मुसलसल आगे बढ़ने का बेनजीर सिलसिला है। सफलता की ऐसी दास्तान जिसमें सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने का क्रम दिखता है, ठहरने या उतरने का कोई क्रम नजर नहीं आता। जिंदगी को लेकर इनका फलसफा भी यही है कि सफलता का कोई आखिरी छोर नहीं होता।
1: Don't lose your identity at any cost. Say no to temporary pleasures. Success is never ending. Failure is never final.
0: आपको बता दें कि 22 जून 1974 को चेन्नई में फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे विजय बचपन में काफी चंचल, वाचाल और बातूनी थे, लेकिन 10 साल की उम्र में हुई एक नामुराद दुखद घटना ने इनकी निश्चल मासूमियत को हमेशा के लिए छीन लिया। दरअसल विजय जब 3 साल के भी नहीं हुए थे तो 14 फरवरी 1977 को विधाता ने बहन के रूप में इन्हें अनुपम उपहार दिया। अपनी बहन विद्या के जन्म के बाद विजय का जीवन आह्लाद आनंद से भर गया। हालांकि तब विजय उम्र के लिहाज से बेहद नादान थे, लेकिन हर वक्त बहन के साथ रहना, उसकी किलकारियां सुनना, रोने पर उसे पुचकारना जोसेफ विजय की जिंदगी का हिस्सा बन गया। कुछ समय बाद विजय का जब काडम्बकम के फातिमा स्कूल में एडमिशन हुआ तो बहन को छोड़कर स्कूल जाना उन्हें बेहद खटकता था। बहन से एक पल की दूरी भी उन्हें नागवार गुजरती थी। स्कूल से लौटते तो सीधा बहन के पास जाते थे और उसकी बाल सुलभ चंचलता में खुद को फना कर देते थे। पर विधाता को भाई बहन के बीच का यह अनुपम प्यार लंबे वक्त तक मंजूर नहीं था। विद्या जब 7 साल की हुई तो किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। कहते हैं कि साल 1984 में भाई की गोद में ही बहन ने आखिरी सांसें ली। काल के इस क्रूर मजाक ने विजय को भीतर तक झकझोर दिया। बहन विद्या की मौत का सदमा इतना गहरा था कि चंचल वाचाल विजय 10 साल की उम्र में ही एकदम शांत और अंतर्मुखी हो गए। जीवन का उत्साह, उमंग एक झटके में खत्म हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम मिलने के बाद एक इंटरव्यू में विजय ने कहा था, छोटी बहन की मृत्यु के बाद मेरे जीवन में जो खालीपन आया वो बहुत साल बाद प्रशंसकों के प्यार से ही भर पाया। इस प्यार में अक्सर मुझे अपनी बहन की झलक दिखाई देती है। वक्त का कारवा गुजरता गया, लेकिन जोसेफ विजय 42 साल पहले दुनिया छोड़कर गई बहन की मनोरम यादें आज भी अपने सीने में सजोए हुए हैं। जोसेफ विजय की प्रोडक्शंस कंपनी का नाम वीवी क्रिएशंस है, विद्या विजय क्रिएशंस। इतना ही नहीं, अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों के लिए वो एक खास नंबर 0277 इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर उनकी बहन विद्या के जन्म के महीने और साल से जुड़ा हुआ है। विद्या के जन्म का साल 1977 था और महीना था फरवरी, यानी साल का दूसरा महीना। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि विजय की सफलता दर सफलता का बहन के प्रति उनके बेपनाह प्यार से आखिर क्या संबंध है? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। दरअसल बहन की दुनिया से विदाई के बाद विजय ने अपनी मासूमियत को, शोखी को, चंचलता को जब अपने सीने में दबाना शुरू किया तो कालांतर में उसने तूफान का संघनित रूप ले लिया। सीने में दबा वही संघनित तूफान पहले पर्दे पर और बाद में सियासी मैदान में बवंडर बनकर निकला तो बड़े बड़े सूरमा उसके सामने धराशायी हो गए। काबिले गौर है कि बहन विद्या की मृत्यु से पहले जोसेफ विजय तमिल फिल्म वेत्री में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू कर चुके थे। इस फिल्म का निर्देशन जोसेफ विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर ने किया था। पर विद्या की मृत्यु के बाद विजय इतने सदमे में थे कि मौका मिलने के बाद भी वो फिल्मों में काम करने से कतराने लगे थे। बेटे की ये हालत देखकर माँ बाप काफी परेशान थे और हर हाल में बेटे को इस सदमे से उबारना चाहते थे। इसीलिए माँ शोभा चंद्रशेखर ने साल 1991 में एक रोमांटिक फिल्म की पटकथा लिखी। पिता ऐसे चंद्रशेखर ने इस कहानी पर बेटे को लीड हीरो लेकर फिल्म बनाने का फैसला किया, लेकिन कोई प्रोड्यूसर इस पर पैसा लगाने को राजी नहीं हुआ। आखिरकार पिता ने ही बैंक से लोन लेकर फिल्म का निर्माण किया। साल 1992 में आई नालैया थिरुप्पु बतौर लीड हीरो विजय की डेब्यू फिल्म थी। नालैया थिरुप्पु बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई और पूरा पैसा डूब गया। फायदा बस इतना हुआ कि विजय रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो लॉन्च हो गए। बतौर लीड हीरो पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी जोसफ विजय के भीतर का तूफान जरा भी कमजोर नहीं पड़ा। अलबत्ता कामयाबी की चाह की ज्वाला और तेज हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 1994 में आई रसीगन और 1996 में आई उन्नक्कगा ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। साल 1997 में आई कुडालुकु मरिया धाई में तो विजय के बेहतरीन अभिनय ने क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया। रोमांटिक फिल्म कुडालुकु मरिया धाई के लिए विजय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के स्टेट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। विजय ने अपने फिल्मी करियर की कामयाबी की सीढ़ियां बड़े ही करीने से चढ़ी हैं। शुरुआती 10-11 सालों तक विजय ने खुद को रोमांटिक हीरो के इमेज तक महदूद रखा, लेकिन साल 2002 के बाद उन्होंने एक्शन फिल्मों को साइन करना शुरू किया। साल 2003 में थिरुमलाई में दर्शकों ने पहली बार विजय का एक्शन अवतार देखा। साल 2004 में आई गिली में एक कबड्डी प्लेयर के किरदार को विजय ने अपने लाजवाब एक्शन से इतना दमदार कर दिया कि रातों रात तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। गिली घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई। ऐसा लगता है कि जोसफ विजय अपने फिल्मी करियर को एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ा रहे थे। करीब एक दशक तक अपने एक्शन अवतार में कामयाबी का झंडा बुलंद करने के बाद तमिल सुपरस्टार ने सामाजिक सरोकार वाली फिल्मों को साइन करना शुरू कर दिया। 2014 में आई कत्थी में विजय डबल रोल में दिखे, जिसमें से एक छोटे मोटे चोर कथी रेशन का किरदार है, जबकि दूसरा जीवानंदम सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता। कत्थी का जीवा बड़े कॉरपोरेट घरानों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। इसी तरह साल 2018 में आई सरकार में विजय सुंदर रामास्वामी नाम के एक एनआरआई बिजनेसमैन के किरदार में नमूदार होते हैं। जो वोट डालने भारत आता है तो पता चलता है कि उसका वोट पहले ही पड़ चुका है। सुंदर रामास्वामी के किरदार में विजय चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते देखे जा सकते हैं। साल 2021 में आई मास्टर में जोसफ विजय लोकेश कनगराज के ऐसे किरदार में हैं जो विजय सेतुपति नाम के खतरनाक गैंगस्टर के खिलाफ मोर्चा खोलता है और बच्चों को उसके अत्याचार से मुक्त कराता है। साल 2023 में आई लियो में विजय पार्थिवन की भूमिका में हैं जो हिमाचल प्रदेश में कैफे चलाता है और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू करता है। लियो ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड वाइड 623 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। कमाल देखिए कि सियासी अखाड़े में उतरने से करीब एक दशक पहले से जोसफ विजय सोशल कॉज पर फिल्में बनाने लगे थे। 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कड़गम नाम से राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी सफर पर विराम लगाने का ऐलान भी कर दिया। 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उनकी आखिरी रिलीज फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। हालांकि उनकी एक और फिल्म जननायकन रिलीज को तैयार है, पर गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर विजय ने जब उम्मीदवार उतारे तो चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़े उनकी फिल्मों के क्लिपिंग्स का जमकर इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि विजय ने पहले रोमांटिक हीरो के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, उसके बाद एक्शन हीरो के तौर पर जबरदस्त स्टारडम हासिल किया और राजनीति में कदम रखने से पहले एक दशक तक ऐसी फिल्में बनाई जिससे उनकी छवि जननायक वाली बन गई। इस लंबी रणनीतिक सूझबूझ का नतीजा ये है कि अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने सूबे में 60 साल से अंगद पांव जमाए बैठी द्रमुक राजनीति का सफाया कर दिया।
2: बंदे बहदम में आज आपने थलापति विजय के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ये ऐसे वीडियो हैं जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे, और इसके साथ कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और आपको हैरान भी कर देंगे।
6: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बारातियों ने गर्मी का ऐसा तोड़ निकाला है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स के पसीने छूट जाएं। अक्सर शादियों में आपने नाच गाना और बैंड बाजा देखा होगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही निराला है। बाराती ठंडी हवा के झोंकों के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक छोटी सी ट्रॉली पर बड़े बड़े कूलर रखे गए हैं। अब आप सोचेंगे कि सड़क पर कूलर चलेंगे कैसे, तो भाई इसका भी सॉलिड इंतजाम है। कूलर को पावर देने के लिए साथ में पोर्टेबल जनरेटर फिट किया गया है, मतलब बारात जहाँ जहाँ जा रही है ठंडी हवा का पूरा काफिला साथ चल रहा है। एक दुल्हन की विदाई के समय धान या चावल फेंकने की रस्म निभाई जा रही है। पीछे खड़ी उसकी माँ अपने आंचल को फैलाकर उसे रोकने का काम कर रही है। अब तक माहौल पूरा दुख भरा लगता है, लेकिन अगले ही पल जो कुछ भी होता है उसे देख किसी के लिए भी अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगी। दरअसल इस रस्म के दौरान जब दुल्हन अपने हाथ से पीछे की तरफ बिना मुड़े धान या चावल को फेंकती है, तो उनमें से कुछ दाने उछल कर उसकी माँ के मुँह में चले जाते हैं, जिसके बाद माँ का रोना धोना तुरंत बंद हो जाता है और वो अपने मुँह से धान के दानों को निकालने की पूरी कोशिश करने लगती है। वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि शेरों का एक पूरा कुनबा एक अकेले भैंसे को घेर कर खड़ा है। शेर उस पर कहर बनकर टूट पड़े हैं, लेकिन भैंसा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सामने आए एक शेर को जोरदार सींग मार कर हवा में उछाल दिया। हालांकि 3-4 शेर लगातार उस पर हमला कर रहे थे और उसे नोच रहे थे, लेकिन इस बीच अचानक दूर से धूल का गुबार उठा और भैंसे के करीब एक दर्जन साथी गैंगस्टर की तरह वहां पहुंच गए। अपने दोस्त को मुसीबत में देख बाकी भैंसों ने आओ देखा न ताओ और शेरों पर हमला बोल दिया। नजारा ऐसा था कि भारी भरकम भैंसे शेरों को फुटबॉल की तरह हवा में उछाल रहे थे। शेरों को भी समझ आ गया कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, खिसक लेने में ही भलाई है। बड़े बुजुर्गों को अक्सर नई पीढ़ी तकनीक सिखाती है, ये लोग सीखते भी बड़े मन से हैं, लेकिन अपने तरीके से। जैसे पहले सब कुछ लिखकर सीखा जाता था, एक नानी का ऐसा ही वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर धूम मचाए हुए है। वीडियो में नानी सीख रही हैं और नातिन से खा रही है। ये मोमेंट याद रखने वाला बन गया है। वीडियो की सबसे खास बात यह है कि नानी सिर्फ सीख नहीं रही थी, वो सब कुछ याद कर लेना चाहती थी, इसलिए वो एक एक पॉइंट लिख रही थी। अच्छे से समझने के लिए वो डायग्राम भी बना रही थी। उनका डेडिकेशन भी तो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। रंगोली ऐसी कला है जिसको बनाने में धैर्य चाहिए होता है। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट अपनी उंगलियों से कुछ ऐसा गढ़ देते हैं कि आंखों को यकीन भी नहीं होता है। साउथ कोरिया की सड़कों पर ऐसी ही अद्भुत रंगोली बनाई गई है। ये रंगोली एक इंडियन आर्टिस्ट भाग्यश्री ने बनाई है। ये आर्ट इतना सुंदर है कि इसके बनते बनते सड़क पर भीड़ ही इकट्ठा हो गई। ये बेसफुट ऊंची रंगोली भाग्यश्री ने 4 घंटों में बनाई। वीडियो में पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें भाग्यश्री सड़क पर बैठ कर पहले से बनाई आकृति में सावधानी से रंग भरती दिख रही है, जबकि आसपास के लोग उन्हें घेरे हुए हैं और उनके आर्ट को देखकर हैरान हो रहे हैं।
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to... But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
8: Thank God I get to wake
7: and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today. From pop songs to EDM bangers.
9: The hits are on.
7: And hip-hop beats.
10: I'm in the game, I should have joined with this G23.
7: Today's hits will keep the party going 24-7. Listen now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
4: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
4: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण, MIRV तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बनाया निशान। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां, मंदिर के पास ही आसमान में एयर शो का रिहर्सल, सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम ने दिखाई करतब। बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में कल ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन, आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पे होगा ये कार्यक्रम। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD की ओर से आंधी बारिश का अलर्ट, 11 से 14 मई के बीच कई राज्यों में दिखेगा इसका असर। पवित्र चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी लगा तांता। अभिनेता विजय देवकोंडा के जन्मदिन पर फैंस को मिला तोहफा, राउडी जनार्दन का पोस्टर रिलीज, साउथ सुपरस्टार का दिखा दबंग अंदाज। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे नोरा फतेही, कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नोरा।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव की तैयारियां तेज, 11 मई को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पूरे होंगे 75 साल। सोमनाथ में एयर शो का भी हुआ रिहर्सल, आसमान में सूर्य किरण, एरोबैटिक टीम ने दिखाई हैरतअंगेज करतब। शानदार हवाई करतबों से गूंज उठा सोमनाथ का आसमान, स्थानीय लोगों में काफी उत्साह। अमृत महोत्सव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने लिया जायजा। 11 मई 1951 को हुआ था सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण, अमृत महोत्सव के मौके पर हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर के शिखर पर की जाएगी पुष्प वर्षा। 11 मई को गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोमनाथ अमृत महोत्सव में लेंगे हिस्सा। कल तेलंगाना और कर्नाटक जाएंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के समारोह में लेंगे हिस्सा, ध्यान मंदिर का करेंगे उद्घाटन। हैदराबाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे 9,400 करोड़ रुपए की सौगात, तेलंगाना और कर्नाटक के बीच यात्रा का समय 1.5 घंटे हो जाएगा कम। पीएम मोदी हैदराबाद में कैंसर के इलाज के लिए सिंधु अस्पताल राष्ट्र को करेंगे समर्पित, अस्पताल में हो सकेगा कैंसर का इलाज। डीआरडीओ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, MIRV तकनीक से लैस एडवांस अग्नि मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण। ओडिशा के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च की गई मिसाइल, एक साथ कई अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है मिसाइल। भारत लगातार बढ़ा रहा अपनी सैन्य क्षमता, कई पेलोड्स के साथ किया गया अग्नि मिसाइल का उड़ान परीक्षण। कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के सम्मान में आयोजित अभिमान उत्सव में लिया हिस्सा। शिरडी के साई दरबार पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, परिवार के साथ किए दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे दर्शन, अब तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हो चुके इसमें शामिल। केदारनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने किए दर्शन। हर दिन करीब 25,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे बाबा के धाम, फिलहाल श्रद्धालुओं को मिल रहा मौसम का साथ। बद्रीनाथ धाम में उमड़ रहा आस्था का मेला, अब तक 2,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड में भी श्रद्धालुओं का जोश हाई, यमुनोत्री में 1,45,000 से ज्यादा, तो यमुनोत्री में 1,43,000 श्रद्धालु ले चुके हैं आशीर्वाद। पुदुचेरी के कराईकल पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार, तिरुनेला मंदिर में की पूजा अर्चना। डीके शिव कुमार ने उतारी भगवान शनिदेव की आरती, मंदिर प्रशासन किया स्वागत। फीफा की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे नोरा फतेही, 12 जून को कनाडा के टोरंटो में होगी सेरेमनी। नोरा फीफा वर्ल्ड कप 2022 की क्लोजिंग सेरेमनी और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में कर चुकी हैं परफॉर्म, ऐसा करने वाली इकलौती बॉलीवुड कलाकार। सिंगर कैटी पेरी भी फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में करेंगे परफॉर्म, अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगी सेरेमनी। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, माथा टेक कर लिया मां का आशीर्वाद, परिवार के सदस्य भी साथ में रहे मौजूद। वाराणसी में गंगा तट पर सजी सांझ प्रणामी संगीतांजलि, शास्त्र गायिका पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी की जयंती पर हुआ इसका आयोजन, मालिनी अवस्थी सहित कई बड़ी हस्तियां रही मौजूद।
2: कोई फॉर्मेलिटी वाला गाना नहीं,
1: अगस्त से भारतीय रेलवे 40 साल पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम को बदलकर लागू करेगा नया सिस्टम। टिकटिंग और

संगम नगरी प्रयागराज में युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर की सौगात। नगर निगम ने यमुना नदी में शुरू किया एडवेंचर स्पोर्ट्स। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 250 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया वाटर स्पोर्ट्स। नगर निगम प्रयागराज ने यमुना रिवर बैंक बोट क्लब पर वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का किया आगाज। वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रयागराज के लोगों को अब दूसरे शहरों का नहीं करना होगा रुख। दूसरे शहरों के युवाओं को भी मिलेगा वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने का मौका। एक रुपए में खाना खिलाकर सैकड़ों गरीबों का सहारा बना गाजियाबाद का एक दंपति। कोरोना महामारी के समय शुरू किया था लोगों को खाना खिलाने का ये नेक काम। पिछले 4.5 साल से रोजाना लोगों को 1 रुपए में खाना खिलाते हैं गाजियाबाद के पंडित गोपाल पुजारी। अब 800 से ज्यादा लोगों को खिलाते हैं 1 रुपए में खाना। एक रुपए की थाली में मिलती है रोटी, सब्जी, चावल, दाल और मिठाई। रोज बदलता है खाने का मेन्यू। 1 रुपए लेने के पीछे स्वाभिमान को सम्मान देना है मकसद। गरीबों जरूरतमंदों के लिए बड़ा सहारा है पंडित गोपाल पुजारी की ये रसोई। गोपाल ने बताया धीरे धीरे मिशन से जुड़ रहे हैं बहुत से लोग, हर रोज दे जाते हैं जरूरी चीजें। लोगों का पेट भरने के साथ साथ समाज सेवा और इंसानियत का संदेश देना इस मुहिम का मकसद। मौसम के मिजाज में बदलाव का सिलसिला रहेगा जारी। उत्तर भारत के कई इलाकों में जारी रहेगा बारिश, गरज चमक और बढ़ते तापमान का असर। उत्तराखंड में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। आंधी तूफान की भी है संभावना। दस मई से सक्रिय हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली समेत पहाड़ी राज्यों में होगी बारिश, चलेंगी तेज हवाएं। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 9 और 10 मई के बीच 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। आंधी तूफान की भी है संभावना। उत्तर भारत में 9 मई तक छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश की है संभावना। अरुणाचल, असम और मेघालय में 12 और 13 मई को कुछ जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक तय समय से भारत पहुंचेगा मॉनसून। 1 जून को केरल तट पर बरसेंगे मॉनसून के बाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मॉनसून का आना करीब 2 हफ्ते दूर। भारत में सबसे पहले यही होती है मॉनसूनी बारिश। ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है भारत के मॉनसून का रास्ता। ऑस्ट्रेलिया में बारिश का मौसम खत्म होने का सीधा असर भारत के मॉनसून पर पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो चुकी है बारिश। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून के समय पर आने की वजह अल नीनो। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में अगले 7 दिनों में होगी बारिश। मॉनसून के सही समय पर आने का बड़ा संकेत। गुजरात के गिरनार के जंगलों में शेरों की बढ़ती आबादी को बचाने के लिए वन विभाग की बड़ी पहल। हाईवे पर तैनात की गई विशेष पेट्रोलिंग टीम। सुरक्षा के लिए वन विभाग सतर्क। कई मौके पर ट्रैफिक रोककर शेरों और शावकों को पार करवाया जा रहा है सड़क। वन विभाग हाईवे पे स्पीड ब्रेकर और चेतावनी साइन बोर्ड लगाने की कर रही है तैयारी। शेरों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कैमरा और सेंसर सिस्टम लगाने की है योजना। जूनागढ़ वन विभाग के लोगों से अपील, सड़क पर अगर शेर दिखाई दे तो वाहन धीमे चलाएं, हॉर्न न बजाएं और वन्य जीवों को न कर परेशान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के सनशाइन पीक से 24 सैलानियों का सफल रेस्क्यू। मौसम खराब होने से फंसे पर्यटकों का सेना के विमान की मदद से किया गया सफल रेस्क्यू। टेक कंपनी एप्पल ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 करोड़ रुपए के निवेश का किया है।

0: प्लान क्लीन मैक्स के साथ 150 मेगावाट क्षमता निर्माण की योजना। देश का रियल एस्टेट बाजार 5.8 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद। फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक 2034 तक 906 अरब डॉलर के नए घरों के निर्माण की संभावना। ईईएस रिपोर्ट के मुताबिक 6000 यूरोपीय कंपनियां भारत की जीडीपी में लगभग 5% दे रही है योगदान। पिछले 10 साल में भारत में 218 बिलियन यूरो का किया गया है निवेश। अगस्त से भारतीय रेलवे 40 साल पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम को बदलकर नया आधुनिक सिस्टम लागू करेगी। टिकटिंग और रिजर्वेशन में भी होगा बदलाव। अमेरिका में भारतीय आम के बड़े दाम, एक साल में 4200 से 5600 रुपए प्रति बॉक्स हुई इसकी कीमत। अल्फांजो, केसर, चौसा और बंगनपल्ली आम की अच्छी डिमांड। सैफ अली खान, संजय मिश्रा, रसिका दुग्गल स्टारर क्राइम ड्रामा फिल्म कर्तव्य का ट्रेलर रिलीज। एक पुलिस वाले के नैतिक युद्ध की कहानी है ये, इसी महीने ओटीटी पे होगी रिलीज। फिल्म गवाना का टीजर रिलीज था। 1990 के दशक में देश के सबसे बड़े आर्थिक संकट पर बेस्ड है ये कहानी। टीजर में आरबीआई गवर्नर के रोल में दिखे मनोज। 12 जून को आएगी ये फिल्म। एक्टर रणदीप हुड्डा की वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज। वेब सीरीज में 1990 के दशक के उत्तर प्रदेश में दिखेगी झलक। रामचरण और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म पेडी के मेकर्स ने सेट से साझा किया बीटीएस वीडियो। लिखा, बीटीएस के कुछ मजेदार पल जो हमारे दिल के बेहद करीब। एक्टर शक्ति कपूर की सेहत को लेकर अटकलों पर बेटी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने जारी किया वीडियो। बताया, पूरी तरह से स्वस्थ हैं पिता शक्ति कपूर। 37 साल के हुए साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा शादी के बाद मना रहे पहला बर्थडे। फैंस का स्वीकार किया अभिवादन। एक्टर विजय देवरकोंडा के जन्मदिन पर आई गुड न्यूज। अपकमिंग फिल्म रणबारी की रिलीज डेट रिवील। 11 सितंबर को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। आस्था और भावनाओं से भरपूर फिल्म कृष्णा और चिट्ठी का ट्रेलर आउट। अरुण गोविल और दर्शील सफारी मुख्य भूमिकाओं में आएंगे नजर। नीता अंबानी और ईशा अंबानी ने वेनिस में किया NMACC डिनर होस्ट। नीता अंबानी की कला यात्रा को सराहा गया। शास्त्रीय नृत्य के प्रति उनके जुनून का किया गया जिक्र। 61वें वेनिस बियनाले में भारत की सांस्कृतिक मौजूदगी पर फोकस। दुनिया भर के कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियां इसमें शामिल। ज्योग्राफी, सब्जिस्टेंस, रिमेम्बरिंग होम प्रदर्शनी बड़ी आकर्षण का मुख्य केंद्र। सिद्धार्थ तमन्ना कॉमिक फिल्म द लेजेंड ऑफ विवियान का वीडियो लॉन्च। कैप्शन में लिखा, विवियान द फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट का ऐसा अनुभव करे जैसा पहले कभी नहीं किया। फिल्म 28 अगस्त को होगी रिलीज। पॉप गायक और बॉलीवुड सिंगर बादशाह का एक और धमाकेदार सॉन्ग रिलीज। गाने पे डांस भी करते दिखे बादशाह। सोशल मीडिया पर मचा रहा काफी धमाल। फैंस कर रहे काफी पसंद। विदेशों में अपने ऑरा टूर 2026 में गीतों से जलवा बिखेर रहे गायक दिलजीत दोसांझ। कॉन्सर्ट में उमड़ रही काफी भीड़। दिलजीत ने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर किया पोस्ट शेयर। पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म भोगी 28 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। 11 मई को ट्रेलर होगा जारी। शारवादंद, अनुपम परमेश्वरम, डिम्पल हयाती फिल्म में आएंगे नजर। थिएटर्स में फिर चलेगा तारा सकीना का जादू। एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने गदर 3 पर दिया बड़ा अपडेट। बोली, पहले से दोगुना होगा एक्शन। 500 करोड़ से ज्यादा कमाएगी ये फिल्म। रूस में विजय दिवस परेड का जश्न। जमीन से लेकर आसमान तक दिखा शौर्य पराक्रम का नजारा। आसमान में गर्जे फाइटर जेट। सीज फायर के बावजूद मॉस्को में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मॉस्को के रेड स्क्वायर पे कदम ताल मिलाते नजर आए जवान। पहली बार बिना टैंक और मिसाइलों के निकले विजय परेड। रूस की विक्ट्री परेड में कई देशों के नेताओं ने की शिरकत। बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और स्लोवाकिया के नेता रहे शामिल। में राष्ट्रपति पुतिन ने विदेशी नेताओं की मेजबानी की, पूरे उत्साह के साथ किया गया विरासत का सम्मान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच राहत वाली गुड न्यूज, दोनों देश 3 दिन के युद्ध विराम और 1,000 कैदियों की अदला बदली पर हुए सहमत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव बोले, राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली की, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल को किया स्वीकार। युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, 9-10-11 मई को युद्ध विराम और 1,000 युद्ध बंदी बदलने पर पुतिन की मिली सहमति। यूक्रेनी राष्ट्रपति की वेबसाइट पर प्रकाशित दस्तावेज के मुताबिक मॉस्को में विजय दिवस परेड पर हमला नहीं करेगा यूक्रेन, दस्तावेज पर जेलेंस्की का दस्तखत। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम और कैदी अदला बदली पर किया था पोस्ट, रूस ने विजय दिवस के लिए गुरुवार को ही 3 दिन के युद्ध विराम का किया था ऐलान। हॉलीवुड की सबसे मशहूर हस्तियों में से एक दिवंगत मॉडल और फिल्म स्टार मार्लिन मुनरो से जुड़ी कई चीजों की होगी नीलामी। बिक्री के लिए रखी गई मार्लिन मुनरो से जुड़ी वस्तुओं में उनके कपड़े, गहने, चिट्ठियां, हाथ से लिखे नोट्स, पेंटिंग्स और कविताओं के गुंजारिश है शामिल। मार्लिन मुनरो के 100वें जन्मदिन पर 1 जून को होगी नीलामी। नीलामी में मुनरो से जुड़ी कुछ ऐसे दस्तावेज शामिल है जो पहले कभी नहीं देखे गए हैं। '26 में लॉस एंजलिस में जन्मी मार्लिन मुनरो मशहूर अभिनेत्री, मॉडल, गायिका थी। मार्लिन मुनरो ने 1962 में दुनिया को कहा था अलविदा। हेरिटेज ऑक्शन के पूर्वावलोकन के दौरान हॉलीवुड और मनोरंजन के वरिष्ठ निदेशक ब्रायन चेन्स ने मार्लिन को बताया सच्ची आइकन, कहा लोगों ने आज भी बहुत प्यार करते हैं। दुनिया में UFO यानी उड़ंत अस्थरी को लेकर फिर छिड़ी बहस, अमेरिकी रक्षा विभाग ने जारी किया अज्ञात सामान्य घटनाओं से जुड़ी लगभग 160 गोपनीय फाइलें। रक्षा विभाग ने जारी की कथित UFO देखे जाने से जुड़ी दर्जनों गोपनीय फाइलें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर जारी किए गए दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियोस। फाइलों में 1947 की उड़ने वाली तस्करियों की रिपोर्ट भी शामिल, साथ ही चंद्रमा की सतह से ली गई अज्ञात घटनाओं की धुंधली तस्वीरें भी शामिल। अमेरिकी रक्षा विभाग बोला भविष्य में जारी किए जाएंगे और दस्तावेज गोपनीय श्रेणी से हटाए जाने के बाद जारी किए जाएंगे वीडियो। शुक्रवार को जारी गोपनीय फाइलों पर बोले एक्सपर्ट, पिछली सरकार ने जारी कर दी थी अधिकांश फाइलें, धरती से बाहर जीवों के अस्तित्व का ठोस प्रमाण नहीं। चीन में पूरी तरह से ऑटोमेटिक चार्जिंग और ऑटोनोमस ऑपरेशन सिस्टम का किया गया अनावरण। ऑटोनोमस गाड़ियों के लिए मिलेगी पूरी तरह अनमैन्ड क्लोज्ड लूप प्रोसेस, चार्जिंग रोबोट, पार्किंग रोबोट और AI एजेंट को एक साथ जोड़ेगा सिस्टम। ऑटोमेटिक चार्जिंग रोबोट से लैस ये सिस्टम गाड़ियों के अलग अलग मॉडलों के साथ काम करने के लिए इसे किया गया है डिजाइन। सऊदी किंग्स कप के फाइनल में टीम अल हिलाल ने अल खुलूल को 2-1 से दी मात, जीत के साथ ही कोच सिमोन इंजागी को क्लब के साथ मिली अपनी पहली ट्रॉफी। अब इंजागी की टीम का पूरा ध्यान सऊदी प्रो लीग पर, लीग में अभी लीडर अल नासर से 5 पॉइंट पीछे अल हिलाल टीम, दोनों टीमों में 12 मई को होगा मुकाबला।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Discover your new favorites on TuneIn. With over 100,000 music, news, and sports stations to choose from, there's always something to listen to. Even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
4: Thank God I get to wake up.
3: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.

0: कौन से उपायों से माता के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? आपके किन उपायों से माता का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है? और किसकी पूजा उपासना करने से माता का विशेष आशीर्वाद जीवन में मिल सकता है? क्या है मां की महिमा? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
3: It's college football time. College basketball feels
2: Pardon
3: like
2: my take.
4: The Rams catching the Commanders.
2: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण। MIRV तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बनाया निशान। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां, मंदिर के पास ही आसमान में एयर शो का रिहर्सल, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाई करतब। बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में कल ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर होगा ये कार्यक्रम। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। IMD की ओर से आंधी बारिश का अलर्ट, 11 से 14 मई के बीच कई राज्यों में दिखेगा इसका असर। पवित्र चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 9,20,000 के पार, 4,00,000 से ज्यादा भक्त पहुंच चुके केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी लगा तांता। अभिनेता विजय देवाकोंडा के जन्मदिन पर फैंस को मिला तोहफा, राउडी जनार्दन का पोस्टर रिलीज, साउथ सुपरस्टार का देखा दबंग अंदाज। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी नोरा फतेही। कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नोरा।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।

चर्चा भारत के स्वाभिमान का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा आज हम इसी को लेकर करेंगे क्योंकि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचने वाले हैं अमृत महोत्सव में। इसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और इस अमृत महोत्सव को लेकर खास तैयारियां हो रही हैं। हम आपको सोमनाथ धाम में होने वाले उत्सव से जुड़ी हर जानकारी देंगे। क्यों शिव का सबसे चमत्कारी धाम कहा जाता है सोमनाथ को? सोमनाथ स्वाभिमान के 75 साल आस्था का धाम कैसे बना? भारत का मान 12 ज्योतिर्लिंगों में क्यों प्रथम पूज्य है सोमनाथ? और क्या है चंद्रदेव का सोमनाथ से कनेक्शन? इन तमाम सवालों और पहलुओं पर होगी आज चर्चा। हमारे साथ देश के जाने माने इतिहासकार और ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे। तो करीब 5 महीने बाद एक बार फिर से सोमनाथ धाम में बड़ा उत्सव हो रहा है। 11 मई यानी कि इसी सोमवार को सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के मौके पर यह बड़ा आयोजन हो रहा है और इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।

0: सोमनाथ गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित आस्था का ऐसा धाम जो भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, महादेव का ऐसा मंदिर जो भारत की अविनाशी और शाश्वत आध्यात्मिक संस्कृति के 1000 सालों का अडिग इतिहास खुद में समेटे है। भारतीय सनातन संस्कृति में शिव के इस धाम का विशेष महत्व रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के वैभव का प्रतीक सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने का गौरवशाली उत्सव बना रहा है, जिसे भारत स्वाभिमान का नाम दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महा उत्सव का हिस्सा बनेंगे। इसी से पहले प्रधानमंत्री ने शब्दों के माध्यम से ऐतिहासिक पौराणिक सोमनाथ को लेकर अपनी भावनाएं एक लेख के माध्यम से जताई थी। उन्होंने लिखा,
1: सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितना भी विकराल क्यों ना हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। ये सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष के बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे फिर से एक बार सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार ये यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर से जीने जा रहा हूँ जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था।
0: सोमनाथ देश के स्वाभिमान का भी प्रतीक रहा है, यानी अगले हफ्ते 11 मई को सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण यानी अपने वर्तमान स्वरूप के 75 साल पूरा कर रहा है। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया था। सोमनाथ मंदिर की 1000 साल से भी ज्यादा के इतिहास, विनाश, अटूट आस्था और पुनरुत्थान की अद्भुत गाथा है। मुगल शासन में इस मंदिर पर बार बार हमले किए गए, लेकिन हर बार अविनाशी का ये धाम नई चमक, नई आस्था के साथ उठ खड़ा हुआ है। लिहाजा ये सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र भर नहीं, भारत के स्वाभिमान का भी प्रतीक है। धार्मिक नजरिए से भी इस स्थान का विशेष महत्व है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी अतुलनीय है। एक ओर अरब सागर की लहरें हैं, तो पास ही गीर के जंगलों का सौंदर्य, एक ऐसा पावन स्थान जहां हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की अद्भुत गाथा समेटे शिव का ऐसा निवास जहां आकर साधक का मन ही नहीं, आत्मा भी पवित्र पावन हो जाती है। सोमनाथ धाम का वर्णन ऋग्वेद, श्रीमद् भगवत गीता, शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसे शिव के पहले ज्योतिर्लिंग का स्थान प्राप्त है। जाहिर है इस धाम से भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी है। पौराणिक ग्रंथों में इसके चंद्रदेव से जुड़ी कथा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों में से रोहिणी से अधिक प्रेम करने के कारण चंद्रदेव को कमजोर होने का श्राप दिया था, जिससे मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने शिव जी की तपस्या की और यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। इसी तप से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए और चंद्रदेव को वरदान दिया, इसलिए शिव के इस धाम का नाम सोमनाथ पड़ा और 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान मिला। सोमनाथ धाम को मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ पूजा उपासना करने से चंद्रदेव की विशेष कृपा मिलती है और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। मंदिर के आसपास की कुदरती सुंदरता तो कमाल है ही, मंदिर की बनावट और शिल्प भी बेमिसाल है। जानकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर को चालुक्य शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण के लिए पीले बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। इसका शिखर करीब 155 फीट ऊंचा है। वहीं सोने का कलश और विशाल मंडपम इसका आकर्षण और बढ़ा देते हैं। हर लिहाज से सोमनाथ धाम अद्भुत है, अतुलनीय है, क्योंकि शिव का ये धाम महज आस्था भक्ति विश्वास का केंद्र नहीं है, इससे भारतीय सनातन संस्कृति का स्वाभिमान भी जुड़ा है। इसलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के जरिए पूरे संसार को विनाश पर सृजन और आस्था की विजय का संदेश दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ धाम में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस खास आयोजन का हिस्सा बनने 11 तारीख को सुबह 10 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोमनाथ धाम पहुंचेंगे और इस खास पल के साक्षी बनेंगे। 4 दिन के महोत्सव के समापन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे और साथ ही साथ हेलीपैड से मंदिर परिसर तक उनका एक रोड शो भी होने वाला है। तो प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर धाम में तैयारियां कैसी हैं और ये उत्सव किस तरीके से इसकी शुरुआत हो चुकी है और कौन कौन लोग पहुंचने वाले हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिलीप मोरी।
2: देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 11 मई को यहां पर पहुंचने वाले हैं। जामनगर से सीधे सोमनाथ हेलीपैड पर प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे और इसके बाद यही जो वो रास्ता है जो 1 किलोमीटर का, यहीं पर प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है। दोनों तरफ लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन और पूजा करेंगे महादेव की। इसके अलावा यहां पर एक एयर शो का भी आयोजन किया गया है, जो पहली बार सोमनाथ मंदिर में इस एयर शो का आयोजन किया गया है। सूर्य की जो पहली किरण पड़ेगी इस वक्त प्रधानमंत्री जी यहाँ जब पहुंचेंगे तब एयर शो का भी आयोजन किया गया। यहीं से आगे 2 किलोमीटर दूर सद्भावना ग्राउंड है, वहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर एक सभा का भी आयोजन किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री बड़ौदा जाने के लिए यहाँ से रवाना होंगे। दिलीप मोरी, गुड न्यूज टुडे, सोमनाथ।
0: वैसे पर्व और ये पल केवल गुजरात के लोगों के लिए या फिर महादेव के भक्तों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए स्वाभिमान का पल होगा, इसीलिए इसको खास बनाने की कोशिश हो रही है। सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान भी होने हैं और इसके लिए मंदिर प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए हैं।
3: सोमनाथ मंदिर में लिंग की प्राण प्रतिष्ठा को 75 साल 11 मई को पूरे हो रहे हैं। वो दिन अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की, जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, वो आएंगे और पूजा करेंगे और आज तारीख 8 से लेकर 11 तक के 4 दिनों में वहाँ यज्ञ होगा, मंत्रोच्चार होगा, मंत्र लेखन होगा, कई लोगों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। इस तरह धार्मिक एवं अन्य तरीके से ये अमृत महोत्सव पर्व हम मना रहे हैं।
0: तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। आचार्य बद्रीशी महाराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ रवि भट्ट जी हिस्टोरियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में चंद्रांशु जी महाराज कथावाचक भी हमारे साथ जुड़ने वाले। मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी रवि भट्ट जी, आप इतिहासकार भी हैं, एक समृद्ध इतिहास, और देखिए आज की तारीख में जो संदेश यहां से जाने वाला है स्वाभिमान पर्व की, जिसकी बात हो रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, आज की तारीख में दुनिया में जितनी उथल पुथल है, जिस तरीके के हालात हैं, उसमें कहीं ना कहीं सोमनाथ मंदिर एक बहुत बड़ा संदेश है। ये दिखाता है पूरी दुनिया को कि किस तरीके से बार बार गिराने के बाद भी स्वाभिमान के साथ मंदिर खड़ा है। रवि भट्ट जी,
4: हेलो
0: जी।
4: जी हाँ, आपने आपने जैसा कहा ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो जो सनातन धर्म है उसका ये उसकी ये प्रतीक है, उसकी उसकी आस्था का प्रतीक है, उसके आत्मविश्वास का प्रतीक है। और आप ये देखिए, और ये खाली कहने से शब्दों पे मत जाइए कि कोई आदमी ऐसे ही बोल रहा है, आप इस बात पे जाइए कि इसका आप इतिहास देखिए। इसका इतिहास है, ईसा पूर्व मंदिर बना हुआ था, जिसका स्कंद पुराण वगैरह के अंदर भी इसका जिक्र आता है, हम लोग के रीच में जो स्क्रिप्चर्स है उसके अंदर बहुत एक्सटेंसिवली इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद में जब 649 के अंदर इसको पहली बार ये एक योजनापूर्वक ढंग से बनाया जाता है, मैत्रिक राजाओं ने इसको बनाया, उसको बनने के बाद इसके ऊपर पहला अटैक जो हो जाता है 725 के अंदर हो जाता है, सिंध के जो सूबेदार था जुनैन, उसने इस पर अटैक कर दिया, उस पर खत्म किया। वो पहला सबसे बड़ा कहना चाहिए इसके ऊपर जो था आक्रमण था, जिससे कि हिंदू की आस्था पर चोट करने का प्रयास किया मुस्लिम शासकों ने किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके फौरन बाद ही जो 815 के अंदर जो प्रतिहार राजा नागभट्ट थे उन्होंने इसको बनवा दिया। उसके ये बनने के बाद में इसके फिर ये अपनी पुरानी प्रतिष्ठा इसको मिली और पुराना गौरव इसको मिला। उसके बाद में फिर लेकिन ज्यादा दिन तक लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर जो है, और इसके अंदर पैसा बहुत ज्यादा हुआ करता है जैसा हम सब लोग जानते हैं। तो 1024 के अंदर जो होता है, महमूद गजनी ने इस पर 5,000 आदमियों के साथ अटैक कर दिया और इसका सारा सामान, इसका जितना भी, मतलब वो बहुत लंबी कहानी है कि ब्राह्मणों पर कितना और जो वहां पर जो भक्त लोग थे उन पर कैसा अत्याचार करा गया, और अपने आप में विश्व के अंदर किसी भी धार्मिक स्थल को विध्वंस करने की और उसको लूटने की ये सबसे भयानक जो घटना थी वो यहां पर 1024 में घटी महमूद गजनी के द्वारा, जो कि हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास के अंदर और लिखा गया है
5: जी।
4: वो इसके ऊपर पूरी पूरी किताब लिखी जा सकती है। उसके बाद में यहां पर यह अंत नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर कहना चाहिए इस मंदिर को यहाँ के जो जो इसके जो आस्थावान लोग थे जिनका इसके ऊपर श्रद्धा और आस्था थी, उन लोगों ने इसको फिर से बनाया। इसको बनाने के बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका जो सेनापति था एक, उसने इसको 1297 के अंदर जाके इस पर फिर से अटैक करा और इसको तहस नहस कर दिया। इसके बाद में दोबारा फिर जब ये बनकर तैयार हुआ तो उसके बाद में आप इसको जो सिंध का जो अमीर था उसने इसको दोबारा इसमें 13 सेंचुरी के अंदर इसको करा, फिर 14 सेंचुरी के अंदर उसके बेटे ने इसको करा, और ये अंत नहीं था। आप ये देखिए कि जैसे ही गद्दी पे औरंगजेब बैठता है, बैठने के शुरू के सालों में 1665 के अंदर इसको फिर से इसका ध्वंस कर देता है, और यही अंत नहीं है, मरने के एक साल पहले वो फिर दोबारा करना चाहिए इसके ऊपर अटैक करता है। 1707 के अंदर उसकी डेथ होती है और 1706 के अंदर उसके अंदर मतलब फौज भेज के इसके अंदर मतलब कहना इसको विध्वंस करता है, कत्लेआम करता है और एक टुकड़ी छोड़ देता है कि यहाँ पर किसी रंग की पूजा पाठ नहीं होना चाहिए।
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं लौटती हूँ आपके पास राजमिश्रा जी, आपके पास आते हुए यहाँ पर राजमिश्रा जी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने बकायदा एक लेख लिखा है। चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, आपके पास लौटूंगी। पहले राजमिश्रा जी आपसे एक लेख लिखा है, उसकी लाइनें देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है और यहां से संदेश जो सनातन हो या भारतीय संस्कृति हो या हमारे मंदिर हो किस तरीके से पूरी दुनिया को दे रहे। दो लाइनें, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है, इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है और इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों ना हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। ये शायद हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, जो हमें इतनी शक्ति इतनी ताकत देती है कि हजार साल बाद भी वही सोमनाथ है और वही संदेश पूरी दुनिया को यहां से जा रहा है।
6: एक अटल बिहारी वाजपेयी ने नवजोत जी एक शब्द कहा था, मुझे पूरी लाइन याद है, बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे सर पर बरसें ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं नवजोत जी, ये सिखाता है, ये एक्चुअली सोमनाथ हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ ही वो मंदिर है जो हमें सिखाता है कि आप सनातन पर कितना भी प्रहार करें लेकिन सनातन हर बार उठ करके खड़ा होता है। सनातन को नष्ट नहीं किया जा सकता, सनातन को खत्म नहीं किया जा सकता, सनातन को थोड़े दिन के लिए प्रभावित तो किया जा सकता है, परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ भारतीय है, ये सिर्फ भारत है जिसकी हौसलाओं को, जिसके जज्बा को तोड़ा नहीं जा सकता। अभी जब हम बात कर रहे थे, आप डिस्कस कर रहे थे, कितनी बार प्रयास किया गया महमूद गजनी से लेकर के औरंगजेब तक, अनेक लोगों ने आकर के उसको विध्वंस करने का प्रयास किया, उसको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हाँ हर बार सनातनियों की ऊर्जा ने, सनातनियों की आस्था ने, इस भारत की संस्कृति ने दोबारा उसको तैयार किया, दोबारा उसको बनाया। तो एक तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हम भारतीय हार नहीं मानते हैं, हम भारतीय हर बार उठ करके खड़े होते हैं और अपने धर्म के प्रति हम जागृत रहते हैं और अपने जीवन के प्रति जागृत रहते हैं। उसी प्रकार ये एक साधारण मानव के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, इस बात को ध्यान रखना होगा नवजोत जी, कि जीवन में कई बार आपको प्रॉब्लम्स आती हैं और आप सोचते हैं कि मतलब अब तो मेरे पास कुछ नहीं रह गया, सब कुछ खत्म हो गया, तब आपको इस सोमनाथ मंदिर से प्रेरणा, इस द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि पहला ज्योतिर्लिंग है, उससे आपको ये प्रेरणा लेनी होगी कि देखिए इतने प्रहार के बाद भी, इतने प्रभाव के बाद भी आज वो मंदिर सनातन का सुंदर प्रतीक दिख रहा है, आज वहां एक सुंदरता दिख रही है, बार बार उसका जीर्णोद्धार हुआ, बार बार तैयार किया, लोगों ने नष्ट करने का प्रयास किया। इसी प्रकार आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन यदि आपकी इच्छा शक्ति मौजूद है तो आप परास्त नहीं हो सकते।
5: बिल्कुल,
6: इच्छा शक्ति और अगर मजबूत है तो आप फिर दोबारा उठ करके खड़े होंगे। तो इसलिए सोमनाथ मंदिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार हम सनातनियों को, हम लोगों को अपनी ऊर्जा को कायम रखने की जो मदद है वो करता है, हमें अपने आप को जागृत रखने में जो मदद है वो करता है नवजोत जी। तो इसलिए कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहा है ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके साथ हम सभी लोगों के लिए इस मंदिर से प्रेरणा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति हमारी कितनी मजबूत है, कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी अडिग है, ये शायद हम इस मंदिर से सीख सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये शब्द कहा है मुझे लगता है।
5: चंद्रांशु जी महाराज, आज दुनिया की स्थिति आप देख लीजिए, चाहे मिडिल ईस्ट हो, रूस यूक्रेन युद्ध हो, हर जगह पर टेंशन तनाव बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं, और हम इधर भारत की बात करें तो यहां हम स्वाभिमान पर्व, हम क्योंकि इसका नाम दिया गया है, कहीं ना कहीं भारत क्या एक संदेश और क्या एक रास्ता दिखा सकता है दुनिया को? क्या हमारा धर्म, हमारी संस्कृति दुनिया को ये रास्ता दिखा सकती है कि कितने भी आक्रमण, कितने भी हमले ना हो जाए, लेकिन हौसला अगर आपका है तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता?
7: बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी, सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज जीएनटी चर्चा कर रहे, देश को एक ऐसे विषय की ओर ले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सोमनाथ हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की और देश के अंदर जो भी लोग थे उनकी मना स्थिति भूत भवन भोलेनाथ के प्रति जो भी थी, सनातन धर्म में जो वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं द्वादश ज्योतिर्लिंगों के प्रति विशेष स्थान रहता है। जैसा भी थोड़ी देर पहले राज कह रहे थे कि सोमनाथ प्रथम है, प्रथम शिवलिंग है और उसमें प्रभासक क्षेत्र भी है। द्वारिकाधीश भगवान ने इसी क्षेत्र से अपनी लीला को संवरण किया हुआ है। चंद्र देवता ने यहाँ बहुत वर्षों तक तपस्या किया है। दक्ष की पत्नियां आपस में एक रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते थे, बाकी को नहीं, तो सब कहीं जाकर के शिकायत किया उन्होंने दक्ष प्रजापति को, और उन्होंने क्षय रोग से ग्रसित होने का इनको श्राप दिया। फिर इन्होंने, चंद्रदेव ने बड़ी तपस्या किया और शंकर भगवान प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया था वहां पर। सोमनाथ का एक अपना अलग महत्व रखता है। अब जैसे आपने एक बात बहुत और भी महत्वपूर्ण कहा कि क्या भारत पूरे विश्व को कोई रास्ता दिखा सकता है, मैं निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत ही एकमात्र विश्व के अंदर देश है जो सभी जितने भी विश्व को कहीं ना कहीं शांति के लिए, शाश्वत शांति के लिए, उसके जीवन में कहीं सुख शांति मिल जाए वो भारत ही दे सकता है। क्योंकि अभी तक लोग मंगल ग्रह तक पहुंच गए, पर जीवन में मंगल कैसे आएगा ये बात किसी को भी नहीं पता है। अगर जीवन में मंगल कैसे आएगा इसका किसी के पास सूत्र है तो एकमात्र भारत देश के पास में सूत्र है और कहीं नहीं है। और जहां तक इसे सोमनाथ मंदिर की बात कहें तो इसको चंद्रदेव ने स्वर्ण से बनवाया, रावण ने इसी मंदिर को चांदी से बनवाया, राजा भीमसेन ने इसको पत्थर से बनवाया। तो ये सोमनाथ जो मंदिर है, रावण उसके पास सोने की लंका है, उसके पास क्या वैभव नहीं है, उसके पास देश विदेश क्या, विश्व की स्वर्ग की सारी सुंदरियां हैं, स्वर्ग के सारे सुखोभोग की वस्तु है। पर वो रावण भी जब भोलेनाथ के दरबार में जाता है, भोले बाबा की स्तुति करता है, उसने शिव तांडव स्त्रोत्र में कहा शिवेति मंत्र मुच्चरत सदा सुखी भाव्यहम, हे भोले बाबा दुनिया के सारे सुख सामग्री मिलकर के भी हमको सुखी नहीं बना पाती, जब हम आपके दरबार पर भोले बाबा आते हैं और आपका जलाभिषेक करके झूम करके जब शिव तांडव स्त्रोत्र गाते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं, आपका नाम संकीर्तन करते हैं ओम नमः शिवाय का, तभी हमको सुख शांति मिलती है। तो निश्चित तौर पर भौतिक विकास चाहे जितना हो जाए, भौतिक सामग्री जितनी आ जाए, पर उनका परिणाम दुखद ही है। आजकल गर्मी भयंकर है पर एसी में ज्यादा रहने के कारण तमाम बीमारी आ जाती है, एलोपैथिक दवाइयां ही खाने पर तमाम बीमारी आ जाती है। तो हम जितना भी भौतिक विकास कर रहे हैं साइंस के द्वारा, उसका परिणाम कहीं ना कहीं विनाश की ओर ले जाता है। एक अध्यात्म ही ऐसा रास्ता है, एक केवल ये भगवान का भजन, भगवान का सत्संग, ये भगवान का जो आराधना, जो अध्यात्म है, मेडिटेशन है, इसी में शांति है। और इसीलिए आज भी लोग अपने मन की शांति के लिए, हृदय की शांति के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्मचिंतन आत्ममनन के लिए लगातार लोग मेडिटेशन करते हैं, लगातार उपासना करते हैं, और उपासना करके कहीं ना कहीं अपने को शांति सुखद अनुभूत महसूस करते हैं। लोग ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठ करके ही मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। उसको पता है कि मेडिटेशन से कहीं ना कहीं उनका बौद्धिक विकास होता है, आध्यात्म की यात्रा उनकी पुष्ट होती है। तो निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा विश्व को मार्गदर्शन देने का अगर किसी में सामर्थ्य है तो एकमात्र भारत देश में है। और मैं फिर एक बड़ी जिम्मेदारी कहता हूं कि जैसे अपना देश सोने की चिड़िया था, निश्चित तौर पर भौतिक जगत में सोने की चिड़िया था, पर विश्वगुरु भारत पहले जो था आज भी है, क्योंकि विश्व को मार्गदर्शन करने का किसी में सामर्थ्य है वो हमारे देश के पास है, भारत देश के पास है, इसलिए निश्चित तौर पर भारत ही विश्व को कहीं ना कहीं दिशा और दशा दे
5: सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बद्री जी महाराज आपके पास आना चाहूंगी, चंद्रदेव से क्या इसका कनेक्शन है जरा वो हमें समझाइए, शास्त्रों में क्या कुछ इसका वर्णन किया गया है?
8: चंद्रदेव सौम्य देवताएं, शांति के प्रतीक हैं, आनंद के प्रतीक हैं। चंद्रदेव सभी देवों में सूर्यदेव और चंद्रदेव प्रकाश के देवता माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज्योतिष शास्त्र जिस आधार पर टिका हुआ है वो 27 नक्षत्र हैं और ये उनके स्वामी हैं। जैसा कि हमारे चंद्रांशु जी महाराज अभी संकेत कर रहे थे, तो दक्ष की 60 पुत्रियां हुई, उनमें से उन्होंने 27 का विवाह चंद्रमा के साथ में किया, लेकिन वो रोहिणी नाम की पत्नी से कुछ अधिक प्रेम करने लगे। धीरे धीरे ये शिकायत बहुत परेशान होकर के उनकी सभी पुत्रियों ने अपने पिता से की, और बार बार समझाने पर भी जब चंद्रदेव नहीं माने तब उन्होंने इनको क्षय रोग का शाप दे दिया। क्षय रोग माने जैसे टीबी होती थी पहले, तो उस राजयक्षणा रोग से वो ग्रस्त हो गए। तो उन्होंने जाकर के अपने जो ससुर दक्ष थे उनकी शरण ली, उनकी प्रार्थना की भविष्य में ऐसी त्रुटि ना हो, ऐसा उन्होंने वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम जाकर के भगवान भूतवावन भोलेनाथ की तपस्या करो, क्योंकि भोले बाबा का जो नाम है वो शिव, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। यद्वयक्षरम नाम गिरे ऋतिम नृणाम सकृत प्रसंगाद अग आसु हंति तक, स्वयं सती माता ने कहा है जिन शिव का दो अक्षर का नाम है शिव, जिसका अर्थ ही होता है कल्याण, जिसका नाम स्मरण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं, सकृत प्रसंगाद अग मासु हंति तक। तो उन्होंने जाकर के फिर प्रभास क्षेत्र में, जहाँ पर भगवान का श्री कृष्ण का स्मरण क्षेत्र भी रहा, बहुत घोर तपस्या की, और उस महान तपस्या से भूतवावन भोलेनाथ परम प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आपके मन में जो इच्छा हो भाई आप वरदान प्राप्त करें। उन्होंने कहा भगवान एक तो मेरा ये रोग दूर हो जाए, और दूसरा मैं चाहता हूँ जितने दिन मैंने आपका आराधन इस पवित्र स्थल पर किया है यहाँ पर आप अपने दिव्य रूप में स्थापित हो। तो भूतवावन भोलेनाथ जो हमारे परम आराध्य और आस्था के केंद्र द्वादश ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, उनमें प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सौराष्ट्र सोमनाथ चौक इस सौराष्ट्र प्रांत में और सोमनाथ के नाम से भूतवावन भगवान वहां पर व्यक्त हुए, और उनका इतना पूरे विश्व में जितने भी आराधक थे उनका केंद्र रहा, इतनी आस्था रही, सोमनाथ को सर्वोपरि शिवलिंगों में माना गया। और इसीलिए इसी बात से आहत होकर के चिढ़ करके जितने भी विधर्मी थे आक्रांता थे, उन्होंने हमारी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए बार बार सोमनाथ को ही चुना। जैसा हमारे रवि भट्ट जी ने इतिहास में बताया कितने लोगों ने आकर के उसको विध्वंस किया, नष्ट किया। तो ये जो आसुरी शक्तियां हैं ये सतयुग से ही हमारे साथ में रही हैं। आसुरी शक्ति और देवीय शक्तियों का बराबर संतुलन बनाने के लिए बीच बीच में इस प्रकार के घटनाक्रम होते रहे, परंतु जब बार बार आक्रमण हुए तो हमारी आस्था के केंद्र संपूर्ण भारतवासियों ने, संपूर्ण सनातनियों ने उस पर जाकर अपनी आस्था को व्यक्त किया, और जो सक्षम राजा लोग थे उन लोगों ने जा करके वहां पर उस मंदिर को जितनी बार ध्वंस हुआ उतनी बार उसका पुनर्निर्माण किया, जितनी बार लूटा गया उससे भी ज्यादा उसको दिव्य और भव्य रूप धारण उन्होंने प्रदान कराया। हमारी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी जाकर के जितने देवालय थे उनके साथ साथ सोमनाथ का भी उन्होंने जीर्णोद्धार किया। तो हमारी आस्था का केंद्र है, क्योंकि भगवान भूतवावन भोलेनाथ जो है वो हस्तेक्ष माला, हाथ में रुद्राक्ष की माला रखते हैं, और हृदय कृष्ण तत्व, हृदय में कृष्ण तत्व उनके विराजमान रहता है, और जीवाग्र भागे बर राम मंत्रम, उनके जीवाग्र भाग पर हमेशा राम मंत्र विद्यमान रहता है, और यन्मस्तक केशव पाद तीर्थम, जिनके मस्तक पर भगवान की चरण से निकली हुई गंगा विराजमान रहती है, ऐसे शिवम महाभागवतन नमामि, ऐसे उन महाभागवत भक्तों में महान भक्त भूत पावन भोलेनाथ भगवान श्री शिव को ये सारा विश्व नमन करता है, वंदन करता है। और जब जब उन पर कोई भी यदि इस प्रकार का आघात हुआ है, हमारे आस्थावानों ने जाकर के उसको फिर वही पुनः पूर्व रूप प्रदान किया। तो चंद्रमा के तपोभूमि को और भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि को बहुत महत्व तो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, लगभग वेदों में भी और शास्त्रों में भी, पुराणों में, सभी जगह इसका वर्णन है। ऐसे उस सोमनाथ मंदिर को आज हमारे प्रधानमंत्री उसके 75 वर्ष होने पर और जो उसको स्वरूप दे रहे हैं, उस पर लेख लिख रहे हैं, स्वयं जाकर के उनका आराधन कर रहे हैं, इसके लिए हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देते हैं। आज सारे भारतवासी उनके साथ, जय भोलेनाथ।
5: जी बिल्कुल। तो स्वाभिमान उत्सव से अमृत उत्सव तक सोमनाथ के इतिहास को भी जानेंगे, साथ ही साथ इसके धार्मिक महत्व पर भी आगे बात करेंगे और कैसे ये पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है, स्वाभिमान का संदेश देता है, हौसले और हिम्मत की कहानी, ये सब आगे बताएंगे। फिलहाल रुकेंगे।

0: केदार सोमनाथ का भारत के स्वाभिमान का इसी को लेकर आज चर्चा कर रहे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए इतिहासकार रवि भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने ब्रेक पर जाने से पहले रवि जी चर्चा की कि देखिए किस तरीके से आक्रांताओं ने बार बार हमला किया और वापस से हजार साल बाद भी सोमनाथ वैसे ही स्वाभिमान के साथ खड़ा है। हौसले स्वाभिमान की बात हुई, लेकिन जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके शिल्प की बात करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल हमें आगे बताइए।
1: देखिए ये जगह पर जो भारत की ये बहुत ही पवन धरा हुआ करती है, भारत का वो हिस्सा है जिसको कि यू नो मैथोलॉजिकली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द इंडियंस जहाँ पर ये है। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है, जैसा कि अभी हमारे सबसे पहले लोग बता रहे थे, इसका धर्म के साथ धर्म की विशेष बात होती है कि धर्म को अक्सर स्थान विशेष और स्थान विशेष में भी एक प्रतीक जो होता है उससे ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कि सारे धर्मों के कुछ प्रतीकात्मक स्थान होते हैं, स्थल होते हैं और कुछ प्रतीक्स होते हैं जिसके के अंदर आदमी जो आम श्रद्धालु होते हैं उनकी बहुत जो श्रद्धा होती है। और यही बात यहाँ पर भी इस एरिया की भी है। ये जो आपके भारतवर्ष के अंदर हिंदू धर्मावलंबी जितने भी हैं उनके लिए जो ये चार जो आपके चार धाम हैं इनके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो स्थान इन्हीं का वो आपका जो मंदिर है सोमनाथ का वही हुआ करता था। और हिस्टोरिकली आप जो इसके ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, अटैक होने के पीछे भी दो रीज़न थे। एक तो रीज़न ये था और आपको सुन के बहुत शायद आपके दर्शकों को सुन के अजीब सा लगेगा कि अधिकतर जो ये हुए हैं ये विदेशी आक्रांताओं ने लूटने के लिए किए थे। उन्होंने आया लूटा, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है उन्होंने मंदिर को क्यों तोड़ा। तो मंदिर को तोड़ने का है कि दुनिया के जितने भी शासक होते हैं वो और स्पेशली इन द मिडिवल पीरियड वो दे हैड नेवर बीन बी रिलीजियस। अगर वो धार्मिक होते शासक लोग तो दूसरे देश पर आक्रमण कभी नहीं करते, दूसरे की टेरिटरी पर जाके उनका धन लूट के नहीं लाते। लेकिन वो अपने एक गलत अन्यायपूर्ण मूव को, अन्यायपूर्ण अपने कार्य को जस्टिफाई करने के लिए अपनी जनता की निगाहों में उन्होंने हमेशा धर्म का सहारा लिया, जिसकी वजह से क्या है कि मोहम्मद गजनी भी जो था, महमूद गजनी, उसने भी यही करा। उसने जो आज आप फारसी के जितने भी हिस्टोरियंस को पढ़ लीजिए वहाँ पर, तो फारसी के हिस्टोरियन ने हमेशा उसको लिखा है कि वो धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक था। उन्होंने कभी ये नहीं लिखा कि वो लूटने के लिए वहाँ पर गया था। और यही वो जो महमूद गजनी चाहता था, वो चाहता था कि मैं लोगों को लगे कि मैं अपने धर्म प्रचार के लिए जा रहा हूँ और मैं मूर्ति भंजक हो गया हूँ, पर फैक्ट ये था कि वहाँ पर वो पैसा लूटना चाहता था और पैसा लूटने के चक्कर में ही हैज टेकन द कवर ऑफ बीइंग अ रिलीजियस पर्सन। ये कितना विडंबना है, कितनी बड़ी ये आयरनी है। और वहाँ पर फारस के लोग अभी भी समझते हैं, जब भी वहाँ का इतिहास पढ़ते हैं इसका महमूद गजनी का, तो उनको लगता है तो धर्म का बहुत प्रचार था। और खाली फारस ही नहीं, जो मुस्लिम देश हैं उनके मुस्लिम धर्मावलंबी जो है उनकी निगाह के अंदर तो वो एक बहुत बड़ा मसीहा बन गया। यही बात औरंगजेब के साथ भी थी, औरंगजेब ने भी वही करा। उसने धर्म का सहारा लेके आदमी का क्या करा, औरंगजेब के दो काम थे। औरंगजेब ने हिंदुओं का मनोबल तोड़ने का प्रयास करा, क्योंकि सबसे ज्यादा आदमी की आस्था कहाँ होती है, किसी भी धर्मावलंबी के अपने धर्म के अंदर होती है। रोटी कपड़ा मकान के बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है आम आदमी के लिए वो होता है उसका धर्म। उसके जब धर्म पे ही अगर आप चोट कर देंगे तो उसका मनोबल टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा तो उसके ऊपर शासन करना बहुत आसान हो जाएगा। यही बात अंग्रेजों ने भी करी, उन्होंने दूसरे ढंग से यहाँ मनोबल तोड़ा के लिख देते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। लिखने का मतलब भी था कि तुम कुत्ते के समान हो। तो तुमको जब डीमोरलाइज फोर्सेस नेवर विन अ बैटल, डीमोरलाइज आदमी क्या लड़ेगा बताइए, लड़ने के पहले जब उसको अपने ऊपर शक हो गया तो लड़ने के लिए जाएगा। तो ये जो था ये रणनीति हुआ करती थी उस समय के शासकों के अंदर कि डीमोरलाइज करने के लिए वो आपके धन पे अटैक करते थे हमेशा।
0: लेकिन उसका नतीजा देखिए सर, धर्म पे अटैक किया लेकिन आज वो स्वाभिमान के साथ खड़ा है। एक बार राजमिश्रा जी आपके पास आते हैं, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। जब हम बात करते हैं सोमनाथ की, केवल मंदिर केवल ज्योतिर्लिंग के तौर पर नहीं, हमारे देश के स्वाभिमान के तौर पर देखा जाता है इसको, कहां कहां शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है?
2: देखिए मैं एक बात सबसे पहले कह दूं कि देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के बिना तो कोई शास्त्र ही नहीं है। सबसे पहले बड़ा स्पष्ट कह दूं जितने शास्त्रों का नवजोत जी आज तक वैसे उल्लेख है, मैं श्रीरामचरित मानस से लेकर के श्रीमद् भागवत तक की अगर चर्चा करूं या अन्य की चर्चा करूं, जितनी कथाएं हमें प्राप्त होती हैं, सारी कथाएं भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया है और वही कथाएं फिर लोक में आकर के प्रचलित हुई हैं, हम सब लोगों को गायन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन जब हम शास्त्रोक्त विषय पर जाकर के सोमनाथ की बात करते हैं तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत श्यामांतक मणि से जो जुड़ी हुई कथा है वो भगवान सोमनाथ की प्राप्त होती। चंद्रांशु जी महाराज बात भी कर रहे थे कि वही जो भगवान का जब समय रहा, जब बहेलिया जो कि पिछले जन्म में बली होता है, राजा बाली होता है, वो बहेलिया सुग्रीव का जो भाई होता है उसको भगवान राम कहते हैं कि जब वो कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन्ना तो मैं मारा, आपने मुझे क्यों मारा है, तो कहते कि ठीक है मैंने तुम्हें इस बार छुप करके बाण मारा है, अगले जन्म में तुम मुझे छुप करके मारोगे। और कृष्णा अवतार में वही क्षेत्र है जहां पर छुप करके वो बहेलिया के रूप में बाली जो है वो भगवान कृष्ण को उनके पैर में बाण मारता है। तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत इस कथा का बड़ा शानदार रूप में वर्णन है। अगर आप शिवपुराण के अंतर्गत जाएंगे तो शिवपुराण में भी इस कथा का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। शिवपुराण के अंतर्गत तो भगवान सोमनाथ के टोटल उत्पत्ति से लेकर के और सभी परिस्थितियों का, चंद्रदेव की उस परिस्थिति का भी वर्णन मिलता है, जिस कथा को शायद पहले चर्चा की जा चुकी है इसलिए मैं उसको बहुत लंबा नहीं लेना चाहूंगा, जहां पर उनकी जो 27 नक्षत्र हैं उनके पत्नियों के स्वरूप में है, रोहिणी से उनका विशेष प्रेम है, जहां पर उनके ससुर जो महाराज दक्ष हैं उनको श्राप दे देते हैं और वहां बैठ करके वो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत देखा जाए तो वहां भी जाकर के उनका सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। अगर स्कंद पुराण के अंतर्गत भी आप जाएंगे तो स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अध्याय 83 में प्रभास क्षेत्र सोमनाथ का जो पवित्र दर्शन इत्यादि वहां का वर्णन है। एक और वहां पर कपिला और हिरण करके आपने उसका वर्णन स्टार्टिंग में भी किया था और इसका वर्णन भगवान कपिल जो कि कर्दम ऋषि और माता देवहूति के पुत्र माने जाते हैं, देवहूति को जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया था वो वहीं से प्राप्त हुआ था। माता देवहूति को जो सांख्य शास्त्र जिसका आज हम चर्चा करते हैं, सांख्य शास्त्र का जो वर्णन आता है वो भगवान कपिल के द्वारा आता है, भगवान के अवतार माने जाते हैं वो, तो उनके द्वारा सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया गया। तो जितने भी शास्त्रों का ऋग्वेद के अंतर्गत वर्णन आता ही है तो जितने भी शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे हर जगह पर द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्पष्ट वर्णन आता है और उस द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है वो भगवान शंकर का है, जो सोमनाथ का स्थान है उसका वर्णन आता है और यह हर जगह वर्णन आता है। श्रीरामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो तप करें कुमार तुम्हारी भाभी मेट सके त्रिपुरारी, अक्षित फल इच्छित फल बिन शिव और राधे और लहाई न जोग यज्ञ जब साधे। इस संसार में अगर इच्छा के अनुसार कोई फल प्रदान करने वाला

0: इच्छा के अनुसार कोई फल प्रदान करने वाला कोई स्थान है तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का स्थान है, और उसमें से जो सोमनाथ भगवान सोमनाथ का जो ये ज्योतिर्लिंग है, जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, वो शायद सबसे पहला ऐसा स्थान है जहां पर शिव की विशेष अनुभूति होती है, जहां आकर के दर्शन करने से और आपके समस्त पाप मिटते हैं। जिस प्रकार नवदेव जी कहा जाता है कि आप शिव शाश्वत है, शिव को कभी नष्ट नहीं किया, न जायते न मृते कदाचिन्या। गीता के अंदर एक श्लोक आता है कि सनातन का ना जन्म हुआ है ना सनातन की मृत्यु हो सकती है, सनातन था है और रहेगा। सनातन जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी जो आत्मा है वो सनातन है, उस आत्मा पर हम काली पट्टी चढ़ा करके उसको कुछ भी धूमिल करने का, उसको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करें वो संभव है, लेकिन उसी प्रकार से जो सोमनाथ भगवान शिव का ये स्थल है उसी प्रकार वो सदैव था, चंद्र के समय से था और अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। तो शास्त्र में जितने भी पुराणों की बात की जाए, वेदों की बात की जाए, जितने भी चीजों की बात की जाए, वहां पर इनका बहुत स्पष्ट वर्णन है। जी नौजी
1: बिल्कुल। चंद्रांशु जी महाराज, स्वयमान उत्सव से अमृत उत्सव तक देखिए बार बार प्रधानमंत्री का वहां पर जाना, और आपने जिक्र किया था कि जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो यहां से कहीं ना कहीं भारत के लिए संदेश भी जाता है, उसमें खुद प्रधानमंत्री, चाहे वो इससे पहले जो स्वयमान उत्सव हुआ या फिर अभी की अगर हम अमृत उत्सव की बात करें, प्रधानमंत्री ने न केवल लेख लिखा बल्कि वो वहां पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाते हैं, संदेश देते हैं वहां से।
2: नवजोत जी, निश्चित तौर पर श्रद्धे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से ले लें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक की अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पर उनकी आस्था के केंद्र सोमनाथ भगवान पहले से ही रहे हैं। मुख्यमंत्री होते हुए भी, प्रचारक होते हुए रहते हुए भी कहीं ना कहीं सोमनाथ भगवान का आशीर्वाद लेते रहे हैं। हम सब भी जितने सनातनी हैं समय समय पर सोमनाथ भगवान के चरणों में जाते हैं, अर्चन पूजन करके अपने जीवन लाभ के आध्यात्मिक यात्रा के लिए हम लोग लगातार प्रयास रहते हैं। अब दूसरी बात जहां तक है, जो द्योतक है, जिसका परिचायक है सोमनाथ मंदिर, हम सब ने एक स्लोगन पढ़ा हुआ है, सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, और इसी अवधारणा को लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का एक दृश्य उपस्थित हुआ है, और वो दृश्य है जिस समय रावण युद्ध करने के लिए आता है। रावण के पास तमाम संसाधन है, पुष्पक विमान है, उसके पास तमाम सेनाएं हैं, असुरों की बड़ी लंबी छल छद्म करने वाले हैं, कूटनीतिक है, सारी व्यवस्थाएं हैं। दूसरी तरफ भगवान राम के पास कोई व्यवस्था नहीं है, वह वन में गए हैं और वनवासी लोगों को इकट्ठा करके, वह बानर भालुओं की एक बड़ी सेना है, सेना को लेकर के भगवान रावण को युद्ध करने के लिए चुनौती दे रहे हैं। विभीषण जी जो रावण के भाई हैं वह आकर के राम जी के पास मिल गए। जब रावण युद्ध करने के लिए आए तो विभीषण जी के मन में एक प्रश्न उठता है, कहीं भी जीता वीर बलवाना, ये रावण इतना बड़ा बलवान है जिसने नारायण को संतुष्ट किया, चक्र को अपने शरीर पर झेला है, जिसने इंद्र के मान को मर्दन किया हुआ है, ऐसे इतने बड़े वीर को आप कैसे जीत पाएंगे। तो उस समय भगवान राम ने बड़ी अद्भुत बात कही और वो प्रेरणा दिया कि आत्मबल अगर नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, तो व्यक्ति सारे संसाधनों को लेकर के भी कुछ नहीं कर सकता है, पर कुछ करने का अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है और वो सत्य के मार्ग पर चल रहा है तो उसको विजय निश्चित तौर पर मिलेगी। और उन्होंने धर्मरत का एक शब्द उन्होंने कहा, महा अजय संसार रिपु जीत सकै सोई वीर, जाके असदृढ़ होई रथ सुनो सखा मत धीर। जिसके पास धर्म रूपी रथ है वह निश्चित तौर पर विजय प्राप्त करेगा ही करेगा, और इसीलिए लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे देवता की पूजा नहीं किया, रामेश्वर में रामेश्वर नाथ भगवान की ही पूजा किया, क्योंकि यह साहस संकल्प किसी कोई देता भगवान भोलेनाथ ही देते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ की आराधना।
1: चलिए वक्त अभी इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: देखिए, देश में वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयास अब रंग ला रहे हैं। इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि 20 साल बाद अरुणाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया। आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्या है अरुणाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिस वजह से यहाँ पर बंगाल टाइगर की चहलकदमी बरसों बाद नजर आई है।
6: बंगाल टाइगर की इस तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। दशकों बाद रॉयल बंगाल टाइगर के दर्शन अरुणाचल के जंगलों में हुए हैं। ये घटना इसलिए भी खास है क्योंकि दो दशकों से अरुणाचल में बंगाल टाइगर नहीं देखे गए थे और चिंता जताई जा रही थी कि क्या जंगल के बदले मिजाज ने रॉयल बंगाल टाइगर्स को अरुणाचल के घने जंगलों से दूर कर दिया है। अरुणाचल के जंगल में ये तस्वीर उस वक्त खींची गई जब डंपर ट्रक ड्राइवर्स ने पुराने कोमली घाट रोड पर बंगाल टाइगर को चहलकदमी करते देखा। यही नहीं, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने बंगाल टाइगर को सड़क से कुछ दूरी पर पेड़ों की छांव में आराम करते हुए भी देखा। लोगों के अनुसार कुछ देर दिखने के बाद टाइगर वापस जंगल की तरफ चला गया, लेकिन ये तस्वीर सुकून का पक्का सबूत बन गई। कुछ दिन पहले अरुणाचल के जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर के पंजे देखे गए थे, लेकिन ये पहली बार है जब बंगाल टाइगर को इतने पास से देखा गया और उसका वीडियो बनाया गया है। फिलहाल टाइगर के इस दीदार के बाद से अरुणाचल का वन विभाग खुश है। यहाँ बंगाल टाइगर की मौजूदगी इस बात का भी सबूत है कि अरुणाचल के डियरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के जंगलों का इकोसिस्टम अब बेहद हेल्दी है। अरुणाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बंगाल टाइगर का दिखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेंचुरी 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। ये जंगल लुप्त प्राय बंगाल फ्लोरिकन का भी ठिकाना है, लेकिन करीब दो दशक बाद यहाँ बंगाल टाइगर का होना इस बात की गारंटी बन गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी के लिए यहाँ पर्याप्त शिकार मौजूद है। अरुणाचल की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जश्न है, लेकिन एक डर भी है। वो ये कि कहीं ये टाइगर आसपास के गांवों पर हमला बोल लाना शुरू कर दे। अरुणाचल के इस इलाके में बंगाल टाइगर की मौजूदगी का सबसे पुख्ता सबूत सामने आने के बाद वन विभाग ने आसपास के गांव के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से रात के समय जंगल की ओर ना जाने की अपील की गई है। रॉयल बंगाल टाइगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। भारत में अभी 3,680 जंगली बाघ हैं, जो दुनिया की कुल बाघ आबादी का करीब 75% माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डे टुडे।
5: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ये ऐसे वीडियो हैं जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे और इसके साथ कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और आपको हैरान भी कर देंगे।
7: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बारातियों ने गर्मी का ऐसा तोड़ निकाला है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स के पसीने छूट जाएं। अक्सर शादियों में आपने नाच गाना और बैंड बाजा देखा होगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही निराला है। बाराती ठंडी हवा के झोंकों के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक छोटी सी ट्रॉली पर बड़े बड़े कूलर रखे गए हैं। अब आप सोचेंगे कि सड़क पर कूलर चलेंगे कैसे, तो भाई इसका भी सॉलिड इंतजाम है। कूलर को पावर देने के लिए साथ में पोर्टेबल जनरेटर फिट किया गया है, मतलब बारात जहाँ जहाँ जा रही है ठंडी हवा का पूरा काफिला साथ चल रहा है। एक दुल्हन की विदाई के समय धान या चावल फेंकने की रस्म निभाई जा रही है। पीछे खड़ी उसकी माँ अपने आंचल को फैलाकर उसे रोकने का काम कर रही है। अब तक माहौल पूरा दुख भरा लगता है, लेकिन अगले ही पल जो कुछ भी होता है उसे देख किसी के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगी। दरअसल इस रस्म के दौरान जब दुल्हन अपने हाथ से पीछे की तरफ बिना मुड़े धान या चावल को फेंकती है तो उनमें से कुछ दाने उछल कर उसकी माँ के मुँह में चले जाते हैं, जिसके बाद माँ का रोना धोना तुरंत बंद हो जाता है और वो अपने मुँह से धान के दानों को निकालने की पूरी कोशिश करने लगती है। वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि शेरों का एक पूरा कुनबा एक अकेले भैंसे को घेर कर खड़ा है। शेर उस पर कहर बनकर टूट पड़े हैं, लेकिन भैंसा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सामने आए एक शेर को जोरदार सींग मारकर हवा में उछाल दिया। हालांकि तीन चार शेर लगातार उस पर हमला कर रहे थे और उसे नोच रहे थे, लेकिन इस बीच अचानक दूर से धूल का गुबार उठा और भैंसे के करीब एक दर्जन साथी गैंगस्टर की तरह वहां पहुंच गए। अपने दोस्त को मुसीबत में देख बाकी भैंसों ने आओ देखा न ताओ और शेरों पर हमला बोल दिया। नजारा ऐसा था कि भारी भरकम भैंसे शेरों को फुटबॉल की तरह हवा में उछाल रहे थे। शेरों को भी समझ आ गया कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, खिसक लेने में ही भलाई है। बड़े बुजुर्गों को अक्सर नई पीढ़ी तकनीक सिखाती है। ये लोग सीखते भी बड़े मन से हैं, लेकिन अपने तरीके से, जैसे पहले सब कुछ लिखकर सीखा जाता था। एक नानी का ऐसा ही वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर धूम मचाए हुए है। वीडियो में नानी सीख रही हैं और नातिन से खा रही है। ये मोमेंट याद रखने वाला बन गया है। वीडियो की सबसे खास बात यह है कि नानी सिर्फ सीख नहीं रही थी, वो सब कुछ याद कर लेना चाहती थी, इसलिए वो एक एक पॉइंट लिख रही थी। अच्छे से समझने के लिए वो डायग्राम भी बना रही थी। उनका डेडिकेशन भी तो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। रंगोली ऐसी कला है जिसको बनाने में धैर्य चाहिए होता है। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट अपनी उंगलियों से कुछ ऐसा गढ़ देते हैं कि आंखों को यकीन भी नहीं होता है। साउथ कोरिया की सड़कों पर ऐसी ही अद्भुत रंगोली बनाई गई है। ये रंगोली एक इंडियन आर्टिस्ट भाग्यश्री ने बनाई है। ये आर्ट इतना सुंदर है कि इसके बनते बनते सड़क पर भीड़ ही इकट्ठा हो गई। ये 20 फुट ऊंची रंगोली भाग्यश्री ने 4 घंटों में बनाई। वीडियो में पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें भाग्यश्री सड़क पर बैठकर पहले से बनाई आकृति में सावधानी से रंग भरती दिख रही है, जबकि आसपास के लोग उन्हें घेरे हुए हैं और उनके आर्ट को देखकर हैरान हो रहे हैं।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
9: कि मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Sage University, transforming your passion into profession.
7: इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी युद्ध पोत अचल, अत्याधुनिक तोपों से लैस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार, आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया का दावा। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण, एमआईआरवी तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बनाया निशाना। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां, मंदिर के पास ही आसमान में एयर शो का रिहर्सल, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम में दिखाई करते। बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में कल ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन, आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आईएमडी की ओर से आंधी बारिश का अलर्ट, 11 से 14 मई के बीच कई राज्यों में दिखेगा इसका असर। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी नोरा फतेही। कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नोरा।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के 9 वॉरियर्स के साथ, यानी कि K9 वॉरियर्स। देखिए, K9 वॉरियर्स वो डॉग्स हैं जिनका इस्तेमाल सेना, सुरक्षा या फिर पुलिस बल करती है। देखिए, खास नस्ल के इन डॉग्स को खास ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है। इसकी मिसाल हम पेरिस ओलंपिक्स में भी देख चुके हैं, जहां पर भारतीय सेना की K9 टीम को तैनात किया गया था। अब मणिपुर में K9 वॉरियर्स एक ऐसा अभ्यास उन्होंने किया जो चर्चा का विषय बन गया है। रिपोर्ट देखिए।

0: आसमान से एंट्री और जमीन पर मचा दी तबाही। K9 कमांडो के कारनामों से दुश्मनों में हलचल मची। मणिपुर में सेना का हाई वोल्टेज ऑपरेशन। भारतीय सेना के रेड शील्ड डिवीजन के K9 योद्धाओं ने जब मणिपुर के लीमा खोंग मिलिट्री स्टेशन में एक विशेष अभ्यास किया तो देखने वाले दंग रह गए। इस अभ्यास की खास बात रही 5 डॉग टीम्स शामिल होना। कुरी, शक्ति, मिंटी, कामना और हुड ने अपने हैंडलर्स के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर के जरिए सेना की तेज तैनाती क्षमता को और मजबूत करना था। ये डॉग्स जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशंस में तैनात रहते हैं। अब ये डॉग्स एक नई और चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने हैंडलर्स के साथ ये हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरना सीख रहे हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर से ये डॉग्स 10 से 15 मीटर की ऊंचाई से सफलतापूर्वक स्लिथरिंग कर रहे हैं, यानी जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरकर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। सैनिकों और डॉग स्क्वाड के बीच तालमेल, ऑपरेशनल तैयारी और टीम वर्क को बेहतर बनाना इस अभ्यास का मकसद था। अभ्यास के दौरान सेना के डॉग्स और उनके हैंडलर्स ने शानदार तालमेल और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। कठिन हालात में उनकी फुर्ती, अनुशासन और तेज प्रतिक्रिया देखने लायक रही। सेना के मुताबिक ऐसे अभ्यास भविष्य के अभियानों के लिए बेहद अहम होते हैं। K9 वॉरियर्स भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के विशेष रूप से प्रशिक्षित खोजी डॉग्स होते हैं, जो देश की सुरक्षा में मूक योद्धा के रूप में काम करते हैं। ये K9 वॉरियर्स सेना के कई महत्वपूर्ण मिशंस में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनमें विस्फोटकों का पता लगाना, आतंकियों की खोज, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और आपदा राहत कार्य शामिल है। संवेदनशील इलाकों में ये डॉग्स जवानों की सुरक्षा बढ़ाते हैं और कई बार अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन को चौंका देते हैं। सेना के मुताबिक ये अभ्यास सिर्फ ट्रेनिंग नहीं था, बल्कि वास्तविक युद्ध परिस्थितियों का सिमुलेशन था। मणिपुर जैसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण इलाके में इस तरह का अभ्यास सुरक्षा रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, UFO और एलियंस के बारे में जानने की उत्सुकता, उसकी एक्साइटमेंट हमेशा ही दुनिया भर के लोगों में रहती है। तमाम वैज्ञानिक उनके वजूद का पता लगाने में जुटे हुए हैं। अब खास बात यह है कि इनके राज से अब पर्दा उठ सकता है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन ने इनसे जुड़े बहुत से वीडियोस और दस्तावेज आम लोगों के लिए जारी कर दिए हैं। हालांकि कई विशेषज्ञ इन पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन इनमें कोई शक नहीं है कि अब जो वीडियो और फाइल्स जारी की गई हैं उनसे UFO और एलियंस के बारे में नए सिरे से स्टडी की जा सकेगी, जिससे नए नतीजे भी निकल सकते हैं। कैसे, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।

0: क्या वाकई यूएफओ यानी उड़न तश्तरियों का कोई वजूद है? क्या वाकई उन एलियंस का वजूद है जो उड़न तश्तरियों पर सफर करते हैं और कहा जाता है कि धरती पर भी आते हैं? इन सवालों पर फिर से नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। ऐसा माना जाता है कि यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठ सकता है, क्योंकि अब युद्ध विभाग के नाम से जाने जा रहे अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने यूएफओ से जुड़े वीडियोस, नई फाइल्स और दस्तावेज जारी कर दिए हैं। पेंटागन ने ये नहीं बताया है कि यूएफओ और एलियंस के वजूद की हकीकत क्या है, बल्कि ये आम लोगों और एक्सपर्ट्स पर छोड़ दिया है कि ये वीडियोस देखें, दस्तावेजों को पढ़ें और खुद तय करें कि यूएफओ और एलियंस की सच्चाई क्या है। पेंटागन की ओर से सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में कहा गया है, यह सरकार की ओर से पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सिर्फ 12 घंटों में अमेरिका वासियों और दुनिया भर में सच्चाई जानने की चाहत रखने वाले लोगों ने इसे वेबसाइट पर 34 करोड़ बार विजिट किया। ये जबरदस्त प्रतिक्रिया पारदर्शिता के प्रति ट्रंप प्रशासन की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सच्चाई जाहिर करने की जनता की मांग पूरी की है। ये अभियान जारी रहेगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिकी लोगों को वे जानकारी मिल सके जिसके वे हकदार हैं। यूएफओ और एलियंस के बारे में अमेरिका की ओर से जारी कथित फाइल्स बड़ी अहम मानी जा रही हैं। आपको बता दें, अमेरिका में यूएफओ के बारे में जानकारियां जारी करने का सिलसिला 1970 में शुरू हुआ था। इस कड़ी में अब ट्रंप प्रशासन ने 160 फाइलें जारी की हैं। इनमें कई वीडियोस भी हैं। इनमें 1947 की एक रिपोर्ट भी है जिसमें फ्लाइंग डिस्क का जिक्र है। साथ ही 1969 में अमेरिका के मून मिशन अपोलो 12 की ओर से चांद की सतह पर ली गई अज्ञात वस्तु की अस्पष्ट तस्वीर भी है। साथ ही अपोलो 17 के क्रू का वह बयान भी है जिसमें उन्होंने 1972 में चांद पर कोई अनजान वस्तु देखने का दावा किया था। यूएफओ के बारे में क्लासिफाइड फाइल्स को जारी करने पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर अपनी पीठ थपथपाई। उन्होंने पिछली सरकारों पर इस मामले से जुड़ी जानकारियां छिपाने का आरोप लगाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि मुझे गर्व है कि मैंने प्रशासन को एलियंस और दूसरे ग्रहों के जीवन यूएपी के बारे में सरकारी फाइलों की पहचान करने और उन्हें जारी करने का निर्देश दिया है। पिछली सरकारें इस विषय पर पारदर्शिता बरतने में विफल रही हैं। इस नए दस्तावेजों और वीडियो से लोग खुद फैसला कर सकेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। आप भी इसका मजा लीजिए। वहीं अमेरिका के इस कदम से यूएफओ या यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना यानी अज्ञात असामान्य घटनाओं या वस्तुओं के मुद्दे पर नए सिरे से चर्चा होने लगी है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इससे ये बात साबित हो गई है कि यूएफओ और एलियंस का कोई वजूद नहीं है।
1: Are not that interesting, and we hear lots of interesting stories. Though there's lots of pilot reports and mission reports in this drop of documents that are interesting on the face of them, but we have no way of verifying them. And when they're paired up with the video really doesn't match what the pilot is saying. So we really don't have anything like a smoking gun that really gives us great evidence of any kind of advanced technology, and certainly not something like extraterrestrials.
0: जानकारों का कहना है कि यूएफओ और एलियंस के बारे में अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई पहले भी बहुत सी फाइलें जारी कर चुकी है, खासतौर से 1940 और 1950 के दशकों की जो सामग्री सामने आ चुकी है उनके मुकाबले अब जो वीडियोस मिले हैं वो ज्यादातर संपादित लग रहे हैं। बहुत सी चीजें स्पष्ट नहीं है और उनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि इससे ये साफ नहीं होता कि वीडियो में जो कुछ दिख रहा है उसकी हकीकत क्या है। विशेषज्ञ इसे कुछ हद तक कैमरे और फोटोग्राफी का कमाल करार देते हुए यूएफओ और एलियंस की मौजूदगी को खारिज कर रहे हैं।
1: Well, the most interesting one is what's referred to as the chandelier video, and this has this very interesting star-shaped cross in it. But you know, that's something I kind of recognized straight away at what it actually was. It's an artifact of the camera that comes from using a telescope camera, a mirror telescope, where the front mirror is held by a cross. Now, we see this in in photography of stars a lot, you will see stars forming crosses because the telescope that is used has this cross in the front of it, which is holding the front mirror. And we get the same thing on these smaller cameras that drones use.
0: तो सवाल ये है कि आखिर ये कैसे पता चलेगा कि UFO या aliens इस ब्रह्मांड में हैं भी या नहीं, या फिर इस मुद्दे पर उलझन बरकरार रहेगी? बताया जा रहा है कि अमेरिका में UFO से जुड़ी फाइल्स जारी करने की कार्रवाई में पेंटागन के साथ साथ व्हाइट हाउस, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, एनर्जी डिपार्टमेंट, नासा और FBI भी शामिल है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बड़े स्तर पर अमेरिकी सरकारी विभाग एक साथ UFO की फाइलें सार्वजनिक कर रहे हैं और इनसे जुड़ी जानकारियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन UFO से जुड़े सारे दस्तावेज जारी नहीं करेगा, क्योंकि चीन और रूस इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन पेंटागन की ओर से कहा गया है कि फाइल जारी करने का सिलसिला रुकेगा नहीं, आने वाले वक्त में और भी दस्तावेज जारी होंगे। ऐसा हुआ तो UFO और एलियन से जुड़े मुद्दों पर गहराई से स्टडी की संभावना बढ़ सकती है और उनके बारे में रहस्यों पर नया खुलासा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। चारधाम तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं का जोश बढ़ता ही जा रहा है। केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो वहां पर 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर चुके हैं। रोजाना करीब 25,000 लोग केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। प्रशासन की कोशिश यही है कि श्रद्धालुओं को पूरी यात्रा के दौरान शिकायत का कोई भी मौका ना मिले।

0: देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों हर तरफ आस्था के अद्भुत रंग बिखरे हैं। चारधाम यात्रा में दूर दूर से आए भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालु केदारनाथ धाम के साथ बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आस्था केदारनाथ धाम में उमड़ रही है। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुले थे, तब से लेकर अब तक 4,00,000 से ज्यादा शिव भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। रोजाना करीब 25,000 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर पर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा में शामिल भक्तों को कई बार मौसम की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कभी बर्फबारी तो कभी बारिश यात्रा की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है।
1: अनुभव हर बार ही बहुत अच्छा होता है। पिछली बार 1-1.5 साल पहले आई थी मैं यहाँ, पर उस बार हम लाइन में ही लगे रह गए थे और मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पे आकर यहाँ की एनर्जी फील करूँ, मेडिटेट करूँ। वो तो यहाँ आकर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है।
2: बाकी व्यवस्था सारी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, रोड्स वगैरह सारी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, ऊपर बद्रीनाथ धाम पे भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड था।
3: वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत ठंडा है केदारनाथ में, तो बहुत अच्छा है। 12 डेज का यात्रा है, वेरी गुड, वेरी नाइस।
0: केदारनाथ धाम आए श्रद्धालुओं को यात्रा और दर्शन में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैदी से काम कर रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के साथ साथ पूरे यात्रा मार्ग पर साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। सफाई से जुड़ी किसी भी शिकायत पर प्रशासन फौरन कार्रवाई कर रहा है।
4: पिछले कई दिनों में कुछ प्रकरण इस तरीके के संज्ञान में आए हैं। इस संदर्भ में जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं, जैसे कि सुलभ इंटरनेशनल, नगर पंचायत और जो हमारे ग्रामीण संस्थाएं जिला पंचायत हैं, इनको निर्देशित किया गया है। हमारे सेक्टर ऑफिसर्स इनका रैंडम इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, चाहे वो टॉयलेट्स का हो, चाहे रूट का हो, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कंसर्न डिपार्टमेंट को या जो हमारा मॉनिटरिंग रूम है वहाँ से कंट्रोल रूम से फ़ोन भी कराया जा रहा है और उसका कंप्लायंस भी लिया जा रहा है। क्योंकि प्रतिदिन हमारे पास काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, तो सफाई हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे 300 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो पूरे रूट पर साफ सफाई कर रहे हैं और हम लोग उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं।
0: देवभूमि में इन दिनों आस्था चरम पर है। केदारनाथ धाम से लेकर बद्रीनाथ धाम तक और गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री तक हर जगह श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन हर मुमकिन प्रयास में जुटा है। प्रशासन की कोशिश यही है कि चार धाम यात्रा पर आए हर श्रद्धालु को पूरी सहूलियत के साथ भगवान के दर्शन हो और किसी भी श्रद्धालु को यात्रा के दौरान कोई दिक्कत न हो। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे।
5: संगम नगरी प्रयागराज वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जानी जाएगी। यहाँ पर यमुना नदी में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की खास पहल की गई है, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। देखिए हमारी रिपोर्ट।
6: प्रयागराज में संगम पर स्नान ध्यान के लिए देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग गंगा स्नान करके पुण्य कमाने की चाहत रखते हैं, लेकिन यहीं पर निरंतर बह रही यमुना की जलधारा में अब बोटिंग और वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के रोमांच की खास तस्वीरें नजर आ रही हैं।
7: संगम नगरी प्रयागराज अभी तक धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में ये कयाकिंग, कैनोई के जो नावें हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं और बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए यहाँ प्रेरित किया जा रहा है और बच्चे यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स सीख रहे हैं।
6: यहाँ पर स्पीड बोट और जेट स्की जैसे पानी में चलने वाले स्कूटर और दूसरी नावों का इंतजाम किया गया है, ताकि आम लोग और सैलानी नदी के पानी में खेल कूद का मजा ले सकें। इसके लिए यहाँ ट्रेंड ऑपरेटर रखे गए हैं, जो लोगों को जल विहार कराते हैं।
8: ये स्कूटर एक सिंगल पर्सन जा सकता है, जिसके साथ हमारे ट्रेंड ऑपरेटर भी जाते हैं सुबह शाम, और काफी हमारे पास आती रहती है, इंक्वायरी आती रहती है, लोग आते हैं, जेट स्की का आनंद लेते हैं। ये हमारा नैनी ब्रिज के पास ही है, तो काफी लोग आते हैं।
6: हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव ने भी खुद जेट स्की पर सवार होकर यमुना में सैर का आनंद लिया।
7: तो दिखाते हैं, ये पूरा रोमांचित करने वाला जो पल है वो यहाँ पर है और इस तरह से राइड होगी और आप देख सकते हैं कितना रोमांचित करने वाला ये क्षण है और जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे उनको इस वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ देखने को मिलेगा और एक धार्मिक पर्यटन के साथ इस वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ ले सकेंगे।
6: खास बात यह है कि प्रयागराज में यमुना रिवर बैंक बोट क्लब पर वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ बर्थडे पार्टी और दूसरे इवेंट्स का भी आयोजन किया जा सकता है। यहां से संगम जाने के लिए 7-सीटर बोट मिलेगी, साथ ही तमाम लोग यहां पर जल क्रीड़ा का भी आनंद ले सकेंगे। प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि यहां आने वालों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
9: और माँ यमुना की जो जलधारा है बहुत विशाल है, वाटर स्पोर्ट्स की वहाँ बहुत संभावना थी, इसलिए नगर निगम प्रयागराज ने महसूस किया, हम सब लोगों ने सदन में संकल्प पारित किया कि वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए और 2.5 करोड़ रुपए का उपकरण स्मार्ट सिटी नगर निगम प्रयागराज के द्वारा कियोकांग कैनोइंग इत्यादि हम लोगों ने छोटी लाइट बोटें उसको उपलब्ध कराने का काम किया। बहुत न्यूनतम किराया रखा गया है, चूँकि हमारे जो पर्यटक आते हैं उनको भी किसी प्रकार की कठिनाई सामना न करना पड़े, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा का भी विशेष ध्यान उसमें दिया गया है, किराया बहुत न्यूनतम रखा गया।
6: यहाँ पर स्थानीय युवाओं और किशोरों को वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने का भी इंतजाम किया गया है, ताकि वे इस क्षेत्र में महारत हासिल कर सके और इस क्षेत्र में करियर भी बना सके।
10: और इसको सिखाने के लिए बच्चों को सबसे पहली चीज तो स्विमिंग आती है, तो हम लोग जो नए बच्चे होते हैं उनको पहले स्विमिंग सिखाते हैं। ये वाटर स्पोर्ट्स ये काफ़ी बैलेंसिंग की बोट है, इस पर बैलेंस नहीं रहता तो बच्चे पलटते भी हैं, तो इसलिए स्विमिंग तो कंपलसरी है उनको। स्विमिंग सिखाने के बाद फिर वो उनको कुछ महीने टेक्निक जैसे ज़मीन पर सिखाया जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इनको पानी में ट्रेनिंग देते हैं।
11: नेशनल लेवल हमारे यहाँ प्लेयर खेले हुए हैं और मेडल भी है नेशनल का, बाकी सब अभी इंडियन आर्मी में भी कुछ लोग हैं, और अभी तो 4 लड़के हुए हैं यूपी पुलिस में, अभी प्रेजेंट में ही हुए हैं, उनका भी ज्वाइनिंग होने वाला है।
6: अभी यहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेने वालों की संख्या 50 तक पहुंच चुकी है। किशोरों और युवाओं में खास तौर से इसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है।
7: यहां पर ये यमुना नदी है और इतना बड़ा जो विस्तार है, यहां इस कयाकिंग कैनोई के माध्यम से यहां पर बच्चे वाटर स्पोर्ट्स के लिए सीख रहे हैं और यहाँ पर नाव चला रहे हैं, तो संभावना यहाँ पर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स उसको लेकर के यहाँ पर हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर अब धार्मिक पर्यटन के अलावा स्पोर्ट्स को भी बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
5: मशहूर लोक गायिका गिरिजा देवी की 97वीं जयंती पर काशी में सुर संध्या का आयोजन किया गया। सांझ प्रणामी नाम के इस कार्यक्रम को इस बार गंगा नदी में क्रूज पर आयोजित किया गया। बात इस कार्यक्रम की करें तो इस कार्यक्रम में मालिनी अवस्थी, विश्वमोहन भट्ट और सुचेता गांगुली जैसे कई मशहूर हस्तियां इसमें शामिल हुई। देखिए क्रूज पर हुए इस अद्भुत संगीत संगम की एक छोटी सी झलक।

गंगा की अविरल धारा के बीच जब सुरों की ये महफिल सजी तो इस अद्भुत जुगलबंदी ने दर्शकों का मन मोह लिया। मौका था पद्म विभूषण गिरिजा देवी की 97वीं जयंती का। ठुमरी की रानी के नाम से मशहूर गिरिजा देवी की याद में वाराणसी में सांझ प्रणामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले 6 साल से गिरिजा देवी की जयंती पर संगीत का समागम हो रहा है, लेकिन इस बार इस आयोजन की जगह बेहद खास थी। इस बार सांझ प्रणामी का आयोजन गंगा नदी में क्रूज पर किया गया। संत रविदास घाट से क्रूज का सफर शुरू हुआ तो इस सुनहरे सफर में संगीत ने खूबसूरत मिठास घोल दी। अस्सी के वरुणा संगम तक रागश्री में सुचेता गांगुली ने पारंपरिक बंदिशों का राग अलापा। नदी की धारा के साथ बहते क्रूज में शाम की ठंडी हवा ने इस समारोह को और जीवंत बना दिया। कुछ देर बाद मशहूर लोक गायिका मालनी अवस्थी और गायक रोहित मिश्रा ने सुचेता गांगुली के साथ मंच संभाला तो हर तरफ सुरों के अनोखे संगम की गूंज सुनाई दी।

सुरों के साथ ये सफर आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे शाम ढल रही थी। इस संगीतमय शाम में वाराणसी के घाटों पर जगमगाती रोशनी की अद्भुत छटा बिखर रही थी। जब क्रूज दशामेव घाट के करीब से गुजरा तो वहाँ शाम की गंगा आरती का विहंगम दृश्य भी दिखा। क्रूज पर सांझ प्रमाणी ने सुरों के संगम के बाद पद्म विभूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा पर संगीत का जादू बिखेर दिया। संगीत की अद्भुत प्रस्तुति के बाद विश्व मोहन भट्ट ने मालनी अवस्थी के साथ गायन की एक शानदार जुगलबंदी भी पेश की।

0: ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: Want to build a tech career that lasts? WGU's computer science degree teaches the skills that power AI and the systems it runs on. From software design to machine learning, you'll learn what today's employers are hiring for. It's 100% online, ABET accredited, and designed for working adults who are ready to take their career to the next level. Graduate with certifications and confidence to lead in a changing tech world. Get started at WGU.edu.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
6: I have no idea how this election is going to play out,
5: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे
0: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
13: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे माता के महिमा के बारे में, माता के साथ रिश्तों को बेहतर कैसे किया जाए, माता के कष्टों को कैसे कम किया जाए और कौन से उपाय किए जाएं जिससे माता स्वस्थ रहें, माता का आशीर्वाद मिलता रहे। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 3:06 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:12 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, मातृ दिवस के अवसर पर, मदर्स डे के मौके पर आज हम बात कर रहे हैं मां के बारे में। मां की महिमा क्या है, ईश्वर के साथ माता का संबंध क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी का निर्माण किया और जब नारी या स्त्री अपनी शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है तो उसको मां कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और करुणामयी सत्ता जो आपके सबसे ज्यादा निकट है, जिसको ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, वो मां है। इसीलिए आप देखिए कि मां के साथ बच्चे की निकटता चूंकि ज्यादा होती है, इसीलिए भक्त ईश्वर की पूजा मां के रूप में भी करते हैं। वैसे तो भगवान के रूप में भी ईश्वर की पूजा होती है, लेकिन एक बच्चा अपनी मां के जितना निकट होता है, अपनी मां से जितनी बातें कह पाता है, उतना किसी और से नहीं कह पाता। इसीलिए भक्त ईश्वर को मां के रूप में पुकारते हैं और जब मां के रूप में ईश्वर को पुकारते हैं तो ईश्वर की निकटता का जल्दी अनुभव होता है। जो देवी की साधना है, जो देवी के भक्त देवी की पूजा करते हैं, उनको देवी की निकटता का अनुभव बहुत जल्दी होता है। और जब व्यक्ति ईश्वर को मां के रूप में पूजता है, देवी के रूप में पूजता है, तो कृपा तो मिलती ही है, आशीर्वाद तो मिलता ही है, लेकिन ईश्वर का दुलार और प्यार ज्यादा मिलता है। आप देवता की पूजा करें, आप भगवान की पूजा करें, उसमें दुलार और प्रेम का पार्ट वो नहीं होगा जो देवी की पूजा में होगा। कारण उसका ये है कि देवी के साथ जो अटैचमेंट है वो माँ के रूप में है, और माँ के रूप में जब भी आप किसी से जुड़ेंगे आपको ज्यादा प्यार मिलेगा, ज्यादा अपनत्व मिलेगा। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं हल होंगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतान की चिंता हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, सर्दी जुकाम से बचाव करें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ज्योतिष में हर रिश्ते का किसी न किसी ग्रह के साथ, किसी न किसी राशि के साथ संबंध होता है। तो मां का संबंध किस ग्रह से है, किस राशि से है? देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को माता का कारक मानते हैं, यानी आपके कुंडली का जो चंद्रमा है वो दरअसल आपके जीवन में माता की स्थिति है। कुछ अंशों में शुक्र का संबंध भी वात्सल्य से होता है, शुक्र ममता का, प्यार और दुलार का स्वामी है। कर्क राशि और चतुर्थ भाव, इसका संबंध भी माता के साथ माना जाता है। कर्क राशि प्रेम की, ममता की, भावना की राशि है, और कुंडली का चतुर्थ भाव और उसका स्वामी ये माता से संबंध रखते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा, इन तीनों को मिला करके आप माता की स्थिति देख सकते हैं कि माता का जीवन कैसा रहेगा, माता का जीवन में सपोर्ट कितना मिलेगा, आपके माता के स्वास्थ्य की, जिंदगी की स्थिति कैसी रहेगी। वैसे एक लाइन में प्राइमा फेसी, अगर आप कुंडली में चंद्रमा को देखें, चंद्रमा जरा भी डिस्टर्ब दिख रहा है या चंद्रमा की स्थिति जरा भी निगेटिव

यात्रा के योग हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, धन के खर्चों पर ध्यान रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि माता के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं या माता के साथ रिश्तों में संबंधों में दूरियां आ जाती हैं। अगर आपके और आपके माता के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं या माता के साथ रिश्तों में दूरियां आ गई हैं तो क्या उपाय किया जाएगा? 15 दिन महीने में शुक्ल पक्ष होता है, जिसको आप उजाली रात भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष की रात को 15 दिनों तक हर महीने में चंद्रमा को अर्घ दीजिए, चंद्रमा को जल दीजिए और प्रार्थना करिए कि आपके रिश्ते आपकी माता के साथ बेहतर हों। रोज रात में चंद्रमा के मंत्र का जप करें, रोज, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो। 2 मंत्र हैं चंद्रमा के, ओम सोम सोमाय नमः और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का रोज रात को जप करिए 108 बार। सोमवार को 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए और साथ में शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद प्रार्थना करिएगा कि आपके रिश्ते, आपका संबंध आपकी माता के साथ बेहतर हो जाए। आपकी कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो आपके माता की स्थिति है, इसलिए चतुर्थ भाव को मजबूत करिए। चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह का रत्न पहनिए या जरूरत के अनुसार चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह के मंत्र का जप करिए। सोमवार को सफेद वस्तु का दान करें। अगर आपके रिश्ते माता के साथ बहुत ज्यादा निगेटिव हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं, तमाम प्रयास करने के बावजूद माता के साथ रिश्ते बेहतर नहीं हो पा रहे हैं तो हर सोमवार को चावल या चीनी या दूध, इसका किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए और दान करते समय मन में ये प्रार्थना करिए कि मेरा संबंध मेरी माता के साथ बेहतर हो जाए। अगर आप ये उपाय

0: निरंतर करते जाएं, एक से तीन महीने के अंदर आपका रिश्ता आपकी माता के साथ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। धनु राशि, काम में सफलता मिलेगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। मानसिक समस्या आपकी हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। दोपहर के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा खराब होगा तो निश्चित रूप से उसकी माता को शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ेगा। तो अगर चंद्रमा के खराब होने की वजह से आपकी माता को शारीरिक मानसिक कष्ट हो रहा है तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करिए और शिव जी को जल चढ़ाइए, प्रार्थना करिए और इसके बाद जितना हो सके अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय का जप करिएगा। और ओम नमः शिवाय का जप करने के बाद प्रार्थना करिएगा कि माता के कष्ट कम हो और आपके मंत्र जप करने का फल आपकी माता को प्राप्त हो। सोमवार को जब आप पूजा कर लें शिव जी की, जब आप मंत्र जप कर लें, तब निर्धनों में सफेद मिठाई या खीर बांटिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा हर सोमवार को करिएगा। प्रातः काल कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर सोमवार को संध्या काल में ये उपाय जरूर करिएगा। जिनका चंद्रमा खराब हो ऐसे लोगों को मोती सोच समझ कर पहनना चाहिए, क्योंकि अगर इनको मोती पहना दी गई, चंद्रमा खराब है तो खुद को तो नुकसान होगा ही, स्वयं का मेंटल टेंशन बढ़ेगा, स्वयं का तनाव बढ़ेगा। और अगर आपका चंद्र खराब है, आपने मोती पहनी, तो इसका बुरा असर आपकी माता के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसीलिए जिनका चंद्रमा खराब है वो कृपा करके मोती पहनने में सावधानी रखें। अगर आपके खराब चंद्रमा की वजह से आपकी माता के स्वास्थ्य में, उनके शरीर में, उनकी मानसिक स्थिति में दिक्कतें बनी रहती हैं, तो आप निरंतर शिव जी की पूजा करिएगा। सोमवार को सफेद चीज का दान करिएगा और इसके अलावा एक बड़ा विशेष उपाय है, महीने में एक दिन पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का उपवास रखिएगा और उपवास रख करके ये प्रार्थना करिएगा कि आपके पूर्णिमा के उपवास का फल आपकी माता को प्राप्त हो। अगर आप ऐसा निरंतर नियमित रूप से करें तो आपकी माता का कष्ट कम होगा। अगर किसी भी तरह की मानसिक समस्या है, किसी भी तरह की मानसिक चिंता आपको रहती है, तनाव रहता है, तो अपनी माता के हाथ से एक चांदी का सिक्का ले लें, किसी सोमवार को या पूर्णिमा को ले लें और इसको ले करके अपने पास रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मानसिक चिंता दूर होगी, मन मजबूत होगा, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आप कोई विशेष परीक्षा दे रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, एक ही परीक्षा है, काफी समय से अटकी हुई है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल। सुबह और रात के समय में एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करेंगे, ओम महाभद्रायै नमः, ओम महाभद्रायै नमः, इस मंत्र का जप करें। और दोनों समय मंत्र जप करने के बाद परीक्षा में सफलता की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: This year, I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत अचल, अत्याधुनिक तोपों से लैस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार, आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया कदम। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण, MIRV तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बनाया निशान। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां, मंदिर के पास ही आसमान में अशो का रिहर्सल, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाई करतब। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए 256 करोड़ रुपए। आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी। भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित मेला करने का लक्ष्य। बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में कल ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन, आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आईएमडी की ओर से आंधी बारिश का अलर्ट। 11 से 14 मई के बीच कई राज्यों में दिखेगा इसका असर। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी नूरा फतेही। कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नूरा।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।

0: जब मैदान जंग में धूल उड़ती है, गोलियां बरसती हैं और हर दिशा से खतरे मंडरा रहे होते हैं, तब एक शक्ति ऐसी होती है जो सब पर भारी पड़ती है और वो शक्ति है टैंक, बैटलफील्ड का बाहुबली, जिसे किंग ऑफ द किलिंग जोन भी कहा जाता है। ये गोलियां बरसाता है, गोले दागता है और तो और मिसाइल फायर करने की क्षमता भी रखता है। बावजूद इसके टैंक की राह में कदम दर कदम खतरा बहुत ज्यादा होता है। एंटी टैंक मिसाइल से लेकर ड्रोन और लैंडमाइन टैंक को डेंजर जोन में डाल देते हैं। लिहाजा मौजूदा दौर में टैंकों को ड्रोन और लैंडमाइन जैसे खतरों से बचाने के लिए इन्हें अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड किया जाता है, ताकि टैंक को खतरे से बचाया जा सके।
1: भारत में सेना के टैंकों को और मजबूती देने के लिए और इन्हें माइन से बचाने के लिए इन पेट्रोल सिस्टम लगाने के बारे में सोच रहा है। भारत T-72 और T-90 टैंकों पर इस सिस्टम को इंस्टॉल करेगा, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डर पर हस्ताक्षर भी कर दिए। ये कुल ऑर्डर होगा 975 करोड़ रुपए का। इन सिस्टम के इंस्टॉल हो जाने के बाद टैंकों को और ज्यादा ताकत मिलेगी। बताते चलें कि ये सिस्टम टैंकों के अगले हिस्से में लगाया जाता है, जिससे टैंक की हिफाजत और ज्यादा सुरक्षित हो जाती है।

0: डील के तहत T-72 और T-90 टैंकों में ट्रॉल नाम का एक सिस्टम लगाया जाएगा। ट्रॉल एक तरह की मशीन है जिसे टैंक के अगले हिस्से में फिट किया जाता है। इसका काम रास्ते में दबी बारूदी सुरंगों को ढूंढकर उन्हें हटाना है। ट्रॉल का पहला हिस्सा एक रोलर होता है। ये वजन में बहुत भारी होता है कि टैंक के आगे की जमीन पर दबाव डालता है, जिससे जमीन के नीचे बिछी माइंस पहले ही फट जाती हैं। ट्रॉल का दूसरा हिस्सा माइन प्लाव कहलाता है। प्लाव यानी खेत जोतने वाला हल। ये हिस्सा मिट्टी को हटाता और उसे धकेलता है। इससे जमीन के नीचे छिपी माइंस रास्ते से साइड में चली जाती है। आमतौर पर ट्रॉल में एक बार में एक सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके दोनों हिस्सों को एक साथ ऑपरेट किया जा सकता है।
1: ट्रॉल का मतलब ये होता है कि टैंक के आगे एक कुछ हैवी चीज लगा दी जाए और दूसरे, जैसे हम खेती में ट्रैक्टर के पीछे खोदने का आइटम लगाते हैं, इसी तरह एक आगे लगा होता है। तो वो जो रोलर होता है, हैवी रोलर, वो रोलर क्या करता है कि सामने टैंक के सामने एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करेगा कि कोई भी जमीन के नीचे अगर माइन है तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। T-72 टैंक की बात करें तो ये दोनों आइटम लगने के वजह से, दैट इज द प्लाउ एंड द हैवी रोलर, टैंक का वजन बढ़कर तकरीबन 50 टन क्रॉस कर जाता है।
0: T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी ट्रॉल सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिलने से मेक इन इंडिया मिशन को नई ताकत मिलेगी। इस समझौते का मुख्य मकसद युद्ध की स्थितियों में सेना की गतिशीलता को बढ़ाना और जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ट्रॉल असेंबली इंडियन आर्मी की माइनफील्ड ब्रीचिंग यानी कि बारूदी सुरंगों को तोड़ने की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। साथ ही ये प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ्यूज वाली एंटी टैंक बारूदी सुरंगों से भरे इलाकों के बीच भी सुरक्षित रास्ता बनाएगा।
1: मैग्नेटिक फ्यूज की हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल MVN-72 या 80 MVN-80 एंटी टैंक माइंस में जो होता है, और जिसके अंदर एक सेंसर होता है जो डिटेक्ट करता है, जो माइन है उसके अंदर एक सेंसर होता है जो डिटेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। दैट मींस कोई अगर बड़ी हैवी या लोहे की चीज उसके आसपास आए तो वो अपने आप उसको फट जाए। उसका उसमें फायदा ये होता है कि जो एंटी टैंक माइन है के केस्ट वाली, ये उसके अंदर लगा हुआ होता है, और जैसे ही कोई मैग्नेटिक, दैट इज लोहे का मैग्नेटिक सिग्नेचर वो अपने दायरे के अंदर देखता है विद इन रेंज, तो वो अपने आप ब्लास्ट हो जाता है।
0: जंग के मैदान में जब एक टैंक उतरता है तो इसके विध्वंसक प्रहार की क्षमता इसे जमीनी जंग का सबसे पावरफुल हथियार बनाती है। न तो रेतीली धरती इसकी रफ्तार को रोक पाती है और न ही दलदली या पहाड़ी इलाका टैंक की राह में बाधा बनता है। टैंक अपने सामने आने वाली हर चीज को रौंदते हुए आगे बढ़ता है और दुश्मन की सरजमी पर अपनी हुकूमत कायम करता है। जंग के मैदान में एक पावरफुल टैंक से निपटना इतना आसान नहीं होता। मुश्किल से मुश्किल चुनौती को टैंक खुद ही निपट लेते हैं, लेकिन एक चीज है जो टैंक के लिए सबसे बड़ा खतरा और चुनौती बनती है, वो है लैंड माइंस। और इन्हीं से निपटने के लिए भारत ने अपने T-72 और T-90 टैंक को और ज्यादा ताकत देने के लिए 975 करोड़ की डील साइन की। युद्ध के समय सबसे बड़ी चुनौती कम समय में दुश्मन की घेराबंदी को तोड़ना होती है। अगर रास्ते में बारूदी सुरंगें हों तो सेना की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। नया ट्रॉल सिस्टम इसी देरी को खत्म कर देगा। यह तकनीक रात के अंधेरे में और खराब मौसम में भी सटीक तरीके से काम करने में सक्षम है। इसके इस्तेमाल से युद्ध क्षेत्र में हताहत होने वाले सैनिकों की संख्या में भारी कमी आएगी। ट्रॉल सिस्टम का पूरा प्रोजेक्ट दरअसल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसे DRDO ही विकसित कर रहा है और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरा सिस्टम शुद्ध तरीके से मेक इन इंडिया के तहत ही बनेगा और यहीं से भारत दुनिया को संदेश देगा कि रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत अब कितनी आगे तक पहुंच चुकी है।
2: टैंक दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीनों में से एक है, लेकिन
0: आधुनिक युद्ध क्षेत्र में इसकी राह में कई खतरे हैं। टैंक के लिए अहम खतरे क्या हैं? ये भी आपको बताते हैं। टैंक के लिए आसमान से सबसे बड़ा खतरा होता है आत्मघाती और FPV ड्रोन, टॉप अटैक मिसाइल। अटैक हेलीकॉप्टर टैंक के सबसे कमजोर माने जाने वाले ऊपरी हिस्से पर हमला करता है। टैंक के लिए जमीन के नीचे और छिपा हुआ खतरा रहता है। एंटी टैंक माइंस IED, एंटी टैंक गन से टैंक को तबाह किया जा सकता है। दुश्मन के टैंक यानी टैंक वर्सेस टैंक भी एक खतरा होते हैं, जो APFSDS गोले हैं और लेजर गाइडेड हथियार का इस्तेमाल करते हैं। जैमिंग और साइबर हमला टैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर टैंक के सेंसर या रडार को जाम कर दिया जाए तो उसे रोकना और तबाह करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही इलाके और तकनीकी चुनौतियां भी ताकतवर टैंक की राह में बहुत मुश्किलें खड़ी करती हैं। अमूमन एक टैंक का वजन 40 से 60 टन का होता है। नर्म और दलदली जमीन में यह धस भी सकता है, यानी चुनौतियां बहुत होती हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तो शहरी इलाके में होती है, जहां तंग गलियां होती हैं। टैंक के लिए मुड़ पाना, पोजीशन ले पाना आसान नहीं होता और ऐसे में ऊंची इमारतों से सीधा इनको टारगेट किया जा सकता है। टैंकों के लिए ड्रोन से खतरा तेजी से उभर रहा है। यूक्रेन युद्ध में ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इन्हीं से बचने के लिए रूस लगातार नए और अजीब दिखने वाले टैंक सुरक्षा उपाय आजमा रहा है। पहले टर्टल टैंक और हेरी टैंक आए, जिनका मजाक भी उड़ाया गया। अब रूस ने एक नया डिजाइन पेश किया है, जिसे डैंडेलियन टैंक कहा जा रहा है। रूस के इस नए टैंक कवच को रूसी भाषा में ओदुवांचिक यानी कि डैंडेलियन कहा जाता है। इसमें लचीली धातु की छड़े पेड़ की शाखाओं की तरह कई परतों में फैलती है। इनके बीच मजबूत जाली लगाई गई है, जिससे टैंक के चारों ओर एक तीन आयामी सुरक्षा घेरा बनाया जा सके। अगर कोई विस्फोटक से लैस FPV ड्रोन टैंक की ओर आता है तो ये छड़े उसे टैंक से कुछ दूरी पर ही विस्फोट करने पर मजबूर कर सकती हैं। ड्रोन जितनी दूर फटता है टैंक को उतना कम नुकसान होता है। दिखने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन रक्षा जानकार मानते हैं कि ड्रोन से बचाव में फिलहाल ये सबसे असरदार तरीका हो सकता है।
1: डेंडेलियम एक्चुअली ना रशिया में एक पेड़ का नाम है, एक्चुअली एक प्लांट होता है, और उससे उन्होंने ये निकाला है कि अभी यूक्रेन वॉर में उन्हें दिखा कि ड्रोन्स का हमला उनके टैंक्स के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो रहा था, और उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया कि अपने टैंक के ऊपर मेटल की रॉड्स या सिंथेटिक या फाइबर ग्लास की जो रेट्रो बार्स हैं वो चारों तरफ लगाई, फैलाकर लगाई, लेयर्स में लगाई, टू दी एक्सटेंट के उन्होंने एक मेश भी लगाया, मतलब तारों का एक झुंड कह सकते हो, तारों का झुंड लगाया जो कि हैवी स्ट्रेंथ ऑफ सिंथेटिक मटेरियल था। सो एक लेयर्ड तरीके से आप टैंक के चारों तरफ ऊपर दाएं बाएं उन लेयर्स को लगा पा रहे हैं, बार्स को लगा पा रहे हैं, सो दैट कोई भी ड्रोन आएगा तो वो टैंक तक नहीं पहुंचेगा, टैंक से 1 फीट 2 फीट 4 फीट दूर हवा में वो फट जाएगा और उसका डैमेज जो है वो उन बार द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
0: पहले यूक्रेनी सैनिक रूसी टैंकों पर लगे पिंजरों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब वो खुद भी इसी तरह की सुरक्षा अपना रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन की एक बख्तरबंद गाड़ी पर डैंडेलियन जैसी संरचना, बालों जैसे ब्रसल्स और जंजीरों से लटकी धातु की प्लेटें देखी गई। हालांकि यह कवच पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, एक्स्ट्रा धातु से टैंक का वजन बढ़ जाता है, जिससे उसकी रफ्तार कम हो सकती है और वो ड्रोन के लिए आसान निशाना बन जाता है।
2: भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक रूस पर ही निर्भर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में भारत ने रूस पर से अपनी निर्भरता को कम किया है। इसमें दो चीजें हुई हैं। पहली बात तो यह है कि भारत खुद मेक इन इंडिया के तहत खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने पश्चिमी देशों से भी डील साइन की है, यानी भारत अब पूरी तरह से केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता।
0: भारत लगातार अपने हथियारों की ताकत को जांचने और परखने के लिए वॉर एक्सरसाइज करता रहता है, कभी समंदर में, कभी रेतीली धरती पर, तो कभी जंगल और पहाड़ों पर। ताकि किसी भी नई चुनौती से आसानी से निपटा जा सके। दिसंबर 2023 में इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड यानी पश्चिमी कमांड के युद्धाभ्यास के दौरान टैंक T-90 भीष्म के ऊपर टॉप अटैक प्रोटेक्शन केज लगा देखा गया, जिसे एंटी ड्रोन केज, कोप केज या स्लेट आर्मर भी कहा जाता है। ड्रोन्स की वजह से अब जंग का चेहरा बदल चुका है। बड़े ड्रोन्स जैसे अमेरिकन रीपर या तुर्की के बैरक्टर बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन टैंकों और जवानों पर अटैक के लिए सस्ते ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है, जिससे बचने में एंटी ड्रोन केज कारगर माने जाते हैं।

0: एंटी ड्रोन केज है, इसका बेसिक पर्पज है कि जो इसके प्रोपेलर हैं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके और ये प्रोपेलर जो है उसको भी नुकसान ना पहुंचे किसी वजह से। तो ये एक सिंपल सी एडवाइस है जो ड्रोन के ऊपर लगाई जाती है। जो स्लैट आर्मर है वो स्लैट आर्मर बेसिकली टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे जैसे ड्रोन्स का आसमान से अटैक करने का खतरा या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या आरपीजी राइफल प्रोपेल जो ग्रेनेड होते हैं उनकी वजह से ऊपर से अटैक करने अगर टैंक के ऊपर होता है तो ऊपर वाली आर्मर जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए और मजबूत किया जाए।
1: रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूसी टैंकों पर लोहे की एक जालीदार छत दिखती है, ऐसी छतरियां इजरायली टैंकों पर भी नजर आई। एंटी ड्रोन केज टैंक के ऊपर सवार मशीन गन चलाने वाले जवान को आत्मघाती ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइल, ग्रेनेड और हेलीकॉप्टर से आने वाली गोलियों के हमले से बचाता है। शब्द तब चलन में आया जब रूस यूक्रेन युद्ध के समय रूस ने इसे इस्तेमाल किया था। यूक्रेन में घुसपैठ के लिए रूसी टैंकों के ऊपर इसको लगाया गया था। हालांकि दावा यह भी किया जाता है कि इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था साल 2020 में नागोर्नो काराबाख के युद्ध में, बाद में इसके नाम बदलते चले गए।
2: टैंक के ऊपर लगे कोपकेच छोटे मोटे आत्मघाती ड्रोन अटैक से हिफाजत कर लेते हैं। इसमें जवान जख्मी हो सकते हैं लेकिन जान जाने का खतरा नहीं रहता। हालांकि ज्यादा ताकतवर ड्रोन बम या फिर एंटी टैंक मिसाइल या रॉकेट से बचा नहीं जा सकता। T-90 टैंक के कमांडर साइट का रेट्रो मॉडिफिकेशन भी किया जा रहा है। इसकी मदद से T-90 के कमांडर लंबी दूरी पर भी टारगेट का पता लगा सकेंगे। नई रेट्रो मॉडिफाइड कमांडर साइट में रात में भी टारगेट का पता लगाना आसान हो जाता है। थर्मल इमेजर की मदद से 8 किलोमीटर तक टारगेट का पता आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं LRF यानी लेजर रेंजर फाइंडर की मदद से 5 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्ट हो सकता है, जिससे लंबी दूरी तक लक्ष्य साधने की क्षमता बढ़ जाती है।
0: थर्मल इमेजर जो होते हैं वो बेसिकली जो हीट सेंसिटिविटी या हीट सिग्नेचर्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी दुश्मन का टारगेट है उसके जो हीट सिग्नेचर्स हैं उनको विजुअल कन्वर्शन करता है। तो आपको क्योंकि अलग अलग हीट सिग्नेचर्स होंगे, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट जो हैं या दुश्मन के जो टारगेट्स हैं उनके, तो उस तरह का विजुअल एक इसको मिलता है जो जिसने फायर करना है, जिसने टारगेट को एंगेज करना है उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा है लेजर रेंज फाइंडर। लेजर रेंज फाइंडर ये है कि लेजर को एक जो कि 300 गुना स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से जाता है वो जाके टारगेट के ऊपर टकरा के वापस आता है। तो उस टाइम से कि कितना टाइम लेता है लेजर की बीम जो है जाके टारगेट को स्ट्राइक करना और वापस आना, तो वो जो टाइम है उससे उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है।
2: T-90 के कमांडर बैलिस्टिक सॉफ्टवेयर और LRF में सुधार के बाद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाने का पता लगा सकते हैं और उस पर निशाना साध भी सकते हैं और उन्हें बेअसर कर सकते हैं।
1: रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी टैंकों की कई खामियां भी नजर आई, जिसके बाद भारत ने अपने टैंकों को और ज्यादा ताकतवर और मजबूत बनाने की ठान ली। दरअसल भारत अब किसी सबक का इंतजार नहीं करेगा बल्कि दूसरी जंग से सबक लेते हुए अपने आप को और अपने टैंकों को अपग्रेड करने की लगातार कोशिश कर रहा है।
2: भारतीय सेना टैंकों को अपग्रेड करके अपने बेड़े को आधुनिक युग के युद्धों के लिए तैयार करना चाहती है, जिसमें T-90 भीष्म का नाम भी शुमार है। भीष्म का प्राइमरी वेपन है 125 mm की कैनन, जो अलग अलग तरह के गोले दागने में सक्षम है, जिसमें मिसाइल दागने की क्षमता इसे खास बनाती है। बंजर रेगिस्तान में जहां सड़क का नामोनिशान तक नहीं होता, वहां भी T-90 तूफानी रफ्तार से दौड़ता है। T-90 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये 6 से 8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। करीब 50 टन के भीषण को ताकत मिलती है अपनी शक्तिशाली इंजन से, जिसकी बदौलत चाहे पहाड़ हो या फिर खाई, वो सब कुछ पार कर सकता है।
1: T-90 भीष्म टैंक में लगे कैटरपिलर ट्रैक्स इसके वजन को एक बड़े सरफेस एरिया में बदल देते हैं, जिस वजह से इसका वजन सीधे जमीन पर उतना नहीं पड़ता। यानी ये दलदली जमीन गहरे पानी तक में भी डूब नहीं सकता और वहां भी अपनी काबिलियत को सही तरीके से पेश करता है।
2: T-90 भीष्म टैंक को रोकना असंभव है। जमीनी जंग का महाबली रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। T-90 टैंक को पहाड़ी सीमाओं का सबसे बड़ा रखवाला कहा जाता है, जिससे पंगा लेना चीन और पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। T-90 भीष्म 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है। ये 1 मिनट में 7 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। थर्मल इमेजर की मदद से अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है T-90 टैंक। लेजर गाइडेड एनवार मिसाइल सिस्टम से लैस है T-90, जिसमें परमाणु हमले में बचाव की क्षमता भी है।
0: T-90 भीष्म टैंक एक थर्ड जनरेशन रशियन सीरीज का टैंक है। 2004 में भारत ने रशिया के साथ एक सौदा किया था और उसमें कुछ टैंक मंगवाए गए थे, और फिर ये भी हुआ था कि जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया ट्रांसफर करेगा। और अभी ये DRDO की मदद से जो आवडी में हैवी व्हीकल फैक्ट्री है वहां पर ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये एक बहुत बढ़िया टैंक इसलिए है कि एक तो इसके टरट के ऊपर कोई ग्लोइंग आईज लगाई हुई है, जो कि दुश्मन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या ड्रोन हमले को थोड़ा मिसगाइड करने में मदद करती हैं। ये टैंक 125 स्मूथ बोर गन है इसके अंदर, और इसके 1 मिनट में 8 राउंड फायर कर सकता है। 43 राउंड इसके अंदर रखे जाते हैं। इसका रेंज जो है 1 से 5 किलोमीटर तक का है।
2: T-90 टैंक को 3 हाईली ट्रेन्ड जवान कंट्रोल करते हैं, ड्राइवर, कमांडर और गनर। तीनों के तालमेल से जमीनी जंग का ये जांबाज रणभूमि में गरजता है। टैंक ऑपरेट कर रहे लोगों की हिफाजत करता है। टैंक के ऊपर लगा बेहद ही मजबूत कवच।
1: दुश्मन की एंटी टैंक मिसाइल को भी नाकाम कर सकता है। दरअसल इसकी परत 20 इंच मोटी होती है और साथ ही साथ इसमें नेक्स्ट जेनरेशन एक्सक्लूसिव आर्मर्स लगे हुए हैं, जो इसे और ज्यादा ताकत देते हैं। यानी अगर इस पर कोई भी हमला होता है तो एक्सक्लूसिव खुद ब खुद बाहर की तरफ फटते हैं, जो इसको नुकसान नहीं देते।

0: टैंक भीष्म 360 डिग्री घूमकर हमला कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि 360 डिग्री घूमने के बावजूद टैंक के अंदर बैठे हर क्रू मेंबर अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं। भीष्म की डिजाइन ही ऐसी की गई है कि हल टेरर और एंटी एयरक्राफ्ट गन एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट कर सकते हैं। T-90 टैंक की एक और खासियत है और वो ये है कि हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है। हवाई खतरों से निपटने के लिए टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इससे मैन्युअली और रिमोट दोनों तरीके से चलाया जा सकता है। T-90 भीष्म में 12.7 mm की बुलेट्स लगी हैं, जिसकी मदद से 2 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को तबाह किया जा सकता है। भीष्म में लगी गन 1 मिनट में 800 गोलियां फायर कर सकती है। जरूरत के मुताबिक एंटी टैंक मिसाइल दागने में सक्षम केमिकल और रेडियोएक्टिव हमला बेअसर। पूर्वी लद्दाख में चीन और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की गुस्ताखियों को देखते हुए भारत कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता, क्योंकि चीन पर भरोसा करने का मतलब 1962 की गलती को दोहराना है। लिहाजा हिंदुस्तान लगातार अपनी युद्ध क्षमताओं को उधार दे रहा है। भारतीय सेना ने T-72 टैंक की मेन बॉडी और T-90 टैंक के टर्निट को मिलाकर एक नया वर्जन तैयार किया है। यह हाइब्रिड टैंक T-72 के मुकाबले ज्यादा घातक साबित होगा। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी लगाया गया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए बनाया है। इस हाइब्रिड टैंक में ATGM भी लगे हैं। नए हाइब्रिड टैंक का कई बार परीक्षण भी हो चुका है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा।
1: रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: Hey, achhi khabrein. Good news today. Achhi khabar, sachhi khabar.
3: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachchai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachhi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachhi khabron ka waqt. रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से.
3: भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला लगातार और तूफानी रफ्तार से चल रहा है. दरअसल भविष्य के युद्धों को देखते हुए और आने वाली जंग की तैयारी भारत अभी से ही कर रहा है ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई चूक ना रह जाए. भारत अपने हथियारों को तो अपग्रेड कर ही रहा है लेकिन साथ ही साथ अपने मित्रों से मिले हथियारों को भी लगातार अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है नई तकनीक के साथ.
6: भारत में मेन बैटल टैंक T-90 भीष्म, T-72 अजय और अर्जुन को आधुनिक बनाने के लिए मेक इन इंडिया मिशन के तहत कई बड़े कदम उठाए गए हैं. इसका मुख्य उद्देश्य भारत के टैंकों को डिजिटल, ज्यादा घातक और अभेद बनाना है. डिजिटल और मारक क्षमता में सुधार के लिए पुराने संचार सेट को हटाकर आधुनिक SDR यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो लगाए गए हैं. इससे डेटा साझा करने में आसानी होती है और ये दुश्मन की जैमिंग से भी सुरक्षित रखते हैं. T-90 टैंकों में ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर लगाया गया है जो मूविंग टारगेट को अपने आप लॉक कर देता है जिससे गनर की सटीकता बढ़ जाती है. DRDO ने नए पिन स्टेबलाइजर आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सेबोट गोले विकसित किए हैं जो दुश्मन के सबसे मजबूत कवच को भी भेद सकते हैं.
7: SDR एक नया कंसेप्ट है जिसमें मैं कहूंगा कि सॉफ्टवेयर ऑब्वियस बात जैसे हम करते हैं दैट मींस 80% इसकी डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर पर है. दैट अमाउंट्स टू एडवांसमेंट क्योंकि हमारे टाइम में ये नहीं हुआ करता था. सो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो अगर हम बात करें ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है सिक्योर कम्युनिकेशन का जो मल्टीपल ब्रांड्स में अपने आप को ऑपरेट करता है जो जिसको बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल रीडिफाइन कर देता है एक तरीके से रेडियो फंक्शनिंग को. क्योंकि अगर इसमें हम मोटे तौर पर देखें तो मल्टीपल फॉर्म का मेरा मतलब होगा कि मल्टीपल ब्रांड्स पर मतलब ब्रांड विड्थ जो है उसके ऊपर काम करेगा, मोड्स पर भी काम करेगा. ब्रांड विड्थ और मोड्स का मेरा मतलब होगा कि वॉइस को भी ले सकता है, वीडियो को भी ले सकता है और डेटा ट्रांसफर को भी ले सकता है. तीनों को साइमल्टेनियसली ले पाता है जो कि अपने आप में कम्युनिकेशन की स्पीड को बढ़ाता है, उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा देता है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी. क्योंकि आपके कोई एक बैंड अगर

0: किसी वजह से ब्लॉक भी कर दिया जाए काउंटर मेजर्स में, फिर भी आप अपने आप उसमें काम कर पाते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी इसमें बहुत अच्छी हो जाती है।
1: पहले भारत के कई टैंक रात में देखने के लिए पुरानी रूसी तकनीक पर निर्भर थे, अब उन्हें स्वदेशी टीआई साइट से बदला जा चुका है, जिससे टैंक कमांडर 4 से 5 किलोमीटर दूर अंधेरे में भी साफ देख सकता है। यही नहीं, टैंक ऑपरेटर के लिए अनकूल थर्मल इमेजिंग कैमरे लगाए गए हैं ताकि वो बिना हेडलाइट जलाए रात में टैंक चला सके।
0: रात में टैंक में सबसे बड़ी मुसीबत एटलीस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस करी वो थी कि आपका जो नाइट का लॉस है, मतलब रात में आप एक तरह से गुम हो जाते हैं, और स्पेशली पिच डार्क अगर नाइट हो, अगर आप डेजर्ट्स में हो, आप जंगल में हो, एक रगेड टेरेन, रफ टेरेन के इलाके में हो, तो आपको एक तरीके से गुम होने का, दिमागी तौर पर गुम होने का एक अंदेशा रहता है, और आप हो भी जाते हैं। जिसको बोलते हैं ना, आजकल तो जीपीएस सिस्टम वगैरह आ गए, हमारे टाइम में नहीं थे, तो एक बड़ा चैलेंज होता था कि रात में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलता था। सो सिर्फ हम अपने हाथ वाले हैंडहेल्ड मैग्नेट के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, जो रेंज दिखाता था हमको। अर्बन एरियाज में बड़ी तकलीफ होती थी हमें कि पूरा बिल्ट अप एरिया है, तो उसमें कहाँ से घुसे, कहाँ से निकले, वो भी एक बड़ी तकलीफ थी। उसके अलावा एक सिचुएशनल के चारों तरफ क्या हो रहा है, उसकी अवेयरनेस का हमें बहुत ही लिमिटेशन रहता था। अब इसके लिए हमने कैसे ओवरकम किया है, तो आजकल हम सभी को मालूम है कि थर्मल नाइट साइट्स आ गई हैं, लाइट इंटेंसिव इंटेंसिफायर्स आ गए हैं, जो टैंक की जो गर्मी है, जिसको के थर्मल सिग्नेचर कहते हैं, उसको दुश्मन ना पकड़ पाए, तो उसको कैमोफ्लेज करने के तरीके निकल आए हैं कि उसको कम कर लिया जाए, और इंडिपेंडेंट पावर्ड नाइट विजन्स आ गई हैं, जो टैंक का ड्राइवर है उसके पास एक नाइट नाइट साइट भी आती है।
1: टैंक को फौलाद बनाने और बाहरी खतरों से निपटने के लिए इसके ढांचे को ऐसी धातु और तकनीक से तैयार किया जा रहा है जिससे ये बारूदी प्रहार को भी झेल सके। टैंक के बाहरी आवरण को मजबूत बनाने के लिए इस पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्स लगाए जाते हैं जो एक ईंट और शील्ड की तरह काम करते हैं। अगर कोई भी मिसाइल इसके साथ टकराती है तो एक छोटा सा धमाका होता है जिससे आने वाली मिसाइल की मारक क्षमता काफी कम हो जाती है। भारत के अर्जुन टैंक में स्वदेशी कंचन कवच का इस्तेमाल किया गया है जो बेहद शक्तिशाली माना जाता है। साथ ही भारत ने स्वदेशी ERA MK2 यानी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर MK2 भी तैयार किया है जो टैंक को दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइलों से हिफाजत करता है। इसकी खास बात यह है कि इस प्रोटेक्शन से टैंक के वजन को बढ़ाए बिना उसकी सुरक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है।
0: ओल्ड कंसेप्ट, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नई बात है, लेकिन यस, उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर करी जा रही है। हमारे टाइम में भी ये कंचन आर्मर प्लेटिंग जो थी, वो अर्जुन टैंक जो हमारा मेन बैटल टैंक है, 1 और 2 दोनों, Mark 1 और 2 की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें हो जाता था। बेसिकली होता इसमें यह है कि एक मॉड्यूलर कॉम्पोजिट आर्मर प्लेटिंग ये होती है, जो कि आपको एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देती है, APFSDS, आर्मर्ड पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग साबो एमिनेशन और HEAT एमिनेशन, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, क्योंकि इन दोनों ही चीजों में आपके पास जो टैंक की जो बाहर की बॉडी है उसके ऊपर आकर जब ये शेल लगता था, तो वो एक तरीके से कह सकते हैं उसका केमिकल इसको चिपका देता था, और चिपकाने के बाद उसकी गर्मी और काइनेटिक एनर्जी के वजह से वो दोनों चीजों में अंदर जाके ब्लास्ट करता था। कंचन आने से आपका एक तरीके का सैंडविच इफेक्ट आ गया है कि दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स के बीच में कंपोजिट मटेरियल उसके बीच में डाल दिया जाता है, और उसका जो आर्मर है, टोटल आर्मर, वो एक रोल्ड होमोजीनियस आर्मर की तरह काम करता है। दैट मीन्स कि अगर वो APFSDS या HEAT राउंड आकर आउटर लेयर पर लगता भी है, तो भी वो उसको अंदर तक नहीं जाने देता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक तरीके का हमने जो कॉम्पोजिट मटेरियल डालकर उस आर्मर को बनाया है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर पाता है, और काफी हद तक एक टैंक को प्रोटेक्शन दे सकता है, और इसीलिए इसे एक तरीके से कंचन सुरक्षा कवच भी बोला जाता है।
1: टैंक की सुरक्षा इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो कितना फुर्तीला है। रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक में वो कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। भारी भरकम टैंक के लिए ये काम उनके पावरफुल इंजन करते हैं, यानी जितना ताकतवर इंजन टैंक की ताकत उतनी ज्यादा। लिहाजा सेना के मेन बैटल टैंक के लिए ज्यादा पावरफुल इंजन खरीदा जा रहा है। भारतीय सेना की मेन बैटल टैंक T-90 और T-72 के लिए मजबूत इंजन की खरीद पर मुहर लग चुकी है। T-90 टैंक में फिलहाल 1000 हॉर्स पावर का इंजन है, जिससे बढ़ाकर 1350 हॉर्स पावर करने की तैयारी हो रही है। और इसी तरीके से T-72 को भी मजबूत इंजन के साथ लैस किया जाएगा, ताकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी ये अपनी काबिलियत का प्रदर्शन अच्छे से कर सके। मौजूदा समय में भारतीय सेना 1200 से ज्यादा T-90 टैंकों का संचालन करती है, जो अलग अलग संस्करणों में मौजूद है। अब जब T-90 टैंक को 1350 हॉर्स पावर के नए इंजन से लैस किया जाएगा, तो इसकी क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। HP इंजन से भारतीय सेना को टैंक पर और ज्यादा सुरक्षा कवच, एडवांस सेंसर और नए हथियार सिस्टम लगाने की सुविधा मिलेगी। नया इंजन बेहतर ईंधन क्षमता के साथ आएगा, जिससे टैंक को ज्यादा दूरी तक चलाया जा सकेगा। लंबे अभियानों के दौरान कम ईंधन की खपत होगी, जिससे सप्लाई लॉजिस्टिक आसान होगी।
2: ये हमने लेसन सीखा है, स्पेशली लद्दाख के अंदर, जब 2020 के अंदर वहां पर हम चीनी वहां पर आ गए थे, तो T-90 टैंक को वहां डिप्लॉय किया गया, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। मगर सच्चाई यह है, ये वहां लेसन सीखा गया कि जो हाई एल्टीट्यूड में, क्योंकि रेयरफाइड इन्वायरमेंट होता है और वहां पर एक प्रकार एटमोसफियर में ऑक्सीजन कम होती है, तो आपको ज्यादा बड़ा इंजन चाहिए जिसकी हॉर्स पावर ज्यादा हो, वो मैन्यूवर कर सकता है, मोबिलिटी उसकी अच्छी होगी। तो ये सच्चाई है, अभी जो 1350 हॉर्स पावर का जो इंजन आएगा, उससे जो टैंक है उसकी क्षमता और काबिलियत और बढ़ेगी, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने में स्पीड भी बढ़ेगी।
1: साल 2020 में जब भारत और चीन की सेना के बीच LAC पर टकराव हुआ, तो उस समय पूर्वी लद्दाख में T-90 टैंक ही तैनात किए गए थे। अब बदलाव के इस दौर में भारत के इस ताकतवर टैंक को और भी ताकतवर बनाया जा रहा है। हालांकि T-90 टैंक पहले से ही अपनी रफ्तार और रणनीतिक चपलता के लिए मशहूर है, नया इंजन ने और ज्यादा तेज और सक्षम बनाएगा, जिससे युद्ध क्षेत्र में तेजी से मूवमेंट किया जा सकेगा। यह इंजन रेगिस्तान, पहाड़ और उबर खाबड़ इलाकों में ज्यादा प्रभावी होगा। तीनों क्षमताओं को बढ़ाने में 1350 HP इंजन बेहद कारगर साबित होगा। मौजूदा समय में भारतीय सेना T-90 टैंकों में व्लादिमीर टैंक इंजन V-92S2 का इस्तेमाल कर रही है, जो 1000 हॉर्स पावर का है। वहीं नया 1350 HP इंजन ज्यादा रफ्तार, ताकत और लड़ाई में सहन शक्ति मुहैया कराएगा।
2: भारत का जो दो फ्रंट वार हो सकता है और हमारे को लड़ाई लड़नी पड़ सकती है हाई एल्टीट्यूड में भी, जो कि एक लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश है, और जिस प्रकार से वहां पर काफी इलाका ऐसा है जहां टैंकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और भारत ने टैंकों का इस्तेमाल किया भी है। इस बार जब लद्दाख के अंदर चीनी आ गए तो हमने अपने मेन बैटल टैंक को ले गए थे, T-90 भी, T-72 भी, और ये सच्चाई है कि अब वहां पर टैंकों की लड़ाई बड़े आराम से हो सकती है, और इसलिए टैंकों का आपका लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। इसलिए हमने अपने जो है अब आने वाले समय में लाइट टैंक कि भी जो एक प्रकार से हम खुद उसको बना रहे हैं, जोरावर टैंक जो कि एक मिनी टैंक होगा, और इसी प्रकार से जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि ये एक प्रकार प्लेन एरिया है या डेजर्ट है, वहां पर भी टैंकों का रोल बहुत ज्यादा होगा, और इसी प्रकार से वहां भी T-90 टैंक जो एक सामा एक मेन बैटल टैंक है भारत का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
1: T-90 रूस की ओर से विकसित किया गया था और इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया। अब आने वाले दिनों में 1350 एचपी इंजन के साथ T-90 टैंक न सिर्फ ज्यादा प्रभावी होगा बल्कि ये पाकिस्तान और चीन के टैंकों से मुकाबला करने में और भी ज्यादा सक्षम होगा। दरअसल T-90 टैंकों को अपग्रेड करने का सिलसिला भारत ने मेक इन इंडिया

0: 7 मार्च 2025 को भारत ने रूस के साथ एक बहुत अहम डील की है और ये डील है $248 मिलियन की और ये डील है भारत के टैंक T-72 के इंजन को 1000 हॉर्स पावर तक अपग्रेड करने की। और इस डील की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर भी हस्ताक्षर हुए हैं जो भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, यानी कि भविष्य में भारत अपने तमाम टैंकों को खुद अपग्रेड कर पाएगा। आपको बता दें कि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के मुताबिक भारत की आर्टिलरी शक्ति जबरदस्त है। भारत के पास 4201 टैंक है। टोड आर्टिलरी की तादाद 3995 है। सेल्फ प्रोवेल्ड आर्टिलरी की संख्या 100 है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी कि रॉकेट आर्टिलरी की तादाद 264 है। वहीं आर्म्ड व्हीकल 1,48,594 है। अक्सर देखा गया है कि जमीनी जंग में टैंक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे उन्हें बैटलफील्ड का सबसे बड़ा बाहुबली भी कहा जाता है। अब टैंक को ये तगमा क्यों दिया जाता है और टैंक की असली ताकत क्या है, ये भी जान लीजिए। किसी भी टैंक की ताकत का आंकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होता है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं। इनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? ये आपको बताते हैं। पहला इंडिकेटर है वजन, स्पीड, पावर टू वेट रेशो, साथ ही हथियार और डिफेंस मैकेनिज्म जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है।
1: टैंक को नापने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। एक तो फायर पावर, मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और रेंज। तो इन चारों का तालमेल होना चाहिए कि आपकी जो फायर पावर है वो आपकी जो गन है, जैसे हमारे T-90 में 125 mm बोर, स्मूथ बोर गन है, तो उसकी कितना बोर का है उससे पता चलेगा कि आपकी फायर पावर कितनी होगी। जो फायर पावर है वो आपकी जो गन है, जैसे हमारे T-90 में 125 mm बोर, स्मूथ बोर गन है, तो उसकी कितना बोर का है उससे पता चलेगा कि आपकी फायर पावर कितनी होगी। आपके कोएक्सल गन क्या है, आपके जो दूसरे वेपन सिस्टम क्या है टैंक के मेन बैटल टैंक के आपके बैरल के अलावा, जो कि आपके मशीन गन भी है, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है और एंटी टैंक गन भी है। तो फायर पावर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से मोबिलिटी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैंक कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है।
0: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की उस ताकत से है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आपको बता दें कि ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़, टैंक का काम है हर जगह से निकलना। जहाँ बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स फंस जाते हैं वहाँ से टैंक आसानी से निकल जाता है, जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए कि उसमें लोहे के पहिए लगे होते हैं, बावजूद इसके वो थमता नहीं है और न ही धसता है। अब भारी भरकम टैंक दलदले इलाके में क्यों नहीं फंसते, इसका एक सिंपल सा फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं है। टैंक अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलता है जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन सही शब्द है ट्रैक। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है कि टैंक का वजन जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया में बांट देता है और इसीलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी नहीं धंसते।

0: डेजर्ट का इलाका हो या सेमी ब्रोकन इलाका हो या आपका पहाड़ी इलाका भी हो, जो छोटे मोटे पहाड़ हैं उन पे भी चढ़ सकता है। तो सच्चाई है, क्योंकि इसके अंदर जो एक एक बहुत ही पावरफुल इंजन होता है, दूसरा इसके अंदर जो एक प्रकार से आपकी जो चेन है, जो कि ट्रैक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैक जो है उसको कहीं पर भी ले जाने के लिए काबिलियत और क्षमता रखते हैं।
1: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक बिल्कुल भी नहीं फंसते। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आइडियली एक टैंक को मैन्यूवरेबल भी होना चाहिए और इसका सही और बढ़िया वेट टू पावर रेशो होना चाहिए। अब मैन्यूवरेबल से यहाँ सीधे तौर पर मतलब ये है कि अगर एक साइड से हमला होता है तो टैंक कितनी जल्दी से, कितनी चपलता के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और ये तभी हो सकता है जब उसका इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल हो, जो उसे रण क्षेत्र में और ज्यादा ताकत देता हो। टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है, उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशो होगा, उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
0: ज्यादा भारी टैंक होगा तो फिर आपको उसके लिए पावर ज्यादा चाहिए, और अगर तो इसलिए एक बहुत ही जो इसका मापदंड बड़ा ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो पावर टू वेट रेशियो में पावर भी हो और वेट कम भी कम हो, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एक अच्छे टैंक के लिए। तो आपको हर एक चीज को ये देखना पावर टू वेट रेशियो में कि अगर आप वेट बढ़ा देंगे तो फिर उसकी हो सकता है इसकी पावर कम हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए इंजन बहुत बड़ा चाहिए।

टैंक एक ऐसा आपको कह सकते हैं वेपन सिस्टम है जो कि डेजर्ट में भी चल सकता है, एल्टीट्यूड में चल सकता है, कीचड़ में भी चल सकता है, रिवराइन ट्रेन में चल सकता है। उसकी वजह यह है, एक तो इसका इंजन जो है वो बहुत पावरफुल होता है, दूसरा इसके अंदर ट्रैक लगे होते हैं ना कि टायर लगे होते हैं। जो ट्रैक है वो उसके अंदर काबिलियत तो क्षमता होती है कि वो चाहे कीचड़ का इलाका हो।

टैंक को ताकतवर बनाने में उसका फायर पावर भी अहम रोल निभाता है। टैंक की मारक क्षमता को बताने के लिए भी कई इंडिकेटर्स हैं। पहला है कैनन, यानी टैंक पर लगी तोप का साइज। कैनन का बोर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा गोला दागने में टैंक सक्षम होगा, यानी जितना बड़ा कैनन होगा वो उतना इफेक्टिव हो सकता है। एक मिनट में कितने गोले फायर किए जा सकते हैं इस पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी जितने कम समय में टैंक जितने ज्यादा गोले दागेगा उससे दुश्मन को बचने का वक्त भी कम मिलेगा, साथ ही उसे नुकसान भी काफी ज्यादा उठाना होगा।

0: जितना अहम कैनन है उतना ही अहम है उसकी मैगजीन का साइज, यानी टैंक कितने गोले लेकर चल सकता है। ज्यादा गोले का मतलब युद्ध के मैदान में टैंक कितने समय तक दुश्मन से मुकाबला कर सकता है और कितने तरह के गोले इससे दागे जा सकते हैं। इन बातों से टैंक की ताकत को परखा जाता है। आजकल के टैंक तो मिसाइल भी फायर करने में सक्षम है। अब टैंक के कितने हिस्से होते हैं और उसका काम और अहमियत क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल टैंक के दो हिस्से होते हैं। टैंक के नीचे के हिस्से को हल कहा जाता है, वहीं ऊपरी हिस्से को टैरल कहा जाता है। ये 360 डिग्री पर मूव कर सकता है। टॉयलेट वाले एरिया में बैरल से लेकर मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक लगे होते हैं, जिससे दुश्मन से मुकाबला करना आसान होता है।
1: ये जो गन कंट्रोल सिस्टम होता है, जायरोस्कोप वेपन स्टेबलाइजर उसको बोलते हैं, इसका काम यह है कि एक रेफरेंस पॉइंट जो है उसको फिक्स करके उसके ऊपर ही वहीं पर गन को रखा जाए। तो ये एक सब टैंकों में यही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टैंक को तो ऊपर या नीचे उबड़ खाबड़ इलाके में चलना ही है, तो उसको एक पहले तो गन कंट्रोल सिस्टम जो है वो आता है और साथ ही साथ उसके फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी एक इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जायरोस्कोप जो है वो मदद करती है कि इसको सिंक्रोनाइज करके एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर जहाँ आपने फिक्स किया है वहाँ पर उसकी गन की बैरल को रखा जाए।
0: टैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है दुश्मन के रडार में आए बिना मिशन को अंजाम तक पहुंचाना। खुला इलाका या रेगिस्तान जहां चुनौती काफी बढ़ जाती है, ऐसे में टैंक स्मोक डिसास्टर का इस्तेमाल करते हैं। टैंक से निकलने वाले स्मोक से धुएं का बादल पसर जाता है, जिससे दुश्मन के लिए टैंक की सही पोजिशन को ढूंढ कर उस पर हमला करना मुश्किल हो जाता है।
2: जब टैंक बैटलफील्ड में है तो उसके लिए भी उसको भी एक प्रकार से जब वो दुश्मन के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो खुद भी टारगेट बन सकता है, दुश्मन के टैंकों का भी ड्रोन का भी। इसीलिए टैंक अपने आप को एक कैमोफ्लाज करने के लिए टारगेट एक बार अपने आप को बचाने के लिए स्मोक का डिस्चार्ज करता है, जिससे उसको छुपाव में आ जाता है और दुश्मन के टैंक जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या दुश्मन के ड्रोन या एंटी टैंक जो आपके गन सिस्टम है या आपके एंटी टैंक हेलीकॉप्टर है वो इस अटैक हैप्टर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन का दर्जा है।
0: युद्ध के मैदान में टैंक के लिए एंटी टैंक माइंस एक बड़ा खतरा माना जाता है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। अब दुश्मन के एंटी टैंक माइंस से बचने के लिए माइन प्लगर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के मैन पोर्टेबल टैंक अर्जुन मार्क 1 में इसका इस्तेमाल किया गया है। माइंस प्लगर के पास ही सेंसर लगा होता है, जिसकी मदद से माइंस को डिटेक्ट किया जा सकता है और फिर प्लगर की मदद से उसे जमीन से उखाड़ दिया जाता है।
1: अगर जो टैंक है वो हल्का है, दैट इज वाई इसकी जो पावर टू वेट रेशियो है वो ज्यादा से ज्यादा रखी जाती है, ताकि वो क्विकली एक जगह से फायर करके फटाफट गेट अवे कर सके। एक तो ये तरीका है, और दूसरा अगर इसके पीछे जानबूझ के कुछ फ्लेयर जो है वो गिरा दी जाती है या ऐसी लाइटिंग की जाती है जिससे इंफ्रारेड रेज जो है दुश्मन के रडार की उनको चीट करने की या मिसगाइड करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए टैंक का वेट जो है कम से कम रखा जाता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह से मैक्सिमम स्पीड से जा सके।
0: टैंक के क्रू मेंबर्स की हिफाजत के लिए एक तो इसके कवच को काफी मजबूत बनाया जाता है, जो कि दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है। टैंकों के डिजाइन को लेकर भी खास सावधानी बरती जाती है। इसे कर्व जैसा आकार दिया जाता है ताकि गोली बेअसर साबित हो।
3: वो
1: भी टैंक की आर्मर जो है ये एक्चुअली काफ़ी मोटी होती है, और आजकल कंपोजिट आर्मर जो है ना, सेल्फ रिपेयरिंग आर्मर्स वो भी आ गई हैं। होता यह है कि दो हार्ड जो फेसेस हैं उसके अंदर कंपोजिट बनाने के लिए उसके अंदर एक लो डेंसिटी वाला मटेरियल रखा जाता है। आइडिया ये है कि अगर कोई भी शेल आपके टैंक के ऊपर गिरे तो वो उसको पियर्स ना कर सके, उसके अंदर गोला करके उसके अंदर ना जा सके। तो इसके लिए कंपोजिट आर्मर और आज की टेक्नोलॉजी के युद्ध में बहुत बढ़िया बढ़िया आर्मर। आइडिया ये है कि टैंक का वेट भी ना बढ़े, जितना आप इसका आर्मर को मोटा करेंगे उतना टैंक का वेट बढ़ेगा। तो इसलिए ये एक ट्रेड ऑफ होता है कि कितना आर्मर मोटा या अच्छी क्वालिटी का ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए कि जो लाइट भी हो, टैंक की वेट को ना बढ़ाए और उसी तरीके से ये दुश्मन के गोले को या उसको भी बर्दाश्त कर सके।
0: गन से एमुनिशन यानी कि गोला फायर किया जाता है। इसे फायर करने के दौरान बैरल काफी गर्म हो जाता है, साथ ही बड़ी मात्रा में धुआं और जहरीली गैस निकलती है। ऐसे में खतरा ये रहता है कि बैरल के जरिए धुआं वापस टैंक के अंदर न दाखिल हो जाए, लिहाजा बैरल में एक इवैक्यूएटर बना होता है जो धुआं और जहरीली गैस को वापस लौटने से रोक देता है। क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
5: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: Today banata hai.
7: Good news today.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में कल ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन, आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर होगा कार्यक्रम। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी युद्ध पोत अचल, अत्याधुनिक तोपों से लैस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार। आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया कदम। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण। एमआईआरवी तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बनाया निशान। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां, मंदिर के पास ही आसमान में एयर शो का रिहर्सल, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाई करतब। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए 256 करोड़ रुपए। आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी, भव्य सुरक्षित और व्यवस्थित मेला करना लक्ष्य। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी नोरा फतेही। कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नोरा।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने तमिलनाडु की सियासत में 59 साल बाद एक नई और दमदार लीक खींच दी है। तमिलनाडु में 59 साल बाद पहली बार ये मौका आया है जब डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही पार्टियां सत्ता से दूर हो चुकी है। इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बेदखल किया है तमिल फिल्मों के एक मसीहा ने।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु की सियासत में नई और मजबूत लीक खींचने वाले जोसेफ विजय चंद्रशेखर हैं। जी हाँ, तमिलनाडु की जनता जिन्हें प्यार से थलापति के नाम से बुलाती है, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय ने 2 साल पहले रुपहले पर्दे को अलविदा कह एक राजनीतिक पार्टी बनाई और उसके बाद हुए पहले ही चुनाव में इतिहास रच दिया। तमिलनाडु के सत्ता पर पिछले 59 साल से 2 ही पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके काबिज होती रही, लेकिन थलापति विजय ने दोनों का डिब्बा गोल कर नई सियासी अध्याय की शुरुआत कर दी है।

0: लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव त्योहार की तरह होते हैं, एक ऐसा त्योहार जिसमें जनता अगले 5 साल के लिए अपने मुस्तकबिल पर मुहर लगाती है। लेकिन दशकों में कभी एक बार ऐसा भी होता है जब कोई चुनाव सिर्फ त्योहार न रहकर बहुत बड़े बदलाव का ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाता है। तमिलनाडु के सियासी मैदान में इस बार बड़े बदलाव की ऐसी ही क्रांति देखने को मिली है और इस क्रांति के मसीहा बनकर उभरे हैं तमिल फिल्मों के महानायक जोसफ विजय चंद्रशेखर। प्रशंसक प्यार से जिन्हें थलापति विजय के नाम से बुलाते हैं। बीते 4 मई को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सूबे की 6 दशक पुरानी द्रविड़ियन राजनीति का एक तरह से पटाक्षेप कर दिया है। 234 सीटों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतकर थलापति विजय ने अन्नादुरई, करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन और जयललिता की वर्षों पुरानी द्रविड़ियन राजनीति की मजबूत विरासत के थुर्रे बिखेर दिए। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम के शिखर पर पहुंचने के बाद थलापति विजय ने 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कड़गम के नाम से नई पार्टी बनाई और उसके बाद हुए पहले ही विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों को धराशायी कर दिया। पार्टी बनने के बाद से ही थलापति विजय का आत्मविश्वास उनके प्रचंड जीत की सरगोशी कर रहा था।
1: My wishes to my son, because I'm seeing last 2 years is confidence level. Okay, his confidence level is fantastic. And faith, I'll come as a chief minister of Tamil Nadu.
0: थलापति विजय का आत्मविश्वास तब भी दिखा जब उनकी पार्टी ऐतिहासिक जीत के बाद भी बहुमत के आंकड़े से 10 कदम दूर रह गई। अपनी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर थलापति विजय 2 बार 6 और 7 मई को राजभवन गए, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं होने का हवाला देकर उन्हें वापस कर दिया। लेकिन तमिलनाडु के इस थलापति ने फरवरी 2024 में राजनीतिक पार्टी बनाने के साथ ही अटल निश्चय कर लिया था कि राज्य की सत्ता के शीर्ष तक हर हाल में पहुंचेगा। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने सत्ताधारी डीएमके को भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी बताया था, जबकि बीजेपी को उन्होंने अपना वैचारिक विरोधी माना था। कमाल यह है कि बहुमत का आंकड़ा जुटाने के दौरान उन्होंने इन दोनों पार्टियों से दूरी बनाए रखी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि थलापति विजय ने विधानसभा चुनाव में अपने स्टारडम को भुनाकर तमिलनाडु की सत्ता के शीर्ष तक का सफर तय किया है, तो वो गलतफहमी में हैं। आज विजय की कामयाबी की जो बुलंद इमारत आपको नजर आ रही है, उसकी नींव 2 दशक पहले ही पड़ चुकी थी। थलापति विजय ने राजनीतिक पार्टी वेशक फरवरी 2024 में बनाई, लेकिन सच्चाई यही है कि वे अपने फैन क्लब के जरिए पिछले 2 दशक से समाज सेवा और जन कल्याण के काम में जुटे हुए हैं। विजय का फैन क्लब थलापति विजय मक्कल यक्कम काफी पहले से सक्रिय है, जिसके तहत ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप लगाने जैसे काम तो किए ही जाते रहे हैं। गरीबों को खाना कपड़ा देने से लेकर सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों, पुलिस थानों, यहाँ तक कि कोर्ट के मामलों में भी बेसहारा जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती रही है।
1: As a human, you should not be as a only artist. You must have some social thinking. So last 30 years, was having in his mind, we have to do something for the society, for the Tamil people. It was there in his mind. Last, slowly he has developed that these things.
0: साफ है कि तमिलनाडु की जनता ने उन्हें अपना थलापति माना है, तो उसके पीछे ठोस वजहें हैं और इन्हीं वजहों की वजह से उन्होंने तमिलनाडु में 1967 के बाद पहली बार गैर द्रमुक सत्ता की नींव डाली है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के तब के लोकप्रिय नेता अन्नादुरई ने 1949 में पेरियार से अलग होकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की नींव डाली थी। 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद अन्नादुरई को साल 1967 में कामयाबी मिली और उन्होंने राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। सरकार बनाने के 23 महीने बाद ही अन्नादुरई का निधन हो गया, जिसके बाद डीएमके की कमान करुणानिधि के हाथों में आ गई। उधर तमिल फिल्मों के तब के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन ने रुपहले पर्दे के मायालोक को अलविदा कहकर 17 अक्टूबर 1972 को AIADMK की स्थापना की। साल 1977 के विधानसभा चुनाव में एमजी रामचंद्रन करुणानिधि को करारी शिकस्त देकर सूबे की सत्ता पर काबिज हो गए। तब से लेकर आज तक यानी करीब 59 साल से यही दोनों पार्टियां बारी बारी से सूबे की सत्ता का स्वाद चखती रहीं। लेकिन थलापति विजय ने आखिरकार सत्ता के एकाधिकार के इस द्रविड़ियन अश्वमेध पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि जोसफ विजय से पहले करुणानिधि और एमजी रामचंद्रन की जमी जमाई सियासी विरासत को चुनौती देने की कोशिश नहीं की गई। दक्षिण भारत के थलाइवा रजनीकांत ने 3 दिसंबर 2020 को पूरे जोशो खरोश के साथ ऐलान किया कि वे जनवरी 2021 में एक नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। लेकिन जनवरी 2021 आने से पहले 29 दिसंबर 2020 को ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर रजनीकांत ने सियासी अखाड़े से दूर रहने का बयान जारी कर दिया। दक्षिण भारत के एक और स्टार कमल हसन ने भी 21 फरवरी 2018 को पूरे उत्साह और जोश के साथ मक्कनिधि मैयम के नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तमिलनाडु की 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कमल हसन ने किस्मत आजमाई, लेकिन कोयम्बटूर दक्षिण से खुद ही हार गए। उसके बाद तो सियासी सुरमा बनने की उनकी हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। पर थलापति विजय ने अद्भुत आत्मविश्वास के साथ तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री मारी और पहली बार में ही विजय पताका लहरा दिया।
2: जोसफ विजय चंद्रशेखर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कामयाबी के सफर में कभी ठहराव या फिर बिखराव का आलम नहीं देखा। एक बार जिस काम पर पहुंच गए तो उससे ऊपर ही बढ़े, नीचे की ओर कभी देखा ही नहीं। तमिल फिल्मों में जबरदस्त स्टारडम हासिल करने के बाद जब सियासी अखाड़े में उतरे तो वहां भी बड़े बड़े सूरमाओं को चित्त कर दिया। लेकिन इस कामयाब इंसान को बचपन में एक बड़ा सदमा लगा था, ऐसा सदमा जिसने मासूम उम्र में ही उनकी खुशियां छीन ली, बचपना छीन कर इन्हें शांत और अंतर्मुखी बना दिया। लेकिन वही सदमा बाद में इनकी जिंदगी की कामयाबी का शरार बन गई।

0: नफरत और नस्लीय भेदभाव की बुनियाद पर शुरू हुई द्रविड़ियन राजनीति की चूले हिलाकर तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज हुए जोसेफ विजय चंद्रशेखर की जिंदगी का सफर सफलता की अनोखी दास्तान है। दुनिया के सफलतम लोगों की जिंदगी में झांकेंगे तो आपको गिरने और संभलने, चढ़ने और फिसलने का सिलसिला दिखाई देगा, लेकिन जोसेफ विजय चंद्रशेखर की जिंदगी बिना गिरे, बिना फिसले, बिना थके, बिना रुके मुसलसल आगे बढ़ने का बेनजीर सिलसिला है। सफलता की ऐसी दास्तान जिसमें सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने का क्रम दिखता है, ठहरने या उतरने का कोई क्रम नजर नहीं आता। जिंदगी को लेकर इनका फलसफा भी यही है कि सफलता का कोई आखिरी छोर नहीं होता।
1: Don't lose your identity at any cost. Say no to temporary pleasures. Success is never ending. Failure is never final.
0: आपको बता दें कि 22 जून 1974 को चेन्नई में फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे विजय बचपन में काफी चंचल, वाचाल और बातूनी थे, लेकिन 10 साल की उम्र में हुई एक नामुराद दुखद घटना ने इनकी निश्चल मासूमियत को हमेशा के लिए छीन लिया। दरअसल विजय जब 3 साल के भी नहीं हुए थे तो 14 फरवरी 1977 को विधाता ने बहन के रूप में इन्हें अनुपम उपहार दिया। अपनी बहन विद्या के जन्म के बाद विजय का जीवन आह्लाद आनंद से भर गया। हालांकि तब विजय उम्र के लिहाज से बेहद नादान थे, लेकिन हर वक्त बहन के साथ रहना, उसकी किलकारियां सुनना, रोने पर उसे पुचकारना, जो सब विजय की जिंदगी का हिस्सा बन गया। कुछ समय बाद विजय का जब काडम्बकम के फातिमा स्कूल में एडमिशन हुआ तो बहन को छोड़कर स्कूल जाना उन्हें बेहद खटकता था। बहन से एक पल की दूरी भी उन्हें नागवार गुजरती थी। स्कूल से लौटते तो सीधा बहन के पास जाते थे और उसकी बाल सुलभ चंचलता में खुद को फना कर देते थे। पर विधाता को भाई बहन के बीच का ये अनुपम प्यार लंबे वक्त तक मंजूर नहीं था। विद्या जब 7 साल की हुई तो किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। कहते हैं कि साल 1984 में भाई की गोद में ही बहन ने आखिरी सांसें ली। काल के इस क्रूर मजाक ने विजय को भीतर तक झकझोर दिया। बहन विद्या की मौत का सदमा इतना गहरा था कि चंचल वाचाल विजय 10 साल की उम्र में ही एकदम शांत और अंतर्मुखी हो गए। जीवन का उत्साह उमंग एक झटके में खत्म हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम मिलने के बाद एक इंटरव्यू में विजय ने कहा था, छोटी बहन की मृत्यु के बाद मेरे जीवन में जो खालीपन आया वो बहुत साल बाद प्रशंसकों के प्यार से ही भर पाया। इस प्यार में अक्सर मुझे अपनी बहन की झलक दिखाई देती है। वक्त का कारवा गुजरता गया, लेकिन जोसेफ विजय 42 साल पहले दुनिया छोड़कर गई बहन की मनोरम यादें आज भी अपने सीने में सजोए हुए हैं। जोसेफ विजय की प्रोडक्शंस कंपनी का नाम वीवी क्रिएशंस है, विद्या विजय क्रिएशंस। इतना ही नहीं, अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों के लिए वो एक खास नंबर 0277 इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर उनकी बहन विद्या के जन्म के महीने और साल से जुड़ा हुआ है। विद्या के जन्म का साल 1977 था और महीना था फरवरी, यानी साल का दूसरा महीना। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि विजय की सफलता दर सफलता का बहन के प्रति उनके बेपनाह प्यार से आखिर क्या संबंध है? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। दरअसल बहन की दुनिया से विदाई के बाद विजय ने अपनी मासूमियत को, शोखी को, चंचलता को जब अपने सीने में दबाना शुरू किया तो कालांतर में उसने तूफान का संघनित रूप ले लिया। सीने में दबा वही संघनित तूफान पहले पर्दे पर और बाद में सियासी मैदान में बवंडर बनकर निकला तो बड़े बड़े सूरमा उसके सामने धराशायी हो गए। काबिले गौर है कि बहन विद्या की मृत्यु से पहले जोसेफ विजय तमिल फिल्म वेत्री में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू कर चुके थे। इस फिल्म का निर्देशन जोसेफ विजय के पिता एसे चंद्रशेखर ने किया था, पर विद्या की मृत्यु के बाद विजय इतने सदमे में थे कि मौका मिलने के बाद भी वो फिल्मों में काम करने से कतराने लगे थे। बेटे की ये हालत देखकर माँ बाप काफी परेशान थे और हर हाल में बेटे को इस सदमे से उबारना चाहते थे। इसीलिए माँ शोभा चंद्रशेखर ने साल 1991 में एक रोमांटिक फिल्म की पटकथा लिखी। पिता एसे चंद्रशेखर ने इस कहानी पर बेटे को लीड हीरो लेकर फिल्म बनाने का फैसला किया। लेकिन कोई प्रोड्यूसर इस पर पैसा लगाने को राजी नहीं हुआ। आखिरकार पिता ने ही बैंक से लोन लेकर फिल्म का निर्माण किया। साल 1992 में आई नालैया थिरुप्पु बतौर लीड हीरो विजय की डेब्यू फिल्म थी। नालैया थिरुप्पु बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई और पूरा पैसा डूब गया। फायदा बस इतना हुआ कि विजय रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो लॉन्च हो गए। बतौर लीड हीरो पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी जोसफ विजय के भीतर का तूफान जरा भी कमजोर नहीं पड़ा। अलबत्ता कामयाबी की चाह की ज्वाला और तेज हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 1994 में आई रसीगन और 1996 में आई उन्नक्कगा ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। साल 1997 में आई कुडालुकु मरिया धाई में तो विजय के बेहतरीन अभिनय ने क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया। रोमांटिक फिल्म कुडालुकु मरिया धाई के लिए विजय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के स्टेट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। विजय ने अपने फिल्मी करियर की कामयाबी की सीढ़ियां बड़े ही करीने से चढ़ी हैं। शुरुआती 10-11 सालों तक विजय ने खुद को रोमांटिक हीरो के इमेज तक महदूद रखा, लेकिन साल 2002 के बाद उन्होंने एक्शन फिल्मों को साइन करना शुरू किया। साल 2003 में थिरुमलाई में दर्शकों ने पहली बार विजय का एक्शन अवतार देखा। साल 2004 में आई गिली में एक कबड्डी प्लेयर के किरदार को विजय ने अपने लाजवाब एक्शन से इतना दमदार कर दिया कि रातों रात तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। गिली घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई। ऐसा लगता है कि जोसफ विजय अपने फिल्मी करियर को एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ा रहे थे। करीब एक दशक तक अपने एक्शन अवतार में कामयाबी का झंडा बुलंद करने के बाद तमिल सुपरस्टार ने सामाजिक सरोकार वाली फिल्मों को साइन करना शुरू कर दिया। 2014 में आई कत्थी में विजय डबल रोल में दिखे, जिसमें से एक छोटे मोटे चोर कथी रेशन का किरदार है, जबकि दूसरा जीवानंदम सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता। कत्थी का जीवा बड़े कॉरपोरेट घरानों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। इसी तरह साल 2018 में आई सरकार में विजय सुंदर रामास्वामी नाम के एक एनआरआई बिजनेसमैन के किरदार में नमूदार होते हैं। जो वोट डालने भारत आता है तो पता चलता है कि उसका वोट पहले ही पड़ चुका है। सुंदर रामास्वामी के किरदार में विजय चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते देखे जा सकते हैं। साल 2021 में आई मास्टर में जोसफ विजय लोकेश कनगराज के ऐसे किरदार में हैं जो विजय सेतुपति नाम के खतरनाक गैंगस्टर के खिलाफ मोर्चा खोलता है और बच्चों को उसके अत्याचार से मुक्त कराता है। साल 2023 में आई लियो में विजय पार्थिवन की भूमिका में हैं, जो हिमाचल प्रदेश में कैफे चलाता है और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू करता है। लियो ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड वाइड 623 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। कमाल देखिए कि सियासी अखाड़े में उतरने से करीब एक दशक पहले से जोसफ विजय सोशल कॉज पर फिल्में बनाने लगे थे। 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कड़गम नाम से राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी सफर पर विराम लगाने का ऐलान भी कर दिया। 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उनकी आखिरी रिलीज फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। हालांकि उनकी एक और फिल्म जननायकन रिलीज को तैयार है, पर गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर विजय ने जब उम्मीदवार उतारे तो चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़ी उनकी फिल्मों के क्लिपिंग्स का जमकर इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि विजय ने पहले रोमांटिक हीरो के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, उसके बाद एक्शन हीरो के तौर पर जबरदस्त स्टारडम हासिल किया और राजनीति में कदम रखने से पहले एक दशक तक ऐसी फिल्में बनाई जिससे उनकी छवि जननायक वाली बन गई। इस लंबी रणनीतिक सूझबूझ का नतीजा ये है कि अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने सूबे में 60 साल से अंगद पांव जमाए बैठी द्रमुक राजनीति का सफाया कर दिया।
2: तो बंदे में दम में आज आपने थलापति विजय के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffeehouse Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffeehouse favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffeehouse or ask your device to play Coffeehouse on TuneIn.

0: क्या है मां की महिमा? माता का आपके किन ग्रहों और राशियों से संबंध होता है? माता के साथ अपने संबंधों को कैसे सुधारें और माता के जीवन को किन उपायों से बेहतर करें? मदर्स डे पर जानिए माता के आशीर्वाद और कृपा पाने के उपाय सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
0: क्या है माँ की महिमा? माता का आपके किन ग्रहों और राशियों से संबंध होता है? माता के साथ अपने संबंधों को कैसे सुधारें और माता के जीवन को किन उपायों से बेहतर करें? मदर्स डे पर जानिए माता के आशीर्वाद और कृपा पाने के उपाय सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में कल ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर होगा कार्यक्रम। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत अचल। अत्याधुनिक तोपों से लैस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार। आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया कदम। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण। MIRV तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बनाया निशाना। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां। मंदिर के पास ही आसमान में एयर शो का रिहर्सल सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाई करता। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए 256 करोड़ रुपए। आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी। भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित मेला करना लक्ष्य। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी नोरा फतेही। कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नोरा फतेही।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
6: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे दर्शन। बद्रीनाथ धाम में लगा आस्था का मेला, वीकेंड पर जबरदस्त भीड़। श्रद्धालुओं को मिल रहा मौसम का साथ, सुहाने मौसम में भक्तों के लिए दर्शन आसान। केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, अब तक करीब 4.5 लाख लोगों ने किए दर्शन। बर्फबारी के बाद सुहाने मौसम में चार धाम में एक बार फिर बढ़ने लगी भक्तों की संख्या, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी आस्था का मेला। सोमनाथ अमृत महोत्सव की तैयारियां तेज, 11 मई को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पूरे होंगे 75 साल। सोमनाथ में एयर शो का भी हुआ रिहर्सल, आसमान में सूर्य किरण, एरोबैटिक टीम ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। शानदार हवाई करतबों से गूंज उठा सोमनाथ का आसमान, स्थानीय लोगों में काफी उत्साह। अमृत महोत्सव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, डिप्टी सीएम हर्ष सांगवे ने लिया जायजा। 11 मई 1951 को हुआ था सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण, अमृत महोत्सव के मौके पर हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर के शिखर पर की जाएगी पुष्प वर्षा। 11 मई को गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोमनाथ अमृत महोत्सव में लेंगे हिस्सा। कल तेलंगाना और कर्नाटक जाएंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के समारोह में लेंगे हिस्सा, ध्यान मंदिर का करेंगे उद्घाटन। हैदराबाद को पीएम मोदी देंगे 9,400 करोड़ रुपए की सौगात, तेलंगाना और कर्नाटक के बीच यात्रा का समय 1.5 घंटा हो जाएगा कब। पीएम मोदी हैदराबाद में कैंसर के इलाज के लिए सिंधु अस्पताल राष्ट्र को करेंगे समर्पित, अस्पताल में हो सकेंगे कैंसर का इलाज। प्रयागराज के लाल का कमाल, भारतीय सेना के लिए तैयार कर रहे स्वदेशी लड़ाकू वाहन। यश श्रीवास्तव ने चुनी मेक इन इंडिया की राह, यूके से पढ़ाई कर लौटे स्वदेश। प्रयागराज के इंजीनियर ने सेना के लिए बनाया भैरव वाहन, स्टार्टअप ने किया निर्माण। अयोध्या में की डाका वॉर ट्रैक्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना, भैरव की 6 यूनिट आगरा स्थित पैरा ब्रिगेड में शामिल। पिछले 3 सालों में कंपनी भारतीय सेना को लगभग 5 करोड़ रुपए के ऑर्डर कर चुकी है, सप्लाई पाइपलाइन में है 10 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स। डीआरडीओ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज, एमआईआरवी तकनीक से लैस एडवांस अग्नि मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण। ओडिशा के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च की गई मिसाइल, एक साथ कई अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है ये मिसाइल। भारत लगातार बढ़ा रहा अपनी सैन्य क्षमता, कई पेलोड्स के साथ किया गया अग्नि मिसाइल का उड़ान परीक्षण। कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंच गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के सम्मान में आयोजित अभिमान उत्सव में लिया हिस्सा। शिरडी के साई दरबार पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, परिवार के साथ किए दर्शन। कोस्टगार्ड के बेड़े में शामिल हुआ अचल, समुद्री सुरक्षा होगी और भी अभेद्य। तिरुमला पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, परिवार के साथ किए तिरुपति बालाजी के दर्शन। 5 प्रदेशों के चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद किए तिरुपति बालाजी के दर्शन, ज्ञानेश कुमार ने 5 प्रदेशों के मतदाताओं का जताया आभार। कोलकाता के भारत सेवा आश्रम संघ पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी, सन्यासियों से की खास मुलाकात। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने संघ के संस्थापक को अर्पित किए पुष्प, मानवता की सेवा के लिए संघ के कार्यों की प्रशंसा की। पुदुचेरी के कराईकल पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार, तिरुनिलार मंदिर में की पूजा अर्चना। डी के शिव कुमार ने उतारी भगवान शनिदेव की आरती, मंदिर प्रशासन ने किया स्वागत। फीफा की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी नोरा फतेही। 12 जून को कनाडा के टोरंटो में होगी सेरेमनी। नोरा फीफा वर्ल्ड कप 2022 की क्लोजिंग सेरेमनी और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में कर चुकी है परफॉर्म। ऐसा करने वाली इकलौती बॉलीवुड कलाकार है नोरा फतेही। सिंगर कैटी पेरी भी फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में करेंगे परफॉर्म। अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगी ये सेरेमनी। धर्मशाला पहुंची दिल्ली कैपिटल्स की टीम, सोमवार को खेलेगी आईपीएल का मुकाबला। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए 256 करोड़ रुपए। आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी। भव्य सुरक्षित और व्यवस्थित मेला करना लक्ष्य। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में सोमवार और मंगलवार को बिगड़ेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ के चलते गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। दक्षिण भारत में मौसम हुआ सुहाना, चेन्नई में हुई झमाझम बारिश। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, माथा टेक कर मां का लिया आशीर्वाद, परिवार के सदस्य भी साथ में रहे मौजूद। वाराणसी में गंगा तट पर सजी सांझ प्रणामी संगीतांजलि, शास्त्रीय गायिका पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी की जयंती पर आयोजित, मालिनी अवस्थी सहित कई बड़ी हस्तियां रही मौजूद। अगस्त से भारतीय रेलवे 40 साल पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम को बदलकर लागू करेगा नया सिस्टम, टिकटिंग और रिजर्वेशन में भी होगा बदलाव। यूपी के पीलीभीत में तेंदुए के हमले के बाद गांव वालों ने दिखाई दिलेरी, तेंदुए को घेर कर बांधा, बाद में वन विभाग ने जंगल में छोड़ा। प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रकृतिवादी और ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबरो ने मनाया 100वां जन्मदिन, पिकैडिली सर्कस में विशेष लाइट शो से दी गई शुभकामनाएं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एनएस राजा सुब्रमणि होंगे देश के नए सीडीएस, मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान की लेंगे चौका। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन होंगे देश के नए नौसेना प्रमुख, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ हैं वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। संगम नगरी प्रयागराज के युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर की सौगात, नगर निगम ने यमुना नदी में शुरू किया एडवेंचर स्पोर्ट्स। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 250 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया वाटर स्पोर्ट्स, नगर निगम प्रयागराज ने यमुना रिवर बैंक बोट क्लब पर वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का किया आगाज। वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रयागराज के लोगों को अब दूसरे शहरों का नहीं करना होगा रुख, दूसरे शहरों के युवाओं को भी मिलेगा वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने का मौका। एक रुपए में खाना खिलाकर सैकड़ों गरीबों का सहारा बना गाजियाबाद का एक दंपति, कोरोना महामारी के समय शुरू किया था लोगों को खाना खिलाने का नेक काम। पिछले 4.5 साल से रोजाना लोगों को 1 रुपए में खाना खिलाते हैं गाजियाबाद के पंडित गोपाल पुजारी, अब 800 से ज्यादा लोगों को खिलाते हैं 1 रुपए में खाना। 1 रुपए की थाली में मिलती है रोटी सब्जी चावल दाल और मिठाई, रोज बदलता है खाने का मेन्यू, 1 रुपए लेने के पीछे स्वाभिमान को सम्मान देना है मकसद। गरीबों जरूरतमंदों के लिए बड़ा सहारा है पंडित गोपाल पुजारी की ये रसोई, गोपाल ने बताया धीरे धीरे मिशन से जुड़ रहे हैं बहुत से लोग, रोज दे जाते हैं जरूरी चीजें, लोगों का पेट भरने के साथ साथ समाज सेवा और इंसानियत का संदेश देना इस मुहिम का मकसद। साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 का धमाकेदार ट्रेलर आउट, फिल्म ने प्री सेल्स में की रिकॉर्ड कमाई, अभी से ही बिक रहे ताबड़तोड़ टिकट, फिल्म 21 मई को थिएटर्स में देगी दस्तक। हॉलीवुड में डेब्यू करने को तैयार एक्ट्रेस दिशा पाटनी, एक्शन से भरपूर फिल्म द पोर्टल ऑफ फोर्स का ट्रेलर लॉन्च, दिशा पाटनी ने अपने अनुभव किए शेयर। उत्तराखंड की वादियों में पहुंचे एक्टर और डांसर राघव जुयाल, पहाड़ों की ठंडी हवाओं का ले रहे हैं आनंद, प्रकृति के बीच अपनों के साथ बिता रहे क्वालिटी टाइम, सोशल मीडिया पर परिवार संग शेयर किया वीडियो। 25 साल बाद साथ हाई लगान की जोड़ी, आमिर खान और आशुतोष गवारिकर ने तैयार किया बड़ा सरप्राइज, स्क्रिप्ट पर बात फाइनल, स्पोर्ट्स ड्रामा बायोपिक पर दोनों करने जा रहे हैं काम। जल्द आएगा इंडियाज गॉट टैलेंट 2, समय रैना ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट कर दी जानकारी, इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतजार। 37 साल के हुए साउथ सुपरस्टार विजय देवाकोंडा शादी के बाद मना रहे अपना पहला बर्थडे, फैंस का स्वीकार किया अभिवादन। एक्टर विजय देवाकोंडा के जन्मदिन पर आई गुड न्यूज, अपकमिंग फिल्म रणवाली की रिलीज डेट रिफील, 11 सितंबर को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। बड़े भाई विजय देवरकोंडा को एक्टर आनंद देवरकोंडा ने खास अंदाज में दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। विजय रश्मिका की शादी की रस्मों का वीडियो शेयर कर किया बर्थडे विश, कहा बड़े भाई ये साल मेरे लिए यादगार। अभिनेता विजय देवरकोंडा ने अपने फैंस के साथ मनाया अपना बर्थडे, घर के बाहर फैंस का दिखा सैलाब। विजय देवरकोंडा ने काटा केक, फैंस का किया शुक्रिया। आस्था और भावनाओं से भरपूर फिल्म कृष्णा और चिट्ठी का ट्रेलर आउट, अरुण गोविर और दशील सफारी मुख्य भूमिकाओं में। नीता अंबानी और ईशा अंबानी ने वेनिस में किया NMACC डिनर होस्ट, नीता अंबानी की कला यात्रा को सराहा गया, शास्त्रीय नृत्य के प्रति उनके जुनून का किया गया जिक्र। 61वें वेनिस बिएनाले में भारत की सांस्कृतिक मौजूदगी पर फोकस, दुनिया भर के कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियां हुई इसमें शामिल, ज्योग्राफीज ऑफ डिस्टेंस रिमेम्बरिंग होम प्रदर्शनी बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। वेनिस में बेहद रॉयल अंदाज में दिखी नीता अंबानी, NMACC डिनर में भारत की कारीगरी का दिखा जलवा, स्वदेश की बनारसी

कॉमिक बुक का अनावरण मंच पर सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया और एकता कपूर समेत कई हस्तियां पहुंची। बहुप्रतीक्षित फिल्म वन द फोर्स ऑफ फॉरेस्ट के लिए भी की भव्य एंट्री। निर्माताओं ने बदली फिल्म राव बहादुर के लिए रिलीज डेट, 3 जुलाई को फिल्म थिएटर्स में देगी दस्तक, पहले 5 जून की रिलीज डेट। मच अवेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर है राव बहादुर। पॉप गायक और बॉलीवुड सिंगर बादशाह का एक और धमाकेदार सॉन्ग हुआ रिलीज, गाने पर डांस भी करते दिखे बादशाह, सोशल मीडिया पर मचा रहा काफी धमाल, फैंस कर रहे काफी पसंद। विदेशों में अपनी ओरा टूर 2026 में गीतों से जलवा बिखेर रहे गायक दिलजीत दोसांझ, कॉन्सर्ट में उमड़ रही काफी भीड़, दिलजीत ने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया शेयर। पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म भोगी 28 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक, 11 मई को ट्रेलर होगा जारी, शारवानंद, अनुपम परमेश्वरम, डिम्पल हयाती फिल्म आएंगे नजर। थिएटर्स में फिर चलेगा तारा सकीना का जादू, एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने गदर थ्री पर दिया बड़ा अपडेट, बोली पहले से दोगुना होगा एक्शन, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाएगी ये फिल्म। रूस में विजय दिवस परेड का जश्न, जमीन से लेकर आसमान तक दिखा शौर्य और पराक्रम का नजारा। आसमान में गरज रहे फाइटर जेट, सीज फायर के बावजूद मॉस्को में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर कदम ताल मिलाते नजर आए जवान, पहली बार बना टैंक और मिसाइलों की निकली विजय परेड। रूस की विक्ट्री परेड में कई देशों के नेताओं ने की शिरकत, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और स्लोवाकिया के नेता रहे शामिल। क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन ने विदेशी नेताओं की मेजबानी की, पूरे उत्साह के साथ किया गया विरासत का सम्मान। केपॉप बैंड बीटीएस का मेक्सिको सिटी में ऐतिहासिक कॉन्सर्ट, खचाखच भरे स्टेडियम में शानदार गीतों से बांधा समा, फैंस की उमड़ी भी। डायनामाइट की धुन पर झूम उठा मेक्सिको सिटी, बीटीएस के हर मूव पर फैंस जोरदार शेयर करते नजर आए, बैंड ने किया फैंस का अभिवादन। एंट्री होते ही स्टेडियम तालियों और चीखों से गूंज उठा, आतिशबाजी और लाइट शो ने कॉन्सर्ट को बनाया यादगार। मेक्सिको में के पॉप क्रेज एक बार फिर से साफ नजर आया, फैंस ने मोबाइल फ्लैश लाइट से पूरा स्टेडियम किया रोशन, बीटीएस ने मन से कहा थैंक यू वी लव यू। बीटीएस का ये मेक्सिको सिटी में चौथा बड़ा शो रहा, रविवार को बीटीएस मेक्सिको में करेगा अपना आखिरी शो, सुपर सैंडी होगा बीटीएस का कॉन्सर्ट। चीन के सुझो शहर में सबसे बड़ा एआई सर्विस प्लेटफॉर्म किया गया लॉन्च, नया एआई प्लेटफॉर्म मोमा 300 से ज्यादा एआई मॉडल्स को जोड़ता है। टेक प्रदर्शनी के दौरान लॉन्च हुआ एआई सर्विस प्लेटफॉर्म मोमा खुद तय करेगा कौन सा एआई मॉडल सबसे बेहतर है। एआई सर्विस प्लेटफॉर्म में लागत, परफॉर्मेंस और बैलेंस मोड दिए गए हैं, प्रदर्शनी में एआई मॉडल्स को कंटेंट बनाते दिखाया गया। मरीना अब्रामोविक ने वेनिस में नई इमर्सिव प्रदर्शनी लॉन्च की, वेनिस में दिखा कला और अनुभव का अनोखा संगम, प्रदर्शनी में दर्शकों को मिला कला का हिस्सा बनने का मौका। प्रदर्शनी में प्लास्टर की हड्डियों का विशाल इंस्टॉलेशन बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, प्रिंसिपल इंस्टॉलेशन के नीचे लेटे दर्शकों ने अनोखा अनुभव किया, कलाकारों ने परफॉर्मेंस आर्ट को जीवित कला बताया। हॉलीवुड की सबसे मशहूर हस्तियों में से एक दिवंगत मॉडल और फिल्म स्टार मर्लिन मुनरो से जुड़ी कई चीजों के होंगे नीलाम। बिक्री के लिए रखी गई मर्लिन मुनरो से जुड़ी वस्तुओं में उनके कपड़े, गहने, चिट्ठियां, हाथ से लिखे नोट्स, पेंटिंग्स और कविताओं के कुछ अंश शामिल। मर्लिन मुनरो के 100वें जन्मदिन पर 1 जून को होगी नीलामी, नीलामी में मुनरो से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज भी शामिल हैं जो पहले कभी भी नहीं देखे गए हैं। 1926 में लॉस एंजलिस में जन्मे मर्लिन मुनरो मशहूर अभिनेत्री, मॉडल, गायिका थी। मर्लिन मुनरो ने 1962 में दुनिया को कहा था अलविदा। हेरिटेज ऑक्शन के पूर्वावलोकन के दौरान हॉलीवुड और मनोरंजन के वरिष्ठ निदेशक ब्रायन चेंस ने मर्लिन को बताया सच्ची आइकन, कहा लोगों ने आज भी करते हैं प्यार। चीन में पूरी तरह से ऑटोमेटिक चार्जिंग और ऑटोनोमस ऑपरेशन सिस्टम का किया गया अनावरण।

0: ऑटोनोमस गाड़ियों के लिए मिलेगा पूरी तरह अनमैन क्लोज्ड लूप प्रोसेस, चार्जिंग रोबोट, पार्किंग रोबोट और एआई एजेंट को एक साथ जोड़ेगा ये सिस्टम। ऑटोमेटिक चार्जिंग रोबोट से लैस है ये सिस्टम, गाड़ियों के अलग अलग मॉडलों के साथ काम करने के लिए इसे किया गया है डिजाइन। सऊदी किंग्स कप के फाइनल टीम में अल हिलाल ने अल खुलूल को 2-1 से दी मात, जीत के साथ ही कोच सिमोन इंजागी को क्लब के साथ मिली अपनी पहली ट्रॉफी। अब इंजागी की टीम का पूरा ध्यान सऊदी प्रो लीग पर, लीग में अभी लीडर अल नासर से 5 पॉइंट पीछे अल हिलाल टीम, दोनों टीमों में 12 मई को होगा मुकाबला।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Shop the Sherwin-Williams sale and get 30% off Duration, Woodscapes, and SuperDeck products May 1st through the 11th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। चारधाम तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं का जोश बढ़ता ही जा रहा है। केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो वहां पर 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर चुके हैं। रोजाना करीब 25,000 लोग केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। प्रशासन की कोशिश यही है कि श्रद्धालुओं को पूरी यात्रा के दौरान शिकायत का कोई भी मौका ना मिले।

0: देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों हर तरफ आस्था के अद्भुत रंग बिखरे हैं। चारधाम यात्रा में दूर दूर से आए भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालु केदारनाथ धाम के साथ बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आस्था केदारनाथ धाम में उमड़ रही है। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुले थे, तब से लेकर अब तक 4,00,000 से ज्यादा शिव भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। रोजाना करीब 25,000 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर पर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा में शामिल भक्तों को कई बार मौसम की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कभी बर्फबारी तो कभी बारिश यात्रा की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है।
1: अनुभव हर बार ही बहुत अच्छा होता है। पिछली बार 1-1.5 साल पहले आई थी मैं यहाँ, पर उस बार हम लाइन में ही लगे रह गए थे और मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पे आकर यहाँ की एनर्जी फील करूँ, मेडिटेट करूँ। वो तो यहाँ आकर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है।
2: बाकी व्यवस्था सारी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, रोड्स वगैरह सारी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, ऊपर बद्रीनाथ धाम पे भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड था।
3: वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत ठंडा है केदारनाथ में, तो बहुत अच्छा है। 12 डेज का यात्रा है, वेरी गुड, वेरी नाइस।
0: केदारनाथ धाम आए श्रद्धालुओं को यात्रा और दर्शन में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैदी से काम कर रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के साथ साथ पूरे यात्रा मार्ग पर साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। सफाई से जुड़ी किसी भी शिकायत पर प्रशासन फौरन कार्रवाई कर रहा है।
4: पिछले कई दिनों में कुछ प्रकरण इस तरीके के संज्ञान में आए हैं। इस संदर्भ में जो हमारी निर्माण जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं, जैसे कि सुलभ इंटरनेशनल, नगर पंचायत और जो हमारे ग्रामीण संस्थाएं जिला पंचायत हैं, इनको निर्देशित किया गया है। हमारे सेक्टर ऑफिसर्स इनका रैंडम इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, चाहे वो टॉयलेट्स का हो चाहे रूट का हो, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कंसर्न डिपार्टमेंट को या जो हमारा मॉनिटरिंग रूम है वहाँ से कंट्रोल रूम से फ़ोन भी कराया जा रहा है और उसका कंप्लायंस भी लिया जा रहा है। क्योंकि प्रतिदिन हमारे पास काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, तो सफाई हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे 300 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो पूरे रूट पर साफ सफाई कर रहे हैं और हम लोग उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं।
0: देवभूमि में इन दिनों आस्था चरम पर है। केदारनाथ धाम से लेकर बद्रीनाथ धाम तक और गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री तक हर जगह श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन हर मुमकिन प्रयास में जुटा है। प्रशासन की कोशिश यही है कि चार धाम यात्रा पर आए हर श्रद्धालु को पूरी सहूलियत के साथ भगवान के दर्शन हो और किसी भी श्रद्धालु को यात्रा के दौरान कोई दिक्कत न हो। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: Sage University, transforming your passion into profession.
10: बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में कल ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन, आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम।

प्रति घंटा है रफ्तार, आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया कदम। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण, एमआईआरवी तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बनाया निशाना।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज का ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि ये एपिसोड है माँ के लिए, मदर्स डे स्पेशल। जी हाँ, 10 मई माँ का दिवस है जिसे हम मना रहे हैं और इस पर हम पंडित जी से विस्तार से करेंगे चर्चा और उनसे जानेंगे कि माँ के साथ हमारे संबंध और बेहतर कैसे हो सकते हैं और माँ की सेहत को अच्छा रखने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर किसी भी तरह की मानसिक समस्या है, किसी भी तरह की मानसिक चिंता आपको रहती है, तनाव रहता है, तो अपनी माता के हाथ से एक चांदी का सिक्का ले लें, किसी सोमवार को या पूर्णिमा को ले लें और इसको ले करके अपने पास रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मानसिक चिंता दूर होगी, मन मजबूत होगा, मानसिक स्थिति में सुधार होगा।
0: और आइए अब जान लेते हैं 10 मई 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 10 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 3:06 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:12 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि हमारे जीवन में माँ का महत्व क्या है।
1: देखिए, मातृ दिवस के अवसर पर, मदर्स डे के मौके पर आज हम बात कर रहे हैं माँ के बारे में। माँ की महिमा क्या है, ईश्वर के साथ माता का संबंध क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी का निर्माण किया और जब नारी या स्त्री अपनी शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है तो उसको माँ कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और करुणामयी सत्ता जो आपके सबसे ज्यादा निकट है, जिसको ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, वो माँ है। इसीलिए आप देखिए कि माँ के साथ बच्चे की निकटता चूंकि ज्यादा होती है, इसीलिए भक्त ईश्वर की पूजा माँ के रूप में भी करते हैं। वैसे तो भगवान के रूप में भी ईश्वर की पूजा होती है, लेकिन एक बच्चा अपनी माँ के जितना निकट होता है, अपनी माँ से जितनी बातें कह पाता है, उतना किसी और से नहीं कह पाता। इसीलिए भक्त ईश्वर को माँ के रूप में पुकारते हैं और जब मां के रूप में ईश्वर को पुकारते हैं तो ईश्वर की निकटता का जल्दी अनुभव होता है। जो देवी की साधना है, जो देवी के भक्त देवी की पूजा करते हैं, उनको देवी की निकटता का अनुभव बहुत जल्दी होता है। और जब व्यक्ति ईश्वर को मां के रूप में पूजता है, देवी के रूप में पूजता है, तो कृपा तो मिलती ही है, आशीर्वाद तो मिलता ही है, लेकिन ईश्वर का दुलार और प्यार ज्यादा मिलता है। आप देवता की पूजा करें, आप भगवान की पूजा करें, उसमें दुलार और प्रेम का पार्ट वो नहीं होगा जो देवी की पूजा में होगा। कारण उसका ये है कि देवी के साथ जो अटैचमेंट है वो माँ के रूप में है, और माँ के रूप में जब भी आप किसी से जुड़ेंगे आपको ज्यादा प्यार मिलेगा, ज्यादा अपनत्व मिलेगा।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं हल होंगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतान की चिंता हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
0: और आइए अब जानते हैं ज्योतिष में माँ का संबंध किन ग्रहों और राशियों से होता है।
1: देखिए, ज्योतिष में हर रिश्ते का किसी न किसी ग्रह के साथ, किसी न किसी राशि के साथ संबंध होता है। तो मां का संबंध किस ग्रह से है, किस राशि से है? देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को माता का कारक मानते हैं, यानी आपके कुंडली का जो चंद्रमा है वो दरअसल आपके जीवन में माता की स्थिति है। कुछ अंशों में शुक्र का संबंध भी वात्सल्य से होता है। शुक्र ममता का, प्यार और दुलार का स्वामी है। कर्क राशि और चतुर्थ भाव, इसका संबंध भी माता के साथ माना जाता है। कर्क राशि प्रेम की, ममता की, भावना की राशि है और कुंडली का चतुर्थ भाव और उसका स्वामी ये माता से संबंध रखते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा, इन तीनों को मिला करके आप माता की स्थिति देख सकते हैं कि माता का जीवन कैसा रहेगा, माता का जीवन में सपोर्ट कितना मिलेगा, आपके माता के स्वास्थ्य की, जिंदगी की स्थिति कैसी रहेगी। वैसे एक लाइन में प्राइमा फेसी, अगर आप कुंडली में चंद्रमा को देखें, चंद्रमा जरा भी डिस्टर्ब दिख रहा है या चंद्रमा की स्थिति जरा भी निगेटिव है तो मां की स्थिति भी निगेटिव होगी। चंद्रमा लगभग मोटे तौर पे तुरंत बता देता है कि आपके जीवन में आपके माता की स्थिति क्या है।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का।
1: कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, सर्दी जुकाम से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और पंडित जी द्वारा दिए जाने वाले उनके जवाबों का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न विजय देवनाथ जी ने हमें लिखा है, कोलकाता पश्चिम बंगाल से मेल लिखते हैं। 16 अगस्त 1982 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 8:50। जन्म का स्थान है नदिया, पश्चिम बंगाल। विजय कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति मेरी बहुत अच्छी नहीं है और बहुत ज्यादा कर्ज भी मेरे ऊपर हो गया है, तो मेरी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी और कर्ज से छुटकारा कब तक मिलेगा। विजय जी, आपकी कुंडली में आने वाला समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका व्यापार, आपका काम आने वाले समय में अच्छा चलेगा और फरवरी 2027 के बाद आपके जीवन में सुधार होने लगेगा, तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में आप काम भी अच्छा कर पाएंगे और 2027 में कर्जा भी उतार पाएंगे। अगर अफोर्ड कर सकें तो एक पन्ना या एक ओनिक्स बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार अगर संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपके जीवन में कोई परेशानी है और आप पंडित जी से चाहते हैं कि वो उसका समाधान करें, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है और अब वक्त हो गया है हमारे आज के दूसरे सवाल का। तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल, वो किसका ले रहे हैं।
1: अगला प्रश्न दीक्षा ने हमें लिखा है। दीक्षा हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। 19 जनवरी 1986 का जन्म है। जन्म का समय है रात में 8:55। जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश, और मेल लिखती हैं बेंगलोर से। दीक्षा कह रही हैं कि मेरी नौकरी में बहुत समस्याएं चल रही हैं और मैं नौकरी अपनी बदलना चाहती हूं, तो मेरी नौकरी कब तक बदल पाएगी और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। दीक्षा, ग्रहों के हिसाब से आप अभी अपनी नौकरी बदलने का प्रयास करिए। आपकी नौकरी बदलने का समय चल रहा है और अगर आप ठीक से प्रयास करें तो नवंबर 2026 के पहले आपकी नौकरी बदल जाएगी। आने वाले समय में आपका करियर अच्छा है और स्वास्थ्य को लेकर के जो आप परेशान हैं, आपके स्वास्थ्य की स्थिति भी जून 2026 से बेहतर होती दिखाई दे रही है। एक ओपल बनवा करके पहने, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करिएगा। रोज शाम को शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा, आपको लाभ होगा।
0: और आइए अब जानते हैं माता के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
1: देखिए, बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि माता के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं या माता के साथ रिश्तों में, संबंधों में दूरियां आ जाती हैं। अगर आपके और आपके माता के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं या माता के साथ रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, तो क्या उपाय किया जाएगा? 15 दिन महीने में शुक्ल पक्ष होता है, जिसको आप उजाली रात भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष की रात को 15 दिनों तक हर महीने में चंद्रमा को अर्घ दीजिए, चंद्रमा को जल दीजिए और प्रार्थना करिए कि आपके रिश्ते आपकी माता के साथ बेहतर हों। रोज रात में चंद्रमा के मंत्र का जप करें, रोज, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो। दो मंत्र हैं चंद्रमा के, ओम सोम सोमाय नमः और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का रोज रात को जप करिए 108 बार। सोमवार को एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए और साथ में शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद प्रार्थना करिएगा कि आपके रिश्ते, आपका संबंध आपकी माता के साथ बेहतर हो जाए। आपकी कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो आपके माता की स्थिति है, इसलिए चतुर्थ भाव को मजबूत करिए। चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह का रत्न पहनिए या जरूरत के अनुसार चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह के मंत्र का जप करिए। सोमवार को सफेद वस्तु का दान करें। अगर आपके रिश्ते माता के साथ बहुत ज्यादा निगेटिव हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं, तमाम प्रयास करने के बावजूद माता के साथ रिश्ते बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, तो हर सोमवार को चावल या चीनी या दूध, इसका किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए और दान करते समय मन में ये प्रार्थना करिए कि मेरा संबंध मेरी माता के साथ बेहतर हो जाए। अगर आप ये उपाय निरंतर करते जाएं, 1 से 3 महीने के अंदर आपका रिश्ता आपकी माता के साथ बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
0: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, धन के खर्चों पर ध्यान रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम में सफलता मिलेगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब जानते हैं, अगर चंद्रमा के खराब होने की वजह से मां को कष्ट हो रहा है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए।
1: देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा खराब होगा तो निश्चित रूप से उसकी माता को शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ेगा। तो अगर चंद्रमा के खराब होने की वजह से आपकी माता को शारीरिक मानसिक कष्ट हो रहा है तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करिए और शिव जी को जल चढ़ाइए, प्रार्थना करिए और इसके बाद जितना हो सके अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय का जप करिएगा। और ओम नमः शिवाय का जप करने के बाद प्रार्थना करिएगा कि माता के कष्ट कम हो और आपके मंत्र जप करने का फल आपकी माता को प्राप्त हो। सोमवार को जब आप पूजा कर लें शिव जी की, जब आप मंत्र जप कर लें, तब निर्धनों में सफेद मिठाई या खीर बांटिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा हर सोमवार को करिएगा। प्रातः काल कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर सोमवार को संध्या काल में ये उपाय जरूर करिएगा। जिनका चंद्रमा खराब हो ऐसे लोगों को मोटी सोच समझ कर पहनना चाहिए, क्योंकि अगर इनको मोटी पहना दी गई, चंद्रमा खराब है तो खुद को तो नुकसान होगा ही, स्वयं का मेंटल टेंशन बढ़ेगा, स्वयं का तनाव बढ़ेगा। और अगर आपका चंद्र खराब है, आपने मोती पहनी, तो इसका बुरा असर आपकी माता के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसीलिए जिनका चंद्रमा खराब है वो कृपा करके मोती पहनने में सावधानी रखें। अगर आपके खराब चंद्रमा की वजह से आपकी माता के स्वास्थ्य में, उनके शरीर में, उनकी मानसिक स्थिति में दिक्कतें बनी रहती हैं, तो आप निरंतर शिव जी की पूजा करिएगा। सोमवार को सफेद चीज का दान करिएगा और इसके अलावा एक बड़ा विशेष उपाय है, महीने में एक दिन पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। और उपवास रख करके ये प्रार्थना करिएगा कि आपके पूर्णिमा के उपवास का फल आपकी माता को प्राप्त हो। अगर आप ऐसा निरंतर नियमित रूप से करें तो आपकी माता का कष्ट कम होगा।
0: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल।
1: मकर राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, मानसिक समस्या आपकी हल होगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, दोपहर के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और गुड लक में वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा प्रश्न, वो कहां से और किसका ले रहे हैं
1: जी। अगला प्रश्न सुचित्रा जी ने हमें लिखा है और सुचित्रा जी हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। इनके बेटे की जन्म की तारीख है 23 नवंबर 2002, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म का स्थान है जयपुर। सुचित्रा जी कह रही हैं कि मेरा बेटा आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है, क्या उसको विदेश भेजना उचित होगा और उसका करियर कैसा रहेगा। सुचित्रा जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से मैं इनको विदेश जाने की कोई सलाह नहीं दूंगा। अगर हालात ठीक रहते हैं तो 2028 के बाद इनको नौकरी करने के लिए विदेश की सलाह दी जा सकती है। अभी जो ये मैनेजमेंट करना चाहते हैं अगर वो इंडिया से ही करें तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। गलत संगति में ना पड़े, कोई भटकाव ना हो, नशे आदि के शिकार ना हो, इसका थोड़ा ध्यान बनाए रखना होगा। आप अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको धारण करवाएं और आप इनकी माता जी हैं, अपने बच्चे के लिए सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा।
0: और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम प्रश्न पर। जब पंडित जी आज का अंतिम और चौथा प्रश्न लेंगे तो पंडित जी आज का चौथा प्रश्न आप किसका लेने वाले हैं
1: जी? आज का अंतिम प्रश्न मालविका जी ने हमें लिखा है और मालविका जी इंदौर मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मई 1980, जन्म का समय शाम के 6:30, जन्म का स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़। मेल लिखती हैं इंदौर से, ये कह रही हैं कि मैं अपना शिक्षा का एजुकेशन का काम करती हूं लेकिन कुछ दिनों से मेरा काम बेहतर नहीं चल रहा है, तो क्या मुझे अपना सेक्टर बदलना चाहिए या इसी क्षेत्र में मैं अच्छा काम कर पाऊंगी और काम को बेहतर कैसे करूं? मालविका जी, आपके लिए एजुकेशन का जो फील्ड है, शिक्षा का जो क्षेत्र है, वो बिल्कुल बढ़िया है और अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश करेंगी तो बहुत अच्छा काम आगे कर पाएंगी और हो सकता है कि आगे चल करके आप अपनी कोई संस्था खोलें, अपना कोई विद्यालय बनाएं, ये संभावना भी आपके लिए बन रही है। आपके करियर का बेहतर समय अगस्त 2026 के बाद दिख रहा है, इसके बाद आपके काम में सुधार होने की संभावना बन रही है। एक पीला पुखराज लगभग 5 से 6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करें। दूसरा काम करें, रोज सुबह और शाम कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: जिनका जन्मदिन 10 मई 2026 को आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 10 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर अच्छा बना रहेगा, धन और कर्ज की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं, अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है, यानी ये वर्ष हर मामले में आपके लिए बेहतर है।
0: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर
1: मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो

0: से सुनने को मिल जाओ, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a tank. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena, ESPN Radio.
5: How they looked after game one.
6: I mean, they were frustrated.
4: The Daily.
7: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
4: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
8: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: अच्छी खबर
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
9: बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आज ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन, आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत अचल। अत्याधुनिक तोपों से लैस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार। आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया कदम। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण। एमआईआरवी तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बनाया निशान। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां। मंदिर के पास ही आसमान में एयर शो का रहस्य सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाई करता। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए 256 करोड़ रुपए। आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी। भव्य सुरक्षित और व्यवस्थित मेला कराना लक्ष्य। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे नोरा फतेही। कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नोरा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। तो देखिए, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही जो चीज सबसे पहले हमारे जहन में आती है, हमारे दिमाग में आती है, वो या तो सूरज की तपिश है या फिर मीठे और रसीले आम है जिनकी खुशबू और मिठास का हर कोई दीवाना है। देखिये, दशहरे की बेमिसाल खुशबू से लेकर लंगड़े की मिठास तक, मालदा के रसीले स्वाद से लेकर चौसे की लज्जत तक, आम गर्मियों की शान है। या यूं कहें कि नाम भले ही इसका आम है लेकिन स्वाद सिर्फ खास नहीं बल्कि बेहद खास है। आज हम आपको आम की कहानी सुनाएंगे, आम के नामों से जुड़ा इतिहास भी बताएंगे और कैसे फलों का राजा आम कारोबार का भी राजा है ये भी बताएंगे।

हापुस की शाही खुशबू है तो लंगड़े की बेमिसाल मिठास। दशहरे की नजाकत है तो चौसे की लज्जत भी है। मालदा का रसीला स्वाद है तो तोता परी का जुदा अंदाज है। लेकिन ये खास होकर भी आम ही है। अलबत्ता नाम भले ही आम हो लेकिन स्वाद सिर्फ खास नहीं बेहद खास है। गर्मियों का मौसम आम के दीवानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं रहता। तपती गर्मी हो, सूरज की तपिश हो या फिर पसीने से तर बतर दोपहर, अगर इस मौसम में कुछ सुकून देता है तो वो फलों का राजा आम ही तो है। जिसकी बेमिसाल खुशबू और लाजवाब स्वाद जुबान पर मिठास घोल देता है। कहने को तो सबर का फल मीठा ही होता है लेकिन हम तो कहते हैं कि सबर का फल आम होता है क्योंकि आम का नाम आते ही मिठास खुद ही आ जाती है। आम की मिठास और इसकी खुशबू भारतीय जनमानस की रग रग में बसती है। इसे केवल एक फल कहना इसकी गरिमा को कम करने जैसा होगा। आम तो साक्षात अमृत फल है।

की शाखों पर लदे इन आमों को देखिए, ये किसी तोहफे से कम नहीं है। हापुस, लंगड़ा, सिंदूरी, तोता परी, दशहरी और चौसा, आप बस नाम लेते जाइए, जुबान पर लज्जत बढ़ती जाएगी।

इसका नाम भले ही आम हो लेकिन ये कितना खास है उसको बताने की जरूरत नहीं। कविताओं और साहित्य में इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोक गीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है।

0: ये सिर्फ एक फल नहीं, ये बचपन की वो यादें हैं जो आज भी हम और आप अपने दिलों में समेटे हैं। क्योंकि हर आम एक कहानी है और मिठास एक एहसास है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: देखिए, कहते हैं कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन बात जब आम की हो तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में मिलने वाले आमों का जिक्र होना तो लाजमी है। देखिए, महाराष्ट्र के रत्नागिरी का अल्फांजो हो, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद का दशहरी हो, बनारस का चौसा, दक्षिण भारत का बंगनपल्ली या सफेदा, कर्नाटक का बादामी और बंगाल के हिमसागर आम की तो अपनी ही डिमांड है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं।

0: कहने को तो आम की सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन भारत में आम की लगभग 1500 प्रजातियां पनपती हैं, जिनमें से करीब 1000 किस्में आम तौर से खाई और बाजार में बेची जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले हर आम का अपना एक अलग मिजाज, अपना रंग और अपनी एक खास मिठास होती है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर इलाके का अपना एक खास आम है, इसलिए भारत को आमों का देश भी कहा जाता है। दशहरी की बेमिसाल खुशबू, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मशहूर दशहरी आम की। लखनऊ के मलिहाबाद की गलियों में दशहरी की मिठास घुली मिलती है। पतली गुठली और लंबी बनावट वाला ये आम अपनी बेमिसाल मिठास के लिए मशहूर है। लगभग 200 से 300 साल पुराने इतिहास वाले इस आम का नाम काकोरी के पास दशहरी गांव से पड़ा है। सरकार ने भी 200 साल पुराने इस पेड़ को ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। रसीला लंगड़ा आम, वहीं वाराणसी का लंगड़ा आम अपने नाम की तरह ही दिलचस्प है। लंगड़ा नाम सुनते ही पहली बार में अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प मानी जाती है। कहते हैं बनारस के एक मंदिर में रहने वाले एक साधु जो पैरों से दिव्यांग थे, उन्होंने आम के पौधे लगाए थे। जब इन पेड़ों पर फल आए तो उनका स्वाद लोगों को पसंद आया, तभी से ये आम भी मशहूर होते चले गए और आज लंगड़ा आम बनारस ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है।
1: आम की किस्मों में भारत में इतनी अधिक विविधता है जिसको का वर्णन करना आसान नहीं है, लेकिन उतने ही इन आमों के नाम भी रोचक हैं। किसी आम को अलिफ लैला, अगरबत्ती, नाजुक बदन, बेनजीर के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पे कुछ बहुत ही कॉमन नाम भी हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो या हाफुस।
0: आमों का राजा अल्फांसो, महाराष्ट्र के कोंकण तट से आता है अल्फांसो यानी हापूस, जिसे दुनिया भर में आमों का राजा कहा जाता है। इसकी केसरिया रंगत और बेमिसाल स्वाद इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सुपरस्टार बनाता है। रत्नागिरी और देवगढ़ की मिट्टी से निकलने वाले इस आम की खुशबू इतनी तेज होती है कि एक आम पूरे कमरे को महका दे। इसकी कीमत भले ही थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन इसका शाही स्वाद इसे सबसे जुदा बनाता है। चौंसे की मिठास, आम के शौकीनों की पहली पसंद चौंसा आम, बेमिसाल स्वाद और लाजवाब सुगंध। आम तौर से बिहार में पाए जाने वाले इस आम की खेती अब उत्तर प्रदेश में भी जोर शोर से होती है। हालांकि चौंसा की उत्पत्ति बिहार से ही हुई है। कहा जाता है कि बिहार के चौंसा नाम की जगह पर इसकी पैदावार होती थी, जिसकी वजह से इसका नाम चौंसा पड़ा। ये आम की एक ऐसी किस्म है जिसकी फसल देर से तैयार होती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि जब दशहरी और लंगड़ा आम का सीजन खत्म हो जाता है तब चौंसा आम बाजार में आता है।
1: आम फलों का राजा है और भारतवर्ष आम की अपार किस्मों की संपदा के कारण विश्वविख्यात है। देश में 1500 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। कहीं पे लोग दशहरी चौसा को पसंद करते हैं तो कहीं नीलम बंगनापल्ली को। रत्नागिरी और महाराष्ट्र का अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है और इसको बहुत ही अच्छे दाम पर लोग फरवरी के माह में खरीदते हैं। हम देखेंगे,
0: यानी जब बाजार में आमों की तादाद कम होने लगती है तब चौंसा अपनी मिठास खोल देता है और महफिल लूट ले जाता है। दक्षिण और पूर्व का गौरव, दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश का बंगनपल्ली या सफेदा अपनी बड़ी बनावट और मिठास के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का हिमसागर है, देखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका स्वाद इतना मलाईदार है कि इसे मिष्टी दोई के देश का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन माना जाता है। सबसे बड़ा आम नूर जहां, लेकिन आम की दुनिया सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, यहाँ अजूबे भी हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पैदा होने वाला नूर जहां आम उन्हीं में से एक है, जिसके एक आम का वजन 4 किलो तक हो सकता है। मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर का कट्टीवाड़ा अपने झरनों, बारिश और नूर जहां आम के लिए भी जाना जाता है। मौसम और मिट्टी ने इस फल के पनपने के लिए एकदम सही हालात दिए हैं। नूर जहां को दुनिया का सबसे बड़ा आम माना जाता है। ये भारत में आम प्रेमियों के बीच जितना लोकप्रिय है उतना ही दुर्लभ भी है। सबसे महंगा आम, और अगर बात करें दुनिया के सबसे महंगे आम की, तो जापानी नस्ल का मियाज़ाकी अब भारत में भी उगाया जा रहा है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। गर्मियों का मौसम आम के दीवानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होता है। इस मौसम में हम और आप आम का जमकर लुत्फ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: देखिए, गर्मियों की दोपहर हो और जिक्र आम का ना हो तो लगता है जैसे महफिल में रौनक ही ना हो। लेकिन आम का रिश्ता सिर्फ हमारी जुबान से नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास के पन्नों और शायरों के मखमली कलम से भी रहा है। गालिब से लेकर गुलजार तक ने आम की लज्जत को अपनी कविताओं के जरिए शब्दों में पिरोया है। गालिब तो आम के इतने बड़े शौकीन थे, इतने बड़े फैन थे कि वो कहते थे कि आमों में बस दो ही खूबियां होनी चाहिए, एक तो वो मीठे हों और दूसरा वो बहुत सारे हों। उर्दू और हिंदी शायरों में आम को महबूब के मिठास और बचपन की यादों से जोड़कर देखा जाता रहा है। देखिए, इकबाल हो या अमीर खुसरो, हर किसी ने इस फल की तारीफ में कसीदे पढ़ लिखे हैं।

0: मीठा, रसीला और दिलों पर राज करने वाला आम। गर्मियों में लोग भले ही चिलचिलाती धूप और पसीने से परेशान रहते हैं, लेकिन इस मौसम में मिलने वाला आम किसी तोहफे से कम नहीं होता। बच्चे हो या बुजुर्ग, गरीब हो या अमीर, आम हर किसी को खास एहसास कराता है। आम सदियों से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और आज भी इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे पहले आम आम्रफल कहा जाता था। पुराने वैदिक ग्रंथों में इसे रसाला और सहकार नाम से भी जाना जाता था। इन नामों का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक, उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। यानी आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में आम की पैदावार हुई थी, जहां से ये दक्षिण भारत पहुंचा और तमिल में इसे आम काय कहा गया, जो बोलचाल की भाषा में बदलकर धीरे धीरे मामकाय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर मांगा के नाम में बदल दिया। 16वीं सदी में पुर्तगाली कारोबारियों ने आम को अफ्रीका और ब्राजील तक पहुंचाया और धीरे धीरे ये आम फल खास बन गया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इतिहास के हर दौर में इसकी मिठास ने लोगों के दिलों को जोड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भी आम का इंतजार हर गर्मी में उतनी ही बेसब्री से किया जाता है। इतिहास में आम की खास अहमियत रही है। सम्राट अशोक से लेकर मुगल काल तक आम की दीवानगी देखी गई है। कविता और साहित्य में भी इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोकगीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है। आम के बारे में कवि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था कि आम में बस दो खूबियां होनी चाहिए, एक मीठा हो और दूसरा बहुत सारे हो। सिर्फ गालिब ही नहीं बल्कि गुलजार से लेकर अपने जमाने के मशहूर शायरों में शुमार सागर खयामी ने तो इस पर पूरी उर्दू कविता लिखी है। फल कोई जमाने में नहीं, आम से बेहतर करता है सना आम की गालिब साफ सुखनवर। क्या बात है, आमों की हो देसी या विदेशी, सुर्खे हो सरौली हो कि तुखमे हो कि कलमी, चौसे हो सफेदे हो कि खजरी हो कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। हिंदी साहित्य में भी खासकर काव्य में आम लोगों को लेकर खूब लिखा रचा गया है। आम को लेकर आम का बाग नाम की कविता बेहद चर्चित है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहाँ अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर और तोतापुरी जैसी सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, जो हर राज्य की अपनी खास पहचान बन चुकी हैं। कुल मिलाकर आम सिर्फ स्वाद नहीं, एक हसीन एहसास है। एक ऐसा फल जो बचपन की यादें भी है और हर गर्मी की सबसे बड़ी खुशी भी। शायद इसीलिए हर साल जब आम आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: जब गर्मियों की दस्तक होती है तो सिर्फ तापमान नहीं बढ़ता बल्कि देश का फल बाजार भी अरबों रुपए के कारोबार से गुलजार हो उठता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आम की वजह से। देखिए, भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरी दुनिया के कुल आम उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा अकेले हिंदुस्तान से आता है। उत्तर प्रदेश का महिलाबाद हो, महाराष्ट्र का रत्नागिरी या फिर आंध्र प्रदेश के बगान, लेकिन तमाम आमों की मिठास और खुशबू अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों तक जाती है।

0: आम सिर्फ स्वाद का राजा नहीं है बल्कि करोड़ों अरबों के कारोबार का बादशाह भी है। उत्तर प्रदेश के बागों से लेकर अमेरिका की सुपरमार्केट तक फलों का राजा सिर्फ मिठास नहीं बिखेरता बल्कि करोड़ों का कारोबार भी देता है। गर्मी का मौसम आते ही आम की मिठास हर किसी के दिल को खुश कर देती है। खासकर भारतीय आम अल्फांसो, केसर और दशहरी जो दुनिया भर में अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर हैं। घरेलू बाजार की बात करें तो आम का बाजार करीब 2.30 बिलियन डॉलर यानी लगभग 19,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो सालाना 6-7% की दर से बढ़ रहा है। भारत में दुनिया के कुल आम उत्पादन का 40-50% हिस्सा पैदा होता है, यानी भारत सालाना 20 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा आम पैदा करता है। हालांकि इस भारी उत्पादन का केवल 1% ही एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत में तो आम के लिए दीवानगी जग जाहिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय आमों की विदेशों तक जबरदस्त डिमांड है? मतलब ये कि आम की डिमांड केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बम्पर होती है। दुनिया भर में लोगों के लिए भारतीय आम पहली पसंद है। तभी तो भारत हर साल 40 से अधिक देशों को आम सप्लाई करता है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 की अगर बात की जाए तो भारत ने करीब 30,000 मीट्रिक टन से ज्यादा आम एक्सपोर्ट किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का दशहरी हो, महाराष्ट्र का अल्फांसो, बिहार का मालदा हो या फिर गुजरात का केसर, भारत में आम की सैकड़ों किस्में हैं। जितनी किस्में उतनी ही हाई डिमांड दुनिया भर में होती है। विदेशों में सबसे ज्यादा मांग अल्फांसो और केसर की होती है, लेकिन बनारसी लंगड़ा, दशहरी और चौसा भी यूरोपीय बाजारों की रौनक बढ़ा रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के बंगनपल्ली और तोतापुरी आम की भी अच्छी खासी डिमांड है, जबकि भारतीय आमों का सबसे बड़ा दीवाना है यूएई। इसके बाद यूके, कतर, ओमान और अमेरिका का नंबर आता है।
1: आज जूनागढ़ मार्केटिंग यार्ड के अंदर केले की बॉक्स की आवक 10-12 हजार की बॉक्स की आवक है। आने वाले दिनों में केले की आवक बढ़ने वाली है पहली तारीख पीछे, और भाव 700 रुपए से लगा के 1200 रुपए 10 केजी का भाव है।
0: लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में भारतीय आमों को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। अमेरिका में आम महज एक फल नहीं बल्कि लग्जरी, टेस्ट और स्टेटस सिंबल जैसा बन गया है। अमेरिका में भारतीय मैंगो की कितनी डिमांड है उसका उदाहरण हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला। जब एक अमेरिकी सोशल मीडिया यूजर ने ये दावा किया कि मात्र 20 मिनट में अमेरिका में इंडियन मैंगो का स्टॉक खत्म हो जा रहा है। इंटरनेट पर किए गए दावे के मुताबिक भारत से पहुंचे आम के एक केस में 9 से 10 पीस होते हैं। ये केस 49.99 डॉलर का होता है, भारतीय रुपए में जिसकी कीमत 4800 रुपए होती है। इसे भारतीय रुपए में बदलें तो करीब एक आम की कीमत 480 रुपए तक पड़ती है। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका में भारतीय आम की दीवानगी पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। 5 मई को छपी इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय आम पाने के लिए अमेरिकी कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका में आम की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे बड़ी वजह है भारतीय और दक्षिण एशियाई आबादी का बढ़ना। लेकिन अब सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं बल्कि अमेरिका भी आम को हेल्दी और प्रीमियम फ्रूट के तौर पर देख रहा है। भारत में अगर आम स्वाद की पहचान है तो अमेरिका जैसे मुल्कों में आम कल्चर, क्लास और क्रेज का प्रतीक बन चुका है। कुल मिलाकर मलिहाबाद के बागान से लेकर अमेरिका के सुपरमार्केट तक आम की मिठास और कारोबार दोनों की डिमांड इन दिनों हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आप जानते हैं कि हमारी प्राचीन मान्यताओं में आम को देवफल का दर्जा मिला हुआ है? देखिए, जिस फल के स्वाद के हम दीवाने हैं उसका हमारे धर्म पुराणों और शुभ कार्यों से एक अटूट और बेहद पवित्र रिश्ता है। कोई भी शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश हो या फिर किसी का विवाह हो, आम के पत्तों के बिना सब कुछ अधूरा है। घर के मुख्य द्वार पर लगाए जाने वाले आम के पत्तों के तोरण को केवल सजावट नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को रोकने और सुख समृद्धि के स्वागत का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथाओं में भी आम का जिक्र मिलता है।

0: स्वाद का ही नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का भी अहम हिस्सा है। इसकी मिठास जहां दिल जीत लेती है, वहीं इसकी मौजूदगी हमारे धार्मिक संस्कारों को भी पूरा करती है। क्या आप जानते हैं कि ये फल हमारी थाली तक पहुंचने से पहले हमारे मंदिरों और पूजा की चौकियों तक पहुंचता है? शास्त्रों में आम को साक्षात सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य आम के पत्तों के बिना अधूरा है, चाहे गृह प्रवेश हो या दीपावली की पूजा। द्वार पर बंधा आम का वंदनवार नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का सुरक्षा कवच माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आम की लकड़ी को समिधा के रूप में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि हवन में आम की लकड़ी के इस्तेमाल से वातावरण में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। भारत में आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक दिव्य वरदान है। इसी वजह से वेदों में आम को अमृत फल कहा गया है। यह अकेला ऐसा फल है जिसका जिक्र रामायण से लेकर महाभारत तक और अजंता की गुफाओं से लेकर मुगल काल तक मिलता है। पौराणिक कथाओं में आम को ज्ञान का फल माना गया है। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध कथा भी है, जिसके अनुसार एक दिव्य आम के लिए गणेश जी और कार्तिकेय के बीच महादेव और माता पार्वती ने प्रतियोगिता कराई थी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भगवान शिव एकांबरेश्वर यानी आम के पेड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ का 3500 साल पुराना आम का पेड़ आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसकी चार शाखाएं चारों वेदों का प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक संस्कार में आम की मौजूदगी रहती है, कहीं समिधा के रूप में तो कहीं पल्लव के रूप में। आम हर जगह मौजूद है, अक्षय तृतीया से लेकर वट सावित्री तक। आम का दान और नैवेद्य सौभाग्य की निशानी है। आम सिर्फ गर्मियों का स्वाद ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का भी अहम हिस्सा है। इसकी मिठास जहाँ जीवन में स्वाद भरती है, वहीं इसकी पवित्रता हमारे संस्कारों को मजबूत बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: है माँ की महिमा। माता का आपके किन ग्रहों और राशियों से संबंध होता है? माता के साथ अपने संबंधों को कैसे सुधारें और माता के जीवन को किन उपायों से बेहतर करें? मदर्स डे पर जानिए माता के आशीर्वाद और कृपा पाने के उपाय सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: छो जाने ऐसी हर एक खबर
0: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आज ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन, आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत अचल। अत्याधुनिक तोपों से लैस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार। आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया कदम। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण। MIRV तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बताया निशान। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां। मंदिर के पास ही आसमान में एयर शो का रिहर्सल, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाई करतब। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए 256 करोड़ रुपए। आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी। भव्य सुरक्षित और व्यवस्थित मेला कराना लक्ष्य। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी नोरा फतेही। कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नोरा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने तमिलनाडु की सियासत में 59 साल बाद एक नई और दमदार लीक खींच दी है। तमिलनाडु में 59 साल बाद पहली बार ये मौका आया है जब डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही पार्टियां सत्ता से दूर हो चुकी है। इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बेदखल किया है तमिल फिल्मों के एक मसीहा ने।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु की सियासत में नई और मजबूत लीक खींचने वाले जोसेफ विजय चंद्रशेखर हैं। जी हाँ, तमिलनाडु की जनता जिन्हें प्यार से थलापति के नाम से बुलाती है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय ने 2 साल पहले रुपहले पर्दे को अलविदा कह एक राजनीतिक पार्टी बनाई और उसके बाद हुए पहले ही चुनाव में इतिहास रच दिया। तमिलनाडु के सत्ता पर पिछले 59 साल से 2 ही पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके काबिज होती रही, लेकिन थलापति विजय ने दोनों का डिब्बा गोल कर नई सियासी अध्याय की शुरुआत कर दी है।

0: लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव त्योहार की तरह होते हैं, एक ऐसा त्योहार जिसमें जनता अगले 5 साल के लिए अपने मुस्तकबिल पर मुहर लगाती है। लेकिन दशकों में कभी एक बार ऐसा भी होता है जब कोई चुनाव सिर्फ त्योहार न रहकर बहुत बड़े बदलाव का ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाता है। तमिलनाडु के सियासी मैदान में इस बार बड़े बदलाव की ऐसी ही क्रांति देखने को मिली है और इस क्रांति के मसीहा बनकर उभरे हैं तमिल फिल्मों के महानायक जोसफ विजय चंद्रशेखर। प्रशंसक प्यार से जिन्हें थलापति विजय के नाम से बुलाते हैं। बीते 4 मई को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सूबे की 6 दशक पुरानी द्रविड़ियन राजनीति का एक तरह से पटाक्षेप कर दिया है। 234 सीटों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतकर थलापति विजय ने अन्नादुरई, करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन और जयललिता की वर्षों पुरानी द्रविड़ियन राजनीति की मजबूत विरासत के धुर्रे बिखेर दिए। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम के शिखर पर पहुंचने के बाद थलापति विजय ने 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कड़गम के नाम से नई पार्टी बनाई और उसके बाद हुए पहले ही विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों को धराशायी कर दिया। पार्टी बनने के बाद से ही थलापति विजय का आत्मविश्वास उनके प्रचंड जीत की सरगोशी कर रहा था।
1: माय विशेस टू माय सन, बिकॉज़ आई एम सीइंग लास्ट 2 इयर्स इज कॉन्फिडेंस लेवल, ओके, इज कॉन्फिडेंस लेवल इज फैंटास्टिक and faith, I'll come as a chief minister of Tamil Nadu.
0: थलापति विजय का आत्मविश्वास तब भी दिखा जब उनकी पार्टी ऐतिहासिक जीत के बाद भी बहुमत के आंकड़े से 10 कदम दूर रह गई। अपनी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर थलापति विजय 2 बार 6 और 7 मई को राजभवन गए, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं होने का हवाला देकर उन्हें वापस कर दिया। लेकिन तमिलनाडु के इस थलापति ने फरवरी 2024 में राजनीतिक पार्टी बनाने के साथ ही अटल निश्चय कर लिया था कि राज्य की सत्ता के शीर्ष तक हर हाल में पहुंचेगा। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने सत्ताधारी डीएमके को भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी बताया था, जबकि बीजेपी को उन्होंने अपना वैचारिक विरोधी माना था। कमाल यह है कि बहुमत का आंकड़ा जुटाने के दौरान उन्होंने इन दोनों पार्टियों से दूरी बनाए रखी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि थलापति विजय ने विधानसभा चुनाव में अपने स्टारडम को भुनाकर तमिलनाडु की सत्ता के शीर्ष तक का सफर तय किया है, तो वो गलतफहमी में हैं। आज विजय की कामयाबी की जो बुलंद इमारत आपको नजर आ रही है, उसकी नींव 2 दशक पहले ही पड़ चुकी थी। थलापति विजय ने राजनीतिक पार्टी वेशक फरवरी 2024 में बनाई, लेकिन सच्चाई यही है कि वे अपने फैन क्लब के जरिए पिछले 2 दशक से समाज सेवा और जन कल्याण के काम में जुटे हुए हैं। विजय का फैन क्लब थलापति विजय मक्कल यक्कम काफी पहले से सक्रिय है, जिसके तहत ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप लगाने जैसे काम तो किए ही जाते रहे हैं। गरीबों को खाना कपड़ा देने से लेकर सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों, पुलिस थानों, यहाँ तक कि कोर्ट के मामलों में भी बेसहारा जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती रही है।
1: As a human, you should not be as a only artist. You must have some social thinking. So last 30 years, was having in his mind, we have to do something for the society, for the Tamil people. It was there in his mind. Last, slowly he has developed that, these things.
0: साफ है कि तमिलनाडु की जनता ने उन्हें अपना थलापति माना है, तो उसके पीछे ठोस वजहें हैं और इन्हीं वजहों की वजह से उन्होंने तमिलनाडु में 1967 के बाद पहली बार गैर द्रमुक सत्ता की नींव डाली है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के तब के लोकप्रिय नेता अन्नादुरई ने 1949 में पेरियार से अलग होकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की नींव डाली थी। 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद अन्नादुरई को साल 1967 में कामयाबी मिली और उन्होंने राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। सरकार बनाने के 23 महीने बाद ही अन्नादुरई का निधन हो गया, जिसके बाद डीएमके की कमान करुणानिधि के हाथों में आ गई। उधर तमिल फिल्मों के तब के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन ने रुपहले पर्दे के माया लोक को अलविदा कहकर 17 अक्टूबर 1972 को AIADMK की स्थापना की। साल 1977 के विधानसभा चुनाव में एमजी रामचंद्रन करुणानिधि को करारी शिकस्त देकर सूबे की सत्ता पर काबिज हो गए। तब से लेकर आज तक यानी करीब 59 साल से यही दोनों पार्टियां बारी बारी से सूबे की सत्ता का स्वाद चखती रहीं। लेकिन थलापति विजय ने आखिरकार सत्ता के एकाधिकार के इस द्रविड़ियन अश्वमेध पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि जोसफ विजय से पहले करुणानिधि और एमजी रामचंद्रन की जमी जमाई सियासी विरासत को चुनौती देने की कोशिश नहीं की गई। दक्षिण भारत के थलाइवा रजनीकांत ने 3 दिसंबर 2020 को पूरे जोशो खरोश के साथ ऐलान किया कि वे जनवरी 2021 में एक नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। लेकिन जनवरी 2021 आने से पहले 29 दिसंबर 2020 को ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर रजनीकांत ने सियासी अखाड़े से दूर रहने का बयान जारी कर दिया। दक्षिण भारत के एक और स्टार कमल हसन ने भी 21 फरवरी 2018 को पूरे उत्साह और जोश के साथ मक्कनिधि मैयम के नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तमिलनाडु की 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कमल हसन ने किस्मत आजमाई, लेकिन कोयम्बटूर दक्षिण से खुद ही हार गए। उसके बाद तो सियासी सुरमा बनने की उनकी हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। पर थलापति विजय ने अद्भुत आत्मविश्वास के साथ तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री मारी और पहली बार में ही विजय पताका लहरा दिया।
2: जोसफ विजय चंद्रशेखर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कामयाबी के सफर में कभी ठहराव या फिर बिखराव का आलम नहीं देखा। एक बार जिस काम पर पहुंच गए तो उससे ऊपर ही बढ़े, नीचे की ओर कभी देखा ही नहीं। तमिल फिल्मों में जबरदस्त स्टारडम हासिल करने के बाद जब सियासी अखाड़े में उतरे तो वहां भी बड़े बड़े सूरमाओं को चित्त कर दिया। लेकिन इस कामयाब इंसान को बचपन में एक बड़ा सदमा लगा था, ऐसा सदमा जिसने मासूम उम्र में ही उनकी खुशियां छीन ली, बचपना छीन कर इन्हें शांत और अंतर्मुखी बना दिया। लेकिन वही सदमा बाद में इनकी जिंदगी की कामयाबी का शरार बन गई।

0: नफरत और नस्लीय भेदभाव की बुनियाद पर शुरू हुई द्रविड़ियन राजनीति की चूले हिलाकर तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज हुए जोसेफ विजय चंद्रशेखर की जिंदगी का सफर सफलता की अनोखी दास्तान है। दुनिया के सफलतम लोगों की जिंदगी में झांकेंगे तो आपको गिरने और संभलने, चढ़ने और फिसलने का सिलसिला दिखाई देगा, लेकिन जोसेफ विजय चंद्रशेखर की जिंदगी बिना गिरे, बिना फिसले, बिना थके, बिना रुके मुसलसल आगे बढ़ने का बेनजीर सिलसिला है। सफलता की ऐसी दास्तान जिसमें सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने का क्रम दिखता है, ठहरने या उतरने का कोई क्रम नजर नहीं आता। जिंदगी को लेकर इनका फलसफा भी यही है कि सफलता का कोई आखिरी छोर नहीं होता।
1: Don't lose your identity at any cost. Say no to temporary pleasures. Success is never ending. Failure is never final.
0: आपको बता दें कि 22 जून 1974 को चेन्नई में फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे विजय बचपन में काफी चंचल, वाचाल और बातूनी थे, लेकिन 10 साल की उम्र में हुई एक नामुराद दुखद घटना ने इनकी निश्चल मासूमियत को हमेशा के लिए छीन लिया। दरअसल विजय जब 3 साल के भी नहीं हुए थे तो 14 फरवरी 1977 को विधाता ने बहन के रूप में इन्हें अनुपम उपहार दिया। अपनी बहन विद्या के जन्म के बाद विजय का जीवन आह्लाद आनंद से भर गया। हालांकि तब विजय उम्र के लिहाज से बेहद नादान थे, लेकिन हर वक्त बहन के साथ रहना, उसकी किलकारियां सुनना, रोने पर उसे पुचकारना जोसेफ विजय की जिंदगी का हिस्सा बन गया। कुछ समय बाद विजय का जब काडम्बकम के फातिमा स्कूल में एडमिशन हुआ तो बहन को छोड़कर स्कूल जाना उन्हें बेहद खटकता था। बहन से एक पल की दूरी भी उन्हें नागवार गुजरती थी। स्कूल से लौटते तो सीधा बहन के पास जाते थे और उसकी बाल सुलभ चंचलता में खुद को फना कर देते थे। पर विधाता को भाई बहन के बीच का ये अनुपम प्यार लंबे वक्त तक मंजूर नहीं था। विद्या जब 7 साल की हुई तो किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। कहते हैं कि साल 1984 में भाई की गोद में ही बहन ने आखिरी सांसें ली। काल के इस क्रूर मजाक ने विजय को भीतर तक झकझोर दिया। बहन विद्या की मौत का सदमा इतना गहरा था कि चंचल वाचाल विजय 10 साल की उम्र में ही एकदम शांत और अंतर्मुखी हो गए। जीवन का उत्साह, उमंग एक झटके में खत्म हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम मिलने के बाद एक इंटरव्यू में विजय ने कहा था, छोटी बहन की मृत्यु के बाद मेरे जीवन में जो खालीपन आया वो बहुत साल बाद प्रशंसकों के प्यार से ही भर पाया। इस प्यार में अक्सर मुझे अपनी बहन की झलक दिखाई देती है। वक्त का कारवां गुजरता गया, लेकिन जोसेफ विजय 42 साल पहले दुनिया छोड़कर गई बहन की मनोरम यादें आज भी अपने सीने में सजोए हुए हैं। जोसेफ विजय की प्रोडक्शंस कंपनी का नाम वीवी क्रिएशंस है, विद्या विजय क्रिएशंस। इतना ही नहीं, अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों के लिए वो एक खास नंबर 0277 इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर उनकी बहन विद्या के जन्म के महीने और साल से जुड़ा हुआ है। विद्या के जन्म का साल 1977 था और महीना था फरवरी, यानी साल का दूसरा महीना। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि विजय की सफलता दर सफलता का बहन के प्रति उनके बेपनाह प्यार से आखिर क्या संबंध है? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। दरअसल बहन की दुनिया से विदाई के बाद विजय ने अपनी मासूमियत को, शोखी को, चंचलता को जब अपने सीने में दबाना शुरू किया तो कालांतर में उसने तूफान का संघनित रूप ले लिया। सीने में दबा वही संघनित तूफान पहले पर्दे पर और बाद में सियासी मैदान में बवंडर बनकर निकला तो बड़े बड़े सूरमा उसके सामने धराशायी हो गए। काबिले गौर है कि बहन विद्या की मृत्यु से पहले जोसेफ विजय तमिल फिल्म वेत्री में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू कर चुके थे। इस फिल्म का निर्देशन जोसेफ विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर ने किया था, पर विद्या की मृत्यु के बाद विजय इतने सदमे में थे कि मौका मिलने के बाद भी वो फिल्मों में काम करने से कतराने लगे थे। बेटे की ये हालत देखकर माँ बाप काफी परेशान थे और हर हाल में बेटे को इस सदमे से उबारना चाहते थे। इसीलिए माँ शोभा चंद्र

0: इसीलिए माँ शोभा चंद्रशेखर ने साल 1991 में एक रोमांटिक फिल्म की पटकथा लिखी। पिता ऐसे चंद्रशेखर ने इस कहानी पर बेटे को लीड हीरो लेकर फिल्म बनाने का फैसला किया, लेकिन कोई प्रोड्यूसर इस पर पैसा लगाने को राजी नहीं हुआ। आखिरकार पिता ने ही बैंक से लोन लेकर फिल्म का निर्माण किया। साल 1992 में आई नालैया थिरुप्पु बतौर लीड हीरो विजय की डेब्यू फिल्म थी। नालैया थिरुप्पु बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई और पूरा पैसा डूब गया। फायदा बस इतना हुआ कि विजय रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो लॉन्च हो गए। बतौर लीड हीरो पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी जोसफ विजय के भीतर का तूफान जरा भी कमजोर नहीं पड़ा। अलबत्ता कामयाबी की चाह की ज्वाला और तेज हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 1994 में आई रसीगन और 1996 में आई उन्नक्कगा ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। साल 1997 में आई कुडालुक्कू मरिया धाई में तो विजय के बेहतरीन अभिनय ने क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया। रोमांटिक फिल्म कुडालुक्कू मरिया धाई के लिए विजय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के स्टेट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। विजय ने अपने फिल्मी करियर की कामयाबी की सीढ़ियां बड़े ही करीने से चढ़ी हैं। शुरुआती 10-11 सालों तक विजय ने खुद को रोमांटिक हीरो के इमेज तक महदूद रखा, लेकिन साल 2002 के बाद उन्होंने एक्शन फिल्मों को साइन करना शुरू किया। साल 2003 में थिरुमलाई में दर्शकों ने पहली बार विजय का एक्शन अवतार देखा। साल 2004 में आई गिली में एक कबड्डी प्लेयर के किरदार को विजय ने अपने लाजवाब एक्शन से इतना दमदार कर दिया कि रातों रात तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। गिली घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई। ऐसा लगता है कि जोसफ विजय अपने फिल्मी करियर को एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ा रहे थे। करीब एक दशक तक अपने एक्शन अवतार में कामयाबी का झंडा बुलंद करने के बाद तमिल सुपरस्टार ने सामाजिक सरोकार वाली फिल्मों को साइन करना शुरू कर दिया। 2014 में आई कत्थी में विजय डबल रोल में दिखे, जिसमें से एक छोटे मोटे चोर कथी रेशन का किरदार है, जबकि दूसरा जीवानंदम सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता। कत्थी का जीवा बड़े कॉरपोरेट घरानों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। इसी तरह साल 2018 में आई सरकार में विजय सुंदर रामास्वामी नाम के एक एनआरआई बिजनेसमैन के किरदार में नमूदार होते हैं। जो वोट डालने भारत आता है तो पता चलता है कि उसका वोट पहले ही पड़ चुका है। सुंदर रामास्वामी के किरदार में विजय चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते देखे जा सकते हैं। साल 2021 में आई मास्टर में जोसफ विजय लोकेश कनगराज के ऐसे किरदार में हैं जो विजय सेतुपति नाम के खतरनाक गैंगस्टर के खिलाफ मोर्चा खोलता है और बच्चों को उसके अत्याचार से मुक्त कराता है। साल 2023 में आई लियो में विजय पार्थिवन की भूमिका में हैं, जो हिमाचल प्रदेश में कैफे चलाता है और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू करता है। लियो ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड वाइड 623 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। कमाल देखिए कि सियासी अखाड़े में उतरने से करीब एक दशक पहले से जोसफ विजय सोशल कॉज पर फिल्में बनाने लगे थे। 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कड़गम नाम से राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी सफर पर विराम लगाने का ऐलान भी कर दिया। 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उनकी आखिरी रिलीज फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। हालांकि उनकी एक और फिल्म जननायकन रिलीज को तैयार है, पर गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर विजय ने जब उम्मीदवार उतारे तो चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़े उनकी फिल्मों के क्लिपिंग्स का जमकर इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि विजय ने पहले रोमांटिक हीरो के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, उसके बाद एक्शन हीरो के तौर पर जबरदस्त स्टारडम हासिल किया और राजनीति में कदम रखने से पहले एक दशक तक ऐसी फिल्में बनाई जिससे उनकी छवि जननायक वाली बन गई। इस लंबी रणनीतिक सूझबूझ का नतीजा ये है कि अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने सूबे में 60 साल से अंगद पांव जमाए बैठी द्रमुक राजनीति का सफाया कर दिया।
1: तो बंदे में दम में आज आपने थलापति विजय के जीवन से जुड़े

0: कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: संगम नगरी प्रयागराज वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जानी जाएगी। यहाँ पर यमुना नदी में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की खास पहल की गई है, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। देखिए हमारी रिपोर्ट।
4: प्रयागराज में संगम पर स्नान ध्यान के लिए देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग गंगा स्नान करके पुण्य कमाने की चाहत रखते हैं। लेकिन यहीं पर निरंतर बह रही यमुना की जलधारा में अब बोटिंग और वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के रोमांच की खास तस्वीरें नजर आ रही हैं।
5: संगम नगरी प्रयागराज अभी तक धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में ये कयाकिंग कैनोई के जो नावें हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं और बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए यहाँ प्रेरित किया जा रहा है और बच्चे यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स सीख रहे हैं।
4: यहाँ पर स्पीड बोट और जेट स्की जैसे पानी में चलने वाले स्कूटर और दूसरी नावों का इंतजाम किया गया है, ताकि आम लोग और सैलानी नदी के पानी में खेल कूद का मजा ले सकें। इसके लिए यहाँ ट्रेंड ऑपरेटर रखे गए हैं जो लोगों को जल विहार कराते हैं।
6: ये स्कूटर एक सिंगल पर्सन जा सकता है, जिसके साथ हमारे ट्रेंड ऑपरेटर भी जाते हैं सुबह शाम, और काफी हमारे पास आती रहती है इंक्वायरी, आती रहती है, लोग आते हैं जेट स्की का आनंद लेते हैं। ये हमारा नैनी ब्रिज के पास ही है, तो काफी लोग आते हैं।
4: हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव ने भी खुद जेट स्की पर सवार होकर यमुना में सैर का आनंद लिया।
5: तो दिखाते हैं ये पूरा रोमांचित करने वाला जो पल है वो यहाँ पर है, और इस तरह से राइड होगी और आप देख सकते हैं कितना रोमांचित करने वाला ये क्षण है। और जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे उनको इस वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ देखने को मिलेगा और एक धार्मिक पर्यटन के साथ इस वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ ले सकेंगे।
4: खास बात यह है कि प्रयागराज में यमुना रिवर बैंक बोट क्लब पर वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ बर्थडे पार्टी और दूसरे इवेंट्स का भी आयोजन किया जा सकता है। यहां से संगम जाने के लिए 7-सीटर बोट मिलेगी, साथ ही तमाम लोग यहां पर जल क्रीड़ा का भी आनंद ले सकेंगे। प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि यहां आने वालों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
7: और माँ यमुना की जो जलधारा है बहुत विशाल है, वाटर स्पोर्ट्स की वहाँ बहुत संभावना थी, इसलिए नगर निगम प्रयागराज ने महसूस किया, हम सब लोगों ने सदन में संकल्प पारित किया कि वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। और 2.5 करोड़ रुपए का उपकरण स्मार्ट सिटी नगर निगम प्रयागराज के द्वारा कियोकांग कैनोइंग इत्यादि हम लोगों ने छोटी लाइट बोटे उसको उपलब्ध कराने का काम किया। बहुत न्यूनतम किराया रखा गया है, क्योंकि हमारे जो पर्यटक आते हैं उनको भी किसी प्रकार की कठिनाई सामना न करना पड़े, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा का भी विशेष ध्यान उसमें दिया गया है, किराया बहुत न्यूनतम रखा गया।
4: यहाँ पर स्थानीय युवाओं और किशोरों को वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने का भी इंतजाम किया गया है, ताकि वे इस क्षेत्र में महारत हासिल कर सके और इस क्षेत्र में करियर भी बना सकें।
8: और इसको सिखाने के लिए बच्चों को सबसे पहली चीज तो स्विमिंग आती है, तो हम लोग जो नए बच्चे होते हैं उनको पहले स्विमिंग सिखाते हैं। ये वाटर स्पोर्ट्स ये काफी बैलेंसिंग की बोट है, इस पर बैलेंस नहीं रहता तो बच्चे पलटते भी हैं, तो इसलिए स्विमिंग तो कंपलसरी है उनको। स्विमिंग सिखाने के बाद फिर वो उनको कुछ महीने टेक्निक जैसे जमीन पर सिखाया जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इनको पानी में ट्रेनिंग देते हैं।
9: नेशनल लेवल हमारे यहाँ प्लेयर खेले हुए हैं और मेडल भी है नेशनल का, बाकी सब अभी इंडियन आर्मी में भी कुछ लोग हैं, और अभी तो 4 लड़के हुए हैं यूपी पुलिस में, अभी प्रेजेंट में ही हुए हैं, उनका भी ज्वाइनिंग होने वाला है।
4: अभी यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेने वालों की संख्या 50 तक पहुँच चुकी है। किशोरों और युवाओं में खास तौर से इसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है।
10: यहाँ पर ये यमुना नदी है और इतना बड़ा जो विस्तार है, यहाँ इस कयाकिंग कैनोई के माध्यम से यहाँ पर बच्चे वाटर स्पोर्ट्स के लिए सीख रहे हैं और यहाँ पर नाव चला रहे हैं। तो संभावना यहाँ पर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स, उसको लेकर के यहाँ पर हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर अब धार्मिक पर्यटन के अलावा स्पोर्ट्स को भी बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: क्या है माँ की महिमा? माता का आपके किन ग्रहों और राशियों से संबंध होता है? माता के साथ अपने संबंधों को कैसे सुधारें और माता के जीवन को किन उपायों से बेहतर करें? मदर्स डे पर जानिए माता के आशीर्वाद और कृपा पाने के उपाय सिर्फ गुड लक टुडे में।
12: TuneIn has the music.
13: Take a vacation with poolside hits on TuneIn. TuneIn Poolside has the music I love.
14: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii.
15: Let's go.
14: Bloom and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs and get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn.
16: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आज ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन, आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत अचल। अत्याधुनिक तोपों से लैस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार। आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया कदम। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण। MIRV तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बनाया का निशान। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां। मंदिर के पास ही आसमान में एयर शो का रिहर्सल, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाई करतब। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए 256 करोड़ रुपए। आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी। भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित मेला कराना लक्ष्य। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी नोरा फतेही। कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नोरा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। तो देखिए, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही जो चीज सबसे पहले हमारे जहन में आती है, हमारे दिमाग में आती है, वो या तो सूरज की तपिश है या फिर मीठे और रसीले आम है जिनकी खुशबू और मिठास का हर कोई दीवाना है। देखिये, दशहरे की बेमिसाल खुशबू से लेकर लंगड़े की मिठास तक, मालदा के रसीले स्वाद से लेकर चौसे की लज्जत तक, आम गर्मियों की शान है। या यूं कहें कि नाम भले ही इसका आम है लेकिन स्वाद सिर्फ खास नहीं बल्कि बेहद खास है। आज हम आपको आम की कहानी सुनाएंगे, आम के नामों से जुड़ा इतिहास भी बताएंगे और कैसे फलों का राजा आम कारोबार का भी राजा है ये भी बताएंगे।

हापुस की शाही खुशबू है तो लंगड़े की बेमिसाल मिठास। दशहरे की नजाकत है तो चौसे की लज्जत भी है। मालदा का रसीला स्वाद है तो तोता परी का जुदा अंदाज है। लेकिन ये खास होकर भी आम ही है। अलबत्ता नाम भले ही आम हो लेकिन स्वाद सिर्फ खास नहीं बेहद खास है। गर्मियों का मौसम आम के दीवानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं रहता। तपती गर्मी हो, सूरज की तपिश हो या फिर पसीने से तर बतर दोपहर, अगर इस मौसम में कुछ सुकून देता है तो वो फलों का राजा आम ही तो है। जिसकी बेमिसाल खुशबू और लाजवाब स्वाद जुबान पर मिठास घोल देता है। कहने को तो सबर का फल मीठा ही होता है लेकिन हम तो कहते हैं कि सबर का फल आम होता है क्योंकि आम का नाम आते ही मिठास खुद ही आ जाती है। आम की मिठास और इसकी खुशबू भारतीय जनमानस की रग रग में बसती है। इसे केवल एक फल कहना इसकी गरिमा को कम करने जैसा होगा। आम तो साक्षात अमृत फल है।

की शाखों पर लदे इन आमों को देखिए, ये किसी तोहफे से कम नहीं है। हापुस, लंगड़ा, सिंदूरी, तोता परी, दशहरी और चौसा, आप बस नाम लेते जाइए, जुबान पर लज्जत बढ़ती जाएगी।

इसका नाम भले ही आम हो लेकिन ये कितना खास है उसको बताने की जरूरत नहीं। कविताओं और साहित्य में इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोक गीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है।

0: ये सिर्फ एक फल नहीं, ये बचपन की वो यादें हैं जो आज भी हम और आप अपने दिलों में समेटे हैं। क्योंकि हर आम एक कहानी है और मिठास एक एहसास है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
1: देखिए, कहते हैं कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन बात जब आम की हो तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में मिलने वाले आमों का जिक्र होना तो लाजमी है। देखिए, महाराष्ट्र के रत्नागिरी का अल्फांजो हो, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद का दशहरी हो, बनारस का चौसा, दक्षिण भारत का बंगनपल्ली या सफेदा, कर्नाटक का बादामी और बंगाल के हिमसागर आम की तो अपनी ही डिमांड है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं।

0: कहने को तो आम की सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन भारत में आम की लगभग 1500 प्रजातियां पनपती हैं, जिनमें से करीब 1000 किस्में आम तौर से खाई और बाजार में बेची जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले हर आम का अपना एक अलग मिजाज, अपना रंग और अपनी एक खास मिठास होती है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर इलाके का अपना एक खास आम है, इसलिए भारत को आमों का देश भी कहा जाता है। दशहरी की बेमिसाल खुशबू, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मशहूर दशहरी आम की। लखनऊ के मलिहाबाद की गलियों में दशहरी की मिठास घुली मिलती है। पतली गुठली और लंबी बनावट वाला ये आम अपनी बेमिसाल मिठास के लिए मशहूर है। लगभग 200 से 300 साल पुराने इतिहास वाले इस आम का नाम काकोरी के पास दशहरी गांव से पड़ा है। सरकार ने भी 200 साल पुराने इस पेड़ को ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। रसीला लंगड़ा आम, वहीं वाराणसी का लंगड़ा आम अपने नाम की तरह ही दिलचस्प है। लंगड़ा नाम सुनते ही पहली बार में अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प मानी जाती है। कहते हैं बनारस के एक मंदिर में रहने वाले एक साधु जो पैरों से दिव्यांग थे, उन्होंने आम के पौधे लगाए थे। जब इन पेड़ों पर फल आए तो उनका स्वाद लोगों को पसंद आया, तभी से ये आम भी मशहूर होते चले गए और आज लंगड़ा आम बनारस ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है।
1: आम की किस्मों में भारत में इतनी अधिक विविधता है जिसको का वर्णन करना आसान नहीं है, लेकिन उतने ही इन आमों के नाम भी रोचक हैं। किसी आम को अलिफ लैला, अगरबत्ती, नाजुक बदन, बेनज़ीर के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पे कुछ बहुत ही कॉमन नाम भी हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो या हाफुस।
0: आमों का राजा अल्फांसो महाराष्ट्र के कोंकण तट से आता है। अल्फांसो यानी हापूस, जिसे दुनिया भर में आमों का राजा कहा जाता है। इसकी केसरिया रंगत और बेमिसाल स्वाद इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सुपरस्टार बनाता है। रत्नागिरी और देवगढ़ की मिट्टी से निकलने वाले इस आम की खुशबू इतनी तेज होती है कि एक आम पूरे कमरे को महका दे। इसकी कीमत भले ही थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन इसका शाही स्वाद इसे सबसे जुदा बनाता है। चौंसे की मिठास, आम के शौकीनों की पहली पसंद चौंसा आम, बेमिसाल स्वाद और लाजवाब सुगंध। आमतौर से बिहार में पाए जाने वाले इस आम की खेती अब उत्तर प्रदेश में भी जोर शोर से होती है। हालांकि चौंसा की उत्पत्ति बिहार से ही हुई है। कहा जाता है कि बिहार के चौंसा नाम की जगह पर इसकी पैदावार होती थी, जिसकी वजह से इसका नाम चौंसा पड़ा। ये आम की एक ऐसी किस्म है जिसकी फसल देर से तैयार होती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि जब दशहरी और लंगड़ा आम का सीजन खत्म हो जाता है तब चौंसा आम बाजार में आता है।
1: आम फलों का राजा है और भारतवर्ष आम की अपार किस्मों की संपदा के कारण विश्वविख्यात है। देश में 1500 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। कहीं पे लोग दशहरी चौसा को पसंद करते हैं तो कहीं नीलम बंगनापल्ली को। रत्नागिरी और महाराष्ट्र का अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है और इसको बहुत ही अच्छे दाम पर लोग फरवरी के माह में खरीदते हैं। हम देखेंगे,
0: यानी जब बाजार में आमों की तादाद कम होने लगती है तब चौंसा अपनी मिठास खोल देता है और महफिल लूट ले जाता है। दक्षिण और पूर्व का गौरव, दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश का बंगनपल्ली या सफेदा अपनी बड़ी बनावट और मिठास के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का हिमसागर है, देखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका स्वाद इतना मलाईदार है कि इसे मिष्टी दोई के देश का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन माना जाता है। सबसे बड़ा आम नूर जहां, लेकिन आम की दुनिया सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, यहाँ अजूबे भी हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पैदा होने वाला नूर जहां आम उन्हीं में से एक है, जिसके एक आम का वजन 4 किलो तक हो सकता है। मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर का कट्ठीवाड़ा अपने झरनों, बारिश और नूर जहां आम के लिए भी जाना जाता है। मौसम और मिट्टी ने इस फल के पनपने के लिए एकदम सही हालात दिए हैं। नूर जहां को दुनिया का सबसे बड़ा आम माना जाता है। ये भारत में आम प्रेमियों के बीच जितना लोकप्रिय है उतना ही दुर्लभ भी है। सबसे महंगा आम, और अगर बात करें दुनिया के सबसे महंगे आम की, तो जापानी नस्ल का मियाज़ाकी अब भारत में भी उगाया जा रहा है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। गर्मियों का मौसम आम के दीवानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होता है। इस मौसम में हम और आप आम का जमकर लुत्फ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: देखिए, गर्मियों की दोपहर हो और जिक्र आम का ना हो तो लगता है जैसे महफिल में रौनक ही ना हो। लेकिन आम का रिश्ता सिर्फ हमारी ज़ुबान से नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास के पन्नों और शायरों के मखमली कलम से भी रहा है। गालिब से लेकर गुलजार तक ने आम की लज्जत को अपनी कविताओं के जरिए शब्दों में पिरोया है। गालिब तो आम के इतने बड़े शौकीन थे, इतने बड़े फैन थे कि वो कहते थे कि आमों में बस दो ही खूबियां होनी चाहिए, एक तो वो मीठे हों और दूसरा वो बहुत सारे हों। उर्दू और हिंदी शायरों में आम को महबूब की मिठास और बचपन की यादों से जोड़कर देखा जाता रहा है। देखिए, इकबाल हो या अमीर खुसरो, हर किसी ने इस फल की तारीफ में कसीदे पढ़ लिखे हैं।

0: मीठा, रसीला और दिलों पर राज करने वाला आम। गर्मियों में लोग भले ही चिलचिलाती धूप और पसीने से परेशान रहते हैं, लेकिन इस मौसम में मिलने वाला आम किसी तोहफे से कम नहीं होता। बच्चे हो या बुजुर्ग, गरीब हो या अमीर, आम हर किसी को खास एहसास कराता है। आम सदियों से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और आज भी इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे पहले आम आम्रफल कहा जाता था। पुराने वैदिक ग्रंथों में इसे रसाला और सहकार नाम से भी जाना जाता था। इन नामों का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक, उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। यानी आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में आम की पैदावार हुई थी, जहां से ये दक्षिण भारत पहुंचा और तमिल में इसे आमकाय कहा गया, जो बोलचाल की भाषा में बदलकर धीरे धीरे मामकाय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर मांगा के नाम में बदल दिया। 16वीं सदी में पुर्तगाली कारोबारियों ने आम को अफ्रीका और ब्राजील तक पहुंचाया और धीरे धीरे ये आम फल खास बन गया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इतिहास के हर दौर में इसकी मिठास ने लोगों के दिलों को जोड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भी आम का इंतजार हर गर्मी में उतनी ही बेसब्री से किया जाता है। इतिहास में आम की खास अहमियत रही है। सम्राट अशोक से लेकर मुगल काल तक आम की दीवानगी देखी गई है। कविता और साहित्य में भी इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोकगीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है। आम के बारे में कवि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था कि आम में बस दो खूबियां होनी चाहिए, एक मीठा हो और दूसरा बहुत सारे हो। सिर्फ गालिब ही नहीं बल्कि गुलजार से लेकर अपने जमाने के मशहूर शायरों में शुमार सागर खयामी ने तो इस पर पूरी उर्दू कविता लिखी है। फल कोई जमाने में नहीं, आम से बेहतर करता है सना आम की गालिब सा सुखनवर। क्या बात है, आमों की हो देसी या विदेशी, सुर्खे हो सरौली हो कि तुखमे हो कि कलमी, चौसे हो सफेदे हो कि खजरी हो कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। हिंदी साहित्य में भी खासकर काव्य में आम लोगों को लेकर खूब लिखा रचा गया है। आम को लेकर आम का बाग नाम की कविता बेहद चर्चित है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहाँ अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर और तोतापुरी जैसी सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, जो हर राज्य की अपनी खास पहचान बन चुकी है। कुल मिलाकर आम सिर्फ स्वाद नहीं, एक हसीन एहसास है। एक ऐसा फल जो बचपन की यादें भी है और हर गर्मी की सबसे बड़ी खुशी भी। शायद इसीलिए हर साल जब आम आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: जब गर्मियों की दस्तक होती है तो सिर्फ तापमान नहीं बढ़ता बल्कि देश का फल बाजार भी अरबों रुपए के कारोबार से गुलजार हो उठता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आम की वजह से। देखिए, भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरी दुनिया के कुल आम उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा अकेले हिंदुस्तान से आता है। उत्तर प्रदेश का महिलाबाद हो, महाराष्ट्र का रत्नागिरी या फिर आंध्र प्रदेश के बगान, लेकिन तमाम आमों की मिठास और खुशबू अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों तक जाती है।

0: आम सिर्फ स्वाद का राजा नहीं है बल्कि करोड़ों अरबों के कारोबार का बादशाह भी है। उत्तर प्रदेश के बागों से लेकर अमेरिका की सुपरमार्केट तक फलों का राजा सिर्फ मिठास नहीं बिखेरता बल्कि करोड़ों का कारोबार भी देता है। गर्मी का मौसम आते ही आम की मिठास हर किसी के दिल को खुश कर देती है, खासकर भारतीय आम अल्फांसो, केसर और दशहरी, जो दुनिया भर में अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर हैं। घरेलू बाजार की बात करें तो आम का बाजार करीब 2.30 बिलियन डॉलर यानी लगभग 19,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो सालाना 6-7% की दर से बढ़ रहा है। भारत में दुनिया के कुल आम उत्पादन का 40-50% हिस्सा पैदा होता है, यानी भारत सालाना 20 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा आम पैदा करता है। हालांकि इस भारी उत्पादन का केवल 1% ही एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत में तो आम के लिए दीवानगी जग जाहिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय आमों की विदेशों तक जबरदस्त डिमांड है? मतलब ये कि आम की डिमांड केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बम्पर होती है। दुनिया भर में लोगों के लिए भारतीय आम पहली पसंद है। तभी तो भारत हर साल 40 से अधिक देशों को आम सप्लाई करता है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 की अगर बात की जाए तो भारत ने करीब 30,000 मीट्रिक टन से ज्यादा आम एक्सपोर्ट किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का दशहरी हो, महाराष्ट्र का अल्फांसो, बिहार का मालदा हो या फिर गुजरात का केसर, भारत में आम की सैकड़ों किस्में हैं। जितनी किस्में उतनी ही हाई डिमांड दुनिया भर में होती है। विदेशों में सबसे ज्यादा मांग अल्फांसो और केसर की होती है, लेकिन बनारसी लंगड़ा, दशहरी और चौसा भी यूरोपीय बाजारों की रौनक बढ़ा रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के बंगनपल्ली और तोतापुरी आम की भी अच्छी खासी डिमांड है, जबकि भारतीय आमों का सबसे बड़ा दीवाना है यूएई। इसके बाद यूके, कतर, ओमान और अमेरिका का नंबर आता है।
1: आज जूनागढ़ मार्केटिंग यार्ड के अंदर केले की बॉक्स की आवक 10-12 हजार की बॉक्स की आवक है। आने वाले दिनों में केले की आवक बढ़ने वाली है पहली तारीख से, और भाव 700 रुपए से लगा के 1200 रुपए 10 केजी का भाव है।
0: लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में भारतीय आमों को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। अमेरिका में आम महज एक फल नहीं बल्कि लग्जरी, टेस्ट और स्टेटस सिंबल जैसा बन गया है। अमेरिका में भारतीय मैंगो की कितनी डिमांड है उसका उदाहरण हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला। जब एक अमेरिकी सोशल मीडिया यूजर ने ये दावा किया कि मात्र 20 मिनट में अमेरिका में इंडियन मैंगो का स्टॉक खत्म हो जा रहा है। इंटरनेट पर किए गए दावे के मुताबिक भारत से पहुंचे आम के एक केस में 9 से 10 पीस होते हैं। ये केस 49.99 डॉलर का होता है, भारतीय रुपए में जिसकी कीमत 4800 रुपए होती है। इसे भारतीय रुपए में बदलें तो करीब एक आम की कीमत 480 रुपए तक पड़ती है। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका में भारतीय आम की दीवानगी पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। 5 मई को छपी इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय आम पाने के लिए अमेरिकी कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका में आम की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे एक बड़ी वजह है, भारतीय और दक्षिण एशियाई आबादी का बढ़ना। लेकिन अब सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं बल्कि अमेरिका भी आम को हेल्दी और प्रीमियम फ्रूट के तौर पर देख रहा है। भारत में अगर आम स्वाद की पहचान है तो अमेरिका जैसे मुल्कों में आम कल्चर, क्लास और क्रेज का प्रतीक बन चुका है। कुल मिलाकर मलिहाबाद के बागान से लेकर अमेरिका के सुपरमार्केट तक आम की मिठास और कारोबार दोनों की डिमांड इन दिनों हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप जानते हैं कि हमारी प्राचीन मान्यताओं में आम को देवफल का दर्जा मिला हुआ है? देखिए, जिस फल के स्वाद के हम दीवाने हैं उसका हमारे धर्म पुराणों और शुभ कार्यों से एक अटूट और बेहद पवित्र रिश्ता है। कोई भी शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश हो या फिर किसी का विवाह हो, आम के पत्तों के बिना सब कुछ अधूरा है। घर के मुख्य द्वार पर लगाए जाने वाले आम के पत्तों के तोरण को केवल सजावट नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को रोकने और सुख समृद्धि के स्वागत का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथाओं में भी आम का जिक्र मिलता है।

0: स्वाद का ही नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का भी अहम हिस्सा है। इसकी मिठास जहां दिल जीत लेती है, वहीं इसकी मौजूदगी हमारे धार्मिक संस्कारों को भी पूरा करती है। क्या आप जानते हैं कि ये फल हमारी थाली तक पहुंचने से पहले हमारे मंदिरों और पूजा की चौकियों तक पहुंचता है? शास्त्रों में आम को साक्षात सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य आम के पत्तों के बिना अधूरा है, चाहे गृह प्रवेश हो या दीपावली की पूजा। द्वार पर बंधा आम का वंदनवार नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का सुरक्षा कवच माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आम की लकड़ी को समिधा के रूप में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि हवन में आम की लकड़ी के इस्तेमाल से वातावरण में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। भारत में आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक दिव्य वरदान है। इसी वजह से वेदों में आम को अमृत फल कहा गया है। यह अकेला ऐसा फल है जिसका जिक्र रामायण से लेकर महाभारत तक और अजंता की गुफाओं से लेकर मुगल काल तक मिलता है। पौराणिक कथाओं में आम को ज्ञान का फल माना गया है। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध कथा भी है, जिसके अनुसार एक दिव्य आम के लिए गणेश जी और कार्तिकेय के बीच महादेव और माता पार्वती ने प्रतियोगिता कराई थी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भगवान शिव एकांबरेश्वर यानी आम के पेड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ का 3500 साल पुराना आम का पेड़ आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसकी चार शाखाएं चारों वेदों का प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक संस्कार में आम की मौजूदगी रहती है, कहीं समिधा के रूप में तो कहीं पल्लव के रूप में। आम हर जगह मौजूद है, अक्षय तृतीया से लेकर वट सावित्री तक। आम का दान और नैवेद्य सौभाग्य की निशानी है। आम सिर्फ गर्मियों का स्वाद ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का भी अहम हिस्सा है। इसकी मिठास जहां जीवन में स्वाद भरती है, वहीं इसकी पवित्रता हमारे संस्कारों को मजबूत बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: TuneIn has the music.
2: Take a vacation with poolside hits on TuneIn. TuneIn Poolside has the music I love. Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii,
3: Let's go.
2: Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn.
4: क्या है माँ की महिमा? माता का आपके किन ग्रहों और राशियों से संबंध होता है? माता के साथ अपने संबंधों को कैसे सुधारें और माता के जीवन को किन उपायों से बेहतर करें? मदर्स डे पर जानिए माता के आशीर्वाद और कृपा पाने के उपाय सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
0: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आज ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन, आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत अचल। अत्याधुनिक तोपों से लैस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार। आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया कदम। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण। एमआईआरवी तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बनाया निशान। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां। मंदिर के पास ही आसमान में एयर शो का रिहर्सल। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम में दिखाई करता। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए 256 करोड़ रुपए। आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी। भव्य सुरक्षित और व्यवस्थित मेला कराना लक्ष्य। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी नोरा फतेही। कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नोरा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने तमिलनाडु की सियासत में 59 साल बाद एक नई और दमदार लीक खींच दी है। तमिलनाडु में 59 साल बाद पहली बार ये मौका आया है जब डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही पार्टियां सत्ता से दूर हो चुकी है। इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बेदखल किया है तमिल फिल्मों के एक मसीहा ने।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु की सियासत में नई और मजबूत लीक खींचने वाले जोसेफ विजय चंद्रशेखर हैं। जी हाँ, तमिलनाडु की जनता जिन्हें प्यार से थलापति के नाम से बुलाती है, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय ने 2 साल पहले रुपहले पर्दे को अलविदा कह एक राजनीतिक पार्टी बनाई और उसके बाद हुए पहले ही चुनाव में इतिहास रच दिया। तमिलनाडु के सत्ता पर पिछले 59 साल से 2 ही पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके काबिज होती रही, लेकिन थलापति विजय ने दोनों का डिब्बा गोल कर नई सियासी अध्याय की शुरुआत कर दी है।

0: लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव त्योहार की तरह होते हैं, एक ऐसा त्योहार जिसमें जनता अगले 5 साल के लिए अपने मुस्तकबिल पर मुहर लगाती है। लेकिन दशकों में कभी एक बार ऐसा भी होता है जब कोई चुनाव सिर्फ त्योहार न रहकर बहुत बड़े बदलाव का ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाता है। तमिलनाडु के सियासी मैदान में इस बार बड़े बदलाव की ऐसी ही क्रांति देखने को मिली है और इस क्रांति के मसीहा बनकर उभरे हैं तमिल फिल्मों के महानायक जोसफ विजय चंद्रशेखर। प्रशंसक प्यार से जिन्हें थलापति विजय के नाम से बुलाते हैं। बीते 4 मई को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सूबे की 6 दशक पुरानी द्रविड़ियन राजनीति का एक तरह से पटाक्षेप कर दिया है। 234 सीटों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतकर थलापति विजय ने अन्नादुरई, करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन और जयललिता की वर्षों पुरानी द्रविड़ियन राजनीति की मजबूत विरासत के थुर्रे बिखेर दिए। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम के शिखर पर पहुंचने के बाद थलापति विजय ने 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कड़गम के नाम से नई पार्टी बनाई और उसके बाद हुए पहले ही विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों को धराशायी कर दिया। पार्टी बनने के बाद से ही थलापति विजय का आत्मविश्वास उनके प्रचंड जीत की सरगोशी कर रहा था।
1: I'm seeing last 2 years is confident level. Okay? His confident level is fantastic. And faith, I'll come as a Chief Minister of Tamil Nadu.
0: थलापति विजय का आत्मविश्वास तब भी दिखा जब उनकी पार्टी ऐतिहासिक जीत के बाद भी बहुमत के आंकड़े से 10 कदम दूर रह गई। अपनी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर थलापति विजय 2 बार 6 और 7 मई को राजभवन गए, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं होने का हवाला देकर उन्हें वापस कर दिया। लेकिन तमिलनाडु के इस थलापति ने फरवरी 2024 में राजनीतिक पार्टी बनाने के साथ ही अटल निश्चय कर लिया था कि राज्य की सत्ता के शीर्ष तक हर हाल में पहुंचेगा। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने सत्ताधारी डीएमके को भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी बताया था, जबकि बीजेपी को उन्होंने अपना वैचारिक विरोधी माना था। कमाल यह है कि बहुमत का आंकड़ा जुटाने के दौरान उन्होंने इन दोनों पार्टियों से दूरी बनाए रखी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि थलापति विजय ने विधानसभा चुनाव में अपने स्टारडम को भुनाकर तमिलनाडु की सत्ता के शीर्ष तक का सफर तय किया है, तो वो गलतफहमी में हैं। आज विजय की कामयाबी की जो बुलंद इमारत आपको नजर आ रही है, उसकी नींव 2 दशक पहले ही पड़ चुकी थी। थलापति विजय ने राजनीतिक पार्टी बेशक फरवरी 2024 में बनाई, लेकिन सच्चाई यही है कि वे अपने फैन क्लब के जरिए पिछले 2 दशक से समाज सेवा और जन कल्याण के काम में जुटे हुए हैं। विजय का फैन क्लब थलापति विजय मक्कल यक्कम काफी पहले से सक्रिय है, जिसके तहत ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप लगाने जैसे काम तो किए ही जाते रहे हैं। गरीबों को खाना कपड़ा देने से लेकर सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों, पुलिस थानों, यहाँ तक कि कोर्ट के मामलों में भी बेसहारा जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती रही है।
1: As a human, you should not be as a only artist. You must have some social thinking. So last 30 years, he was having in his mind, we have to do something for the society, for the Tamil people. It was there in his mind last. Slowly has developed these things.
0: साफ है कि तमिलनाडु की जनता ने उन्हें अपना थलापति माना है, तो उसके पीछे ठोस वजहें हैं और इन्हीं वजहों की वजह से उन्होंने तमिलनाडु में 1967 के बाद पहली बार गैर द्रमुक सत्ता की नींव डाली है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के तब के लोकप्रिय नेता अन्नादुरई ने 1949 में पेरियार से अलग होकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की नींव डाली थी। 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद अन्नादुरई को साल 1967 में कामयाबी मिली और उन्होंने राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। सरकार बनाने के 23 महीने बाद ही अन्नादुरई का निधन हो गया, जिसके बाद डीएमके की कमान करुणानिधि के हाथों में आ गई। उधर तमिल फिल्मों के तब के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन ने रुपहले पर्दे के माया लोक को अलविदा कहकर 17 अक्टूबर 1972 को AIADMK की स्थापना की। साल 1977 के विधानसभा चुनाव में एमजी रामचंद्रन करुणानिधि को करारी शिकस्त देकर सूबे की सत्ता पर काबिज हो गए। तब से लेकर आज तक यानी करीब 59 साल से यही दोनों पार्टियां बारी बारी से सूबे की सत्ता का स्वाद चखती रहीं। लेकिन थलापति विजय ने आखिरकार सत्ता के एकाधिकार के इस द्रविड़ियन अश्वमेध पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि जोसफ विजय से पहले करुणानिधि और एमजी रामचंद्रन की जमी जमाई सियासी विरासत को चुनौती देने की कोशिश नहीं की गई। दक्षिण भारत के थलाइवा रजनीकांत ने 3 दिसंबर 2020 को पूरे जोशो खरोश के साथ ऐलान किया कि वे जनवरी 2021 में एक नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। लेकिन जनवरी 2021 आने से पहले 29 दिसंबर 2020 को ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर रजनीकांत ने सियासी अखाड़े से दूर रहने का बयान जारी कर दिया। दक्षिण भारत के एक और स्टार कमल हसन ने भी 21 फरवरी 2018 को पूरे उत्साह और जोश के साथ मक्कनिधि मैयम के नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तमिलनाडु की 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कमल हसन ने किस्मत आजमाई, लेकिन कोयम्बटूर दक्षिण से खुद ही हार गए। उसके बाद तो सियासी सुरमा बनने की उनकी हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। पर थलापति विजय ने अद्भुत आत्मविश्वास के साथ तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री मारी और पहली बार में ही विजय पताका लहरा दिया।
2: जोसफ विजय चंद्रशेखर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कामयाबी के सफर में कभी ठहराव या फिर बिखराव का आलम नहीं देखा। एक बार जिस काम पर पहुंच गए तो उससे ऊपर ही बढ़े, नीचे की ओर कभी देखा ही नहीं। तमिल फिल्मों में जबरदस्त स्टारडम हासिल करने के बाद जब सियासी अखाड़े में उतरे तो वहां भी बड़े बड़े सूरमाओं को चित्त कर दिया। लेकिन इस कामयाब इंसान को बचपन में एक बड़ा सदमा लगा था, ऐसा सदमा जिसने मासूम उम्र में ही उनकी खुशियां छीन ली, बचपना छीन कर इन्हें शांत और अंतर्मुखी बना दिया। लेकिन वही सदमा बाद में इनकी जिंदगी की कामयाबी का शरार बन गई।

0: नफरत और नस्लीय भेदभाव की बुनियाद पर शुरू हुई द्रविड़ियन राजनीति की चूले हिलाकर तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज हुए जोसेफ विजय चंद्रशेखर की जिंदगी का सफर सफलता की अनोखी दास्तान है। दुनिया के सफलतम लोगों की जिंदगी में झांकेंगे तो आपको गिरने और संभलने, चढ़ने और फिसलने का सिलसिला दिखाई देगा, लेकिन जोसेफ विजय चंद्रशेखर की जिंदगी बिना गिरे, बिना फिसले, बिना थके, बिना रुके मुसलसल आगे बढ़ने का बेनजीर सिलसिला है। सफलता की ऐसी दास्तान जिसमें सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने का क्रम दिखता है, ठहरने या उतरने का कोई क्रम नजर नहीं आता। जिंदगी को लेकर इनका फलसफा भी यही है कि सफलता का कोई आखिरी छोर नहीं होता।
1: Don't lose your identity at any cost. Say no to temporary pleasures. Success is never ending. Failure is never final.
0: आपको बता दें कि 22 जून 1974 को चेन्नई में फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे विजय बचपन में काफी चंचल, वाचाल और बातूनी थे, लेकिन 10 साल की उम्र में हुई एक नामुराद दुखद घटना ने इनकी निश्चल मासूमियत को हमेशा के लिए छीन लिया। दरअसल विजय जब 3 साल के भी नहीं हुए थे तो 14 फरवरी 1977 को विधाता ने बहन के रूप में इन्हें अनुपम उपहार दिया। अपनी बहन विद्या के जन्म के बाद विजय का जीवन आह्लाद आनंद से भर गया। हालांकि तब विजय उम्र के लिहाज से बेहद नादान थे, लेकिन हर वक्त बहन के साथ रहना, उसकी किलकारियां सुनना, रोने पर उसे पुचकारना जोसेफ विजय की जिंदगी का हिस्सा बन गया। कुछ समय बाद विजय का जब कादम्बकम के फातिमा स्कूल में एडमिशन हुआ तो बहन को छोड़कर स्कूल जाना उन्हें बेहद खटकता था। बहन से एक पल की दूरी भी उन्हें नागवार गुजरती थी। स्कूल से लौटते तो सीधा बहन के पास जाते थे और उसकी बाल सुलभ चंचलता में खुद को फना कर देते थे। पर विधाता को भाई बहन के बीच का ये अनुपम प्यार लंबे वक्त तक मंजूर नहीं था। विद्या जब 7 साल की हुई तो किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। कहते हैं कि साल 1984 में भाई की गोद में ही बहन ने आखिरी सांसें ली। काल के इस क्रूर मजाक ने विजय को भीतर तक झकझोर दिया। बहन विद्या की मौत का सदमा इतना गहरा था कि चंचल वाचाल विजय 10 साल की उम्र में ही एकदम शांत और अंतर्मुखी हो गए। जीवन का उत्साह, उमंग एक झटके में खत्म हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम मिलने के बाद एक इंटरव्यू में विजय ने कहा था, छोटी बहन की मृत्यु के बाद मेरे जीवन में जो खालीपन आया वो बहुत साल बाद प्रशंसकों के प्यार से ही भर पाया। इस प्यार में अक्सर मुझे अपनी बहन की झलक दिखाई देती है। वक्त का कारवा गुजरता गया, लेकिन जोसेफ विजय 42 साल पहले दुनिया छोड़कर गई बहन की मनोरम यादें आज भी अपने सीने में सजोए हुए हैं। जोसेफ विजय की प्रोडक्शंस कंपनी का नाम वीवी क्रिएशंस है, विद्या विजय क्रिएशंस। इतना ही नहीं, अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों के लिए वो एक खास नंबर 0277 इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर उनकी बहन विद्या के जन्म के महीने और साल से जुड़ा हुआ है। विद्या के जन्म का साल 1977 था और महीना था फरवरी, यानी साल का दूसरा महीना। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि विजय की सफलता दर सफलता का बहन के प्रति उनके बेपनाह प्यार से आखिर क्या संबंध है? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। दरअसल बहन की दुनिया से विदाई के बाद विजय ने अपनी मासूमियत को, शोखी को, चंचलता को जब अपने सीने में दबाना शुरू किया तो कालांतर में उसने तूफान का संघनित रूप ले लिया। सीने में दबा वही संघनित तूफान पहले पर्दे पर और बाद में सियासी मैदान में बवंडर बनकर निकला तो बड़े बड़े सूरमा उसके सामने धराशायी हो गए। काबिले गौर है कि बहन विद्या की मृत्यु से पहले जोसेफ विजय तमिल फिल्म वेत्री में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू कर चुके थे। इस फिल्म का निर्देशन जोसेफ विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर ने किया था। पर विद्या की मृत्यु के बाद विजय इतने सदमे में थे कि मौका मिलने के बाद भी वो फिल्मों में काम करने से कतराने लगे थे। बेटे की ये हालत देखकर माँ बाप काफी परेशान थे और हर हाल में बेटे को इस सदमे से उबारना चाहते थे। इसीलिए माँ शोभा चंद्रशेखर ने साल 1991 में एक रोमांटिक फिल्म की पटकथा लिखी। पिता एस ए चंद्रशेखर ने इस कहानी पर बेटे को लीड हीरो लेकर फिल्म बनाने का फैसला किया, लेकिन कोई प्रोड्यूसर इस पर पैसा लगाने को राजी नहीं हुआ। आखिरकार पिता ने ही बैंक से लोन लेकर फिल्म का निर्माण किया। साल 1992 में आई नालैया थिरुप्पु बतौर लीड हीरो विजय की डेब्यू फिल्म थी। नालैया थिरुप्पु बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई और पूरा पैसा डूब गया। फायदा बस इतना हुआ कि

0: और तेज हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 1994 में आई रसीगन और 1996 में आई उन्नक्कगा ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। साल 1997 में आई कुडालुकु मरियाधाई में तो विजय के बेहतरीन अभिनय ने क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया। रोमांटिक फिल्म कुडालुकु मरियाधाई के लिए विजय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के स्टेट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। विजय ने अपने फिल्मी करियर की कामयाबी की सीढ़ियां बड़े ही करीने से चढ़ी हैं। शुरुआती 10-11 सालों तक विजय ने खुद को रोमांटिक हीरो के इमेज तक महदूद रखा, लेकिन साल 2002 के बाद उन्होंने एक्शन फिल्मों को साइन करना शुरू किया। साल 2003 में थिरुमलाई में दर्शकों ने पहली बार विजय का एक्शन अवतार देखा। साल 2004 में आई गिली में एक कबड्डी प्लेयर के किरदार को विजय ने अपने लाजवाब एक्शन से इतना दमदार कर दिया कि रातों रात तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। गिली घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई। ऐसा लगता है कि जोसफ विजय अपने फिल्मी करियर को एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ा रहे थे। करीब एक दशक तक अपने एक्शन अवतार में कामयाबी का झंडा बुलंद करने के बाद तमिल सुपरस्टार ने सामाजिक सरोकार वाली फिल्मों को साइन करना शुरू कर दिया। 2014 में आई कत्थी में विजय डबल रोल में दिखे, जिसमें से एक छोटे मोटे चोर कथी रेशन का किरदार है, जबकि दूसरा जीवानंदम सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता। कत्थी का जीवा बड़े कॉरपोरेट घरानों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। इसी तरह साल 2018 में आई सरकार में विजय सुंदर रामास्वामी नाम के एक एनआरआई बिजनेसमैन के किरदार में नमूदार होते हैं। जो वोट डालने भारत आता है तो पता चलता है कि उसका वोट पहले ही पड़ चुका है। सुंदर रामास्वामी के किरदार में विजय चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते देखे जा सकते हैं। साल 2021 में आई मास्टर में जोसफ विजय लोकेश कनगराज के ऐसे किरदार में हैं जो विजय सेतुपति नाम के खतरनाक गैंगस्टर के खिलाफ मोर्चा खोलता है और बच्चों को उसके अत्याचार से मुक्त कराता है। साल 2023 में आई लियो में विजय पार्थिवन की भूमिका में हैं, जो हिमाचल प्रदेश में कैफे चलाता है और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू करता है। लियो ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड वाइड 623 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। कमाल देखिए कि सियासी अखाड़े में उतरने से करीब एक दशक पहले से जोसफ विजय सोशल कॉज पर फिल्में बनाने लगे थे। 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कड़गम नाम से राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी सफर पर विराम लगाने का ऐलान भी कर दिया। 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उनकी आखिरी रिलीज फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। हालांकि उनकी एक और फिल्म जननायकन रिलीज को तैयार है, पर गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर विजय ने जब उम्मीदवार उतारे तो चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़े उनकी फिल्मों के क्लिपिंग्स का जमकर इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये है कि विजय ने पहले रोमांटिक हीरो के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, उसके बाद एक्शन हीरो के तौर पर जबरदस्त स्टारडम हासिल किया और राजनीति में कदम रखने से पहले एक दशक तक ऐसी फिल्में बनाई जिससे उनकी छवि जननायक वाली बन गई। इस लंबी रणनीतिक सूझबूझ का नतीजा ये है कि अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने सूबे में 60 साल से अंगद पांव जमाए बैठी द्रमुक राजनीति का सफाया कर दिया।
1: तो बंदे में दम में आज आपने थलापति विजय के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: खबरें कुछ
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: संगम नगरी प्रयागराज वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जानी जाएगी। यहाँ पर यमुना नदी में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की खास पहल की गई है, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। देखिए हमारी रिपोर्ट।
3: प्रयागराज में संगम पर स्नान ध्यान के लिए देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग गंगा स्नान करके पुण्य कमाने की चाहत रखते हैं, लेकिन यहीं पर निरंतर बह रही यमुना की जलधारा में अब बोटिंग और वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के रोमांच की खास तस्वीरें नजर आ रही हैं।
4: संगम नगरी प्रयागराज अभी तक धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में ये कयाकिंग कैनोई के जो नावें हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं और बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए यहाँ प्रेरित किया जा रहा है और बच्चे यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स सीख रहे हैं।
3: यहाँ पर स्पीड बोट और जेट स्की जैसे पानी में चलने वाले स्कूटर और दूसरी नावों का इंतजाम किया गया है, ताकि आम लोग और सैलानी नदी के पानी में खेल कूद का मजा ले सकें। इसके लिए यहाँ ट्रेंड ऑपरेटर रखे गए हैं, जो लोगों को जल विहार कराते हैं।
5: ये स्कूटर एक सिंगल पर्सन जा सकता है, जिसके साथ हमारे ट्रेंड ऑपरेटर भी जाते हैं सुबह शाम, और काफी हमारे पास आती रहती है इंक्वायरी, आती रहती है, लोग आते हैं जेट स्की का आनंद लेते हैं। ये हमारा नैनी ब्रिज के पास ही है, तो काफी लोग आते हैं।
3: हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव ने भी खुद जेट स्की पर सवार होकर यमुना में सैर का आनंद लिया।
4: तो दिखाते हैं, ये पूरा रोमांचित करने वाला जो पल है वो यहाँ पर है और इस तरह से राइड होगी और आप देख सकते हैं कितना रोमांचित करने वाला ये क्षण है। और जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे उनको इस वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ देखने को मिलेगा और एक धार्मिक पर्यटन के साथ इस वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ ले सकेंगे।
3: खास बात यह है कि प्रयागराज में यमुना रिवर बैंक बोट क्लब पर वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ बर्थडे पार्टी और दूसरे इवेंट्स का भी आयोजन किया जा सकता है। यहां से संगम जाने के लिए 7-सीटर बोट मिलेगी, साथ ही तमाम लोग यहां पर जल क्रीड़ा का भी आनंद ले सकेंगे। प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि यहां आने वालों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
6: और माँ यमुना की जो जलधारा है बहुत विशाल है, वाटर स्पोर्ट्स की वहाँ बहुत संभावना थी, इसलिए नगर निगम प्रयागराज ने महसूस किया, हम सब लोगों ने सदन में संकल्प पारित किया कि वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। और 2.5 करोड़ रुपए का उपकरण स्मार्ट सिटी नगर निगम प्रयागराज के द्वारा कियोकांग कैनोइंग इत्यादि हम लोगों ने छोटी लाइट बोटें उसको उपलब्ध कराने का काम किया। बहुत न्यूनतम किराया रखा गया है, चूँकि हमारे जो पर्यटक आते हैं उनको भी किसी प्रकार की कठिनाई सामना न करना पड़े, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा का भी विशेष ध्यान उसमें दिया गया है, किराया बहुत न्यूनतम रखा गया।
3: यहाँ पर स्थानीय युवाओं और किशोरों को वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने का भी इंतजाम किया गया है, ताकि वे इस क्षेत्र में महारत हासिल कर सके और इस क्षेत्र में करियर भी बना सके।
7: और इसको सिखाने के लिए बच्चों को सबसे पहली चीज तो स्विमिंग आती है, तो हम लोग जो नए बच्चे होते हैं उनको पहले स्विमिंग सिखाते हैं। ये वाटर स्पोर्ट्स ये काफ़ी बैलेंसिंग की बोट है, इस पर बैलेंस नहीं रहता तो बच्चे पलटते भी हैं, तो इसलिए स्विमिंग तो कंपलसरी है उनको। स्विमिंग सिखाने के बाद फिर वो उनको कुछ महीने टेक्निक जैसे ज़मीन पर सिखाया जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इनको पानी में ट्रेनिंग देते हैं।
8: नेशनल लेवल हमारे यहाँ प्लेयर खेले हुए हैं और मेडल भी है नेशनल का, बाकी सब अभी इंडियन आर्मी में भी कुछ लोग हैं, और अभी तो 4 लड़के हुए हैं यूपी पुलिस में, अभी प्रेजेंट में ही हुए हैं, उनका भी ज्वाइनिंग होने वाला है।
3: अभी यहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेने वालों की संख्या 50 तक पहुंच चुकी है। किशोरों और युवाओं में खास तौर से इसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है।
4: यहां पर ये यमुना नदी है और इतना बड़ा जो विस्तार है, यहां इस कयाकिंग कैनोई के माध्यम से यहां पर बच्चे वाटर स्पोर्ट्स के लिए सीख रहे हैं और यहाँ पर नाव चला रहे हैं, तो संभावना यहाँ पर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स उसको लेकर के यहाँ पर हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर अब धार्मिक पर्यटन के अलावा स्पोर्ट्स को भी बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: If you're serious about sports, NBC

0: Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: क्या है माँ की महिमा? माता का आपके किन ग्रहों और राशियों से संबंध होता है? माता के साथ अपने संबंधों को कैसे सुधारें और माता के जीवन को किन उपायों से बेहतर करें? मदर्स डे पर जानिए माता के आशीर्वाद और कृपा पाने के उपाय सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आज ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत अचल, अत्याधुनिक तोपों से लैस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार। आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया कदम। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण। एमआईआरवी तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बताया निशान। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां। मंदिर के पास ही आसमान में एयर शो का रिहर्सल। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाई करतब। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए 256 करोड़ रुपए। आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी। भव्य सुरक्षित और व्यवस्थित मेला कराना लक्ष्य। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी नोरा फतेही। कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नोरा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। तो देखिए, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही जो चीज सबसे पहले हमारे जहन में आती है, हमारे दिमाग में आती है, वो या तो सूरज की तपिश है या फिर मीठे और रसीले आम है जिनकी खुशबू और मिठास का हर कोई दीवाना है। देखिये, दशहरे की बेमिसाल खुशबू से लेकर लंगड़े की मिठास तक, मालदा के रसीले स्वाद से लेकर चौसे की लज्जत तक, आम गर्मियों की शान है। या यूं कहें कि नाम भले ही इसका आम है लेकिन स्वाद सिर्फ खास नहीं बल्कि बेहद खास है। आज हम आपको आम की कहानी सुनाएंगे, आम के नामों से जुड़ा इतिहास भी बताएंगे और कैसे फलों का राजा आम कारोबार का भी राजा है ये भी बताएंगे।

हापुस की शाही खुशबू है तो लंगड़े की बेमिसाल मिठास। दशहरे की नजाकत है तो चौसे की लज्जत भी है। मालदा का रसीला स्वाद है तो तोता परी का जुदा अंदाज है। लेकिन ये खास होकर भी आम ही है। अलबत्ता नाम भले ही आम हो लेकिन स्वाद सिर्फ खास नहीं बेहद खास है। गर्मियों का मौसम आम के दीवानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं रहता। तपती गर्मी हो, सूरज की तपिश हो या फिर पसीने से तर बतर दोपहर, अगर इस मौसम में कुछ सुकून देता है तो वो फलों का राजा आम ही तो है। जिसकी बेमिसाल खुशबू और लाजवाब स्वाद जुबान पर मिठास घोल देता है। कहने को तो सबर का फल मीठा ही होता है लेकिन हम तो कहते हैं कि सबर का फल आम होता है क्योंकि आम का नाम आते ही मिठास खुद ही आ जाती है। आम की मिठास और इसकी खुशबू भारतीय जनमानस की रग रग में बसती है। इसे केवल एक फल कहना इसकी गरिमा को कम करने जैसा होगा। आम तो साक्षात अमृत फल है।

शाखों पर लदे इन आमों को देखिए, ये किसी तोहफे से कम नहीं है। हापुस, लंगड़ा, सिंदूरी, तोतापरी, दशहरी और चौसा, आप बस नाम लेते जाइए, जुबान पर लज्जत बढ़ती जाएगी।

इसका नाम भले ही आम हो लेकिन ये कितना खास है उसको बताने की जरूरत नहीं। कविताओं और साहित्य में इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोक गीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है।

0: ये सिर्फ एक फल नहीं, ये बचपन की वो यादें हैं जो आज भी हम और आप अपने दिलों में समेटे हैं। क्योंकि हर आम एक कहानी है और मिठास एक एहसास है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: देखिए, कहते हैं कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन बात जब आम की हो तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में मिलने वाले आमों का जिक्र होना तो लाजमी है। देखिए, महाराष्ट्र के रत्नागिरी का अल्फांजो हो, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद का दशहरी हो, बनारस का चौसा, दक्षिण भारत का बंगनपल्ली या सफेदा, कर्नाटक का बादामी और बंगाल के हिमसागर आम की तो अपनी ही डिमांड है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं।

0: कहने को तो आम की सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन भारत में आम की लगभग 1500 प्रजातियां पनपती हैं, जिनमें से करीब 1000 किस्में आम तौर से खाई और बाजार में बेची जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले हर आम का अपना एक अलग मिजाज, अपना रंग और अपनी एक खास मिठास होती है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर इलाके का अपना एक खास आम है, इसलिए भारत को आमों का देश भी कहा जाता है। दशहरी की बेमिसाल खुशबू, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मशहूर दशहरी आम की। लखनऊ के मलिहाबाद की गलियों में दशहरी की मिठास घुली मिलती है। पतली गुठली और लंबी बनावट वाला ये आम अपनी बेमिसाल मिठास के लिए मशहूर है। लगभग 200 से 300 साल पुराने इतिहास वाले इस आम का नाम काकोरी के पास दशहरी गांव से पड़ा है। सरकार ने भी 200 साल पुराने इस पेड़ को ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। रसीला लंगड़ा आम, वहीं वाराणसी का लंगड़ा आम अपने नाम की तरह ही दिलचस्प है। लंगड़ा नाम सुनते ही पहली बार में अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प मानी जाती है। कहते हैं बनारस के एक मंदिर में रहने वाले एक साधु जो पैरों से दिव्यांग थे, उन्होंने आम के पौधे लगाए थे। जब इन पेड़ों पर फल आए तो उनका स्वाद लोगों को पसंद आया, तभी से ये आम भी मशहूर होते चले गए और आज लंगड़ा आम बनारस ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है।
1: आम की किस्मों में भारत में इतनी अधिक विविधता है जिसको का वर्णन करना आसान नहीं है, लेकिन उतने ही इन आमों के नाम भी रोचक हैं। किसी आम को अलिफ लैला, अगरबत्ती, नाजुक बदन, बेनजीर के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पे कुछ बहुत ही कॉमन नाम भी हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो या हाफुस।
0: आमों का राजा अल्फांसो, महाराष्ट्र के कोंकण तट से आता है अल्फांसो यानी हापूस, जिसे दुनिया भर में आमों का राजा कहा जाता है। इसकी केसरिया रंगत और बेमिसाल स्वाद इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सुपरस्टार बनाता है। रत्नागिरी और देवगढ़ की मिट्टी से निकलने वाले इस आम की खुशबू इतनी तेज होती है कि एक आम पूरे कमरे को महका दे। इसकी कीमत भले ही थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन इसका शाही स्वाद इसे सबसे जुदा बनाता है। चौंसे की मिठास, आम के शौकीनों की पहली पसंद चौंसा आम, बेमिसाल स्वाद और लाजवाब सुगंध। आमतौर से बिहार में पाए जाने वाले इस आम की खेती अब उत्तर प्रदेश में भी जोर शोर से होती है। हालांकि चौंसा की उत्पत्ति बिहार से ही हुई है। कहा जाता है कि बिहार के चौंसा नाम की जगह पर इसकी पैदावार होती थी, जिसकी वजह से इसका नाम चौंसा पड़ा। ये आम की एक ऐसी किस्म है जिसकी फसल देर से तैयार होती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि जब दशहरी और लंगड़ा आम का सीजन खत्म हो जाता है तब चौंसा आम बाजार में आता है।
1: आम फलों का राजा है और भारतवर्ष आम की अपार किस्मों की संपदा के कारण विश्वविख्यात है। देश में 1500 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। कहीं पे लोग दशहरी चौसा को पसंद करते हैं तो कहीं नीलम बंगनापल्ली को। रत्नागिरी और महाराष्ट्र का अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है और इसको बहुत ही अच्छे दाम पर लोग फरवरी के माह में खरीदते हैं। हम देखेंगे,
0: यानी जब बाजार में आमों की तादाद कम होने लगती है तब चौंसा अपनी मिठास खोल देता है और महफिल लूट ले जाता है। दक्षिण और पूर्व का गौरव, दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश का बंगनपल्ली या सफेदा अपनी बड़ी बनावट और मिठास के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का हिमसागर है, देखने में भले ही छोटा है लेकिन इसका स्वाद इतना मलाईदार है कि इसे मिष्टी दोई के देश का सबसे बड़ा कंपटीशन माना जाता है। सबसे बड़ा आम नूर जहां, लेकिन आम की दुनिया सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, यहाँ अजूबे भी हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पैदा होने वाला नूर जहां आम उन्हीं में से एक है, जिसके एक आम का वजन 4 किलो तक हो सकता है। मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर का कट्टीवाड़ा अपने झरनों, बारिश और नूर जहां आम के लिए भी जाना जाता है। मौसम और मिट्टी ने इस फल के पनपने के लिए एकदम सही हालात दिए हैं। नूर जहां को दुनिया का सबसे बड़ा आम माना जाता है। ये भारत में आम प्रेमियों के बीच जितना लोकप्रिय है उतना ही दुर्लभ भी है। सबसे महंगा आम, और अगर बात करें दुनिया के सबसे महंगे आम की, तो जापानी नस्ल का मियाज़ाकी अब भारत में भी उगाया जा रहा है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। गर्मियों का मौसम आम के दीवानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होता है। इस मौसम में हम और आप आम का जमकर लुत्फ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: देखिए, गर्मियों की दोपहर हो और जिक्र आम का ना हो तो लगता है जैसे महफिल में रौनक ही ना हो। लेकिन आम का रिश्ता सिर्फ हमारी ज़ुबान से नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास के पन्नों और शायरों के मखमली कलम से भी रहा है। गालिब से लेकर गुलजार तक ने आम की लज्जत को अपनी कविताओं के जरिए शब्दों में पिरोया है। गालिब तो आम के इतने बड़े शौकीन थे, इतने बड़े फैन थे कि वो कहते थे कि आमों में बस दो ही खूबियां होनी चाहिए, एक तो वो मीठे हों और दूसरा वो बहुत सारे हों। उर्दू और हिंदी शायरों में आम को महबूब की मिठास और बचपन की यादों से जोड़कर देखा जाता रहा है। देखिए, इकबाल हो या अमीर खुसरो, हर किसी ने इस फल की तारीफ में कसीदे पढ़ लिखे हैं।

0: मीठा, रसीला और दिलों पर राज करने वाला आम। गर्मियों में लोग भले ही चलचलाती धूप और पसीने से परेशान रहते हैं, लेकिन इस मौसम में मिलने वाला आम किसी तोहफे से कम नहीं होता। बच्चे हो या बुजुर्ग, गरीब हो या अमीर, आम हर किसी को खास एहसास कराता है। आम सदियों से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और आज भी इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे पहले आम आम्रफल कहा जाता था। पुराने वैदिक ग्रंथों में इसे रसाला और सहकार नाम से भी जाना जाता था। इन नामों का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक, उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। यानी आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में आम की पैदावार हुई थी, जहां से ये दक्षिण भारत पहुंचा और तमिल में इसे आमकाय कहा गया, जो बोलचाल की भाषा में बदलकर धीरे धीरे मामकाय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर मांगा के नाम में बदल दिया। 16वीं सदी में पुर्तगाली कारोबारियों ने आम को अफ्रीका और ब्राजील तक पहुंचाया और धीरे धीरे ये आम फल खास बन गया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इतिहास के हर दौर में इसकी मिठास ने लोगों के दिलों को जोड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भी आम का इंतजार हर गर्मी में उतनी ही बेसब्री से किया जाता है। इतिहास में आम की खास अहमियत रही है। सम्राट अशोक से लेकर मुगल काल तक आम की दीवानगी देखी गई है। कविता और साहित्य में भी इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोक गीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है। आम के बारे में कवि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था कि आम में बस दो खूबियां होनी चाहिए, एक मीठा हो और दूसरा बहुत सारे हो। सिर्फ गालिब ही नहीं बल्कि गुलजार से लेकर अपने जमाने के मशहूर शायरों में शुमार सागर खयामी ने तो इस पर पूरी उर्दू कविता लिखी है। फल कोई जमाने में नहीं, आम से बेहतर करता है सना आम की गालिब सा सुखनवर। क्या बात है, आमों की हो देसी या विदेशी, सुर्खे हो सरौली हो कि तुखमी हो कि कलमी, चौसे हो सफेदे हो कि खजरी हो कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। हिंदी साहित्य में भी खासकर काव्य में आम लोगों को लेकर खूब लिखा रचा गया है। आम को लेकर आम का बाग नाम की कविता बेहद चर्चित है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहाँ अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर और तोतापुरी जैसी सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, जो हर राज्य की अपनी खास पहचान बन चुकी हैं। कुल मिलाकर आम सिर्फ स्वाद नहीं, एक हसीन एहसास है। एक ऐसा फल जो बचपन की यादें भी है और हर गर्मी की सबसे बड़ी खुशी भी। शायद इसीलिए हर साल जब आम आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: जब गर्मियों की दस्तक होती है तो सिर्फ तापमान नहीं बढ़ता बल्कि देश का फल बाजार भी अरबों रुपए के कारोबार से गुलजार हो उठता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आम की वजह से। देखिए, भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरी दुनिया के कुल आम उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा अकेले हिंदुस्तान से आता है। उत्तर प्रदेश का महिलाबाद हो, महाराष्ट्र का रत्नागिरी या फिर आंध्र प्रदेश के बगान, लेकिन तमाम आमों की मिठास और खुशबू अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों तक जाती है।

0: आम सिर्फ स्वाद का राजा नहीं है बल्कि करोड़ों अरबों के कारोबार का बादशाह भी है। उत्तर प्रदेश के बागों से लेकर अमेरिका की सुपरमार्केट तक फलों का राजा सिर्फ मिठास नहीं बिखेरता बल्कि करोड़ों का कारोबार भी देता है। गर्मी का मौसम आते ही आम की मिठास हर किसी के दिल को खुश कर देती है, खासकर भारतीय आम अल्फांसो, केसर और दशहरी, जो दुनिया भर में अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर हैं। घरेलू बाजार की बात करें तो आम का बाजार करीब 2.30 बिलियन डॉलर यानी लगभग 19,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो सालाना 6-7% की दर से बढ़ रहा है। भारत में दुनिया के कुल आम उत्पादन का 40-50% हिस्सा पैदा होता है, यानी भारत सालाना 20 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा आम पैदा करता है। हालांकि इस भारी उत्पादन का केवल 1% ही एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत में तो आम के लिए दीवानगी जग जाहिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय आमों की विदेशों तक जबरदस्त डिमांड है? मतलब ये कि आम की डिमांड केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बम्पर होती है। दुनिया भर में लोगों के लिए भारतीय आम पहली पसंद है। तभी तो भारत हर साल 40 से अधिक देशों को आम सप्लाई करता है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 की अगर बात की जाए तो भारत ने करीब 30,000 मीट्रिक टन से ज्यादा आम एक्सपोर्ट किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का दशहरी हो, महाराष्ट्र का अल्फांसो, बिहार का मालदा हो या फिर गुजरात का केसर, भारत में आम की सैकड़ों किस्में हैं। जितनी किस्में उतनी ही हाई डिमांड दुनिया भर में होती है। विदेशों में सबसे ज्यादा मांग अल्फांसो और केसर की होती है, लेकिन बनारसी लंगड़ा, दशहरी और चौसा भी यूरोपीय बाजारों की रौनक बढ़ा रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के बंगनपल्ली और तोतापुरी आम की भी अच्छी खासी डिमांड है, जबकि भारतीय आमों का सबसे बड़ा दीवाना है यूएई। इसके बाद यूके, कतर, ओमान और अमेरिका का नंबर आता है।
1: आज जूनागढ़ मार्केटिंग यार्ड के अंदर केले की बॉक्स की आवक 10-12 हजार की बॉक्स की आवक है। आने वाले दिनों में केले की आवक बढ़ने वाली है, पहली तारीख पीछे, और भाव 700 रुपए से लगा के 1200 रुपए 10 केजी का भाव है।
0: लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में भारतीय आमों को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। अमेरिका में आम महज एक फल नहीं बल्कि लग्जरी, टेस्ट और स्टेटस सिंबल जैसा बन गया है। अमेरिका में भारतीय मैंगो की कितनी डिमांड है उसका उदाहरण हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला। जब एक अमेरिकी सोशल मीडिया यूजर ने ये दावा किया कि मात्र 20 मिनट में अमेरिका में इंडियन मैंगो का स्टॉक खत्म हो जा रहा है। इंटरनेट पर किए गए दावे के मुताबिक भारत से पहुंचे आम के एक केस में 9 से 10 पीस होते हैं। ये केस 49.99 डॉलर का होता है, भारतीय रुपए में जिसकी कीमत 4800 रुपए होती है। इसे भारतीय रुपए में बदलें तो करीब एक आम की कीमत 480 रुपए तक पड़ती है। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका में भारतीय आम की दीवानगी पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। 5 मई को छपी इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय आम पाने के लिए अमेरिकी कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका में आम की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे बड़ी वजह है भारतीय और दक्षिण एशियाई आबादी का बढ़ना। लेकिन अब सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं बल्कि अमेरिका भी आम को हेल्दी और प्रीमियम फ्रूट के तौर पर देख रहा है। भारत में अगर आम स्वाद की पहचान है तो अमेरिका जैसे मुल्कों में आम कल्चर, क्लास और क्रेज का प्रतीक बन चुका है। कुल मिलाकर मलिहाबाद के बागान से लेकर अमेरिका के सुपरमार्केट तक आम की मिठास और कारोबार दोनों की डिमांड इन दिनों हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप जानते हैं कि हमारी प्राचीन मान्यताओं में आम को देवफल का दर्जा मिला हुआ है? देखिए, जिस फल के स्वाद के हम दीवाने हैं उसका हमारे धर्म पुराणों और शुभ कार्यों से एक अटूट और बेहद पवित्र रिश्ता है। कोई भी शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश हो या फिर किसी का विवाह हो, आम के पत्तों के बिना सब कुछ अधूरा है। घर के मुख्य द्वार पर लगाए जाने वाले आम के पत्तों के तोरण को केवल सजावट नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को रोकने और सुख समृद्धि के स्वागत का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथाओं में भी आम का जिक्र मिलता है।

0: आम सिर्फ स्वाद का ही नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का भी अहम हिस्सा है। इसकी मिठास जहां दिल जीत लेती है, वहीं इसकी मौजूदगी हमारे धार्मिक संस्कारों को भी पूरा करती है। क्या आप जानते हैं कि ये फल हमारी थाली तक पहुंचने से पहले हमारे मंदिरों और पूजा की चौकियों तक पहुंचता है? शास्त्रों में आम को साक्षात सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य आम के पत्तों के बिना अधूरा है, चाहे गृह प्रवेश हो या दीपावली की पूजा। द्वार पर बंधा आम का वंदनवार नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का सुरक्षा कवच माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आम की लकड़ी को समिधा के रूप में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि हवन में आम की लकड़ी के इस्तेमाल से वातावरण में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। भारत में आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक दिव्य वरदान है। इसी वजह से वेदों में आम को अमृत फल कहा गया है। ये अकेला ऐसा फल है जिसका जिक्र रामायण से लेकर महाभारत तक और अजंता की गुफाओं से लेकर मुगल काल तक मिलता है। पौराणिक कथाओं में आम को ज्ञान का फल माना गया है। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध कथा भी है, जिसके अनुसार एक दिव्य आम के लिए गणेश जी और कार्तिकेय के बीच महादेव और माता पार्वती ने प्रतियोगिता कराई थी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भगवान शिव एकाम्बरेश्वर यानी आम के पेड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ का 3500 साल पुराना आम का पेड़ आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसकी चार शाखाएं चारों वेदों का प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक संस्कार में आम की मौजूदगी रहती है, कहीं समिधा के रूप में तो कहीं पल्लव के रूप में। आम हर जगह मौजूद है, अक्षय तृतीया से लेकर वट सावित्री तक। आम का दान और नैवेद्य सौभाग्य की निशानी है। आम सिर्फ गर्मियों का स्वाद ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का भी अहम हिस्सा है। इसकी मिठास जहां जीवन में स्वाद भरती है, वहीं इसकी पवित्रता हमारे संस्कारों को मजबूत बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What you got for me, Jack?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: है माँ की महिमा। माता का आपके किन ग्रहों और राशियों से संबंध होता है? माता के साथ अपने संबंधों को कैसे सुधारें

0: पायों से बेहतर करें। मदर्स डे पर जानिए माता के आशीर्वाद और कृपा पाने के उपाय सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत, दस की उम्र में लगा गहरा सदमा, दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
4: बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आज ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन, आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत अचल, अत्याधुनिक तोपों से लैस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार, आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया कदम। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण, एमआईआरवी तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बनाया निशान। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां, मंदिर के पास ही आसमान में एयर शो का रिहर्सल, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाई करतब। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए 256 करोड़ रुपए, आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी, भव्य सुरक्षित और व्यवस्थित मेला कराना लक्ष्य। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी नोरा फतेही, कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नोरा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने तमिलनाडु की सियासत में 59 साल बाद एक नई और दमदार लीक खींच दी है। तमिलनाडु में 59 साल बाद पहली बार ये मौका आया है जब डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही पार्टियां सत्ता से दूर हो चुकी है। इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बेदखल किया है तमिल फिल्मों के एक मसीहा ने।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु की सियासत में नई और मजबूत लीक खींचने वाले जोसेफ विजय चंद्रशेखर हैं। जी हाँ, तमिलनाडु की जनता जिन्हें प्यार से थलापति के नाम से बुलाती है, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय ने 2 साल पहले रुपहले पर्दे को अलविदा कह एक राजनीतिक पार्टी बनाई और उसके बाद हुए पहले ही चुनाव में इतिहास रच दिया। तमिलनाडु के सत्ता पर पिछले 59 साल से 2 ही पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके काबिज होती रही, लेकिन थलापति विजय ने दोनों का डिब्बा गोल कर नई सियासी अध्याय की शुरुआत कर दी है।

0: लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव त्योहार की तरह होते हैं, एक ऐसा त्योहार जिसमें जनता अगले 5 साल के लिए अपने मुस्तकबिल पर मुहर लगाती है। लेकिन दशकों में कभी एक बार ऐसा भी होता है जब कोई चुनाव सिर्फ त्योहार न रहकर बहुत बड़े बदलाव का ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाता है। तमिलनाडु के सियासी मैदान में इस बार बड़े बदलाव की ऐसी ही क्रांति देखने को मिली है और इस क्रांति के मसीहा बनकर उभरे हैं तमिल फिल्मों के महानायक जोसफ विजय चंद्रशेखर। प्रशंसक प्यार से जिन्हें थलापति विजय के नाम से बुलाते हैं। बीते 4 मई को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सूबे की 6 दशक पुरानी द्रविड़ियन राजनीति का एक तरह से पटाक्षेप कर दिया है। 234 सीटों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतकर थलापति विजय ने अन्नादुरई, करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन और जयललिता की वर्षों पुरानी द्रविड़ियन राजनीति की मजबूत विरासत के थुर्रे बिखेर दिए। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम के शिखर पर पहुंचने के बाद थलापति विजय ने 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कड़गम के नाम से नई पार्टी बनाई और उसके बाद हुए पहले ही विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों को धराशायी कर दिया। पार्टी बनने के बाद से ही थलापति विजय का आत्मविश्वास उनके प्रचंड जीत की सरगोशी कर रहा था।
1: My wishes to my son, because I'm seeing last 2 years is confident level. Okay, his confident level is fantastic. And faith, I will come. I will come as Chief Minister of Tamil Nadu.
0: थलापति विजय का आत्मविश्वास तब भी दिखा जब उनकी पार्टी ऐतिहासिक जीत के बाद भी बहुमत के आंकड़े से 10 कदम दूर रह गई। अपनी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर थलापति विजय 2 बार 6 और 7 मई को राजभवन गए, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं होने का हवाला देकर उन्हें वापस कर दिया। लेकिन तमिलनाडु के इस थलापति ने फरवरी 2024 में राजनीतिक पार्टी बनाने के साथ ही अटल निश्चय कर लिया था कि राज्य की सत्ता के शीर्ष तक हर हाल में पहुंचेगा। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने सत्ताधारी डीएमके को भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी बताया था, जबकि बीजेपी को उन्होंने अपना वैचारिक विरोधी माना था। कमाल यह है कि बहुमत का आंकड़ा जुटाने के दौरान उन्होंने इन दोनों पार्टियों से दूरी बनाए रखी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि थलापति विजय ने विधानसभा चुनाव में अपने स्टारडम को भुनाकर तमिलनाडु की सत्ता के शीर्ष तक का सफर तय किया है, तो वो गलतफहमी में हैं। आज विजय की कामयाबी की जो बुलंद इमारत आपको नजर आ रही है, उसकी नींव 2 दशक पहले ही पड़ चुकी थी। थलापति विजय ने राजनीतिक पार्टी बेशक फरवरी 2024 में बनाई, लेकिन सच्चाई यही है कि वे अपने फैन क्लब के जरिए पिछले 2 दशक से समाज सेवा और जन कल्याण के काम में जुटे हुए हैं। विजय का फैन क्लब थलापति विजय मक्कल यक्कम काफी पहले से सक्रिय है, जिसके तहत ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप लगाने जैसे काम तो किए ही जाते रहे हैं। गरीबों को खाना कपड़ा देने से लेकर सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों, पुलिस थानों, यहाँ तक कि कोर्ट के मामलों में भी बेसहारा जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती रही है।
1: As a human, you should not be as a only artist. You must have some social thinking. So last 30 years, he was having in his mind, we have to do something for the society, for the Tamil people. It was there in his mind last. Slowly he has developed these things.
0: साफ है कि तमिलनाडु की जनता ने उन्हें अपना थलापति माना है, तो उसके पीछे ठोस वजहें हैं और इन्हीं वजहों की वजह से उन्होंने तमिलनाडु में 1967 के बाद पहली बार गैर द्रमुक सत्ता की नींव डाली है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के तब के लोकप्रिय नेता अन्नादुरई ने 1949 में पेरियार से अलग होकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की नींव डाली थी। 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद अन्नादुरई को साल 1967 में कामयाबी मिली और उन्होंने राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। सरकार बनाने के 23 महीने बाद ही अन्नादुरई का निधन हो गया, जिसके बाद डीएमके की कमान करुणानिधि के हाथों में आ गई। उधर तमिल फिल्मों के तब के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन ने रुपहले पर्दे के मायालोक को अलविदा कहकर 17 अक्टूबर 1972 को AIADMK की स्थापना की। साल 1977 के विधानसभा चुनाव में एमजी रामचंद्रन करुणानिधि को करारी शिकस्त देकर सूबे की सत्ता पर काबिज हो गए। तब से लेकर आज तक यानी करीब 59 साल से यही दोनों पार्टियां बारी बारी से सूबे की सत्ता का स्वाद चखती रहीं। लेकिन थलापति विजय ने आखिरकार सत्ता के एकाधिकार के इस द्रविड़ियन अश्वमेध पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि जोसफ विजय से पहले करुणानिधि और एमजी रामचंद्रन की जमी जमाई सियासी विरासत को चुनौती देने की कोशिश नहीं की गई। दक्षिण भारत के थलाईवार रजनीकांत ने 3 दिसंबर 2020 को पूरे जोशो खरोश के साथ ऐलान किया कि वे जनवरी 2021 में एक नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। लेकिन जनवरी 2021 आने से पहले 29 दिसंबर 2020 को ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर रजनीकांत ने सियासी अखाड़े से दूर रहने का बयान जारी कर दिया। दक्षिण भारत के एक और स्टार कमल हसन ने भी 21 फरवरी 2018 को पूरे उत्साह और जोश के साथ मक्कनिधि मैयम के नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तमिलनाडु की 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कमल हसन ने किस्मत आजमाई, लेकिन कोयम्बटूर दक्षिण से खुद ही हार गए। उसके बाद तो सियासी सुरमा बनने की उनकी हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। पर थलापति विजय ने अद्भुत आत्मविश्वास के साथ तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री मारी और पहली बार में ही विजय पताका लहरा दिया।
2: जोसफ विजय चंद्रशेखर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कामयाबी के सफर में कभी ठहराव या फिर बिखराव का आलम नहीं देखा। एक बार जिस काम पर पहुंच गए तो उससे ऊपर ही बढ़े, नीचे की ओर कभी देखा ही नहीं। तमिल फिल्मों में जबरदस्त स्टारडम हासिल करने के बाद जब सियासी अखाड़े में उतरे तो वहां भी बड़े बड़े सूरमाओं को चित्त कर दिया। लेकिन इस कामयाब इंसान को बचपन में एक बड़ा सदमा लगा था, ऐसा सदमा जिसने मासूम उम्र में ही उनकी खुशियां छीन ली, बचपना छीन कर इन्हें शांत और अंतर्मुखी बना दिया। लेकिन वही सदमा बाद में इनकी जिंदगी की कामयाबी का शरार बन गई।

0: नफरत और नस्लीय भेदभाव की बुनियाद पर शुरू हुई द्रविड़ियन राजनीति की चूले हिलाकर तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज हुए जोसेफ विजय चंद्रशेखर की जिंदगी का सफर सफलता की अनोखी दास्तान है। दुनिया के सफलतम लोगों की जिंदगी में झांकेंगे तो आपको गिरने और संभलने, चढ़ने और फिसलने का सिलसिला दिखाई देगा, लेकिन जोसेफ विजय चंद्रशेखर की जिंदगी बिना गिरे, बिना फिसले, बिना थके, बिना रुके मुसलसल आगे बढ़ने का बेनजीर सिलसिला है। सफलता की ऐसी दास्तान जिसमें सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने का क्रम दिखता है, ठहरने या उतरने का कोई क्रम नजर नहीं आता। जिंदगी को लेकर इनका फलसफा भी यही है कि सफलता का कोई आखिरी छोर नहीं होता।
1: Don't lose your identity at any cost. Say no to temporary pleasures. Success is never ending. Failure is never final.
0: आपको बता दें कि 22 जून 1974 को चेन्नई में फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे विजय बचपन में काफी चंचल, वाचाल और बातूनी थे, लेकिन 10 साल की उम्र में हुई एक नामुराद दुखद घटना ने इनकी निश्चल मासूमियत को हमेशा के लिए छीन लिया। दरअसल विजय जब 3 साल के भी नहीं हुए थे तो 14 फरवरी 1977 को विधाता ने बहन के रूप में इन्हें अनुपम उपहार दिया। अपनी बहन विद्या के जन्म के बाद विजय का जीवन आह्लाद आनंद से भर गया। हालांकि तब विजय उम्र के लिहाज से बेहद नादान थे, लेकिन हर वक्त बहन के साथ रहना, उसकी किलकारियां सुनना, रोने पर उसे पुचकारना जोसेफ विजय की जिंदगी का हिस्सा बन गया। कुछ समय बाद विजय का जब काडम्बकम के फातिमा स्कूल में एडमिशन हुआ तो बहन को छोड़कर स्कूल जाना उन्हें बेहद खटकता था। बहन से एक पल की दूरी भी उन्हें नागवार गुजरती थी। स्कूल से लौटते तो सीधा बहन के पास जाते थे और उसकी बाल सुलभ चंचलता में खुद को फना कर देते थे। पर विधाता को भाई बहन के बीच का ये अनुपम प्यार लंबे वक्त तक मंजूर नहीं था। विद्या जब 7 साल की हुई तो किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। कहते हैं कि साल 1984 में भाई की गोद में ही बहन ने आखिरी सांसें ली। काल के इस क्रूर मजाक ने विजय को भीतर तक झकझोर दिया। बहन विद्या की मौत का सदमा इतना गहरा था कि चंचल वाचाल विजय 10 साल की उम्र में ही एकदम शांत और अंतर्मुखी हो गए। जीवन का उत्साह, उमंग एक झटके में खत्म हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम मिलने के बाद एक इंटरव्यू में विजय ने कहा था, छोटी बहन की मृत्यु के बाद मेरे जीवन में जो खालीपन आया वो बहुत साल बाद प्रशंसकों के प्यार से ही भर पाया। इस प्यार में अक्सर मुझे अपनी बहन की झलक दिखाई देती है। वक्त का कारवा गुजरता गया, लेकिन जोसेफ विजय 42 साल पहले दुनिया छोड़कर गई बहन की मनोरम यादें आज भी अपने सीने में सजोए हुए हैं। जोसेफ विजय की प्रोडक्शंस कंपनी का नाम वीवी क्रिएशंस है, विद्या विजय क्रिएशंस। इतना ही नहीं, अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों के लिए वो एक खास नंबर 0277 इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर उनकी बहन विद्या के जन्म के महीने और साल से जुड़ा हुआ है। विद्या के जन्म का साल 1977 था और महीना था फरवरी, यानी साल का दूसरा महीना। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि विजय की सफलता दर सफलता का बहन के प्रति उनके बेपनाह प्यार से आखिर क्या संबंध है? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। दरअसल बहन की दुनिया से विदाई के बाद विजय ने अपनी मासूमियत को, शोखी को, चंचलता को जब अपने सीने में दबाना शुरू किया तो कालांतर में उसने तूफान का संघनित रूप ले लिया। सीने में दबा वही संघनित तूफान पहले पर्दे पर और बाद में सियासी मैदान में बवंडर बनकर निकला तो बड़े बड़े सूरमा उसके सामने धराशायी हो गए। काबिले गौर है कि बहन विद्या की मृत्यु से पहले जोसेफ विजय तमिल फिल्म वेत्री में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू कर चुके थे। इस फिल्म का निर्देशन जोसेफ विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर ने किया था। पर विद्या की मृत्यु के बाद विजय इतने सदमे में थे कि मौका मिलने के बाद भी वो फिल्मों में काम करने से कतराने लगे थे। बेटे की ये हालत देखकर माँ बाप काफी परेशान थे और हर हाल में बेटे को इस सदमे से उबारना चाहते थे। इसीलिए माँ शोभा चंद्रशेखर ने साल 1991 में एक रोमांटिक फिल्म की पटकथा लिखी। पिता ऐसे चंद्रशेखर ने इस कहानी पर बेटे को लीड हीरो लेकर फिल्म बनाने का फैसला किया, लेकिन कोई प्रोड्यूसर इस पर पैसा लगाने को राजी नहीं हुआ। आखिरकार पिता ने ही बैंक से लोन लेकर फिल्म का निर्माण किया। साल 1992 में आई नालैया थिरुप्पु बतौर लीड हीरो विजय की डेब्यू फिल्म थी। नालैया थिरुप्पु बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई और पूरा पैसा डूब गया। फायदा बस इतना हुआ कि विजय रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो लॉन्च हो गए। बतौर लीड हीरो पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी जोसफ विजय के भीतर का तूफान जरा भी कमजोर नहीं पड़ा। अलबत्ता कामयाबी की चाह की ज्वाला और तेज हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 1994 में आई रसीगन और 1996 में आई उन्नक्कगा ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। साल 1997 में आई कुडालुक्कू मरिया धाई में तो विजय के बेहतरीन अभिनय ने क्रिटिक्स का भी दिल

0: हैं।
1: शुरुआती 10 से 11 सालों तक विजय ने खुद को रोमांटिक हीरो के इमेज तक महदूद रखा, लेकिन साल 2002 के बाद उन्होंने एक्शन फिल्मों को साइन करना शुरू किया। साल 2003 में थिरुमलाई में दर्शकों ने पहली बार विजय का एक्शन अवतार देखा। साल 2004 में आई गिली में एक कबड्डी प्लेयर के किरदार को विजय ने अपने लाजवाब एक्शन से इतना दमदार कर दिया कि रातों रात तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। गिली घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई। ऐसा लगता है कि जोसा विजय अपने फिल्मी करियर को एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ा रहे थे। करीब एक दशक तक अपने एक्शन अवतार में कामयाबी का झंडा बुलंद करने के बाद तमिल सुपरस्टार ने सामाजिक सरोकार वाली फिल्मों को साइन करना शुरू कर दिया। 2014 में आई कत्थी में विजय डबल रोल में दिखे, जिसमें से एक छोटे मोटे चोर कथी रेशन का किरदार है, जबकि दूसरा जीवानंदम सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता। कत्थी का जीवा बड़े कॉरपोरेट घरानों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। इसी तरह साल 2018 में आई सरकार में विजय सुंदर रामास्वामी नाम के एक NRI बिजनेसमैन के किरदार में नमूदार होते हैं। जो वोट डालने भारत आता है तो पता चलता है कि उसका वोट पहले ही पड़ चुका है। सुंदर रामास्वामी के किरदार में विजय चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते देखे जा सकते हैं। साल 2021 में आई मास्टर में जोसफ विजय लोकेश कनगराज के ऐसे किरदार में हैं जो विजय सेतुपति नाम के खतरनाक गैंगस्टर के खिलाफ मोर्चा खोलता है और बच्चों को उसके अत्याचार से मुक्त कराता है। साल 2023 में आई लियो में विजय पार्थिवन की भूमिका में हैं, जो हिमाचल प्रदेश में कैफे चलाता है और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू करता है। लियो ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड वाइड 623 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। कमाल देखिए कि सियासी अखाड़े में उतरने से करीब एक दशक पहले से जोसफ विजय सोशल कॉज पर फिल्में बनाने लगे थे। 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कड़गम नाम से राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी सफर पर विराम लगाने का ऐलान भी कर दिया। 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उनकी आखिरी रिलीज फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। हालांकि उनकी एक और फिल्म जननायकन रिलीज को तैयार है, पर गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर विजय ने जब उम्मीदवार उतारे तो चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़े उनकी फिल्मों के क्लिपिंग्स का जमकर इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि विजय ने पहले रोमांटिक हीरो के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, उसके बाद एक्शन हीरो के तौर पर जबरदस्त स्टारडम हासिल किया और राजनीति में कदम रखने से पहले एक दशक तक ऐसी फिल्में बनाई जिससे उनकी छवि जननायक वाली बन गई। इस लंबी रणनीतिक सूझबूझ का नतीजा ये है कि अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने सूबे में 60 साल से अंगद पांव जमाए बैठी द्रमुक राजनीति का सफाया कर दिया।
2: तो बंदे में दम में आज आपने थलापति विजय के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
4: What you got for me, Jack?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM, commercial-free.
5: Good news today is really good. This is good. It's not good. It's not good. It's not good. It's not good. It's not good. It's not good.
6: संगम नगरी प्रयागराज वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जानी जाएगी। यहाँ पर यमुना नदी में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की खास पहल की गई है, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। देखिए हमारी रिपोर्ट।
7: प्रयागराज में संगम पर स्नान ध्यान के लिए देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग गंगा स्नान करके पुण्य कमाने की चाहत रखते हैं, लेकिन यहीं पर निरंतर बह रही यमुना की जलधारा में अब बोटिंग और वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के रोमांच की खास तस्वीरें नजर

0: चला रही हैं।
1: संगम नगरी प्रयागराज अभी तक धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में ये कयाकिंग कैनोई के जो नावें हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं और बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए यहाँ प्रेरित किया जा रहा है और बच्चे यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स सीख रहे हैं।
0: यहाँ पर स्पीड बोट और जेट स्की जैसे पानी में चलने वाले स्कूटर और दूसरी नावों का इंतजाम किया गया है ताकि आम लोग और सैलानी नदी के पानी में खेल कूद का मजा ले सकें। इसके लिए यहाँ ट्रेंड ऑपरेटर रखे गए हैं जो लोगों को जल विहार कराते हैं।
2: ये स्कूटर एक सिंगल पर्सन जा सकता है, जिसके साथ हमारे ट्रेंड ऑपरेटर भी जाते हैं सुबह शाम, और काफी हमारे पास आती रहती है इंक्वायरी, आती रहती है, लोग आते हैं जेट स्की का आनंद लेते हैं। ये हमारा नैनी ब्रिज के पास ही है तो काफी लोग आते हैं।
0: हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव ने भी खुद जेट स्की पर सवार होकर यमुना में सैर का आनंद लिया।
1: तो दिखाते हैं ये पूरा रोमांचित करने वाला जो पल है वो यहाँ पर है और इस तरह से राइड होगी और आप देख सकते हैं कितना रोमांचित करने वाला ये क्षण है और जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे उनको इस वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ देखने को मिलेगा और एक धार्मिक पर्यटन के साथ इस वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ ले सकेंगे।
0: खास बात यह है कि प्रयागराज में यमुना रिवर बैंक बोट क्लब पर वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ बर्थडे पार्टी और दूसरे इवेंट्स का भी आयोजन किया जा सकता है। यहां से संगम जाने के लिए 7-सीटर बोट मिलेगी, साथ ही तमाम लोग यहां पर जल क्रीड़ा का भी आनंद ले सकेंगे। प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि यहां आने वालों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
3: और माँ यमुना की जो जलधारा है बहुत विशाल है, वाटर स्पोर्ट्स की वहाँ बहुत संभावना थी, इसलिए नगर निगम प्रयागराज ने महसूस किया, हम सब लोगों ने सदन में संकल्प पारित किया कि वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए और 2.5 करोड़ रुपए का उपकरण स्मार्ट सिटी नगर निगम प्रयागराज के द्वारा कियोकांग कैनोइंग इत्यादि हम लोगों ने छोटी लाइट बोटें उसको उपलब्ध कराने का काम किया। बहुत न्यूनतम किराया रखा गया है क्योंकि हमारे जो पर्यटक आते हैं उनको भी किसी प्रकार की कठिनाई सामना न करना पड़े और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा का भी विशेष ध्यान उसमें दिया गया है, किराया बहुत न्यूनतम रखा गया।
0: यहाँ पर स्थानीय युवाओं और किशोरों को वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने का भी इंतजाम किया गया है ताकि वे इस क्षेत्र में महारत हासिल कर सके और इस क्षेत्र में करियर भी बना सके।
4: और इसको सिखाने के लिए बच्चों को सबसे पहली चीज तो स्विमिंग आती है, तो हम लोग जो नए बच्चे होते हैं उनको पहले स्विमिंग सिखाते हैं। ये वाटर स्पोर्ट्स ये काफी बैलेंसिंग की बोट है, इस पर बैलेंस नहीं रहता तो बच्चे पलटते भी हैं, तो इसलिए स्विमिंग तो कंपलसरी है उनको। स्विमिंग सिखाने के बाद फिर वो उनको कुछ महीने टेक्निक जैसे जमीन पर सिखाया जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इनको पानी में ट्रेनिंग देते हैं।
5: नेशनल लेवल हमारे यहाँ प्लेयर खेले हुए हैं और मेडल भी है नेशनल का, बाकी सब अभी इंडियन आर्मी में भी कुछ लोग हैं और अभी तो 4 लड़के हुए हैं यूपी पुलिस में, अभी प्रेजेंट में ही हुए हैं, उनका भी ज्वाइनिंग होने वाला है।
0: अभी यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेने वालों की संख्या 50 तक पहुँच चुकी है। किशोरों और युवाओं में खास तौर से इसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है।
1: यहाँ पर ये यमुना नदी है और इतना बड़ा जो विस्तार है, यहाँ इस कयाकिंग कैनोई के माध्यम से यहाँ पर बच्चे वाटर स्पोर्ट्स के लिए सीख रहे हैं और यहाँ पर नाव चला रहे हैं, तो संभावना यहाँ पर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स उसको लेकर के यहाँ पर है और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर अब धार्मिक पर्यटन के अलावा स्पोर्ट्स को भी बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत, दस की उम्र में लगा गहरा सदमा, दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: There's just something about classic soul music that gets you moving.

0: And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: क्या है माँ की महिमा? माता का आपके किन ग्रहों और राशियों से संबंध होता है? माता के साथ अपने संबंधों को कैसे सुधारें और माता के जीवन को किन उपायों से बेहतर करें? मदर्स डे पर जानिए माता के आशीर्वाद और कृपा पाने के उपाय सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आज ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन, आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत अचल। अत्याधुनिक तोपों से लैस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार। आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया कदम। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण। MIRV तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बनाया निशान। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां। मंदिर के पास ही आसमान में एयर शो का रहस्य सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाई करता। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए 256 करोड़ रुपए। आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी। भव्य सुरक्षित और व्यवस्थित मेला कराना लक्ष्य। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी नूरा फतेही। कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नूरा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जेएनपी स्पेशल। तो देखिए, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही जो चीज सबसे पहले हमारे जहन में आती है, हमारे दिमाग में आती है, वो या तो सूरज की तपिश है या फिर मीठे और रसीले आम है जिनकी खुशबू और मिठास का हर कोई दीवाना है। देखिए, दशहरे की बेमिसाल खुशबू से लेकर लंगड़े की मिठास तक, मालदा के रसीले स्वाद से लेकर चौसे की लज्जत तक, आम गर्मियों की शान है। या यूं कहें कि नाम भले ही इसका आम है लेकिन स्वाद सिर्फ खास नहीं बल्कि बेहद खास है। आज हम आपको आम की कहानी सुनाएंगे, आम के नामों से जुड़ा इतिहास भी बताएंगे और कैसे फलों का राजा आम कारोबार का भी राजा है ये भी बताएंगे।

हापुस की शाही खुशबू है तो लंगड़े की बेमिसाल मिठास। दशहरे की नजाकत है तो चौसे की लज्जत भी है। मालदा का रसीला स्वाद है तो तोता परी का जुदा अंदाज है। लेकिन ये खास होकर भी आम ही है। अलबत्ता नाम भले ही आम हो लेकिन स्वाद सिर्फ खास नहीं बेहद खास है। गर्मियों का मौसम आम के दीवानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं रहता। तपती गर्मी हो, सूरज की तपिश हो या फिर पसीने से तर बतर दोपहर, अगर इस मौसम में कुछ सुकून देता है तो वो फलों का राजा आम ही तो है। जिसकी बेमिसाल खुशबू और लाजवाब स्वाद जुबान पर मिठास घोल देता है। कहने को तो सबर का फल मीठा ही होता है लेकिन हम तो कहते हैं कि सबर का फल आम होता है क्योंकि आम का नाम आते ही मिठास खुद ही आ जाती है। आम की मिठास और इसकी खुशबू भारतीय जनमानस की रग रग में बसती है। इसे केवल एक फल कहना इसकी गरिमा को कम करने जैसा होगा। आम तो साक्षात अमृत फल है।

शाखों पर लदे इन आमों को देखिए, ये किसी तोहफे से कम नहीं है। हापुस, लंगड़ा, सिंदूरी, तोता परी, दशहरी और चौसा, आप बस नाम लेते जाइए, जुबान पर लज्जत बढ़ती जाएगी।

इसका नाम भले ही आम हो लेकिन ये कितना खास है उसको बताने की जरूरत नहीं। कविताओं और साहित्य में इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोक गीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है।

0: ये सिर्फ एक फल नहीं, ये बचपन की वो यादें हैं जो आज भी हम और आप अपने दिलों में समेटे हैं। क्योंकि हर आम एक कहानी है और मिठास एक एहसास है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, कहते हैं कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन बात जब आम की हो तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में मिलने वाले आमों का जिक्र होना तो लाजमी है। देखिए, महाराष्ट्र के रत्नागिरी का अल्फांजो हो, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद का दशहरी हो, बनारस का चौसा, दक्षिण भारत का बंगनपल्ली या सफेदा, कर्नाटक का बादामी और बंगाल के हिमसागर आम की तो अपनी ही डिमांड है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं।

0: कहने को तो आम की सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन भारत में आम की लगभग 1500 प्रजातियां पनपती हैं, जिनमें से करीब 1000 किस्में आम तौर से खाई और बाजार में बेची जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले हर आम का अपना एक अलग मिजाज, अपना रंग और अपनी एक खास मिठास होती है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर इलाके का अपना एक खास आम है, इसलिए भारत को आमों का देश भी कहा जाता है। दशहरी की बेमिसाल खुशबू, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मशहूर दशहरी आम की। लखनऊ के मलिहाबाद की गलियों में दशहरी की मिठास घुली मिलती है। पतली गुठली और लंबी बनावट वाला ये आम अपनी बेमिसाल मिठास के लिए मशहूर है। लगभग 200 से 300 साल पुराने इतिहास वाले इस आम का नाम काकोरी के पास दशहरी गांव से पड़ा है। सरकार ने भी 200 साल पुराने इस पेड़ को ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। रसीला लंगड़ा आम, वहीं वाराणसी का लंगड़ा आम अपने नाम की तरह ही दिलचस्प है। लंगड़ा नाम सुनते ही पहली बार में अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प मानी जाती है। कहते हैं बनारस के एक मंदिर में रहने वाले एक साधु जो पैरों से दिव्यांग थे, उन्होंने आम के पौधे लगाए थे। जब इन पेड़ों पर फल आए तो उनका स्वाद लोगों को पसंद आया, तभी से ये आम भी मशहूर होते चले गए और आज लंगड़ा आम बनारस ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है।
1: आम की किस्मों में भारत में इतनी अधिक विविधता है जिसको का वर्णन करना आसान नहीं है, लेकिन उतने ही इन आमों के नाम भी रोचक हैं। किसी आम को अलिफ लैला, अगरबत्ती, नाजुक बदन, बेनज़ीर के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पे कुछ बहुत ही कॉमन नाम भी हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो या हाफूज।
0: आमों का राजा अल्फांसो महाराष्ट्र के कोंकण तट से आता है। अल्फांसो यानी हापूस, जिसे दुनिया भर में आमों का राजा कहा जाता है। इसकी केसरिया रंगत और बेमिसाल स्वाद इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सुपरस्टार बनाता है। रत्नागिरी और देवगढ़ की मिट्टी से निकलने वाले इस आम की खुशबू इतनी तेज होती है कि एक आम पूरे कमरे को महका दे। इसकी कीमत भले ही थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन इसका शाही स्वाद इसे सबसे जुदा बनाता है। चौंसे की मिठास, आम के शौकीनों की पहली पसंद चौंसा आम, बेमिसाल स्वाद और लाजवाब सुगंध। आमतौर से बिहार में पाए जाने वाले इस आम की खेती अब उत्तर प्रदेश में भी जोर शोर से होती है। हालांकि चौंसा की उत्पत्ति बिहार से ही हुई है। कहा जाता है कि बिहार के चौंसा नाम की जगह पर इसकी पैदावार होती थी, जिसकी वजह से इसका नाम चौंसा पड़ा। ये आम की एक ऐसी किस्म है जिसकी फसल देर से तैयार होती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि जब दशहरी और लंगड़ा आम का सीजन खत्म हो जाता है तब चौंसा आम बाजार में आता है।
1: आम फलों का राजा है और भारतवर्ष आम की अपार किस्मों की संपदा के कारण विश्वविख्यात है। देश में 1500 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। कहीं पे लोग दशहरी चौसा को पसंद करते हैं तो कहीं नीलम बंगनापल्ली को। रत्नागिरी और महाराष्ट्र का अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है और इसको बहुत ही अच्छे दाम पर लोग फरवरी के माह में खरीदते हैं। हम देखेंगे,
0: यानी जब बाजार में आमों की तादाद कम होने लगती है तब चौंसा अपनी मिठास खोल देता है और महफिल लूट ले जाता है। दक्षिण और पूर्व का गौरव, दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश का बंगनपल्ली या सफेदा अपनी बड़ी बनावट और मिठास के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का हिमसागर है, देखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका स्वाद इतना मलाईदार है कि इसे मिष्टी दोई के देश का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन माना जाता है। सबसे बड़ा आम नूर जहां, लेकिन आम की दुनिया सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, यहाँ अजूबे भी हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पैदा होने वाला नूर जहां आम उन्हीं में से एक है, जिसके एक आम का वजन 4 किलो तक हो सकता है। मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर का कट्टीवाड़ा अपने झरनों, बारिश और नूर जहां आम के लिए भी जाना जाता है। मौसम और मिट्टी ने इस फल के पनपने के लिए एकदम सही हालात दिए हैं। नूर जहां को दुनिया का सबसे बड़ा आम माना जाता है। ये भारत में आम प्रेमियों के बीच जितना लोकप्रिय है उतना ही दुर्लभ भी है। सबसे महंगा आम, और अगर बात करें दुनिया के सबसे महंगे आम की, तो जापानी नस्ल का मियाज़ाकी अब भारत में भी उगाया जा रहा है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। गर्मियों का मौसम आम के दीवानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होता है। इस मौसम में हम और आप आम का जमकर लुत्फ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: देखिए, गर्मियों की दोपहर हो और जिक्र आम का ना हो तो लगता है जैसे महफिल में रौनक ही ना हो। लेकिन आम का रिश्ता सिर्फ हमारी जुबान से नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास के पन्नों और शायरों की मखमली कलम से भी रहा है। गालिब से लेकर गुलजार तक ने आम की लज्जत को अपनी कविताओं के जरिए शब्दों में पिरोया है। गालिब तो आम के इतने बड़े शौकीन थे, इतने बड़े फैन थे कि वो कहते थे कि आमों में बस दो ही खूबियां होनी चाहिए, एक तो वो मीठे हों और दूसरा वो बहुत सारे हों। उर्दू और हिंदी शायरों में आम को महबूब की मिठास और बचपन की यादों से जोड़कर देखा जाता रहा है। देखिए, इकबाल हो या अमीर खुसरो, हर किसी ने इस फल की तारीफ में कसीदे पढ़ लिखे हैं।

0: मीठा, रसीला और दिलों पर राज करने वाला आम। गर्मियों में लोग भले ही चिलचिलाती धूप और पसीने से परेशान रहते हैं, लेकिन इस मौसम में मिलने वाला आम किसी तोहफे से कम नहीं होता। बच्चे हो या बुजुर्ग, गरीब हो या अमीर, आम हर किसी को खास एहसास कराता है। आम सदियों से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और आज भी इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे पहले आम आम्रफल कहा जाता था। पुराने वैदिक ग्रंथों में इसे रसाला और सहकार नाम से भी जाना जाता था। इन नामों का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक, उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। यानी आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में आम की पैदावार हुई थी, जहां से ये दक्षिण भारत पहुंचा और तमिल में इसे आमकाय कहा गया, जो बोलचाल की भाषा में बदलकर धीरे धीरे मामकाय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर मांगा के नाम में बदल दिया। 16वीं सदी में पुर्तगाली कारोबारियों ने आम को अफ्रीका और ब्राजील तक पहुंचाया और धीरे धीरे ये आम फल खास बन गया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इतिहास के हर दौर में इसकी मिठास ने लोगों के दिलों को जोड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भी आम का इंतजार हर गर्मी में उतनी ही बेसब्री से किया जाता है। इतिहास में आम की खास अहमियत रही है। सम्राट अशोक से लेकर मुगल काल तक आम की दीवानगी देखी गई है। कविता और साहित्य में भी इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोकगीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है। आम के बारे में कवि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था कि आम में बस दो खूबियां होनी चाहिए, एक मीठा हो और दूसरा बहुत सारे हो। सिर्फ गालिब ही नहीं बल्कि गुलजार से लेकर अपने जमाने के मशहूर शायरों में शुमार सागर खयामी ने तो इस पर पूरी उर्दू कविता लिखी है। फल कोई जमाने में नहीं, आम से बेहतर करता है सना आम की गालिब सा सुखनवर। क्या बात है, आमों की हो देसी या विदेशी, सुर्खे हो सरौली हो कि तुखमे हो कि कलमी, चौसे हो सफेदे हो कि खजरी हो कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। हिंदी साहित्य में भी खासकर काव्य में आम लोगों को लेकर खूब लिखा रचा गया है। आम को लेकर आम का बाग नाम की कविता बेहद चर्चित है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहाँ अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर और तोतापुरी जैसी सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, जो हर राज्य की अपनी खास पहचान बन चुकी है। कुल मिलाकर आम सिर्फ स्वाद नहीं, एक हसीन एहसास है। एक ऐसा फल जो बचपन की यादें भी है और हर गर्मी की सबसे बड़ी खुशी भी। शायद इसीलिए हर साल जब आम आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: जब गर्मियों की दस्तक होती है तो सिर्फ तापमान नहीं बढ़ता बल्कि देश का फल बाजार भी अरबों रुपए के कारोबार से गुलजार हो उठता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आम की वजह से। देखिए, भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरी दुनिया के कुल आम उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा अकेले हिंदुस्तान से आता है। उत्तर प्रदेश का महिलाबाद हो, महाराष्ट्र का रत्नागिरी या फिर आंध्र प्रदेश के बगान, लेकिन तमाम आमों की मिठास और खुशबू अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों तक जाती है।

0: आम सिर्फ स्वाद का राजा नहीं है बल्कि करोड़ों अरबों के कारोबार का बादशाह भी है। उत्तर प्रदेश के बागों से लेकर अमेरिका की सुपरमार्केट तक फलों का राजा सिर्फ मिठास नहीं बिखेरता बल्कि करोड़ों का कारोबार भी देता है। गर्मी का मौसम आते ही आम की मिठास हर किसी के दिल को खुश कर देती है, खासकर भारतीय आम अल्फांसो, केसर और दशहरी, जो दुनिया भर में अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर हैं। घरेलू बाजार की बात करें तो आम का बाजार करीब 2.30 बिलियन डॉलर यानी लगभग 19,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो सालाना 6-7% की दर से बढ़ रहा है। भारत में दुनिया के कुल आम उत्पादन का 40-50% हिस्सा पैदा होता है, यानी भारत सालाना 20 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा आम पैदा करता है। हालांकि इस भारी उत्पादन का केवल 1% ही एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत में तो आम के लिए दीवानगी जग जाहिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय आमों की विदेशों तक जबरदस्त डिमांड है? मतलब ये कि आम की डिमांड केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बम्पर होती है। दुनिया भर में लोगों के लिए भारतीय आम पहली पसंद है। तभी तो भारत हर साल 40 से अधिक देशों को आम सप्लाई करता है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 की अगर बात की जाए तो भारत ने करीब 30,000 मीट्रिक टन से ज्यादा आम एक्सपोर्ट किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का दशहरी हो, महाराष्ट्र का अल्फांसो, बिहार का मालदा हो या फिर गुजरात का केसर, भारत में आम की सैकड़ों किस्में हैं। जितनी किस्में उतनी ही हाई डिमांड दुनिया भर में होती है। विदेशों में सबसे ज्यादा मांग अल्फांसो और केसर की होती है, लेकिन बनारसी लंगड़ा, दशहरी और चौसा भी यूरोपीय बाजारों की रौनक बढ़ा रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के बंगनपल्ली और तोतापुरी आम की भी अच्छी खासी डिमांड है, जबकि भारतीय आमों का सबसे बड़ा दीवाना है यूएई। इसके बाद यूके, कतर, ओमान और अमेरिका का नंबर आता है।
1: आज जूनागढ़ मार्केटिंग यार्ड के अंदर केले की बॉक्स की आवक 10-12 हजार की बॉक्स की आवक है। आने वाले दिनों में केले की आवक बढ़ने वाली है, पहली तारीख पीछे, और भाव 700 रुपए से लगा के 1200 रुपए 10 केजी का भाव है।
0: लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में भारतीय आमों को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। अमेरिका में आम महज एक फल नहीं बल्कि लग्जरी, टेस्ट और स्टेटस सिंबल जैसा बन गया है। अमेरिका में भारतीय मैंगो की कितनी डिमांड है उसका उदाहरण हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला। जब एक अमेरिकी सोशल मीडिया यूजर ने ये दावा किया कि मात्र 20 मिनट में अमेरिका में इंडियन मैंगो का स्टॉक खत्म हो जा रहा है। इंटरनेट पर किए गए दावे के मुताबिक भारत से पहुंचे आम के एक केस में 9 से 10 पीस होते हैं। ये केस 49.99 डॉलर का होता है, भारतीय रुपए में जिसकी कीमत 4800 रुपए होती है। इसे भारतीय रुपए में बदलें तो करीब एक आम की कीमत 480 रुपए तक पड़ती है। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका में भारतीय आम की दीवानगी पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। 5 मई को छपी इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय आम पाने के लिए अमेरिकी कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका में आम की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे एक बड़ी वजह है, भारतीय और दक्षिण एशियाई आबादी का बढ़ना। लेकिन अब सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं बल्कि अमेरिका भी आम को हेल्दी और प्रीमियम फ्रूट के तौर पर देख रहा है। भारत में अगर आम स्वाद की पहचान है तो अमेरिका जैसे मुल्कों में आम कल्चर, क्लास और क्रेज का प्रतीक बन चुका है। कुल मिलाकर मलिहाबाद के बागान से लेकर अमेरिका के सुपरमार्केट तक आम की मिठास और कारोबार दोनों की डिमांड इन दिनों हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप जानते हैं कि हमारी प्राचीन मान्यताओं में आम को देवफल का दर्जा मिला हुआ है? देखिए, जिस फल के स्वाद के हम दीवाने हैं उसका हमारे धर्म पुराणों और शुभ कार्यों से एक अटूट और बेहद पवित्र रिश्ता है। कोई भी शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश हो या फिर किसी का विवाह हो, आम के पत्तों के बिना सब कुछ अधूरा है। घर के मुख्य द्वार पर लगाए जाने वाले आम के पत्तों के तोरण को केवल सजावट नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को रोकने और सुख समृद्धि के स्वागत का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथाओं में भी आम का जिक्र मिलता है।

0: स्वाद का ही नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का भी अहम हिस्सा है। इसकी मिठास जहां दिल जीत लेती है, वहीं इसकी मौजूदगी हमारे धार्मिक संस्कारों को भी पूरा करती है। क्या आप जानते हैं कि ये फल हमारी थाली तक पहुंचने से पहले हमारे मंदिरों और पूजा की चौकियों तक पहुंचता है? शास्त्रों में आम को साक्षात सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य आम के पत्तों के बिना अधूरा है, चाहे गृह प्रवेश हो या दीपावली की पूजा। द्वार पर बंधा आम का वंदनवार नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का सुरक्षा कवच माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आम की लकड़ी को समिधा के रूप में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि हवन में आम की लकड़ी के इस्तेमाल से वातावरण में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। भारत में आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक दिव्य वरदान है। इसी वजह से वेदों में आम को अमृत फल कहा गया है। यह अकेला ऐसा फल है जिसका जिक्र रामायण से लेकर महाभारत तक और अजंता की गुफाओं से लेकर मुगल काल तक मिलता है। पौराणिक कथाओं में आम को ज्ञान का फल माना गया है। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध कथा भी है, जिसके अनुसार एक दिव्य आम के लिए गणेश जी और कार्तिकेय के बीच महादेव और माता पार्वती ने प्रतियोगिता कराई थी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भगवान शिव एकांबरेश्वर यानी आम के पेड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ का 3500 साल पुराना आम का पेड़ आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसकी चार शाखाएं चारों वेदों का प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक संस्कार में आम की मौजूदगी रहती है, कहीं समिधा के रूप में तो कहीं पल्लव के रूप में। आम हर जगह मौजूद है, अक्षय तृतीया से लेकर वट सावित्री तक। आम का दान और नैवेद्य सौभाग्य की निशानी है। आम सिर्फ गर्मियों का स्वाद ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का भी अहम हिस्सा है। इसकी मिठास जहां जीवन में स्वाद भरती है, वहीं इसकी पवित्रता हमारे संस्कारों को मजबूत बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: है माँ की महिमा, माता का आपके किन ग्रहों और राशियों से संबंध होता है, माता के साथ अपने संबंधों को कैसे सुधारें और माता के जीवन को किन उपायों से बेहतर करें। मदर्स डे पर जानिए माता के आशीर्वाद और कृपा पाने के उपाय सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
0: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
5: बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आज ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन, आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत अचल। अत्याधुनिक तोपों से लैस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार। आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया कदम। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण। एमआईआरवी तकनीक से लैस मिसाइल ने एक साथ कई लक्ष्यों को बनाया निशान। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां। मंदिर के पास ही आसमान में एयर शो का रहस्य सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाई करता। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए 256 करोड़ रुपए। आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी। भव्य सुरक्षित और व्यवस्थित मेला कराना लक्ष्य। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी नूरा फतेही। कनाडा के टोरंटो में 12 जून को होगा इसका आयोजन। फीफा में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार बनी नूरा।

ना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने तमिलनाडु की सियासत में 59 साल बाद एक नई और दमदार लीक खींच दी है। तमिलनाडु में 59 साल बाद पहली बार ये मौका आया है जब डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही पार्टियां सत्ता से दूर हो चुकी है। इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बेदखल किया है तमिल फिल्मों के एक मसीहा ने।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु की सियासत में नई और मजबूत लीक खींचने वाले जोसेफ विजय चंद्रशेखर हैं। जी हाँ, तमिलनाडु की जनता जिन्हें प्यार से थलापति के नाम से बुलाती है, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय ने 2 साल पहले रुपहले पर्दे को अलविदा कह एक राजनीतिक पार्टी बनाई और उसके बाद हुए पहले ही चुनाव में इतिहास रच दिया। तमिलनाडु के सत्ता पर पिछले 59 साल से 2 ही पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके काबिज होती रही, लेकिन थलापति विजय ने दोनों का डिब्बा गोल कर नई सियासी अध्याय की शुरुआत कर दी है।

0: लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव त्योहार की तरह होते हैं, एक ऐसा त्योहार जिसमें जनता अगले 5 साल के लिए अपने मुस्तकबिल पर मुहर लगाती है। लेकिन दशकों में कभी एक बार ऐसा भी होता है जब कोई चुनाव सिर्फ त्योहार न रहकर बहुत बड़े बदलाव का ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाता है। तमिलनाडु के सियासी मैदान में इस बार बड़े बदलाव की ऐसी ही क्रांति देखने को मिली है और इस क्रांति के मसीहा बनकर उभरे हैं तमिल फिल्मों के महानायक जोसफ विजय चंद्रशेखर। प्रशंसक प्यार से जिन्हें थलापति विजय के नाम से बुलाते हैं। बीते 4 मई को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सूबे की 6 दशक पुरानी द्रविड़ियन राजनीति का एक तरह से पटाक्षेप कर दिया है। 234 सीटों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतकर थलापति विजय ने अन्नादुरई, करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन और जयललिता की वर्षों पुरानी द्रविड़ियन राजनीति की मजबूत विरासत के धुर्रे बिखेर दिए। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम के शिखर पर पहुंचने के बाद थलापति विजय ने 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कड़गम के नाम से नई पार्टी बनाई और उसके बाद हुए पहले ही विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों को धराशायी कर दिया। पार्टी बनने के बाद से ही थलापति विजय का आत्मविश्वास उनके प्रचंड जीत की सरगोशी कर रहा था।
1: माई विशेस टू माई सन, बिकॉज आई एम सीइंग लास्ट 2 years इज कॉन्फिडेंट लेवल, ओके, इज कॉन्फिडेंट लेवल इज फैंटास्टिक and faith, I'll come as a chief minister of Tamil Nadu.
0: थलापति विजय का आत्मविश्वास तब भी दिखा जब उनकी पार्टी ऐतिहासिक जीत के बाद भी बहुमत के आंकड़े से 10 कदम दूर रह गई। अपनी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर थलापति विजय 2 बार 6 और 7 मई को राजभवन गए, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं होने का हवाला देकर उन्हें वापस कर दिया। लेकिन तमिलनाडु के इस थलापति ने फरवरी 2024 में राजनीतिक पार्टी बनाने के साथ ही अटल निश्चय कर लिया था कि राज्य की सत्ता के शीर्ष तक हर हाल में पहुंचेगा। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने सत्ताधारी डीएमके को भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी बताया था, जबकि बीजेपी को उन्होंने अपना वैचारिक विरोधी माना था। कमाल यह है कि बहुमत का आंकड़ा जुटाने के दौरान उन्होंने इन दोनों पार्टियों से दूरी बनाए रखी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि थलापति विजय ने विधानसभा चुनाव में अपने स्टारडम को भुनाकर तमिलनाडु की सत्ता के शीर्ष तक का सफर तय किया है, तो वो गलतफहमी में हैं। आज विजय की कामयाबी की जो बुलंद इमारत आपको नजर आ रही है, उसकी नींव 2 दशक पहले ही पड़ चुकी थी। थलापति विजय ने राजनीतिक पार्टी वेशक फरवरी 2024 में बनाई, लेकिन सच्चाई यही है कि वे अपने फैन क्लब के जरिए पिछले 2 दशक से समाज सेवा और जन कल्याण के काम में जुटे हुए हैं। विजय का फैन क्लब थलापति विजय मक्कल यक्कम काफी पहले से सक्रिय है, जिसके तहत ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप लगाने जैसे काम तो किए ही जाते रहे हैं। गरीबों को खाना कपड़ा देने से लेकर सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों, पुलिस थानों, यहाँ तक कि कोर्ट के मामलों में भी बेसहारा जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती रही है।
1: As a human, you should not be as a only artist. You must have some social thinking. So last 30 years, was having in his mind, we have to do something for the society, for the Tamil people. It was there in his mind. Last, slowly he has developed that, these things.
0: साफ है कि तमिलनाडु की जनता ने उन्हें अपना थलापति माना है, तो उसके पीछे ठोस वजहें हैं और इन्हीं वजहों की वजह से उन्होंने तमिलनाडु में 1967 के बाद पहली बार गैर द्रमुक सत्ता की नींव डाली है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के तब के लोकप्रिय नेता अन्नादुरई ने 1949 में पेरियार से अलग होकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की नींव डाली थी। 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद अन्नादुरई को साल 1967 में कामयाबी मिली और उन्होंने राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। सरकार बनाने के 23 महीने बाद ही अन्नादुरई का निधन हो गया, जिसके बाद डीएमके की कमान करुणानिधि के हाथों में आ गई। उधर तमिल फिल्मों के तब के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन ने रुपहले पर्दे के मायालोक को अलविदा कहकर 17 अक्टूबर 1972 को AIADMK की स्थापना की। साल 1977 के विधानसभा चुनाव में एमजी रामचंद्रन करुणानिधि को करारी शिकस्त देकर सूबे की सत्ता पर काबिज हो गए। तब से लेकर आज तक यानी करीब 59 साल से यही दोनों पार्टियां बारी बारी से सूबे की सत्ता का स्वाद चखती रहीं। लेकिन थलापति विजय ने आखिरकार सत्ता के एकाधिकार के इस द्रविड़ियन अश्वमेध पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि जोसफ विजय से पहले करुणानिधि और एमजी रामचंद्रन की जमी जमाई सियासी विरासत को चुनौती देने की कोशिश नहीं की गई। दक्षिण भारत के थलाइवा रजनीकांत ने 3 दिसंबर 2020 को पूरे जोशो खरोश के साथ ऐलान किया कि वे जनवरी 2021 में एक नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। लेकिन जनवरी 2021 आने से पहले 29 दिसंबर 2020 को ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर रजनीकांत ने सियासी अखाड़े से दूर रहने का बयान जारी कर दिया। दक्षिण भारत के एक और स्टार कमल हसन ने भी 21 फरवरी 2018 को पूरे उत्साह और जोश के साथ मक्कनिधि मैयम के नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तमिलनाडु की 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कमल हसन ने किस्मत आजमाई, लेकिन कोयम्बटूर दक्षिण से खुद ही हार गए। उसके बाद तो सियासी सुरमा बनने की उनकी हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। पर थलापति विजय ने अद्भुत आत्मविश्वास के साथ तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री मारी और पहली बार में ही विजय पताका लहरा दिया।
2: जोसफ विजय चंद्रशेखर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कामयाबी के सफर में कभी ठहराव या फिर बिखराव का आलम नहीं देखा। एक बार जिस काम पर पहुंच गए तो उससे ऊपर ही बढ़े, नीचे की ओर कभी देखा ही नहीं। तमिल फिल्मों में जबरदस्त स्टारडम हासिल करने के बाद जब सियासी अखाड़े में उतरे तो वहां भी बड़े बड़े सूरमाओं को चित्त कर दिया। लेकिन इस कामयाब इंसान को बचपन में एक बड़ा सदमा लगा था, ऐसा सदमा जिसने मासूम उम्र में ही उनकी खुशियां छीन ली, बचपना छीन कर इन्हें शांत और अंतर्मुखी बना दिया। लेकिन वही सदमा बाद में इनकी जिंदगी की कामयाबी का शरार बन गई।

0: नफरत और नस्लीय भेदभाव की बुनियाद पर शुरू हुई द्रविड़ियन राजनीति की चूले हिलाकर तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज हुए जोसेफ विजय चंद्रशेखर की जिंदगी का सफर सफलता की अनोखी दास्तान है। दुनिया के सफलतम लोगों की जिंदगी में झांकेंगे तो आपको गिरने और संभलने, चढ़ने और फिसलने का सिलसिला दिखाई देगा, लेकिन जोसेफ विजय चंद्रशेखर की जिंदगी बिना गिरे, बिना फिसले, बिना थके, बिना रुके मुसलसल आगे बढ़ने का बेनजीर सिलसिला है। सफलता की ऐसी दास्तान जिसमें सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने का क्रम दिखता है, ठहरने या उतरने का कोई क्रम नजर नहीं आता। जिंदगी को लेकर इनका फलसफा भी यही है कि सफलता का कोई आखिरी छोर नहीं होता।
1: Don't lose your identity at any cost. Say no to temporary pleasures. Success is never ending. Failure is never final.
0: आपको बता दें कि 22 जून 1974 को चेन्नई में फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे विजय बचपन में काफी चंचल, वाचाल और बातूनी थे, लेकिन 10 साल की उम्र में हुई एक नामुराद दुखद घटना ने इनकी निश्चल मासूमियत को हमेशा के लिए छीन लिया। दरअसल विजय जब 3 साल के भी नहीं हुए थे तो 14 फरवरी 1977 को विधाता ने बहन के रूप में इन्हें अनुपम उपहार दिया। अपनी बहन विद्या के जन्म के बाद विजय का जीवन आह्लाद आनंद से भर गया। हालांकि तब विजय उम्र के लिहाज से बेहद नादान थे, लेकिन हर वक्त बहन के साथ रहना, उसकी किलकारियां सुनना, रोने पर उसे पुचकारना जो सब विजय की जिंदगी का हिस्सा बन गया। कुछ समय बाद विजय का जब काडम्बकम के फातिमा स्कूल में एडमिशन हुआ तो बहन को छोड़कर स्कूल जाना उन्हें बेहद खटकता था। बहन से एक पल की दूरी भी उन्हें नागवार गुजरती थी। स्कूल से लौटते तो सीधा बहन के पास जाते थे और उसकी बाल सुलभ चंचलता में खुद को फना कर देते थे। पर विधाता को भाई बहन के बीच का ये अनुपम प्यार लंबे वक्त तक मंजूर नहीं था। विद्या जब 7 साल की हुई तो किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। कहते हैं कि साल 1984 में भाई की गोद में ही बहन ने आखिरी सांसें ली। काल के इस क्रूर मजाक ने विजय को भीतर तक झकझोर दिया। बहन विद्या की मौत का सदमा इतना गहरा था कि चंचल वाचाल विजय 10 साल की उम्र में ही एकदम शांत और अंतर्मुखी हो गए। जीवन का उत्साह, उमंग एक झटके में खत्म हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम मिलने के बाद एक इंटरव्यू में विजय ने कहा था, छोटी बहन की मृत्यु के बाद मेरे जीवन में जो खालीपन आया वो बहुत साल बाद प्रशंसकों के प्यार से ही भर पाया। इस प्यार में अक्सर मुझे अपनी बहन की झलक दिखाई देती है। वक्त का कारवा गुजरता गया, लेकिन जोसेफ विजय 42 साल पहले दुनिया छोड़कर गई बहन की मनोरम यादें आज भी अपने सीने में सजोए हुए हैं। जोसेफ विजय की प्रोडक्शंस कंपनी का नाम वीवी क्रिएशंस है, विद्या विजय क्रिएशंस। इतना ही नहीं, अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों के लिए वो एक खास नंबर 0277 इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर उनकी बहन विद्या के जन्म के महीने और साल से जुड़ा हुआ है। विद्या के जन्म का साल 1977 था और महीना था फरवरी, यानी साल का दूसरा महीना। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि विजय की सफलता दर सफलता का बहन के प्रति उनके बेपनाह प्यार से आखिर क्या संबंध है? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। दरअसल बहन की दुनिया से विदाई के बाद विजय ने अपनी मासूमियत को, शोखी को, चंचलता को जब अपने सीने में दबाना शुरू किया तो कालांतर में उसने तूफान का संघनित रूप ले लिया। सीने में दबा वही संघनित तूफान पहले पर्दे पर और बाद में सियासी मैदान में बवंडर बनकर निकला तो बड़े बड़े सूरमा उसके सामने धराशायी हो गए। काबिले गौर है कि बहन विद्या की मृत्यु से पहले जोसेफ विजय तमिल फिल्म वेत्री में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू कर चुके थे। इस फिल्म का निर्देशन जोसेफ विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर ने किया था। पर विद्या की मृत्यु के बाद विजय इतने सदमे में थे कि मौका मिलने के बाद भी वो फिल्मों में काम करने से कतराने लगे थे। बेटे की ये हालत देखकर माँ बाप काफी परेशान थे और हर हाल में बेटे को इस सदमे से उबारना चाहते थे। इसीलिए माँ शोभा चंद्रशेखर ने साल 1991 में एक रोमांटिक फिल्म की पटकथा लिखी। पिता ऐसे चंद्रशेखर ने इस कहानी पर बेटे को लीड हीरो लेकर फिल्म बनाने का फैसला किया, लेकिन कोई प्रोड्यूसर इस पर पैसा लगाने को राजी नहीं हुआ। आखिरकार पिता ने ही बैंक से लोन लेकर फिल्म का निर्माण किया। साल 1992 में आई नालैया थिरुप्पु बतौर लीड हीरो विजय की डेब्यू फिल्म थी। नालैया थिरुप्पु बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई और पूरा पैसा डूब गया। फायदा बस इतना हुआ कि विजय रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो लॉन्च हो गए। बतौर लीड हीरो पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी जोसफ विजय के भीतर का तूफान जरा भी कमजोर नहीं पड़ा। अलबत्ता कामयाबी की चाह की ज्वाला और तेज हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 1994 में आई रसीगन और 1996 में आई उन्नक्कगा ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। साल 1997 में आई कुडालुक्कू मरिया धाई में तो विजय के बेहतरीन अभिनय ने क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया। रोमांटिक फिल्म कुडालुक्कू मरिया धाई के लिए विजय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के स्टेट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। विजय ने अपने फिल्मी करियर की कामयाबी की सीढ़ियां बड़े ही करीने से चढ़ी हैं। शुरुआती 10-11 सालों तक विजय ने खुद को रोमांटिक

0: ऐसा लगता है कि जोसफ विजय अपने फिल्मी करियर को एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ा रहे थे। करीब एक दशक तक अपने एक्शन अवतार में कामयाबी का झंडा बुलंद करने के बाद तमिल सुपरस्टार ने सामाजिक सरोकार वाली फिल्मों को साइन करना शुरू कर दिया। 2014 में आई कत्थी में विजय डबल रोल में दिखे, जिसमें से एक छोटे मोटे चोर कथी रेशन का किरदार है, जबकि दूसरा जीवानंदम सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता। कत्थी का जीवा बड़े कॉरपोरेट घरानों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। इसी तरह साल 2018 में आई सरकार में विजय सुंदर रामास्वामी नाम के एक एनआरआई बिजनेसमैन के किरदार में नमूदार होते हैं। जो वोट डालने भारत आता है तो पता चलता है कि उसका वोट पहले ही पड़ चुका है। सुंदर रामास्वामी के किरदार में विजय चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते देखे जा सकते हैं। साल 2021 में आई मास्टर में जोसफ विजय लोकेश कनगराज के ऐसे किरदार में हैं जो विजय सेतुपति नाम के खतरनाक गैंगस्टर के खिलाफ मोर्चा खोलता है और बच्चों को उसके अत्याचार से मुक्त कराता है। साल 2023 में आई लियो में विजय पार्थिवन की भूमिका में हैं, जो हिमाचल प्रदेश में कैफे चलाता है और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू करता है। लियो ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड वाइड 623 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। कमाल देखिए कि सियासी अखाड़े में उतरने से करीब एक दशक पहले से जोसफ विजय सोशल कॉज पर फिल्में बनाने लगे थे। 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कड़गम नाम से राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी सफर पर विराम लगाने का ऐलान भी कर दिया। 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उनकी आखिरी रिलीज फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। हालांकि उनकी एक और फिल्म जननायकन रिलीज को तैयार है, पर गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर विजय ने जब उम्मीदवार उतारे तो चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़े उनकी फिल्मों के क्लिपिंग्स का जमकर इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये है कि विजय ने पहले रोमांटिक हीरो के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, उसके बाद एक्शन हीरो के तौर पर जबरदस्त स्टारडम हासिल किया और राजनीति में कदम रखने से पहले एक दशक तक ऐसी फिल्में बनाई जिससे उनकी छवि जननायक वाली बन गई। इस लंबी रणनीतिक सूझबूझ का नतीजा ये है कि अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने सूबे में 60 साल से अंगद पांव जमाए बैठी द्रमुक राजनीति का सफाया कर दिया।
1: तो बंदे मेहदम में आज आपने थलापति विजय के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: संगम नगरी प्रयागराज वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जानी जाएगी। यहाँ पर यमुना नदी में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की खास पहल की गई है, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। देखिए हमारी रिपोर्ट।
5: प्रयागराज में संगम पर स्नान ध्यान के लिए देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग गंगा स्नान करके पुण्य कमाने की चाहत रखते हैं, लेकिन यहीं पर निरंतर बह रही यमुना की जलधारा में अब बोटिंग और वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के रोमांच की खास तस्वीरें नजर आ रही हैं।
6: संगम नगरी प्रयागराज अभी तक धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में ये कयाकिंग कैनोई के जो नावें हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं और बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए यहाँ प्रेरित किया जा रहा है और बच्चे यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स

0: बोट सीख रहे हैं।
1: यहाँ पर स्पीड बोट और जेट स्की जैसे पानी में चलने वाले स्कूटर और दूसरी नावों का इंतजाम किया गया है, ताकि आम लोग और सैलानी नदी के पानी में खेल कूद का मजा ले सकें। इसके लिए यहाँ ट्रेंड ऑपरेटर रखे गए हैं, जो लोगों को जल विहार कराते हैं।
2: ये स्कूटर एक सिंगल पर्सन जा सकता है, जिसके साथ हमारे ट्रेंड ऑपरेटर भी जाते हैं सुबह शाम, और काफी हमारे पास आती रहती है, इंक्वायरी आती रहती है, लोग आते हैं जेट स्की का आनंद लेते हैं। ये हमारा नैनी ब्रिज के पास ही है, तो काफी लोग आते हैं।
1: हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव ने भी खुद जेट स्की पर सवार होकर यमुना में सैर का आनंद लिया।
0: तो दिखाते हैं, ये पूरा रोमांचित करने वाला जो पल है वो यहाँ पर है, और इस तरह से राइड होगी और आप देख सकते हैं कितना रोमांचित करने वाला ये क्षण है। और जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे उनको इस वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ देखने को मिलेगा, और एक धार्मिक पर्यटन के साथ इस वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ ले सकेंगे।
1: खास बात यह है कि प्रयागराज में यमुना रिवर बैंक बोट क्लब पर वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ बर्थडे पार्टी और दूसरे इवेंट्स का भी आयोजन किया जा सकता है। यहां से संगम जाने के लिए 7-सीटर बोट मिलेगी, साथ ही तमाम लोग यहां पर जल क्रीड़ा का भी आनंद ले सकेंगे। प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि यहां आने वालों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
3: और माँ यमुना की जो जलधारा है बहुत विशाल है, वाटर स्पोर्ट्स की वहाँ बहुत संभावना थी, इसलिए नगर निगम प्रयागराज ने महसूस किया, हम सब लोगों ने सदन में संकल्प पारित किया कि वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। और 2.5 करोड़ रुपए का उपकरण स्मार्ट सिटी नगर निगम प्रयागराज के द्वारा कियोकांग कैनोइंग इत्यादि हम लोगों ने छोटी लाइट बोटें उसको उपलब्ध कराने का काम किया। बहुत न्यूनतम किराया रखा गया है, चूँकि हमारे जो पर्यटक आते हैं उनको भी किसी प्रकार की कठिनाई सामना न करना पड़े, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा का भी विशेष ध्यान उसमें दिया गया है, किराया बहुत न्यूनतम रखा गया।
1: यहाँ पर स्थानीय युवाओं और किशोरों को वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने का भी इंतजाम किया गया है, ताकि वे इस क्षेत्र में महारत हासिल कर सके और इस क्षेत्र में करियर भी बना सके।
4: और इसको सिखाने के लिए बच्चों को सबसे पहली चीज तो स्विमिंग आती है, तो हम लोग जो नए बच्चे होते हैं उनको पहले स्विमिंग सिखाते हैं। ये वाटर स्पोर्ट्स ये काफ़ी बैलेंसिंग की बोट है, इस पर बैलेंस नहीं रहता तो बच्चे पलटते भी हैं, तो इसलिए स्विमिंग तो कंपलसरी है उनको। स्विमिंग सिखाने के बाद फिर वो उनको कुछ महीने टेक्निक जैसे ज़मीन पर सिखाया जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इनको पानी में ट्रेनिंग देते हैं।
5: नेशनल लेवल हमारे यहाँ प्लेयर खेले हुए हैं और मेडल भी है नेशनल का, बाकी सब अभी इंडियन आर्मी में भी कुछ लोग हैं, और अभी तो 4 लड़के हुए हैं यूपी पुलिस में, अभी प्रेजेंट में ही हुए हैं, उनका भी ज्वाइनिंग होने वाला है।
1: अभी यहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेने वालों की संख्या 50 तक पहुंच चुकी है। किशोरों और युवाओं में खास तौर से इसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है।
0: यहां पर ये यमुना नदी है और इतना बड़ा जो विस्तार है, यहां इस कयाकिंग कैनोई के माध्यम से यहां पर बच्चे वाटर स्पोर्ट्स के लिए सीख रहे हैं और यहाँ पर नाव चला रहे हैं, तो संभावना यहाँ पर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स उसको लेकर के यहाँ पर हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर अब धार्मिक पर्यटन के अलावा स्पोर्ट्स को भी बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
8: It's your boy,
7: just
8: Jay-Z.
7: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
9: क्या है माँ की महिमा? माता का आपके किन ग्रहों और राशियों से संबंध होता है? माता के साथ अपने संबंधों को कैसे सुधारें और माता के जीवन को किन उपायों से बेहतर करें? मदर्स डे पर जानिए माता के आशीर्वाद और कृपा पाने के उपाय सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: और आपको समझाएंगे।
10: बहन की मौत ने छीनी मासूमियत। दस की उम्र में लगा गहरा सदमा। दर्द के तूफान को बना ली जिंदगी की ताकत। तमिलनाडु की सियासत का नया थलापति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम